0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं आपकी कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला। और दोस्तों, हमारा जो प्रयत्न है वह है लोगों के दुखों का निवारण करना। अब दुख दूर कैसे हों, जीवन की समस्याएं दूर कैसे हों। हर इंसान परेशान है, हर इंसान दुखी है, हर इंसान समस्याओं से घिरा हुआ दिखता है। अब कैसे उनके दुखों का नाश हो सकेगा, इसका सरल उपाय एक ही दिखता है दोस्तों, वो है शिव पुराण या शिव भक्ति या अपने इष्ट की भक्ति। बस इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। और यह पुराण जो है वो तो ऐसा पुराण है, ऐसा रामबाण है उपाय, इसको पठन मात्र से या श्रवण मात्र से इंसान के सारे दुख, सारी समस्याएं जो वो घिरा हुआ है, जिनसे परेशान है, दुखी है, सब दूर हो जाते हैं। वो उसको व्यापते ही नहीं हैं। और जो ऐसा पुराण हो, जो ऐसा अचूक उपाय हो, इसमें पैसा भी खर्च नहीं होता, तो वो क्यों ना कर लिया जाए। सिर्फ इसीलिए आपके परोपकार के लिए एक छोटा सा प्रयत्न हम कर रहे हैं कि आपकी समस्याएं, आपका जीवन जो है वो आनंदित हो, उसके लिए आप शिव पुराण सुने। और दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने के लिए हम हमेशा ही अपने स्टूडियो में डॉक्टर लीना सिन्हा जी को आमंत्रित करते हैं। आज भी डॉक्टर लीना सिन्हा जी हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने एक बहुत ही सुंदर, रोचक और जो गूढ़ ज्ञान वर्धन करने वाला प्रसंग था, वो हमारे दोस्तों को आपने सुनाया कि किस प्रकार से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस को मारा, जिसे और कोई मार ही नहीं सकता था, और कैसे फिर सारे देवगण जो साथ गए थे, उन्होंने भगवान शिव का क्रोध शांत करने के लिए उनकी स्तुतियां की। फिर भगवान शिव शांत हुए। जब भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ, भगवान विष्णु ने, ब्रह्मा ने, सब ने उनकी स्तुति की थी। तो लीना जी, हम पूछना चाहते हैं कि उसके बाद क्या सारे देवगण वापस चले गए और भगवान शिव भी पार्वती सहित अपने कैलाश को लौट गए, तो क्या हुआ इसके बाद, कथा कैसे आगे बढ़ती है, वो हम सब सुनना चाहते हैं।
1: मंजू जी, रुद्र संहिता के युद्ध खंड का 11वां अध्याय चल रहा है। और इस 11वें अध्याय में भगवान शिव जब रुद्र रूप धारण किए त्रिपुर को मारने के लिए, तो फिर वो वापस अपने स्वरूप में नहीं आए, शंकर रूप में, शिव रूप में वापस नहीं आए। उनके रौद्र रूप को देख करके सभी भयभीत होने लगे, कांपने लगे। तब देवताओं ने उनकी स्तुति की, ब्रह्मा जी ने स्तुति की, विष्णु भगवान ने स्तुति की। अब देवता स्तुति करते हैं और वो भगवान शिव से कहते हैं, अब वो क्या कहते हैं यहाँ देखते हैं। देवनाथ महादेव करुणा कर शंकर, प्रसीद जगताम नाथ, प्रसीद परमेश्वर, प्रसीद सर्वकर्ता त्वम, नमाम त्वाम वयम मुदा त्वयि भक्तिर भक्तिर दृढास्माकं नित्यं स्यादन पायनी। वो कहते हैं, देवताओं ने कहा कि देवनाथ महादेव, दयालु शिव जी, संसार के स्वामी हे शिव जी, प्रसन्न होइए। हम सब प्रसन्न होकर आपको प्रणाम करते हैं। आपके चरणों में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे। अविनाशी मतलब भक्ति ऐसी हो जो विनाश को प्राप्त नहीं हो, कि आज तो हमने पूजा की है, कल जो है छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। या आज हमने पूजा की 2 घंटे और उसके बाद फिर भूल गए भगवान को, 24 घंटे में से 22 घंटे भूले रहे, तो ये भी नहीं होना चाहिए। तो अविनाशी भक्ति क्या होती है, प्रश्न ये उठता है। अर्थात भक्ति वह जो कभी खत्म ही नहीं हो। भगवान के साथ जो भक्ति होती है वो हमेशा अविनाशी ही रहे। यानी कि सुबह दूं, शाम दूं, मन करता आठों याम दूं, ये भक्त कहता है कि आपको सुबह सुबह में जो है नमन करूं, शाम में भी नमन करूं, लेकिन मन तो कहता है कि आपको आठों याम नमन करता रहूं, आपकी आठों याम भक्ति करता रहूं। इसलिए आपने देखा होगा कीर्तन होते हैं बहुत जगह तो अष्टयाम कहे जाते हैं, यानी कि आठों याम कीर्तन, सुबह दोपहर शाम तक रात तक कीर्तन चलता ही रहता है। अखंड जप भी आपने सुना होगा 24 घंटे चलते रहते हैं। तो ये सब बाहरी क्रियाएं हैं,
0: अखंड जप है,
1: कीर्तन है, आठों पहर जो भी किया जाता है, वो सब बाहरी क्रियाएं हैं, लेकिन मन हमारा अंतर में निवास करता है। तो आंतरिक क्रियाएं ये होनी चाहिए कि हम जो भी काम करें ईश्वर को समर्पित कर दें, और आठों याम यानी आठों पहर सिर्फ भगवान ही हमारे सामने हो तो इसको अष्टयाम भक्ति कहते हैं। ये अविनाशी दृढ़ भक्ति होती है कि जरा भी भगवान के नाम से जो है हम दूर नहीं हो पाते, और इसी अविनाशी दृढ़ भक्ति से भगवान प्रसन्न होते हैं। तो कहते हैं कि आपके चरणों में हमारी अविनाशी दृढ़ भक्ति सदा बनी रहे, हम सब प्रसन्न होकर आपको प्रणाम करते हैं, ये देवतागण शिव जी से कहते हैं। अब सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि देवों द्वारा स्तुति किए गए संसार का कल्याण करने वाले शिव जी ने प्रसन्न होकर के कहा। अब शिव जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि हे विधे, हे हरे देवाः, प्रसन्नो अस्मि विशेषतः मनो अभिलषितं ब्रूत वरं सर्वे विचारतः। कहते हैं शिव जी की ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं में मैं आज विशेष रूप से प्रसन्न हूँ, आप सब इच्छा अनुसार वर मांगिए। सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, शिव जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर सभी देवता प्रसन्न मन से कहने लगे। अब सभी देवताओं ने कहा, क्या कहा, यदि प्रसन्नो भगवन यदि देयो वरस्त्वया देव देवेश चास्मभ्यं ज्ञात्वा दासान ही नः सुरान, यदा दुःखं तु देवानां संभवेद देव सत्तम तदा त्वं प्रकटो भूत्वा दुःखं नाशय सर्वदा। वो देवतागण कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि यदि आप प्रसन्न हैं और यदि आपको वर देना है तो हम सभी देवताओं को अपना दास समझकर यह वर दीजिए। हे देवों में श्रेष्ठ, जब कभी देवताओं का पर कष्ट पड़े तब आप प्रकट होकर सदा दुख का नाश करें। ये बहुत बड़ी बात देवताओं ने मांग ली कि जब भी कष्ट हो तब आप हमारा कष्ट दूर करें, हमारा कष्ट हरण करें, क्योंकि आप ही कष्ट हरता है, और आप अगर प्रसन्न होते हैं तो समझिए कि हमारा भी अंतर्मन प्रसन्न हो जाता है। वो कहते हैं संत कुमार जी ने कहा इसके बाद कि इत्युक्तो भगवान रुद्रो ब्रह्मणा हरिणा अमरे युग युगपत प्राह तुष्टात्मा तथेत्यस्तु निरंतरम। इस तो अब ब्रह्मा जी सब जो है जब प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है कि सनत कुमार जी ने कहा, हे नारद, शिव जी के इस प्रकार वचनों को सुनकर देवता प्रसन्न मन से कहने लगे, और उन्होंने यही कहा कि भाई आप जो है जब भी हमारा कार्य पड़े तो आप आ जाया करिए। तो संत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु आदि देवताओं के कहने पर प्रसन्न होकर शिव जी ने तथास्तु ऐसा ही कहा। हे देवताओं, आपके कहे हुए उन स्तोत्रों से मैं प्रसन्न हूँ, इन्हें जो पढ़ेगा या सुनेगा उनको मैं इच्छित पदार्थ प्रदान करूँगा। ऐसा कहकर देवताओं के दुखों को हरने वाले शिव जी ने देवताओं को इच्छित वरदान देकर उन्हें सब कुछ दे दिया। तो यहाँ जो भक्तिमय स्तोत्र हैं, जो स्तुति है देवताओं के द्वारा, ब्रह्मा जी के द्वारा, हरि के द्वारा, तो ये स्तुति हम सबको भी पढ़नी चाहिए, जिससे कि भगवान शिव हमसे प्रसन्न रहे, सदैव प्रसन्न रहे, क्योंकि वो प्रसन्न तो हमारा अंतर्मन प्रसन्न, और हमारा अंतर्मन प्रसन्न तो फिर हम सारे कार्य प्रसन्नता पूर्वक करेंगे, नहीं तो बस ऐसे ही आशा निराशा दुख सुख में डूबे रहेंगे। और दुख सुख का गहवर जो है वो तो है ही, सबके साथ है। कहते हैं कि जैसे रथ का पहिया होता है, उसमें 24 अरे लगे हुए होते हैं, ये सभी जैसे जैसे रथ घूमता है वैसे वैसे ये भी घूमते हैं। तो हमारा सुख दुख ठीक इसी तरह से है, कभी पहिया ऊपर होता है, कभी नीचे आता है, फिर ऊपर होता है फिर नीचे आता है, तो दुख होगा तो सुख होगा, सुख होगा तो दुख होगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष तो इस सृष्टि का नियम ही है।
0: लीना दी, ये सत्य है कि जीवन है तो सुख दुख आएंगे ही। ऐसा कभी ना हुआ है ना होगा कि हमेशा सुख ही सुख रहे या हमेशा दुख ही दुख रहे, तो ऐसा तो दोस्तों कभी होता नहीं है। जब भगवान इनका युद्ध खत्म हो गया था महाभारत का, तो कुंती ने, कृष्ण ने कुंती से पूछा था कि बुआ आप मांग लो, क्या मांगना है। तो दोस्तों पता है क्या मांगा था कुंती ने कृष्ण से? उसने कहा था केशव तुम मुझे दुख ही दुख देना। दोस्तों उसने दुख ही दुख क्यों मांगे? वो तो कुछ भी मांग सकती थी कि मुझे कभी ऐसा दृश्य न देखने को मिले, कभी महाभारत जैसा, कभी मुझे दुख ना मिले, मेरे संतान को, कुछ भी मांग सकती थी ना। अब हम क्या मांगते हैं भगवान से? हमारे बच्चों की रक्षा करना, हमारे बच्चों को धन देना, हमारे बच्चों के काम संभालना, बहुत कुछ मांगते रहे, मांगते ही रहते हैं। चलो भगवान से तो मांगना है, उसी से ही मांगना चाहिए। लेकिन उसने दुख क्यों मांगा? ताकि वो भगवान को, केशव को, श्री कृष्ण को पहचानती थी कि ये कौन है, और वो हमेशा उनको स्मरण रखना चाहती थी। वो जब भी बुलाए दुख में तो उनको आना ही पड़ेगा, वो हमेशा उनको स्मरण रखना करते रहना चाहती थी। बिल्कुल वही बात आप अपने जीवन पर लागू रखिए। आप हमेशा ईश्वर को, अपने इष्ट को स्मरण करते रहेंगे तो दुख आएंगे जरूर, पर दुख सहने की क्षमता भी ईश्वर ही देंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब दुख आए और कब चले गए, और सुख आएंगे तो सुख में भी अभिमान करने की दुर्बुद्धि ईश्वर आपको नहीं देगा। दुख आए उसमें भी समान और सुख आए उसमें भी समान, आएंगे तो दोनों ही। इतने उदाहरण ईश्वर ने प्रकृति में ही दे रखे हैं। गुलाब का फूल इतना खूबसूरत होता है, फिर भी उसकी हर डाली में इतने कांटे होते हैं, एक फूल के साथ 10-10 कांटे होते हैं। अब इससे हम क्या प्रेरणा ले सकते हैं कि फूल में सुगंध भी है, सुंदरता भी है, ईश्वर ने मतलब देखते जाओ इतना सौंदर्य उसमें दिया है, लेकिन उसके साथ कांटे भी हैं, यानी कि उसके जीवन में दुख भी है और वो सुख भी है, उसकी सुगंध का, उसकी सुंदरता का। तो इन सब से हम प्रेरणा लेकर अपने जीवन में संतुष्ट रह सकते हैं। संतुष्टि सबसे बड़ी चीज है। आजकल जो संतुष्ट है वही सुखी है, जो संतुष्ट नहीं है वह कभी संतुष्ट हो भी नहीं सकता, उसे संतोष मिल भी नहीं सकता। जो कुछ अपने पास है दोस्तों उसमें ही संतुष्ट रहिए। एक रिक्शा वाला रिक्शा चलाकर रात को आता है और बिना कोई चिंता किए हुए अपने सारे परिवार के साथ वह आनंदित होकर जैसा भी भोजन घर में बनता है उसको करके आराम की नींद सोता है। लेकिन जिसके घर में धन अधिक है ना तो उसको चैन की नींद आती है, ना ही वह अपने भोजन का आनंद ले पाता है, ना ही वह सो पाता है, दवाइयों पे दवाइयां खाता रहता है, तो ऐसे धन का क्या फ़ायदा? क्या आप ऐसा धन चाहेंगे जिसमें जीवन का सुख ही चला जाए, जिसमें संतुष्टि ना आए? अब क्योंकि संतोष ही नहीं है तो सुख कहाँ से होगा, हैं? संतोषम ही परम सुखम ये कहा गया है, लेकिन संतोष ही नहीं है तो सुख कहाँ? तो दोस्तों जो लीना जी ने अभी बताया, जैसा कि हमारा शिव पुराण में लिखा हुआ है कि अगर भगवान का स्मरण करते रहोगे तो दुख व्यापेंगे नहीं, आएंगे पर आपको अंदर तक दुखी नहीं देंगे, आप आएंगे और आप उसको सहन करते चले जाएंगे, सुख आएंगे उसको, आनंदित होते चले जाएंगे।
1: तो इस तरह से रुद्र संहिता के युद्ध खंड के 11वें अध्याय में भगवान शिव ने देवताओं को वर दिया। अब 11वें अध्याय के बाद 12वां अध्याय शुरू हो रहा है। अच्छा। अब इसमें देखते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। कहते हैं सनत कुमार जी, एतस्मिन् अंतरे शंभुम प्रसन्नम वीक्ष्य दानव तत्र आजगाम सुप्रीतो मयो दग्ध कृपा बलात् प्राणनाम हरम प्रीत्या सुरान्यान अपि ध्रुवम कृतांजलिर नत स्कंध प्रणमाम पुनः शिवम। कहते हैं इसी बीच में शिव जी की कृपा से जलने से बचा हुआ मैं दानव शिव जी को प्रसन्न देखकर वहां आया। शिव जी तथा अन्य देवताओं को हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर प्रणाम किया। फिर उठकर शिव जी को देखकर गदगद स्वर से भक्ति पूर्वक मैं दानव ने उनकी स्तुति की, क्योंकि मैं दानव ही है जो भगवान विश्वकर्मा की तरह है। भगवान विश्वकर्मा क्या करते हैं, ईश्वर से संबंधित जो भी शिल्प कला होती है वो भगवान विश्वकर्मा ही करते हैं। जैसे जब ये बनाया गया महल भगवान शिव के लिए, तो वो किसने बनाया था,
2: विश्वकर्मा।
1: और जो
2: ये रथ बनाया था तो भी विश्वकर्मा,
1: वो भी विश्वकर्मा। शिल्प कला से संबंधित हर कार्य विश्वकर्मा करते हैं देवताओं की ओर से। और दानवों की ओर से जो शिल्प कला है वो कौन करते हैं, मैं दानव। तो मैं दानव ने त्रिपुरासुर की नगरी बनाई थी, लेकिन वो मैं दानव बचा रह गया। क्यों बचा रह गया भाई, क्योंकि वो शिव जी को का भक्त था और शिव से उसका द्रोह नहीं था। त्रिपुरासुर आदि भी भक्त थे, लेकिन उनका धीरे धीरे शिव से द्रोह बढ़ता चला गया था, तो इसलिए वे नष्ट हुए। लेकिन मैं का शिव से द्रोह नहीं था, इसलिए वो नष्ट नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये बात ध्यान देने योग्य है कि हम सब अगर शिव भक्ति में रमे रहेंगे तो हम सब का शरीर भले समाप्त हो जाए, लेकिन हमारे मन, हमारी आत्मा सब में शुभ कर्म ही विराजेंगे। और शुभता जहाँ जहाँ होगी वहाँ वहाँ अंधेरा छट जाएगा। तो मन का अंधेरा अगर हमें छांटना है तो भगवान शिव के शरण में हमें जाना चाहिए। तो अब मैं दानव का अंधेरा छट चुका था, उसने देखा कि भगवान शिव ने उसे नहीं मारा, तो वो खुश होकर के शिव के पास गया। और देखिए आगे क्या होता है, मैं दानव ने उनकी स्तुति की। अब वो भी कहता है, मैं दानव भी कहता है कि देव देव महादेव भक्तवत्सल शंकर कल्प वृक्ष स्वरूपो असि सर्व पक्ष विवर्जित ज्योति रूप नमे नमस्ते अस्तु विश्व रूप नमो अस्तु ते नमः पूतात्मने तुभ्यं पावनाय नमो नमः चित्र रूपाय नित्याय रूपातीताय ते नमः दिव्य रूपाय दिव्या सुदिव्या कृतये नमः नमः प्रणत सर्वार्थी नाशकाय शिवात्मने कर्त्रे भर्त्रे च संहर्त्रे त्रिलोकानाम नमो नमः। अब देखिए, मैं दानव भी पढ़ा लिखा विद्वान था और उसने भी बड़े सुंदर शब्दों में भगवान शिव की स्तुति की। उसने कहा, देव देव महादेव भक्तवत्सल शंकर आप सभी पक्षों से रहित कल्प वृक्ष के समान है। क्योंकि आपने ये नहीं देखा कि ये दानव है और ये देवता है, आपने तो दोनों को समान रूप से
2: आशीर्वाद दिया।
1: तो आप ज्योति रूप विश्व रूप पवित्र आत्मा तथा सबको पवित्र करने वाले हैं, अतः आपको नमस्कार है। विभिन्न रूपों वाले नित्य रूपातीत आपको नमस्कार है। दिव्य रूप दिव्य आकृति वाले आपको नमस्कार है। सभी भक्तों के कष्टों का नाश करने वाले शिवात्मा तीनों लोकों के कर्ता भर्ता संघर्ता आपको नमस्कार है। भक्तों को भक्ति द्वारा प्राप्त होने वाले कृपालु तपस्या के फल को देने वाले शिवपति शिवापति शिवेश्वर आपको नमस्कार है। हे परमेश्वर, हे स्तुति प्रिय, हे सर्वेश, मैं स्तुति करना नहीं जानता। इतना चीज सब कुछ बोल करके आगे वो कहता है कि मैं स्तुति करना नहीं जानता, आप मुझ शरणागत पर प्रसन्न होकर मेरी रक्षा कीजिए। अब तो उसके अंदर भय खत्म हुआ और थोड़ा साहस करके वह भगवान शिव के पास गया और शिव की आराधना किया, उनकी स्तुति की और अंत में अपनी अज्ञानता भी बताई, अपना जो उसके अहंकार के समूल नाश का प्रतीक है कि भगवान शिव जो है सबसे पहले अहंकार का भक्षण करते हैं। वो किसी भी मनुष्य किसी भी पशु के अंदर तो अहंकार काम क्रोध होता नहीं है, लेकिन मनुष्य को कहा गया है, मनुष्य को भी पशु की ही संज्ञा दी गई है, तो वो किसी के अहंकार का वो तुरंत भक्षण कर लेते हैं भगवान शिव। तो जब मैं दानव उनके पास पहुंचा तो वो अहंकार रहित हो गया था। अहंकार रहित व्यक्ति ही कह सकता है कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ स्तुति करना, तो कैसे स्तुति करूँ ये मैं नहीं जानता, लेकिन फिर भी आप प्रसन्न होइए मुझ पर और मुझे शरणागति अपनी शरणागति प्रदान कीजिए। तब सनत कुमार कहते हैं, इत्याकर्ण्य मयोक्ताम हि संस्तुतिम परमेश्वर प्रसन्नो अभिहूत द्विज श्रेष्ठ मयम प्रोवाच चादरात। कहते हैं सनत कुमार जी कि इस प्रकार मेरे द्वारा कही गई स्तुति को सुनकर वे नारद शिव जी ने प्रसन्न होकर आदर से मैं से कहा। हे नारद, शिव जी ने प्रसन्न होकर आदर से मैं से कहा। देखिए शिव जी पर ब्रह्म परमेश्वर हैं, फिर भी वे अपने से छोटों का निरादर कभी नहीं करते, तो आदर पूर्वक उन्होंने मैं दानव से कहा। क्या कहा शिव जी ने? कहते हैं, वरम ब्रूहि प्रसन्नो अहम मैं दानव सत्तम मनो अभिलषितम यत्ते तद दास्यामि न संशय। वो कहते हैं कि हे दानव श्रेष्ठ, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, अपना इच्छित वर मांगो, मैं निसंदेह तुम्हें दूंगा। सनत कुमार जी ने कहा कि मैं दानव शिव जी के शुभ वचनों को सुनकर प्रभु को हाथ जोड़कर प्रणाम कर तथा सिर झुकाकर कहने लगा। अब मैं दानव ने क्या कहा? कहते हैं कि देव देव महादेव प्रसन्नो यदि मे भवान वर योग्यो अस्मि अहम चेद्धि स्वभक्तिम देहि भावो भवेन मम महेश्वर निर्भय श्याम स्वभक्तिम देहि शाश्वतीम स्वभक्तेषु सदा सख्यम दीनेषु च दयाम सदा उपेक्षा मन्य जीवेषु खलेषु परमेश्वर कदापि नासुरो भावो भवेन मम महेश्वर निर्भय श्याम सदानाथ मग्न मग्नः त्वद् भजने शुभे। अब मैं दानव कहते हैं क्या कि देव देव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मैं वर पाने के योगी हूँ तो मुझे अपनी सनातन भक्ति दीजिए। यानी कि मैं दानव के मन में भी भक्ति जागृत हुई और वह दानवता छोड़ करके भक्ति के मार्ग पर चल पड़ा भगवान शिव की कृपा से। और वो फिर आगे कहता है, हे परमेश्वर, अपने भक्तों के साथ सदा मित्रता दिनों में दया खल तथा अन्य जीवों के प्रति उपेक्षा कीजिए। हे महेश्वर, मेरे मन में कभी असुर भाव पैदा ना हो। असुरत तो उसके अंदर पैदा नहीं हो, क्योंकि वो मैदानव जान रहा था कि जो राक्षस कोटि के हैं, जो राक्षसी वृत्ति जिनकी है, उनके साथ भगवान नहीं होते हैं। इसलिए उसने ऐसा भगवान महेश्वर से कहा और महेश्वर ने फिर कहा कि हे दानव श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, मेरे भक्त हो, विकार रहित

0: मैं दानव,
1: मैं दानव
0: तो भगवान शिव के लिए देव और दानव दोनों बराबर है। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि ये धनुज है, ये राक्षस है, इनको वर नहीं दिया जाए, या उन्होंने यह नहीं सोचा कि ये देवता हैं तो सिर्फ इन्हें ही वर का अधिकार है। जिसने भी उनसे जो कुछ भी प्यार से मांगा, भक्ति से मांगा, उसे उन्होंने इच्छित वर प्रदान किया। तो मैं दानव को भी उन्होंने इच्छित वर प्रदान किया कि आप बीतल लोक में सपरिवार रहिए जा करके, और यह स्वर्ग से भी अधिक सुंदर है।
1: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक ये प्रसंग था लीना जी, और ये बहुत ही गूढ़ रहस्य वाला था, जिसको हमने कभी ना बाहर सुना है और ना ही हमें सुनने को कहीं मिला कि किस तरह से एक दानव भी भगवान की भक्ति पाकर उनके जो वरदान का है वो पात्र बन गया। तो जब दानव बन सकते हैं पात्र, तो इंसान क्यों नहीं बन सकते। तो लीना जी, अब क्योंकि एपिसोड समाप्त करने का समय हो चला है, तो हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद जी।
1: और दोस्तों, अब मुझे भी आप इजाज़त दीजिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम पुनः फिर मिलेंगे। इस एपिसोड को हम अब आगे नहीं बढ़ा सकते, समय इजाज़त नहीं दे रहा है, तो मुझे भी इजाज़त दीजिए। Feel good, feel life.

0: रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा आपके साथ और शुरू हो चुका है प्रोग्राम आत्मबोध। और हर बार की तरह हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। चलिए इनसे इनका हाल चाल जानते हैं। गुड मॉर्निंग।
1: ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। और आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी बहुत स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे।
0: आप भी अपनी शुभकामनाओं के लिए हमें मैसेज करें, हमसे कांटेक्ट करें। नंबर है 8010781078। हर हफ्ते हम चले आते हैं गीता के ज्ञान को लेकर के, जहां हम बहुत सारी बातें आप लोगों से करते हैं। गीता के ज्ञान में इतना सब कुछ है ना कि हमारी जिंदगी बदल जाएगी। आप सभी जानते हैं कि कई लोग जिन्हें हम देखते हैं वो ये कहते हैं कि गीता के ज्ञान ने हमारी पूरी जिंदगी को बदल करके रख दिया। तो चलिए अब अपनी जिंदगी को बदलते हैं, और खास तौर पे वो लोग जिनके पास वक्त नहीं है, इतने बिजी हैं कि क्या बताएं। उनसे कुछ पूछो तो यही कि यार हमारे पास तो वक्त ही नहीं, हम कैसे कुछ नया करें। तो रेडियो मानव कृष्णा 107.8 FM पर हमने शुरू किया गीता का ज्ञान प्रोग्राम है आत्मबोध, और इसमें आपको गीता के ज्ञान के बारे में पता चलेगा। और इन सब के जानकारी के लिए हमारे साथ बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी होती हैं। दूसरे अध्याय पर हैं हम लोग, जिसका नाम है ज्ञान योग। ज्ञान योग के बारे में काफी सारी डिटेल में बातें बताई बीके प्रिया जी और ज्योति जी ने, लेकिन इसमें एक और है लेसन जिसका नाम है आप आत्मा हैं। आत्मा के बारे में काफी अच्छे से यहाँ पर बताया गया है। तो चलिए हम ज्योति जी और प्रिया जी से जानते हैं और बढ़ते हैं ज्योति जी की तरफ। ज्योति जी, ये जो है इसमें लिखा है आप आत्मा हैं, ये तो हमें पता है, लेकिन किस तरह से, मतलब किस तरह से ये एक्सप्लेन किया गया है, आप अपने तरीके से समझाएं सभी लिसनर्स को।
1: जैसा कि दूसरा अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन से बात कर रहे हैं, और अर्जुन क्योंकि विषाद में है तो सबसे पहले खुद का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि जब हम कमजोर हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम स्वयं को भूल जाते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का जो दूसरा अध्याय है वो पूरा ही अपनी सेल्फ रियलाइजेशन पर ही फोकस कर रहा है कि हम कौन हैं और हम क्या बन करके चल रहे हैं। तो इसमें एक बहुत सुंदर श्लोक के द्वारा भी कहा गया है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा ना भूये अजो नित्या शाश्वतयम पुराणो न हरन्ते हन्यामाने शरीरे। अर्थात है कि यह आत्मा किसी काल में न जन्मती है न मरती है, बल्कि यह अजन्मी नित्य सनातन और पुरातन है। माना शरीर के मारे जाने के बाद भी आत्मा का अस्तित्व खत्म नहीं होता, वो अमर अमर अविनाशी है। अगर हम साधारण शब्दों में कहें तो आत्मा को कोई भी मार नहीं सकता है, और प्रथम अध्याय में भी इस चीज को बहुत अच्छे से बताया गया है। और उसका जो स्वधर्म है, उसका स्वधर्म क्या है, वो श्री कृष्ण जो है, परमात्मा जो है, वो अर्जुन को बता रहे हैं। अर्थात हम सब आत्माओं को बता रहे हैं कि किसी भी, अगर हम स्वधर्म में टिक जाएं, अर्थात आत्मिक धर्म में टिक जाएं, तो कभी भी हम डरेंगे नहीं, भयभीत नहीं होंगे। तो वहाँ उनको वो क्षत्रिय धर्म याद दिलाते हैं कि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कुछ कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। अर्थात इसमें ये बताया गया कि स्वतंत्र आत्मा किसी भी तरह के बंधन में बंधी हुई नहीं है, वो फ्री है, वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि वो राजा है और ये शरीर की जो कर्म इंद्रियां हैं वो उसकी प्रजा है, उससे उसे कार्य करना है और उसके वशीभूत ना हो जाए। आज हम क्या हो गए हैं, बाहर की जगत की बात बाद में करें, लेकिन हम अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं।
0: बिल्कुल,
1: हमारी ही इंद्रियां, हमारी आंख जो चीज देखती है, जो चीज पसंद करती है, बस मन वही भाग रहा है। और ऐसे ही अगर देखें तो हमारे कान जिन बातों को सुनना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो कहीं प्रवचन होंगे या कोई आपकी गली के अंदर भी आप देखें कि कोई कहीं कथा हो रही है, तो लोग पूछेंगे कि क्या वहां से इनविटेशन आया है, बुलाया गया है, तो ही हम जाएंगे, अदरवाइज नहीं जाते हैं। और कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वहां पे पहुंचे चले जाते
0: बिन बुलाए मेहमान,
1: बिन बुलाए मेहमान, जबकि हर कोई चाहता नहीं है कि कोई वो चीजें सुने। तो माना कहीं ना कहीं हमारी कान की इंद्रियों को रस मिलने लगा है उस नेगेटिव बातों में। तो हम इंद्रियों के वशीभूत हो गए हैं और मन भी उसी में रमने लगा है। तो यहाँ पर इस अध्याय में बहुत अच्छे से क्लियर किया गया कि आत्मा का स्वधर्म क्या है। आत्मा इस शरीर में राजा है और आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्तियां हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन के ये तीन तो शक्तियां हैं, लेकिन आत्मा अपने स्वधर्म कौन कौन से गुण हैं, उसके मूलभूत गुण अगर कहें, क्योंकि आत्मा को सतोगुणी कहा गया है, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे डे बाय डे में आत्मा तमोगुणी बन गई है। तो सतोगुणी क्यों कहा गया, क्योंकि आत्मा के सात गुण है। अगर हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में ले तो कहा जाता है KP² LHBP अर्थात K फॉर नॉलेज, हमारी जो ज्ञान है उसके लिए, P फॉर प्योरिटी, जो हमारी पवित्रता है, हर एक को पवित्र चाहिए, पवित्रता चाहिए, फिर P फॉर, क्योंकि स्क्वायर है, P फॉर पीस, L फॉर लव, H फॉर हैप्पीनेस, B फॉर ब्लिस और लास्ट P पावर। तो ये सात गुण आत्मा में निहित है। इन जब सातों गुणों को आत्मा महसूस करती है, उस पूरे ही अपनी चरम सीमा पर होते हैं वो गुण प्रैक्टिकल रूप में, तो आत्मा सतोगुणी कहलाती है। अब हम सब देखें अगर तो मनुष्य के मन में बहुत सारे संकल्प चलते हैं, विकल्प चलते हैं, लेकिन उनको चाहिए क्या, कहीं ना कहीं इसी धुरी में जाकर के टिक जाते हैं। आज इस ज्ञान की भी अज्ञानता हो गई है। ज्ञान को हम सब सोचते हैं शायद किताबी ज्ञान, लेकिन अपने प्रकृति का ज्ञान, खुद का ज्ञान होना, माना वही संपूर्ण ज्ञान है, खुद के बारे में जानना। आज हमें दूसरे के मन में क्या चल रहा है वो तो हमें पता है,
2: खुद के मन में क्या है
1: वो नहीं पता है ना, उससे हम दूर हैं। तो मन की, अपने आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होना, अपनी प्रकृति का ज्ञान होना, इसको कहा गया ज्ञान। प्योरिटी अर्थात पवित्रता, जो पवित्रता हमारे मन में किसी के लिए भी दुर्भावना ना आए, उसको कहा गया प्योरिटी। और शांति, शांति की अगर बात करते हैं तो शांति जो है वो क्या चीज है, शांति के लिए लोग सोचते हैं चुप बैठ जाना, है ना। इसके लिए एक बहुत अच्छी कहानी सुनाई जाती है कि एक बार एक राज्य के अंदर ऐलान किया गया कि चित्र बनाना है शांति के ऊपर। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे चित्र बनाए, लेकिन उसमें से दो चित्र डिसाइड किए गए, दो चित्र चुनाव करके आए। एक चित्र था जिसके अंदर बहुत सारी प्रकृति थी, ग्रीनरी थी, और एक चित्र था, अगर आपको भी बोला जाए तो आप क्या इमेज कर सकते हैं शांति के रूप में, अगर आपको कहा जाए तो आप क्या समझते हैं, आप क्या चित्र ड्रॉ करेंगे?
2: मैं अगर बोलूं तो पेड़ पौधे, झरना, सूरज, ये होता है
1: जी, बिल्कुल। उन्होंने भी एक पिक्चर तो यही ड्रॉ की कि जहाँ पे बहुत सुंदर प्रकृति, नेचर दिखाया हुआ था, और दूसरी तरफ एक पिक्चर बनाई जहाँ बहुत तूफान आ रहा है, बहुत ज्यादा वहाँ पे विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उस दृश्य के अंदर एक चिड़िया पेड़ पर बैठी हुई बड़े प्यार से अपने बच्चों को दाना खिला रही है। तो राजा के सामने जब गया तो फिर से कौन सा चित्र डिसाइड किया गया होगा, आप क्या समझते हैं, क्या वो नेचर वाला या फिर वो चीज जहाँ बहुत तूफान आ रहे हैं, बहुत ज्यादा बवंडर है, विनाशकारी दृश्य है, लेकिन उसमें फिर भी एक चिड़िया और अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रही है, किसको आप कहेंगे?
2: मेरे हिसाब से मैं समझ पा रही हूँ, जिसमें तूफान है और चिड़िया आराम से, क्योंकि चारों तरफ तूफान है लेकिन उसके अंदर शांति है और वो शांति से अपने बच्चों को खिला।
1: तो यही चीज जो है वहाँ पे उसी चित्र को ही वहाँ पर भी डिसाइड किया गया और फाइनली लिया गया, और उस चित्र में से यही, तो ये चित्र हमें क्या दृश्य दिखा रहा है कि जब विपरीत परिस्थितियां आती है तब भी हम स्टेबल रहे, उसको कहा जाता है शांति। हमारा मन स्थिर रहे, हमारे अंदर हलचल ना हो, हम सिचुएशन को हैंडल करने की ताकत रखते हो, उसको कहा गया शांति। तो वो शांति की ताकत हमारे सबके अंदर है, लेकिन हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही प्रेम है, प्रेम का आज जो मीनिंग हो गया है वो बहुत विकृत हो गया है, जबकि प्रेम कहते हैं ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, माना हर एक आत्मा से, हर एक प्रकृति की जीवों से, पंछियों से, हम पेड़ पौधों से समान भाव से प्यार करें, उसको कहा गया प्रेम। फिर आती है बात सुख की, तो जीवन में जब शांति आती है, प्रेम आता है, तो सुख की अनुभूति होने लग जाती है। और फिर लास्ट आनंद है, और आनंद का कोई विपरीत अर्थ शब्द नहीं है, आनंद अपने आप में ही बहुत परफेक्शन के साथ है, उसको ब्लिस कहा गया। और इसका कोई विलोम शब्द नहीं, क्योंकि पवित्रता का फिर भी अपवित्रता है, शांति का शांति है, प्रेम का क्रोध है, लेकिन आनंद माना जो परमानंद की अनुभूति कराए। और लास्ट है, जब ये सारी चीजें आ जाती है तो हम पावरफुल बन जाते हैं, क्योंकि आत्मा अपने सारे गुणों में परफेक्ट हो जाती है। और इसी चीज को इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि आप वो प्योर सोल हो, आप वो प्योर आत्मा हो जिसके अंदर ये सारे गुण समाये हुए हैं। ये मैं और मेरा, मेरा जो कह रहे हैं वो विनाशी है, वो खत्म होने वाला है, लेकिन जो मैं है इसमें चेतन सत्ता है, उसको अगर हम पहचानेंगे तो हम अपनी परफेक्शन में आ जाएंगे और अपने कर्म पर ध्यान देंगे।
2: बिल्कुल। और ये जितनी भी सात चीजें आपने बताई हैं, इसको कहीं बाहर से कमाना नहीं है या किसी से अर्जित नहीं करना है, ये सारी अपने अंदर है, बस इसको जानना है, इसको समझना है, बाकी भगवान ने ये इन बिल्ड हमारे लिए रखी है। बिल्कुल सही कहा, हम दूसरों को जानने की कोशिश करते हैं, हम कभी खुद को जानने की कोशिश नहीं करते। और वही आपने बड़ी खूबसूरती से बताया कि अगर आप खुद को जान लेते हैं, बस वही एक आत्मा का पाठ है, वही जो है पूरा परफेक्ट है आप खुद में। बहुत सही बात बोली। गीता के ज्ञान की हम बात कर रहे हैं और अध्याय दो है, नाम है ज्ञान योग, और इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि हम एक आत्मा है के बारे में। ज्योति जी ने बहुत खूबसूरती से बताया, और अब हम प्रिया जी की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस अध्याय में आगे क्या है। प्रिया जी बताइए।
3: आगे जैसा कि हम देखते हैं कि अर्जुन को वो बार बार याद दिला रहे हैं, समझा रहे हैं परमात्मा कि तुम्हें युद्ध करना ही है, जिसके लिए वो कहते हैं हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। अर्थात पार्थ, अर्थात जो उनका स्टूडेंट अर्थात अर्जुन को उन्होंने कहा कि तुम चाहे मर करके स्वर्ग पहुंचो या फिर जीवित रहकर युद्ध करके इस पूरी सृष्टि पर जीत प्राप्त कर सुख को भोगो, तो इसीलिए तुम्हारा बेस्ट यही है कि तुम युद्ध करो। तो क्योंकि सिंपल कुछ किए बिना जाना और कुछ करके जाना, उसमें बहुत फर्क होता है। तो यहाँ उनको वो बार बार याद दिलाते हैं कि आपको युद्ध करना है, और युद्ध करने में हम कॉन्शियस ये नहीं होए कि कौन जीतेगा या हारेगा, हमें कॉन्शियस होना है कि हमारी फाइट अच्छे से हो। तो फिर बात यहाँ आती है, स्पिरिचुअलिटी ये कहती है कि क्या हमें फिजिकल फाइट के लिए परमात्मा प्रेर रहा है, हमें वो गाइडलाइंस दे रहा है कि शुड वी गेट द वेपन्स, कि हमें हथियार उठाने हैं। पर यहाँ पर परमात्मा हमें हमारे गुणों के हथियारों की बात करता है कि जहाँ मेरा मेंटल फाइट है, जहाँ द्वंद है, जहाँ मैं कंफ्यूज हूँ, जहाँ डिलेमा स्टार्ट होते हैं, वहाँ मैं अपने फोकस करूं इंटरनल शक्तियों पर, जैसा कि ज्योति जी ने बताया कि ये सब चीजें मेरे पास, मुझे परमात्मा से आपने कहा इनबिल्ट है, गॉड गिफ्ट है, तो उस पर अगर मैं फोकस करता हूं तो मेरी ये फाइट मेरे लिए बहुत इजी हो जाती है
2: जी।
3: और फाइट मुझे करनी ही है, बिना फाइट किए मैं आगे बढ़ नहीं सकता। इसी योग को जो आपने कहा ज्ञान योग, अध्याय का नाम है, तो यहाँ पर परमात्मा हमको संपूर्ण ज्ञान का परिभाषा डेफिनेशन वो ये कहते हैं कि आत्मा का ज्ञान ही संपूर्ण ज्ञान है। मीन्स अगर मैं अपने आप को नहीं जानता, अपने अस्तित्व को नहीं जानता, तो मैं अगर पूरी दुनिया का पूरा ज्ञान भी अर्जित कर लेता हूँ तो भी मैं इनकम्प्लीट हूँ। और दैट्स वाई देखा ये गया है कि जब हम हायर लेवल पर किसी बुलंदी पर किसी को देखते हैं तो एंड ऑफ द डे वो ये फील करते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ रह गया है। और वो क्या रह गया है कि खुद को जाना और खुद के बाद खुदा को पाना, ये चीज जो हमारी जिंदगी में रह जाती है उसी के लिए हमारे को परमात्मा या कृष्ण रूप में हमारे को बता रहे हैं। उसके बाद वो हमारे को याद दिलाते हैं कि हमारा जो मन बुद्धि संस्कार, जैसे कि ज्योति जी ने कहा, तो मन जो है वो कई तरह के थॉट्स को क्रिएट करने की एक फैक्ट्री है। बस इस फैक्ट्री में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस तो कर रहा है, यानी थॉट्स क्रिएट कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि कौन सा माल आर का माल है, मीन्स रिजेक्टेड है। तो जिसमें बुद्धि हमको हेल्प करती है कि क्या रिजेक्टेड है, क्या सही है, क्या गलत है। जैसे मन नेगेटिव थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी, वेस्ट, टॉक्सिक, एलिवेटेड, राइट थॉट्स, बहुत तरह के थॉट्स करता है और हमारे को बुद्धि गाइड करती है कि एलिवेटेड मीन्स ऐसे थॉट्स जिसमें हम सिर्फ दूसरों के लिए दुआएं करते हैं, ठीक है। जबकि उसी के बिल्कुल उलट हम देखते हैं कि टॉक्सिक थॉट्स, यानी जहां हम सिर्फ अपने लिए या दूसरों के लिए नुकसान की बातें सोचते हैं, मरने मारने की बातें करते हैं, जैसे कि सुसाइड करना, यानी वो व्यक्ति कितना ही टॉक्सिक थॉट्स में भरा हुआ होगा तो इसीलिए उसे टॉक्सिक थॉट्स कहते हैं। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो लास्ट आता है संस्कार। संस्कार एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है, जैसे कि प्लेन्स में भी एक बॉक्स होता है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है सब कुछ, उसी प्रकार से आत्मा में अपने आप एक रिकॉर्डिंग बॉक्स है। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि कहते हैं कि मरने के बाद ऊपर धर्मराज और चित्रगुप्त बैठे हैं सबका हिसाब करने पर, नहीं, ये इंटरनली ही हम सोल्स के साथ ही फीड है, बिल्ट है, कि जो हमारा बुद्धि है, अगर उसकी पिक्चर अगर आप देखते हो तो एक तराजू के फॉर्म में होती है, वो धर्मराज का फॉर्म है, और जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारा रिकॉर्डिंग पार्ट है, वो चित्रगुप्त है। और चित्रगुप्त को अगर हम उल्टा कर देते हैं दोनों शब्दों को तो वो बनता है गुप्त चित्र, अर्थात हम क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, देख रहे हैं, सोच रहे हैं, वो गुप्त रीति हर चीज सेकेंड बाय सेकेंड रिकॉर्ड हो रही है
2: जी।
3: और जब एंड ऑफ द डे यानी जब मृत्यु आती है तो व्यक्ति को ऊपर जाके नहीं, उस लास्ट मोमेंट्स में ही बुद्धि और संस्कार का, जो यहाँ पर धर्मराज और जो मैंने कहा चित्रगुप्त का फॉर्म है, वही वहाँ अंदर ही अंदर सब कुछ डिसाइड होता है और फिर उसको नेक्स्ट बर्थ जो है मिलता है। और कहते हैं मरते वक्त व्यक्ति इसीलिए डेफ, डम्ब और ब्लाइंड हो जाता है, उसको बाहर के दुनिया से कट जाता है। उसके बाद उन्हें परमात्मा ये कहते हैं कि जैसे आप कर्म करते हो तो कर्म करना है तो बिल्कुल न्यूट्रल होकर करना है। और उन्होंने विशेष ये कहा कि यावनार्थ उत्पादे सर्वतः संलुप्ते दुतके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, अर्थात जब एक ब्राह्मण को परमात्मा प्राप्त होता है, यानी हम मनुष्य अगर परमात्मा के टू क्लोज या पूरी उसकी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं तो हमारे लिए दूसरे शास्त्रों के ऊपर डिपेंडेंसी उस तरीके से है जैसे कि मैं समुद्र के पास पहुंच गया और एक ग्लास में समुद्र का पानी लेकर खड़ा हूं तो उस ग्लास की समुद्र के आगे खड़े होने पर कोई वैल्यू नहीं रहती।
2: बिल्कुल।
3: तो उसी प्रकार से परमात्मा को अगर मैंने पा लिया है तो वो शास्त्रों का वहां पर वैल्यू उस ग्लास के लेवल पे ही होता है कि जब शास्त्रों का ज्ञाता सागर मिल गया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। फिर परमात्मा अर्जुन को ये याद दिलाते हैं, जैसे कहा कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इस क्षेत्र में आना, कुरुक्षेत्र जैसे बताया कि कर्म क्षेत्र, आप चाहे किचन में हैं या बेड पे सो रहे हैं, देन टू आप कुछ तो कर ही रहे हैं। अगर आप सिर्फ थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं तो भले वो एक्शंस नहीं है, कर्म नहीं है, पर वही कर्म को कराने का एक हिस्सा जरूर है। तो इसीलिए वो भी काउंट होते हैं। तो हम कर्म के बिना तो रह ही नहीं सकते हैं, ये पक्का है। इनफैक्ट हम सोते वक्त भी संकल्प कर रहे होते हैं, 4 to 5 थॉट्स हमारे चलते ही हैं। तो इसीलिए परमात्मा कहता है जब कर्म करो तो ऐसे करो जैसे कि बिल्कुल न्यूट्रल, जिसके लिए उन्होंने स्पेशल कहा कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फले।

0: येषु कदाचन मा कर्मफल हेतु भुर्माते संगोऽस्त्व अकर्मणे। अर्थात जब आप कर्म करते हैं, हम कर्म करें तो फल के कॉन्शियसनेस में रह करके ना करें, जो कि आज बिल्कुल ही उल्टा हो रहा है। हम टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट्स होते हैं और इस वजह से शायद हमारा जो पुरुषार्थ है, एफर्ट्स, वो हमारे को कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि हम डर चुके होते हैं मैं पास होऊंगा या नहीं होऊंगा, मेरा ये काम बनेगा या नहीं बनेगा। हम फुल्ली उसमें कॉन्फिडेंट ना होने की वजह से भी, शेकिंग रहने की वजह से रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते हैं। और फिर लास्ट में जो उन्होंने कहा कि कर्म जो करना है वो एकदम ऐसे, जैसे कि एक छोटी सी स्टोरी है जिसमें कहा कि ब्राह्मण ने एक व्यक्ति को कहा कि कर्म कैसे, मतलब उन्होंने पूछा कि कर्म कैसे करें, तो उन्होंने कहा कल जब आना तो कटहल लाना, चाकू लाना और तेल लेके आना। व्यक्ति नहीं समझ पाया कि क्यों। तो फिर जब वो व्यक्ति अगले दिन पहुंचा तो बोला कि अब तुम कटहल को काटो। तो जब उन्होंने कटहल काटा तो कटहल में से उसका एक व्हाइट मिल्क निकलता है जो बहुत स्टिकी होता है, तो उनका हाथ चिपक जाता है, वो अच्छे से वो काम नहीं कर पाते, हाथ में भी प्रॉब्लम होती है। तो वो कहता, अब ब्राह्मण कहता है कि अब आप हाथ धो लीजिए और हाथ धोने के पश्चात तेल लगा के कटहल काटिए। अब जब वो इस चीज को करता है तो अब वो इजीली कटहल को छीलता भी है, काटता भी है और सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेता है। तो बोलता है बस आपको इसी तरीके से अपने जीवन में कर्म करने हैं कि कर्म हमको अपनी तरफ खींचते हैं, मिल्क की तरह वो चिपकते हैं हमारे हाथों से, यानी हमारे को कॉन्शियस कर देते हैं। लेकिन हम अगर तेल अर्थात परमात्मा की याद को उसमें घोल दें, लगा लें, तो हम कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे, फल कॉन्शियस नहीं होंगे और हम बहुत अच्छे से कर्म कर पाएंगे।
1: कितने अच्छे से प्रिया जी ने कहानी बताई समझाने के लिए, बहुत मजा भी आया और काफी कुछ हमें समझ में आया। और साथ ही हम तो प्रिया जी और ज्योति जी से जुड़े ही हैं, साथ ही आपसे भी जुड़े हैं। आपका कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं ज्योति जी या प्रिया जी से, हमारा नंबर है 8010781078। गीता का ज्ञान चल रहा है, अध्याय 2 है जिसका नाम है ज्ञान योग। हम एक आत्मा है इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और काफी सारी नॉलेज, काफी अच्छी बातें हमें ज्योति जी और प्रिया जी से जानने को मिल रही है। और अब इस अध्याय में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त अगर आपके जहन में कोई सवाल है या कोई ऐसी शंका है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, नंबर है 8010781078। आप इस पर मैसेज कर सकते हैं और अपनी बात आप हम तक पहुंचा सकते हैं, अपना सवाल आप हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलते हैं ज्योति जी के पास और इस अध्याय में भी हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आगे की जो कहानी है, आगे की जो बातें हैं, वो हम ज्योति जी से जानते हैं।
2: कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम तैव कवता मनीषिण, जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ते अनामयम। अर्थात इसका भावार्थ कहते हैं कि समतव बुद्धि वाले, जो जिनके बुद्धि के अंदर कभी हलचल नहीं आती, जिसको कहें एक रस अवस्था, तो ऐसी बुद्धि वाले ज्ञानी जन कर्म फल को त्याग कर, मना कर्मों से अतीत होकर, कर्म की चिंता ना करके निर्विकार ही परम पद को प्राप्त करते हैं। भावार्थ यह है कि कर्मों के फल की आसक्ति स्थिति को ऊपर नीचे ले आती है, क्योंकि जैसे ही हमें ये पता चलता है कि अभी क्या होने वाला है, हम ये सोचने लग जाते हैं पता नहीं इसका क्या बेनिफिट होगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, तो हम कहीं ना कहीं उसमें हमारी स्थिति ऊपर नीचे होती है। लेकिन जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति में स्थित होकर जीवन में रहते हैं, मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं, जिसे कहा जाता है कर्मातीत स्थिति। इसमें दूसरा जो श्लोक कहा गया उसमें स्थित प्रगस्य का शब्द का यूज किया गया है। तो उसमें अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, परमात्मा से कहते हैं कि हे केशव ये बताओ कि स्थिर प्रग, जो स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति हैं, उनके क्या लक्षण है, किसको कहेंगे हम जो स्थिर बुद्धि वाले हैं, जो एकरस स्थिति वाले हैं, जिनकी कर्मातीत अवस्था पहुंच गई है जिनकी, तो उनकी क्या क्या विचारधारा होगी। तो वहां श्री भगवान बोलते हैं कि हे अर्जुन, सभी कामनाओं का त्याग कर, जो व्यक्ति त्याग कर देता है और आत्मा से माना आत्मिक रूप में संतुष्ट हो जाता है, वो स्थित प्रज्ञा है। तो वहां पे माना, क्योंकि हमारी जो दुख का कारण है वो कामनाएं है, जहाँ कामनाएं आएंगी और वो कामनाओं का एक भय आ जाता है, उसी कामनाओं की इच्छाओं में जब हम फंस जाते हैं तो वहाँ ना तो, और मनुष्य जो सत प्रग होता है उसकी कोई भी तरह की कामना नहीं रखते, वो किसी पदार्थ की लालसा नहीं रखेगा। इसको अगर हम सिंपल वे में बोलें तो जो सत प्रज्ञ व्यक्ति होता है उसके मन के अंदर, इसको आज की भाषा में कहें तो मन शांत, अर्थात मन में लगाए आइस फैक्ट्री, मुख में लगाए शुगर फैक्ट्री अर्थात मिठास होगी उसके मुख में, दिल में लव फैक्ट्री अर्थात सबके लिए प्यार होगा, तो जीवन उसका सेटिस्फैक्ट्री बन जाएगा, माना संतुष्ट हो जाएगा। तो ये तीनों चीजें मन की स्थिरता को शो करती हैं, हमारी वाणी में मिठास हो, हमारे मन में स्थिरता हो, शांति हो, और हमारे दिल में सबके प्रति एक समान भाव हो, तो कोई भी परिस्थिति आने पर हमारी स्थिति ऊपर नीचे नहीं होगी। और उसमें जो आगे चीजें बताई गई हैं कि जो व्यक्ति सहनशील है वही सुख दुख में समान अनुभव करता है उसका किसी भी व्यक्ति, क्योंकि जब हम शरीर से जुड़े हुए होते हैं तो शरीर की चीजों के प्रति हमारी आसक्तियां जागती हैं, और जब शरीर की चीजों के प्रति देह की चीजों के प्रति आसक्ति जाग रही है तो हमारी खुद की स्थिति डामाडोल हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आप ड्रेस लेने जा रहे हैं और ड्रेस आप लेकर के आते हैं, लेकिन वो ड्रेस आपने अपनी पसंद से ली, आपने पहनी भी, लेकिन वो आपको कंफर्ट नहीं हो रही है तो आप उसमें कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे चाहे वो दिखने में कितनी भी अच्छी है। इसी विधि से जब हम कोई चीज आकर्षण में तो आकर्षित हो जाते हैं, देह को देख रही है चीजें उसमें आकर्षित है, लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो वो चीज हमारे लिए सुटेबल नहीं होती है तो वो हमारे दुख का कारण हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे जो मन की स्थिति, एक बार एक व्यापारी थे और उनको, हीरो के व्यापारी थे, तो उनके एक व्यक्ति ने आकर के कहा कि आप जो है एक बहुत अमूल्य हीरा खो गया है। तो बैठे थे अपने सभी, कई साथ में साथी बैठे थे, वो दो मिनट के लिए कहा अच्छा ठीक है और आंख बंद की और शांत हो गए। थोड़ी देर के बाद फिर थोड़ी देर बाद फिर खबर मिली कि वो हीरा मिल गया है। उन्होंने फिर अपनी आंखें बंद की और एकदम शांत मुद्रा में बोला ठीक है। तो जितने भी साथी बैठे थे उन्होंने ये कहा कि एकदम से आप शांत हो गए, अगर शायद हम वहां हों प्रैक्टिकली सोच के देखें तो हम कितनी जल्दी अपनी स्थिति को हिला देंगे, हम फटाफट किया अरे इतना अमूल्य हीरा खो गया कहाँ खो गया। लेकिन जो सहनशील व्यक्ति है, जो स्थिर प्रज्ञ है, जिसकी बुद्धि स्थिर है, वहां पे वो शांत है। यही चीज उन्होंने पूछा भी, व्यापारी से भी जब पूछा तो वहां पे पूछने के बाद उन व्यापारियों ने बताया, व्यापारी ने उनको बताया कि मैं कुछ पलों के लिए चेक कर रहा था अपने मन की स्थिति को कि मेरे मन की स्थिति तो नहीं हिली, क्योंकि वो बहुत अमूल्य है, उस हीरे से भी अमूल्य मेरी मन की स्थिति है। तो जो स्थिर प्रज्ञ स्थिर बुद्धि व्यक्ति होते हैं वो अपने मन की स्थिति पर ध्यान देते हैं, वो किसी भी तरह के भय में आकर के भयभीत नहीं होते हैं, किसी भय से उनकी स्थिति पर प्रभाव नहीं आता है। आज कई चीजों का भय लोगों को सता रहा है, अंधकार का भय है, चीजों को खोने का भय है, कहीं ना कहीं मृत्यु का भय है, तो ऐसी बहुत सारी चीजों से व्यक्ति भयभीत है और उसके निर्णय गलत हो जाते हैं। और फिर क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो भी मन को स्थिर नहीं कर पाता है, क्योंकि क्रोध जो है वो अपने आप में थोड़े समय के लिए आया हुआ कहा जाता है पागलपन है जो बहुत कुछ विनाश कर देता है। तो यहाँ पर कहा भी गया, एक बार एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया जाता है कि आदि शंकराचार्य जी थे और उनका एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, मंडन मिश्र थे, उस शास्त्रार्थ के अंदर उनकी ही पत्नी निर्णायक के रूप में बैठी थी मंडन मिश्र की, और उस चीज में बहुत देर से शास्त्रार्थ चल रहा था और ये निर्णय नहीं लिया जा रहा था कि जीता कौन है। तो कुछ समय के लिए उनकी पत्नी को वहां से उठ के जाना पड़ा और उन्होंने उनके गले में, दोनों के गले में फूलों की माला डाल दी, और फूलों की माला डाली तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं आती हूँ तब तक ये फूल, ये जो मालाएं हैं, ये मेरी जगह लेकर के कार्य करेंगे। तो जब वो आई काफी देर के बाद और पूरी शास्त्रार्थ कंप्लीट हुआ तो उन्होंने बोला कि ये चीज, फिर उन्होंने निर्णय भी दिया, उन्होंने कहा आदि शंकराचार्य विजयी हैं। तो सबने पूछा उसकी, आपने तो इस बीच में आप थे भी नहीं तो आपने कैसे ये निर्णय ले लिया, तो कहा कि इस शास्त्रार्थ के मध्य में मेरे जो पति हैं मंडन मिश्र जी हैं उनको क्रोध आया है और शंकराचार्य जी के फूलों की माला अभी तक ताजा है और जो उनके पति ने डाली हुई थी गले में वो मुरझा गए थे। कहा जब शास्त्रार्थ के मध्य में इनको जो क्रोध आया उस क्रोध ने ये निर्णय दिया है कि ये जो है क्रोध कभी भी स्थिर नहीं रहने देता है। तो उन्होंने जिस चीज की बात कही कि उन्होंने जैसा निर्णय दिया कि जो व्यक्ति कोई भी चीज का ज्ञान रखता है मन की स्थिरता रखता है तो उसके अंदर किसी भी राग भय या क्रोध से वो मुक्त होता है, उसका उन चीजों की बुद्धि पर उसका प्रभाव नहीं आएगा। और इसका बहुत सुंदर जो एग्जाम्पल दिया गया है वो है कछुए की तरह हमें बनना है। कछुआ जो है वो कर्म क्षेत्र पर जब निकलता है तो वो अपनी इंद्रियों को फैला लेता है और जैसे ही वो कछुआ अपना कार्य पूरा कर लेता है तो अपनी इंद्रियों को उस कवच के अंदर समेट लेता है। बाहर चाहे कितनी आंधी तूफान आ रहा हो, लोग चिल्ला रहे हो, लेकिन उसकी स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं होता जब तक कि वो खुद ना चाहे।
1: बिल्कुल।
2: इसी विधि से हमें भी अपने जीवन को ऐसा ही बनाना है कि जब हम चाहेंगे, जब मैं आत्मा अपने शरीर के द्वारा जिस कार्य को करना चाहूं उस समय ही मैं एक्टिव मोड में हूं, अदरवाइज मैं अपनी शांत स्थिति में अपनी संपूर्ण स्थिति में अपने अंदर आनंद का अनुभव करें। और यही चीजें आप देखते जाएंगे जो जो लोग ज्ञान को समझने लग जाते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं या जिन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत सी परिस्थितियां देखी भी हैं लेकिन बहुत बखूबी उनको निभाया है तो वो धीरे धीरे बहुत काम डाउन हो जाते हैं और उनकी स्थिति एकदम शांत हो जाती है। और यही चीज श्रीमद् भगवद गीता का अध्याय हमें देता है। लेकिन ये चीजें तब होंगी जब हम आत्मिक स्थिति में टिक जाएंगे। तो आत्मिक स्थिति में टिकने के लिए और स्थिर प्रज्ञ बनने के लिए अर्थात अपने मन को स्थिर रखने के लिए इन सारी चीजों से हमें पहले जरूरत है खुद खुद को रियलाइज करने की।
1: जी, और वही ना, जैसे आपने कहा कि अगर कुछ सीखना है तो उससे पहले जो आप हैं
2: जी
1: आपको बदलना पड़ेगा
2: जी,
1: आपको खुद को पहले समझना पड़ेगा आप क्या चाहते हैं, आप अपनी आत्मा को समझना पड़ेगा। जब आप खुद को समझ पाएंगे तभी आप उस आगे बढ़ते हुए ज्ञान को समझ पाएंगे, आप ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। समय के करीब आ रहे हैं, मतलब हम जाने के करीब आ रहे हैं, लेकिन बातें जो है वो खत्म नहीं हो रही है। एक बहुत ही प्यारा सा श्लोक ज्योति जी आपके सामने इसके बारे में सारी चीजें बताने वाली है और अध्याय दूसरा है ज्ञान योग है, इसमें बहुत सारे श्लोक और उसके जो भावार्थ प्रिया जी और ज्योति जी ने बताए हैं ये बहुत ही खूबसूरती से इन्होंने हम तक पहुंचाए। और ज्योति जी के पास चलते हैं। ज्योति जी, अब आप जल्दी से इसके आगे के बारे में बताएं।
2: जैसा कि प्रिया जी ने बताया कि जब हम किसी एक चीज को बार बार फोकस करते हैं तो उसी आधार पे हमारी बुद्धि वैसे ही चलने लगती है। तो अगला जो श्लोक श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो नु विधियते तदस्य हरती प्रज्ञाम वायुर नावम इवाम भस्सी माना। अर्थात इसका अर्थ है कि जिस प्रकार पानी में नाव तैरती है और नाव के प्रचंड वायु दूर बहाकर ले जाती है अगर बहुत तेज वायु चल रही है, तो इसी प्रकार जब विचारशील मन व्यक्ति होता है तो उसकी इंद्रियों पर, मतलब जो इंद्रियां हैं, अगर वो किसी एक चीज पर फोकस्ड हो गई है, बार बार उसी चीज को देख रही है, वही इंद्री एक ही चीज पर उसका ध्यान केंद्रित है, तो उसके वो प्रभाव में बहता चला जाता है और उसकी बुद्धि का नाश हो जाता है और वो विषय विकारों में फंस जाती है। भावार्थ ये है कि तूफानों में भटकते हुए भी जो अपने मन बुद्धि को स्थिर कर दे, मन बुद्धि को एकाग्र कर ले, उसको कहा जाएगा कि वो स्थित प्रज्ञ है। क्योंकि यहाँ इस पूरे ही इसमें आत्मा का और स्थिति की ही बात की जा रही है। माना कहने का अभिप्राय अगर हम इसको देखें, सिंपल वे में देखें, तो जो राजा की पोजीशन है वो राजा की पोजीशन एक है कि आपने पहन लिया, मुकुट पहन लिया, ड्रेस पहन ली और वो सारी चीजें आप रेडी होकर के सिंहासन पर बैठ गए, वो राजा नहीं है। राजा माना जिसके अंदर वो राजापन की क्वालिटीज हों, जो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमें वो पोशाक ही पहननी है, जरूरी नहीं है हमें सर पर ताज ही लेना है, लेकिन वो राजा वाली जो डिसीजन वाली क्वालिटीज हैं, वो चीज हमारे अंदर होनी चाहिए। और आज वही राजा जो आत्मा इस शरीर का राजा है, इंद्रियां उसकी कर्मचारी हैं, आज उसी राजा ने इंद्रियों की अधीनता ले ली। इसीलिए आज हम जो वो राज्य जिसको कहा गया स्वराज्य, उस स्थिति से हम बहुत दूर हो गए हैं। और उसके लिए हमें चाहिए कि हम अपनी थोड़ी सी दिनचर्या पर फोकस्ड करें। कहा जाता है, इसमें बहुत अच्छी एक श्लोक में कहा भी गया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। अर्थात संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के लिए जागने का समय है। माना जब लोग सो रहे हैं, सोने का मतलब ये नहीं कि रात्रि में, आज के समय में अगर आप देखें आज की जो सिचुएशन चल रही है, आज 3 बजे से लोगों को नींद आनी शुरू होती है, पूरी रात वो जागते रहते हैं, 3 बजे से उनकी नींद का समय शुरू होता है। और जो ज्ञानी होगा, आत्म संयमी होगा, वो उसके जागने का समय है। यहाँ रात्रि की बात उस 3 बजे के समय से कही गई है, 3:30 के टाइम से कही गई, 4 बजे जिसको ब्रह्म मुहूर्त भी कहा गया है। तो अगर मुझे सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, मुझे अपनी आत्मा अपनी आत्म स्वरूप में टिकना है और अपनी स्थिति को भरपूर बनाना है, उसके लिए सबसे अच्छा समय दिया गया अमृत वेले का। उस समय हम अपने आप को चेक कर सकते हैं, क्योंकि उस समय हमारे पास कोई वर्कलोड नहीं है और हम डिसीजन देख सकते हैं कि मुझे आज पूरे दिन में, हम अपना शेड्यूल बना सकते हैं, हम परमात्मा के साथ कनेक्ट होकर के, हम नेचर से कनेक्ट होकर के उस पीस को फील कर सकते हैं, लेकिन वो टाइम हम सोने में गंवा देते हैं। इसीलिए आज हम आत्म संयमी के बजाय हम कहीं ना कहीं दैहिक वृत्तियों में फंसते जा रहे हैं। और ये पूरा ही पाठ जो है हमें यही सिखाता है कि हमें अपने तन के, जो तन का भान है, उसको हमें भूलना है और आत्मिक स्थिति में आत्मा को राजा की सीट पर बैठाकर डिसीजंस लेने हैं। तो वो व्यक्ति ही अपने गुणों को जान पाएगा, अपने आप को जान पाएगा और अपनी वीकनेसेस के ऊपर कंट्रोल कर पाएगा।
1: जी, बहुत खूब कहा ज्योति जी ने। और इसी के साथ अब जो हमारा अध्याय है वो खत्म हो चुका है, यानी कि जो सेकंड अध्याय है वो खत्म हो गया है और अब हम बढ़ेंगे थर्ड अध्याय की तरफ, जिसका नाम है कर्म योग। तो इससे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कर्म के बारे में बात होगी और ये सारी हम बातें करने के लिए अगले हफ्ते आएंगे। तो अभी फिलहाल दीजिए हमें इजाजत, हम जाते हैं, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बाकी प्रोग्राम्स को एंजॉय करें और बने रहिए रेडियो मानव वृक्ष 107.8 FM पर। नमस्कार।

0: अरे अरे, अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए, बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बहुत सारे आध्यात्मिक तत्वों की बात करते हैं और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं राग लेखा दासी जी, चरण आश्रित योगाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। राग लेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: हरे कृष्ण
0: जी। तो श्रोताओं, आजकल हम आत्मदर्शन कार्यक्रम में बात कर रहे हैं महाभारत जो एक ग्रंथ है, इसके अंदर समाहित बहुत सारे विषयों के बारे में, बहुत सारी कथाओं और प्रसंगों के बारे में, और रागलेखा दासी जी हमेशा की तरह बहुत सारा आध्यात्मिक ज्ञान हम तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। तो रागलेखा दासी जी, आज के इस कार्यक्रम में कौन सी कथा आप हमारे श्रोताओं को सुनाने वाली हैं?
1: कौरवों की घोष यात्रा और उनका गंधर्वों के साथ युद्ध में पराभव। तो वन में रहकर जाड़ा, गर्मी, वायु, धूप सहने से नरश्रेष्ठ पांडवों के शरीर हतप्रष्ट हो गए थे
0: जी।
1: उस रमणीय सरोवर पर आकर पांडवों ने अपने हित चिंतकों को विदा कर दिया और वहाँ कुटी बनाकर आसपास के रमणीय वन, पर्वत, नदियों के किनारे विचरने लगे। अनेक वेद अध्ययनशील ब्राह्मण आते और नरश्रेष्ठ पांडव लोग यथाशक्ति उनकी सेवा करते। इन्हीं दिनों वहाँ एक बातचीत करने पर कुशल ब्राह्मण आया। उनसे मिलकर वह कौरवों से मिला और फिर धृतराष्ट्र के पास पहुंचा। ब्राह्मण ने कहा कि इस समय युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव बड़ा भीषण कष्ट सह रहे हैं। द्रौपदी की तो बात ही मत पूछो, धूप के कारण उन सबके शरीर बहुत कृश हो गए हैं और वह वीर पत्नी होकर अनाथाशी हो रही है और सब और से दुखों से दबी हुई है। उसकी बातें सुनकर राजा धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। जब उन्होंने सुना कि राजा के पुत्र और पौत्र होकर भी पांडव इस प्रकार से दुख की नदी में पड़े हुए हैं, तो उनका हृदय करुणा से भर आया। कुपुत्र के मुंह में सच कर मैंने तो वह काम कर डाला जिसके कारण कौरवों का अंतकाल समीप दिखाई दे रहा है। विश्वास की ये सब बातें सुबल पुत्र शकुनी ने सुनी और फिर कर्ण के साथ एकांत में बैठे हुए दुर्योधन के पास जाकर इसे सुनाई। आजकल पांडव लोग द्वैत वन में एक सरोवर के ऊपर कुछ ब्राह्मणों के साथ रहते हैं। अपने तेज से पांडवों को संतप्त करो, तुम्हारी महिषिया भी बहुमूल्य वस्त्र से सज्जित होकर चले और वेग चर्म और वलकल धारिणी कृष्णा को देखकर छाती ठंडी करें तथा अपने ऐश्वर्य से उनका घी जलावे। दुर्योधन से ऐसा कहकर दुर्योधन ने कहा, मेरे मन में भी ये बात बसी हुई है। पांडवों को बलकल वस्त्र माचिस चरण मोड़े देख कर मुझे जैसी खुशी होगी वैसी इस सारी पृथ्वी का राज्य पाकर भी नहीं होगी
0: जी।
1: और इससे बढ़कर प्रसन्नता की क्या होगा कि मैं द्रौपदी को दुर्योधन वस्त्र पहने देखूं। कर्ण ने हंसकर दुर्योधन से कहा, राजन, मुझे द्वैतवन जाने का एक उपाय सूझ गया है, उसे सुनिए। आजकल आपकी गौओं के गोश द्वैतवन में है और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसलिए हम लोग गोश यात्रा के बहाने वहां चलेंगे। इस काम के लिए महाराज हमें अवश्य अनुमति दे देंगे और पांडवों से मेलजोल करने के लिए भी समझाएंगे। धृतराष्ट्र ने कहा, हे तात, लोगों की देखभाल करने में तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु मैंने सुना है आजकल नरशार्दुल पांडव लोग भी उधर कहीं पासी में ठहरे रहे हैं। ये लोग जब से निरंतर तप करते रहे हैं और अब तब प्रकार से शक्ति संपन्न हो गए हैं, किंतु अहंकार और मोह में चूर हो रहे हैं, इसलिए उनका अपराध किए बिना मानोगे नहीं। ऐसा होने पर वे अपने तप के प्रभाव से तुम्हें अवश्य ही भस्म कर देंगे। शकुनी ने कहा, जहाँ पांडव लोग रहते होंगे वहाँ तो हम जाएंगे ही नहीं। उस प्रकार जब सब लोगों के ठहरने की ठीक ठाक हो गया तो दुर्योधन ने अपनी असंख्य गौओं का निरीक्षण किया और उन पर नंबर और निशानी डलवा कर सबकी अलग अलग पहचान करा दी। दुर्योधन ने अपने सहस्त्र सेवकों को आज्ञा दी कि शीघ्र ही यहाँ क्रीड़ा भवन तैयार करो। द्वैत वन के सरोवर पर गए वे लोग और वे वन के दरवाजे में घुसने लगे तो उनके मुखिया को गंधर्वों ने रोक दिया, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही वहाँ गंधर्व राज चित्रसेन जल क्रीड़ा करने के विचार से अपने सेवक देवता और अप्सराओं के सहित आया हुआ था और उसी ने सरोवर को घेर रखा था। सुखा सरोवर को घिरा हुआ देख कर वे लोग दुर्योधन के पास लौट आए। दुर्योधन ने रणोन्मत्त सैनिकों को यह आज्ञा देकर तुम्हें वहां से निकाल दो उसे सरोवर पर भेजा। गंधर्व हंसने लगे और बोले, मालूम होता है तुम्हारा राजा दुर्योधन बड़ा ही मंद बुद्धि है, उसे कुछ भी होश नहीं है, उसी से हम देवताओं पर इस प्रकार की हुकूमत चलाता है, मानो हम बनिए ही हैं। दुर्योधन की आज्ञा पाते ही धृतराष्ट्र के सभी पुत्र सहस्त्र योजना कमर कस के तैयार हो गए। और गंधर्वों को मार पीट कर बुलाते स्वयं घुस कर गंधर्वों ने ये सब समाचार अपने स्वामी चित्रसेन से जाकर सुनाया। तब उसने उन्हें आज्ञा दी कि जाओ इन नीच कौरवों की अच्छी तरह मरम्मत कर दो। तब वे सबके सब अस्त्र शस्त्र लेकर कौरवों पर टूट पड़े। एक एक कौरव वीरों को 10-10 गंधर्वों ने घेर लिया। उनकी मार से पीड़ित होकर वे रणभूमि से प्राण लेकर भागे। अकेला कर्ण ही पर्वत के समान अपने स्थान पर अचल खड़ा रहा। तब गंधर्वों ने सैकड़ों और हजारों की संख्या में मिलकर अकेले कर्ण पर ही धावा बोल दिया। उन्होंने कर्ण के रथ के टुकड़े टुकड़े कर डाले। दुर्योधन ने इस प्रकार रथ से नीचे गिर जाने पर उसे चित्रसेन ने झपट कर जीवित ही कैद कर लिया। चित्रसेन जी ने दुर्योधन के ऊपर आक्रमण किया और वो नीचे गिर गया रथ से। और बाहर से गंधर्वों ने रथ में बैठे हुए दुशासन को घेर कर पकड़ लिया। तब दुर्योधन को गंधर्वों के पंजे से छुड़ा लाने के लिए अत्यंत आतुर हुए। उनके मंत्री ने रो होकर धनराज से कहा, महाराज हमारे प्रिय ऋषि महाबाहु दृतराष्ट्र कुमार महाराज दुर्योधन को गंधर्व पकड़ कर लिए जाते हैं, अतः आप उनकी रक्षा के लिए दौड़िए। भीमसेन कठोर स्वर से इस प्रकार कहने लगे। धनराज ने कहा, भैया भीम इस समय कड़वी बातें सुनाने का नहीं है। देखो ये लोग भय से पीड़ित होकर उससे प्राण पाने के लिए हमारी शरण में आए हैं और इस समय बड़ी विकट परिस्थिति में पड़े हैं। फिर तुम ऐसी बातें क्यों करते हो? कुटुंबियों में मतभेद लड़ाई झगड़े तो होते ही रहते हैं, कभी कभी उनमें बैर भी ठन जाता है, किंतु जब कोई बाहर का पुरुष उनके कुल पर आक्रमण करता है तो उसे उस तिरस्कार को वो सह नहीं सकते। अर्जुन नकुल सहदेव और तुम सब मिलकर जाओ दुर्योधन को छुड़ा लाओ। यदि वह गंधर्वराज समझाने में जाने से ना माने तो थोड़ा पराक्रम दिखाकर दुर्योधन को छुड़ा लाना। तब अर्जुन ने गंधर्व को समझाते हुए कहा, तुम मेरे भाई राजा दुर्योधन को छोड़ दो, क्योंकि अरे युधिष्ठिर ने कहा कि हम लोग ये हमारा भाई दुर्योधन नहीं है सुयोधन है और हम लोग 105 भाई है। हम 5 भाई नहीं है 105 है। हमें आज्ञा देने वाला तो गंधर्व राज चित्रसेन के सिवा और कोई नहीं है, इसलिए ही हमें जैसी आज्ञा देते हैं वैसा ही हम करते हैं। मारुति पांडव लोग जब गंधर्वों को इस प्रकार दिव्य अस्त्रों से मारने लगे तो धृतराष्ट्र के पुत्रों को देखकर आकाश में उड़कर जाने लगे। गंधर्व उन्हें उड़ते देखकर बाणों का एक ऐसा विस्तृत जाल छा गया जिसके चारों ओर से उनकी गति रोक दी। उस जाल में वे चित्कार बंद हो गए जैसे पिंजरे में पक्षी। अर्जुन के उन अस्त्र शस्त्रों से चित्रसेन तिलमिला उठा। उसने अपने को प्रकट करके कहा, अर्जुन देखो तुम्हारे युद्ध में तुम्हारे सामने आया हुआ मैं तुम्हारा सखा चित्रसेन हूँ। अर्जुन ने जब अपने सखा को युद्ध में जर्जरित देखा तो उन्होंने अपने दिव्य अस्त्रों को लटा दिया। अर्जुन ने चित्रसेन से हंसकर पूछा, कौरवों का पराभव करने में तुम्हारा क्या उद्देश्य था? चित्रसेन ने कहा, देवराज इंद्र को स्वर्ग में ही दुरात्मा दुर्योधन और पापी कर्ण का अभिप्राय मालूम हो गया था। वे लोग ये सोचकर कि आजकल पांडव लोग वन में विपरीत परिस्थिति में रहकर अनाथों की तरह कष्ट भोग रहे हैं और हम खूब आनंद में हैं तुम्हें देखने और इस दुर्दशा में यशस्विनी द्रौपदी की हंसी उड़ाने के लिए आए थे। उन्होंने मुझसे कहा, जाओ दुर्योधन को उसके भाई और मंत्री सहित बांध कर यहाँ लाओ। भाइयों के साथ अर्जुन की सब प्रकार से रक्षा करना क्योंकि वह तुम्हारा प्रिय सखा और दान विद्या का शिष्य है। फिर ये सब महाराज युधिष्ठिर के पास गए और उसकी सब बातें उन्हें बता दी। अब अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर ने गंधर्वों की बातें सुनकर उनकी प्रशंसा की और समस्त कौरवों को छुड़वा दिया। बुद्धिमान महाराज युधिष्ठिर की आज्ञा लेकर अप्सराओं के सहित चित्रसेन आदि गंधर्व अत्यंत प्रसन्न चित्त से सरलोक को चले गए। देवराज इंद्र के दिव्य अमृत की वर्षा करके कौरवों के हाथ के मरे हुए गंधर्वों को जीवित कर दिया। युधिष्ठिर व दुर्योधन ने उन्हें प्रणाम किया और हृदय में अत्यंत लज्जित होकर अपने नगर की ओर चला गया। उस समय वैसा व्याकुल हो रहा था मानो इंद्रियां नष्ट हो गई है, शोक के कारण उसके हृदय थका जा रहा था।
0: जी श्रोताओं, बहुत सुंदर प्रसंग जान रहे हैं और अभी रागलेखा दासी जी ने हमें कथा सुनाई किस तरह से पांडवों की जो दुर्दशा हो रही थी वो भी बताया और कौरवों की क्रूरता के बारे में बताया, गंधर्वों से उनका किस तरह से युद्ध हुआ, किस तरह से भाइयों ने मिलकर एक दूसरे का साथ दिया, ये सारी कथा हमने जानी महाभारत के इस ग्रंथ के अंतर्गत। तो अब आगे बढ़ते हैं और अगली कथा हम जान लेते हैं। जी रागलेखा दासी जी,
1: दुर्योधन ने कहा, जिनका मैंने सर्वदा निरादर किया, जिनका सदा से शत्रु बना रहा, उन्होंने मुझे मंदोदती को मुंडन से छुड़ाया और मुझे जीवन दान दिया। हे वीर, इसकी अपेक्षा तो मैं उसी महान संग्राम में मेरे प्राण निकल जाते तो अच्छा होता। इस प्रकार का जीना किस काम का? यदि गंधर्व मुझे मार डालते तो संसार में मेरा यश फैल जाता और इंद्रलोक में अक्षय पुण्य लोगों की प्राप्ति होती। मेरा जो विचार है वह सुनो। मैं यहाँ अंजल छोड़कर प्राण त्याग दूंगा। तुम और दुशासन आदि मेरे सब बाह्य सेना से उड़ चले जाओ। इस जीने से तो मरना ही अच्छा है। दुर्योधन का प्रायोवेश देखकर देवताओं से पराजित पतालवासी दैत्य और दानवों ने विचारा कि यदि इस प्रकार दुर्योधन का प्राणांत हो गया तो हमारा पक्ष गिर जाएगा। इसलिए उन्होंने उसे अपने पास बुलाने के लिए कर्म कांड आरम्भ किया। वेद विधान में निष्णात ब्राह्मण लोग मंत्र उच्चारण पूर्वक अग्नि में घी दूध की आहुति देने लगे। कर्म समाज करने पर यज्ञ से बड़ी ही अद्भुत कृपया जमाई लेती हुई प्रकट योगिनी, बताओ मैं क्या करूं? तब दैत्य ने प्रसन्न से कहा कि प्रायो प्रवेश करते हुए राजा दुर्योधन को यहाँ ले आ। कृपया ने कहा जो आज्ञा, कहकर गई और एक क्षण में दुर्योधन के पास पहुँच गई। एक क्षण में ही उसे देखकर रसातल में पहुंच गई। दुर्योधन को आता देखकर दानवों के चित्त प्रसन्न हो गए। जो पुरुष आत्महत्या करता है वह तो अधोगति को प्राप्त होता है और लोगों में भी उसकी निंदा होती है। कुछ दूसरे दैत्य भीष्म द्रोण और कृप आदि के शरीर में प्रवेश करेंगे, जिससे वे दया और स्नेह को तिलांजलि देकर आपके शत्रुओं में संग्राम करेंगे। अब आप अपने घर जाइए, शत्रुओं पर विजय प्राप्त कीजिए। दूसरे दिन सवेरा होते ही कुछ पुत्र करण ने हाथ जोड़कर हंसते हुए कहा, महाराज, मरकर कोई भी मनुष्य शत्रुओं को नहीं जीत सकता। मैं प्रतिज्ञा पूर्वक शस्त्र छुपकर कहता हूँ, पांडवों के अज्ञातवास का 13वां वर्ष समाप्त होते ही मैं उन्हें आपके अधीन कर दूँ।

0: की प्रशंसा करते हैं। इन शब्दों को सहन नहीं कर सकते। आपने जो सेवक सेना सवारी देकर पृथ्वी की विजय करने की आज्ञा दीजिए, आपकी विजय अवश्य होगी। मैं शास्त्रों की शपथ कहकर सच्ची प्रतिज्ञा करता हूँ। दुर्योधन के ऐसा कहने पर कर्ण ने अपनी दिग्विजय यात्रा के लिए सभी आवश्यक चीजें तैयार कर ली। हस्तिनापुर से बड़ी भारी सेना लेकर चला और महाधनुर्धर कर्ण ने राजा द्रुपद की राजधानी को घेरा और बड़ा भीषण युद्ध करके वीर द्रुपद अपना अशुद्ध बना लिया। उसे कर रूप में बहुत सा सोना चांदी तरह तरह के रत्न लिए। जो राजा द्रुपद के अधीन थे उन्हें जीत कर उनको भी कर लिया। वो हिमालय से शत्रुओं से लड़ता लड़ता हिमालय पर चढ़ गया। सब राजाओं को जीत कर उसने नेपाल देश के राजाओं को भी परास्त कर दिया। इन सबको जीत कर इनसे कर लेकर कर्ण ने दक्षिण की ओर प्रस्थान किया। इस प्रकार उसने पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी दिशाओं में सारी पृथ्वी की विजय कर ली। दुर्योधन ने कहा कर्ण से कि मैं पांडवों का बड़ा भारी राजसूय यज्ञ देखा था मैंने। अब मेरी इच्छा है कि राजसूय यज्ञ करने की है, तुम इसे पूरी करो। दुर्योधन के इस प्रकार कहने पर कर्ण ने उससे कहा राजन इस समय सभी निपतिगण आपके अधीन है, आप याचकों को बुलाकर यज्ञ की तैयारी कराइए। दुर्योधन ने पुरोहित को बुलाकर कहा कि आप मेरे लिए शास्त्र अनुसार विधिवत राजसूय यज्ञ आरम्भ कर दीजिए, इसकी समाप्ति पर मैं यथेष्ट दक्षिणाएं दूंगा। उस पर पुरोहित ने कहा राजन युधिष्ठिर के जीवित रहते हुए आप ये यज्ञ नहीं कर सकते, किंतु एक दूसरा यज्ञ है जो किसी के लिए भी निषिद्ध नहीं है, उसका नाम है वैष्णव यज्ञ। ये राजसूय यज्ञ ही जोड़ का है और हमें बहुत प्रिय है, इससे आपका हित होगा और बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न हो जाएगा। राजन यज्ञ की सब सामग्रियां तैयार हैं, सोने का बहुमूल्य हल भी बन चुका है, यज्ञ का नियत समय भी आ गया है। दुर्योधन को शास्त्र अनुसार विधि पूर्वक यज्ञ की दीक्षा दी गई। उस समय सारे श्रेष्ठ धृतराष्ट्र भीष्म सभी को बड़ी प्रसन्नता हुई और उनमें से एक दूत ने दुशासन से कहा तुम शीघ्र जयपुरम जाओ और वहाँ रहने वाले पांडवों और ब्राह्मणों को विधिवत यज्ञ का निमंत्रण दो। युधिष्ठिर ने कहा हम भी उसमें सम्मिलित होते किंतु इस समय इस प्रकार नहीं हो सकता क्योंकि 13 वर्ष तक हमें वनवास का नियम करना है। इस प्रकार वन में रहते हुए महात्मा पांडवों के 11 वर्ष बड़े कष्ट से बीते, फल मूल खाकर रहते थे। राजा युधिष्ठिर से उसके हम भाइयों पर जो महान दुख आ पड़ा है वे मेरी ही करने का तो फल है। उन्हें रात भर नींद नहीं आती और नींद नकुल सहदेव द्रौपदी भी राजा युधिष्ठिर का मुंह देखकर सारा कष्ट धैर्य पूर्वक सह लेते थे। एक समय की अपने व्यास जी पांडवों को देखने के लिए आए। उन्होंने अपने पौत्रों को वनवास के कष्ट से दुर्बल और जंगली फल मूल खाते देखकर जीवन निर्वाह करते थे व्यास जी की आंखों में आंसू भर आए। वे बोले महाबाहु युधिष्ठिर सुनो, संसार में तपस्या के बिना किसी को उच्च कोटि का सुख नहीं मिलता, तप से बढ़कर कोई साधन नहीं है, इसलिए अपने शरीर को तप और नियमों के पालन में लगाना चाहिए। राजन समय पर यदि कोई ब्राह्मण या अतिथि आ जाए उसे प्रसन्न होकर अपनी यथाशक्ति से दान दे। युधिष्ठिर ने कहा मामुनि दान और तपस्या में किसका फल अधिक है और दोनों में कौन कठिन है? व्यास जी ने कहा राजन दान से बढ़कर कठिन कार्य स्थिति पर दूसरा नहीं है। इस प्रकार कष्ट सहकर कमाए धन का त्याग करना बड़ा ही कठिन है, अतः दान से दुष्कर कोई कार्य नहीं है, उन्हें दान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसमें से यदि कोई धन न्याय से कमाया गया हो तो उत्तम देश काल पात्र का विचार करके इसका दान किया जाए और इसका और भी अधिक महत्व समझना चाहिए। न्याय पूर्वक प्राप्त किए हुए धन से जो दान धर्म किया जाता है तो कर्ता की महान भरोसे रक्षा नहीं करता। इस विषय में जानकर लोग एक पुराने इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं, वह है मुद्गल ऋषि की कथा।
1: जी तो श्रोताओं इस ऋषि की कथा हम जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त जो है वो आपसे इजाजत लेने का हो चला है और इसी तरह बहुत सारी कथाएं और प्रसंग महाभारत के अंतर्गत जो समाहित हैं वो हम जानते रहेंगे रागले खदासी जी से, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। रागले खदासी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी तो श्रोताओं आज के इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड फील लाइव।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

मॉर्निंग रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और होती हैं बहुत सारी बातें। जी हाँ, आज क्या कुछ खास लेकर के आई हूँ, क्योंकि सेगमेंट लेकर के आ जाती हूँ। और सेगमेंट जो है हमारा पहला, वो है दिल धड़कने दो, जिसपे हेल्थ और फिटनेस की करती हूँ ढेर सारी बातें। और इसके बाद लेकर के आती हूँ सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज, जिसमें बातें होती हैं योग से जुड़ी हुई। और उसके बाद आ जाता है हमारा अगला सेगमेंट, सेगमेंट का नाम है बहुत ही ज़्यादा खास, क्योंकि ये है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसपे स्पोर्ट्स की बात होती है। जिसके बाद आ जाता है आपका फेवरेट फेवरेट फेवरेट सेगमेंट, जिसका नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूँ और जिसका जल्दी से झटपट से आपको जवाब देना होता है। तो चलिए इस बार भी हम जुड़ जाते हैं और बहुत सारी करते हैं बातें। अगर आप कुछ खास कहना चाहते हैं, कोई दिल की बात मुझ तक पहुँचाना चाहते हैं, या फिर हमारे थ्रू किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई गाना सुनना चाहते हैं, कोई फरमाइश है, तो जल्दी से सुन सकते हैं। नंबर बहुत ही आसान है, 8010781078। चलिए इसी के साथ लेती हूँ यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के मैं आ जाती हूँ। सेगमेंट दिल धड़कने दो में एक बहुत ही खास टॉपिक के साथ आई हूँ। अच्छा, क्या आपके घर में भी जो है वो अगर कभी दूध फट जाता है तो आप देखते ही होंगे ना कि जब दूध फट जाता है तो उसके लिए क्या करते हैं ना, उसका जो पानी होता है हम निकाल के फेंक देते हैं और उसके बाद पनीर जो है हम उससे बना लेते हैं, तैयार कर लेते हैं। अब लेकिन ये जो पनीर है खाने में तो स्वादिष्ट होता है, इससे अलग अलग चीज़ें भी आप ज़रूर बना सकते हैं। कभी हम पनीर भुर्जी बना लेते हैं तो कभी हम कुछ सेट करके उसको कोई सब्जी पनीर की बना लेते हैं। लेकिन पानी का क्या? अब पानी जो उसका है, अब उसको तो हम ये सोच के फेंक देते हैं कि इसका तो कोई यूज़ ही नहीं है, ये तो ख़राब है। अब अगर आप भी फेंक देते हैं ना तो आज से रुक जाइए। कभी भी अगर दूध फट जाए या फिर ना भी फटे तो जानबूझ के आप जो दूध है इसको आप फाड़ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको मिल जाएंगे इसके कई सारे गुण, क्योंकि अब भी आपको इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि इसका जो है फ़ायदे बहुत सारे हैं। इस पानी के जो हम यूं ही फेंक देते हैं वो बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, और क्यों है ये बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, feel live.

वेलकम बैक रेडियो मैंने विरचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक हफ्ते के सातों दिन 2 घंटे का हमारा सफ़र जो है ये रहता है और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल आपको बता दूं मैं कि बात अब मैं कर रही हूँ बहुत ही एक खास टॉपिक की. बात हम कर रहे हैं ये जो जब दूध जो है वो फट जाता है, चाहे गलती से या चाहे आपने पनीर बनाने के लिए उसे फाड़ा हो या कुछ भी आप बना रहे हैं, कोई रसमलाई बना रहे हैं, रसगुल्ले बना रहे हैं, होता है ना पनीर के लिए हम उसके जो छेने के लिए हम फाड़ते हैं दूध को, तभी छेना बनता है, तो हम क्या करते हैं जो पानी होता है उसे हम फेंक देते हैं. अब मैं आपको बता दूं कभी भी आपके साथ ऐसा होता है कि गलती से फट जाता है या फिर आपने कोई चीज़ बनाने के लिए यानी कि पनीर या छेना बनाने के लिए अगर आप उसको फाड़ा है आपने दूध को, तो अब पानी फेंकने की उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो पानी है ये प्रोटीन का पावर हाउस कहलाता है. जी हाँ, जब दूध फटता है तो आप उसे पनीर बनाते हैं, तो बचा हुआ पानी वो वे प्रोटीन से भरपूर होता है. वे प्रोटीन मांसपेशियों की ग्रोथ, मरम्मत और साथ ही रिकवरी के लिए बेहतरीन माना जाता है. और ये चाहे एथलीट्स हों या जिम जाने वाले जो भी लोग हों, उनके लिए तो वरदान से बिल्कुल भी कम नहीं है. आपने सुना होगा वे प्रोटीन जो है ये लेते भी हैं, जो जिम जाते हैं वो प्रोटीन लेते हैं जिसका नाम वे प्रोटीन जो है वो कहा जाता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, वो एकदम बहुत ही प्योर प्रोटीन जो है वो होता है. इसमें यह होता है कि देखिए जैसे ये जो पानी है ये यानी कि जो दूध फट के जो पानी निकलता है, इसके बाद इसको क्या कहा जाता है, अच्छे से बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से जो है प्रोसेस किया जाता है, इसको अच्छे से जो है पकाया जाता है, इसके बाद बिल्कुल सुखा दिया जाता है, इसका पाउडर बना दिया जाता है. तो बस वही पाउडर जो है वही वे प्रोटीन जो है उसे खाया जाता है, इनटेक किया जाता है. तो ये चाहे जिम जा रहे हैं एथलीट्स हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा कमाल है, वरदान से कम नहीं है. इसका सेवन करने से अपनी डेली प्रोटीन की ज़रूरत को आप पूरा कर सकते हैं. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप प्रोटीन के अच्छे सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो अब आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है वे प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है. जो फटा हुआ दूध होता है, उसका जो पानी होता है जिसे हम फेंक देते हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, वो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्रोटीन का. चलिए इसी के साथ अभी लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होंगी और भी बहुत सारी बातें, तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइफ.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि आपके लिए लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन, और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और आपको अभी बता रही हूँ मैं बहुत ही खास एक वे प्रोटीन के बारे में, जो कि आपको मिलता है नेचुरली। जो दूध जब फटता है ना, तो उसका पानी जो निकलता है उसको हम यूं ही फेंक देते हैं, जिसका कोई यूज़ नहीं होता, वही है पावर हाउस प्रोटीन का। जी हाँ, फटे दूध में, पानी में जो है, इसका जो पानी होता है इसमें लैक्टिक एसिड और कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो पाचन में काफ़ी मदद करते हैं, और ये पेट को हल्का रखने में और कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याओं को से राहत दिलाने में काफ़ी मदद करता है। इसमें मौजूद जो है प्रोबायोटिक्स, यानी कि हल्की कम मात्रा में जो है वो होती है आपके आंतों में, ये इसके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। स्वास्थ्य आपका बनाए रखने में काफ़ी अच्छी है, आपकी गट हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका भी ये निभा सकता है अगर आप इसका सेवन करते हैं तो। डाइजेशन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है, इनफैक्ट हड्डियों को भी ये मजबूती देता है। कैल्शियम और फोस्फोरस जैसे मिनरल्स हड्डियों और ओरल हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। फटे दूध के पानी में अगर आप खनिजों की अच्छी मात्रा जो है ये पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में काफ़ी काम करती है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियों के जोखिम को भी कम करने में काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। गर्मियों में या किसी भी समय जब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा डाइजेशन की ज़रूरत होती है या फिर हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, तो पानी एक शानदार ऑप्शन हो सकता है ये जो है। और ये जो है भाई, मैं आपको बता दूँ, इसमें मौजूद इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे पोटेशियम हमारी बॉडी में तरल पदार्थों को संतुलित बनाए रखने में काफ़ी मदद करते हैं, जिससे आपकी हाइड्रेशन से भी आप जो है डिहाइड्रेशन से बच सकते हैं, हाइड्रेटेड रहेंगे। और ये जो सादे पानी से भी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है, क्योंकि ये सिर्फ पानी ही नहीं है बल्कि ये कुछ पोषक तत्वों का भी जो है वो भी प्रदान करता है। कुछ ऐसे पोषक तत्व इसमें मिलते हैं जो कि आपकी बॉडी को ज़रूरत है और काफ़ी ज़्यादा आपकी बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक. रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ. 2 घंटे का हमारा सफर है जिसमें होती हैं बहुत सारी बातें. फिलहाल हमारे सेगमेंट दिल रखने दो, मैं आपसे बातें मैं कर रही हूँ और बातें जो है वो हमारी चल रही हैं. ये जो दूध होता है जब फट जाता है तो पानी, इसका आप क्या करते हैं, फेंक देते हैं. लेकिन अब इसे फेंकना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है. साथ ही साथ ये आपको जो है डाइजेशन के लिए आपके बहुत अच्छा है. साथ ही आपको डिहाइड्रेशन से भी ये पानी बचा सकता है, हड्डियों को मजबूती ज़रूर देगा, साथ ही त्वचा और बालों के लिए भी वरदान है. इसमें मौजूद पोषक तत्व जो है ये विशेषकर क्योंकि प्रोटीन है और साथ ही विटामिन्स हैं तो आपकी त्वचा और बालों के लिए, उसकी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा एक बेहतरीन ऑप्शन है. तो आप प्रोटीन कोलेजन प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. त्वचा को जवां और चमकदार दिखाए रखने में भी काफ़ी काम करता है, जबकि विटामिन और मिनरल्स जो हैं बालों को मजबूती और हेल्दी रखने में मददगार हैं, जो कि आपको इसी में मिल जाएगा. कुछ लोग सीधे या त्वचा पे या बालों पर भी इसे लगाना ठीक समझते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं. तो आप इसको क्या कर सकते हैं, किस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि जो पानी है या तो आप इसे सीधे पी सकते हैं, ये काफ़ी अच्छा है. अपने दाल सूप या ग्रेवी में भी इस पानी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आटा गूंदने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इसमें रोटियां जो है वो मुलायम और पौष्टिक बनेगी. अगर आप सोच रहे हैं कि रोटी अच्छी नहीं बनेगी, रोटी काफ़ी टेस्टी बनेगी और काफ़ी अच्छी बनेगी. इसी के साथ स्मूदी या शेक में मिला सकते हैं आप. सब्जियों को उबाल के उसके उसमें भी आप डाल सकते हैं. तो ये कई तरीकों से आप इसका जो है सेवन कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ों के साथ इसका सेवन कर सकते हैं. तो ये आपको जो है प्रॉब्लम नहीं बल्कि आपकी गट हेल्थ को सुधार लेकर के आएगा. तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मैनो रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.
1: ज्वाला समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूँ कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें. और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ 2 दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे.
2: और मैं ये कह रही हूं भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके.
1: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं.
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते. वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी.
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता.
2: तो फिर एक वादा करो.
1: मेरी जान मांग लो, जान मेरी.
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे. इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए.
1: ज्वाला ये मेरा वादा है.

वेलकम बैक रेडियो मैंने रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ जी हाँ, सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रोजाना, मंडे टू फ्राइडे, और साथ ही सैटरडे संडे भी आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन अब आपके साथ रहती हूँ। और बहुत सारी होती हैं बातें, आपको बता दूँ मैं कि अभी फिलहाल एक बहुत ही खास बारे में बात मैं कर रही हूँ, और बात मैं कर रही हूँ मेंटल हेल्थ और योग की जी हाँ, क्योंकि हमारा सेगमेंट जो है ये शुरू हो गया। सेगमेंट का नाम है स्ट्रेच प्लीज। और देखिए, स्ट्रेच प्लीज में हम बात करते हैं योग की, मेडिटेशन की। अच्छा, अब मैं आपको बता दूँ मेंटल हेल्थ के बारे में हम बात कर रहे हैं। देखिए, अच्छा, अगर आपको जीवन जीना है, आपको लाइफस्टाइल अपनी बेहतर बनानी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ पर भी ध्यान दें। अब मेंटल हेल्थ में सुधार लाने के लिए या शांति मन में रखने के लिए ज़रूरी है कि आप रोज़ाना मैं कुछ 15 से 20 मिनट योग ज़रूर करें। अपने बॉडी के साथ साथ अपने माइंड को भी आप रिलैक्स और रिचार्ज कर सकते हैं, और वो कैसे, वो होता है योग से जी हाँ, क्योंकि योगा जो है इससे ही होगा, यही हम सुनते हैं, यही कहते हैं। और आज कुछ ऐसी बातें लेकर के आई हूँ जो कि आपके मेंटल हेल्थ से कनेक्टेड है, यानी कि कुछ ऐसे योगा आसन की बात करेंगे जो कि आपके मेंटल हेल्थ में सुधार लेकर के आती है और आपको जो है स्वस्थ रखती है मेंटल तौर पर भी। अब ये बातें क्या है बताऊंगी कुछ ही देर में, फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, रोजाना मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, हफ्तों के सातों दिन मैं आपके साथ रहती हूँ। बहुत सारी होती हैं बातें, फिलहाल आपको बता रही हूँ कुछ ऐसे 5 योगा आसन जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को मजबूती देते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आता है भुजंगासन। जी हाँ, भुजंगासन बॉडी को कई तरीकों से फायदे पहुंचाता है और साथ ही ये जो आसन है ये पेट की चर्बी को कम करने से लेकर कमर दर्द और यहाँ तक कि मानसिक शांति दिलाने में भी ये आसन काफी कारगर है। भुजंग आसन करने से योगा आपको जो है, अगर आप ये भुजंग आसन करते हैं तो इससे आपको बेली फैट तो आपको कटता है, हटता है, साथ ही जो है आपके पेट में जो भी जो जमा फैट होता है ये तो हटेगा, साथ ही मेंटली भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। और भुजंगासन ये काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है और ये जो है ना सिर्फ आपकी गट हेल्थ, आपकी कमर दर्द, आपके जो है मेंटल पीस, क्योंकि कहीं ना कहीं कभी ना कभी जब हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो ज़रूरी है कि आप कुछ आसनों पर ध्यान दें, अपनी बॉडी पर ध्यान दें, जिससे आपको ढेर सारे फायदे मिले। इसी के साथ साथ एक और आसन है जो कि बहुत ज़्यादा काम का है और वो है सेतुबंधनासन। अब ये जो आसन है ये भी काफ़ी ज़्यादा कारगर है। ब्रिज पोज यानी कि सेतुबंधनासन, इस आसन के अभ्यास से ही जो है, अगर आप इसका अभ्यास सिर्फ कि बॉडी और दिमाग को चुस्त दुरुस्त कर देता है, अगर आप आसन करते हैं सुबह थोड़ी देर, अगर आप ये आसन करते हैं तो इससे आपके पूरे दिन जो है आपकी जो रिचार्ज है आप हो जाएंगे, आपके पूरे दिन जो एनर्जी है वो बनी रहेगी। सेतुबंधनासन जब आप करेंगे तो इससे फायदे तो आपको मिलेंगे ही साथ ही, और इसे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बस इसके लिए आपको क्या करना है, आपको योगा मैट लेना है, पीठ के बल आपको लेट जाना है सबसे पहले, इसके बाद आपको पैरों को घुटनों से आपको जो है आपको मोड़ना है और उसके बाद दोनों पैरों पर आपको वजन डालते हुए हिप्स को ऊपर की ओर उठाना है। हाँ, तो आप हाथ चाहे तो आप पैर से या पीछे से आप पैरों को पकड़ सकते हैं और या फिर आप उंगली को आपस में फंसा सकते हैं, ये डिपेंड करता है। अब इस स्थिति में रहते हुए आपको 15 से 20 सेकंड तक आपको ये होल्ड करके रखनी है और सांस आपको लेती और छोड़ते रहने हैं। बस इसके बाद ये जो आसन हो जाएगा इसको कुछ देर आपको करना है और उसके बाद आपको काफ़ी ज़्यादा तरोताज़ा महसूस होगा। तो चलिए, ये तो आसन है काफ़ी ज़्यादा आसान और आपको ये करना है आसन रोज़ सुबह, जल्दी जल्दी से सुबह उठ के आसन आपको करना है। और अपने सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में और भी होंगी बहुत सारी बातें, तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ। सेगमेंट स्ट्रेच प्लीज में बातें मैं कर रही हूँ कुछ ऐसे आसनों के बारे में जो कि आपकी मेंटल हेल्थ को बहुत ज्यादा शांति देंगे। जी हाँ, अब बात करते हैं उत्तनासन की। जी हाँ, उत्तनासन ये जो है, इसे करते टाइम ऊपर से आपको लेकर लोअर, मतलब आपकी पूरी जो बॉडी है वो अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग आपकी बॉडी की हो जाएगी, जो ना सिर्फ आपकी मसल्स की टेंशन को दूर करती है बल्कि दिमाग को भी, दिमाग की जो टेंशन है इसे भी दूर करेगी। तो दिमाग को अगर दुरुस्त रखना चाहते हैं तो ये आसन आप जरूर कीजिए, इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, उतना आसन करने के लिए मैट पर आपको सीधे खड़े हो जाना है, लंबी गहरी सांसें भरते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपको कमर से बॉडी को नीचे झुकाना है और हाथों से पैरों को, आपको जो पंजे हैं ये छूना है, इसको कोशिश करनी है। कुछ टाइम आपको जो है अपने घुटने के पीछे की ओर दर्द जरूर होगा, महसूस होगा, लेकिन हो सकता है कि शुरुआती दिन में ही ऐसा हो, क्योंकि ये आसन कम से कम अगर 50 सेकंड भी आप करते हैं तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। 50 सेकंड काफी ज्यादा हो सकते हैं बिगनर्स के लिए। तो अगर आप, जितना भी आपको लगे कि अगर ज्यादा नहीं हो पा रहा है, बहुत ज्यादा आपको कठिनाई आ रही है, तो आप रुक जाइए, छोड़ दीजिए। इतना ज्यादा फोर्सफुली आपको अपनी बॉडी के साथ जो है वो नहीं करना है, जितना हो सके शुरुआत में उतना करना है। धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है जब भी आप योगा करते हैं। तो चलिए इसी के साथ यहाँ लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक मंडे टू संडे आपके साथ रहती हूँ, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. और बहुत सारी होती हैं बातें. फिलहाल आपको बता रही हूँ मैं उत्तना आसन के बारे में. मैंने आपको बताया ये जो कुछ ऐसे आसन है जो कि आपके ना सिर्फ बॉडी के लिए बल्कि मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं. अब बात करेंगे बालासन की, जिसे चाइल्ड पोज भी कहा जाता है. और ये आसन भी मन को शांत और स्थिर रखता है. इस आसन को करने के बहुत ही आसान सा तरीका है. तो जब कभी आपका दिमाग अशांत आपको महसूस हो रहा है तो आप थोड़ी देर ये आसन कर लीजिए, आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा. बालासन करने के लिए आपको योगा मैट लेना है, घुटनों को आपको टिकाना है और बैठ जाना है. लंबी गहरी सांसें लेते हुए दोनों हाथों को आपको ऊपर की ओर उठाना है और फिर सांस छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लाना है और मैट पर टिका लेना है. और सिर को आपको मैट पर ही लगा कर रखना है. और इस आसन को आपको कम से कम 2 से 3 मिनट होल्ड करके रखना है. कोशिश करनी है कि आप होल्ड कर सके इस आसन को, तो आपके लिए ये मेंटल हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है. जिसके बाद आ जाता है जानू शीर्षासन. जी हाँ, जानू शीर्षासन करने से मन आपका शांत रहता है. और इसके अलावा ये आसन जो है डिप्रेशन, थकान, चिंता, सिर दर्द और साथ ही आपकी नींद की अगर कमी हो रही है, अनिद्रा की आपको समस्या हो रही है, कुछ भी ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो उसमें काफ़ी कारगर है. इसे करने के लिए आपको क्या करना है, योगा मैट लेना है और इस मैट पर

दोनों पैरों को आपको सामने की ओर सीधा करते हुए बैठ जाना है। जब आपने अपने दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर को जांघ के पास आपको लेकर के आना है और दोनों हाथों को आपको सांस भरते हुए ऊपर की ओर सीधा करना है। सांस छोड़ते हुए आपकी बॉडी को आगे की ओर आपको झुकाना है और बाएं पैर के पंजों को आपको पकड़ना है, कोशिश करनी है। और इस स्थिति को आपको सर को आपको बाएं पैर से आपको घुटने पर रखना है। इस आसन को करने के लिए आपको 10 से 12 सेकंड आप कर सकते हैं, या अगर ज़्यादा हो सके तो आप 10 से 12 बार इस आसन को ज़रूर कीजिए। कुछ सेकेंड्स के लिए कीजिए, फिर धीरे धीरे इसका टाइम ड्यूरेशन जो है वो देखते रहिए, बढ़ाते रहिए। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा आपकी मेंटल हेल्थ को काम डाउन करने का। तो चलिए इसी के साथ अब यहाँ वक्त हो जाता है एक छोटे से ब्रेक का, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी। अगला सेगमेंट लेकर के आपके पास आ गई हूँ। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आपके साथ कुछ कहानियां शेयर करने वाली हूँ। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें। बात अब मैं कर रही हूँ हमारे अगले सेगमेंट की। सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें आज कुछ खास जानकारी लेकर के आई हूँ। जी हाँ, आपको बता रही हूँ कुछ ऐसी कहानियों के बारे में जो कि अनसंग हीरोज की है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया। बात करते हैं अब कमल प्रीत कौर की। जी हाँ, फ्रॉम डस्ट टू डिस्कस ये है। और मैं आपको बता दूं, कमल प्रीत की हम बात करें तो पंजाब की एक सिंपल किसान की बेटी, जिसके हाथ जो है वो घूमता नहीं बल्कि चक्रव्यूह तोड़ देता है। कमल प्रीत कौर एक छोटे से गांव की लड़की फ्रॉम पंजाब, और पंजाब के श्री मुख्तसर साहब डिस्ट्रिक्ट की ये लड़की है। और मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक आम लड़की तो बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। बचपन से ही स्पोर्ट्स में इनकी रुचि थी, लेकिन स्कूल में बस एक ही फोकस होता था और वो है पढ़ाई। जी हाँ, देखिए पढ़ाई जो है इस पर ही सारा फोकस इनका होता था। लेकिन जब कमलप्रीत ने पहली बार डिस्कस थ्रो किया तो देखिए उसी थ्रो ने उनको सब कुछ जो है उनका बिल्कुल सब कुछ हिला दिया। कोच ने कहा इस लड़की में बात है, अगर इसी फोकस के साथ ये काम करे तो इंडिया का नाम रोशन करेगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी डिस्कस का प्रैक्टिस ग्राउंड बिल्कुल नहीं था और इक्विपमेंट्स अफोर्ड करना मुश्किल था, पर फिर भी उन्होंने मिट्टी के मैदान पर प्रैक्टिस जारी रखी। कमलप्रीत बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू ब्रीच द 65 मीटर मार्क इन डिस्कस थ्रो। और फिर टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में इंडिया को फाइनल तक इन्होंने पहुंचा दिया। उनका थ्रो ओलंपिक मेडल में कन्वर्ट तो नहीं हो पाया, पर इंडिया की एक्सपेक्टेशंस जरूर उन पर टिक गई थी और आगे भी हो सकता है कि ये जरूर कोशिश करें और एक मुकाम जरूर हासिल करें, मेडल जरूर हासिल करें। जब मिट्टी से निकली बेटी चक्री घुमाती है तो दुनिया के मेडल भी झुक जाते हैं, और ये जरूर होगा अगली बार। और ये जो कोशिश है बिल्कुल जारी है कमलप्रीत जी की। चलिए इसी के साथ यहाँ पर लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, जिसके बाद होगी और भी बहुत सारी बातें। तो आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: सुनो हरदी, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है, दिन के वक्त जब ये फुहारे।
1: कहाँ आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

वेलकम बैक रेडियो मैनव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूँ साक्षी. आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग. और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ. सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन. बातें हमारी चल रही हैं बहुत सारी. आपको बता दूं मैं कि अब बात मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारा सेगमेंट चल रहा है पावर प्ले विद आर्ट साक्षी में. कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की कहानियां लेकर के आ जाती हूँ जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे क्या बात है, लेकिन कहीं ना कहीं सितारे खो गए. लेकिन खोने हम ऐसे नहीं देंगे क्योंकि इनकी कहानी आपको बताऊंगी तो आप भी हैरान हो जाएंगे. बात अब मैं कर रही हूँ कबड्डी की छोटी शेरनी रितु नेगी की. जी हाँ, ये जो कबड्डी के मैदान में जब उतरी, मैदान छोटा हो या जिंदगी, रितु हर टैकल के बाद और स्ट्रांग होती रही. रितु नेगी एक हिमाचली लड़की जिसके कबड्डी का पहला जो टेस्ट है वो स्कूल में उनका मिला. और वो स्कूल की एक इकलौती लड़की थी जो भाई बॉयज के अगेंस्ट कबड्डी खेला करती थी. लोग कहते थे कि इसे शादी इससे कौन करेगा, और ये तो कबड्डी खेलती है तो इससे शादी तो कोई नहीं करेगा. पर रितु ने सोसाइटी के सब नॉर्म्स इग्नोर किए. उन्होंने हिमाचल वुमेन्स टीम ज्वाइन करी और उसके बाद नेशनल चैंपियनशिप ये जीत गए और फिर इंडियन वुमेन्स नेशनल कबड्डी टीम की कप्तान भी बनी. एशियन गेम्स 2023 में रितु ने इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाने में मेजर रोल प्ले किया. जमीन से जुड़ी रितु आज भी अपने गांव के ट्रेनिंग ये जो है वो बच्चों को देती हैं, यानी कि लड़कियों को देती हैं और नए प्लेयर्स को और ज्यादा मोटिवेट करती हैं. वो गिरती है, उठती है और फिर से वही खड़ी हो जाती हैं और उसी जज्बे के साथ खड़ी होती हैं कि उनको अब अगला मेडल लेकर के आना है. रितु की कबड्डी जिंदगी का लेसन बन गई. और आप देखिए कि कितना कमाल कि गोल्ड मेडल लाने में भी, इंडिया को भारत का नाम रोशन करने में भी रितु का काफी बड़ा हाथ है इसमें. तो चलिए इसी के साथ यहाँ पर आपको बता दूं अगली आपको कहानी की भी आपको बताऊंगी किसकी आपको बताने जा रही हूँ. लेकिन उससे पहले अभी लेने वाली हूँ एक छोटा सा ब्रेक. आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फील गुड, फील लाइव.

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे आप, मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ। और बहुत सारी होती हैं बातें हफ्ते के साथ वो दिन। और देखिए, अभी फिलहाल हमारा सेगमेंट जो है वो चल रहा है, सेगमेंट का नाम है पावर प्ले विद आरजे साक्षी, जिसमें कुछ ऐसे अनसंग हीरोज की आपको कहानी बता रही हूँ जिन्हें सुनकर आप भी कहेंगे कि सच में इन्होंने भारत का इतना नाम रोशन किया, कहीं आज ये सितारे खो तो नहीं गया। लेकिन बिल्कुल भी हम खोने नहीं देंगे, हम इन्हें याद करते रहेंगे कि इन्होंने देश के लिए कितनी मेहनत करी है। बात अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर द फेंसिंग फाइटर भवानी देवी की। जी हाँ, देखिए, जब जिंदगी ने तलवार बन के अटैक किया, भवानी ने मास्क पहनकर उसे फेस किया। भवानी देवी की मैं बात कर रही हूँ, भवानी देवी जब जिंदगी ने तलवार बनकर उन पर अटैक किया ना, तो उन्होंने मास्क तो पहन लिया। लेकिन देखिए, मैं बात यहाँ पर अब इनकी जर्नी की करती हूँ। पहली इंडियन फेंसर जिन्होंने ओलंपिक्स के में जो है फेंसिंग इवेंट में क्वालिफाई किया, चेन्नई की भवानी को जब फेंसिंग का नाम सुना तो उन्होंने पहली बार सोचा स्पोर्ट्स का इंडिया से क्या लेना देना। लेकिन उसी स्पोर्ट में करियर इन्होंने बनाया। ट्रेनिंग के लिए इटली और फ्रांस तक जाने का खर्चा उन्होंने लोन और क्राउड फंडिंग से मैनेज किया। 2014 एशियन चैंपियनशिप में ब्रोंज मेडल इन्होंने जीता। 2020 में हिस्ट्री लिखी, इंडियाज फर्स्ट ओलंपिक फेंसर की इन्होंने हिस्ट्री लिखी। भवानी ने एक ऐसे स्पोर्ट में नाम कमाया जहाँ लोगों का वो उसकी स्पेलिंग तक नहीं पता थी। जिंदगी के हर अटैक का सिर्फ एक जवाब था, भवानी की फेंसिंग स्क्वाड। और ये जो है, इन्होंने नाम तो रोशन कर दिया, इंडिया का नाम इन्होंने रोशन किया, भारत का नाम इन्होंने रोशन किया, जहाँ किसी को पता भी नहीं था कि ये फेंसिंग है क्या, वहाँ पर इन्होंने खेल के पहले सबका जो है दिल जीत लिया। चलिए, इसी के साथ यहाँ लेती हूँ अब एक छोटा सा ब्रेक, आपका ही मजा आइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं हमारी बातें, फिलहाल बातें हमारी चल रही हैं और अभी आपको बता रही हूँ मैं अपने सेगमेंट्स लेकर के आती हूँ। लेकिन अगले सेगमेंट पर ज़रूर जाऊँगी क्योंकि आपका फेवरेट सेगमेंट है कौन बनेगा सेहतमंद। लेकिन उससे पहले बता दूँ, अगर आप ये एपिसोड सुन रहे हैं और ये मिस कर जाते हैं, कोई भी बात दोबारा सुनना चाहते हैं, तो अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। चाहे आप भाई फरीदाबाद में हो या दुनिया में कहीं पर भी, वर्ल्ड में कहीं पर भी, आप भाई जल्दी से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वो भी कुछ ही सेकंड में। आपको बस क्या करना है, अपना मोबाइल फ़ोन लेना है, चाहे एंड्रॉयड हो या आईओएस मोबाइल फ़ोन हो, वो लेना है, प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर जाना है, हमारी इंटरनेट ऐप को डाउनलोड कर लेना है और उसके बाद आप सुन सकते हैं ये कमाल के पॉडकास्ट सुन सकते हैं। जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे एक्सपर्ट से, बहुत सारे जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल सकती है आपको। तो अब भाई आपको कुछ नहीं करना है, आप कभी भी कहीं से भी आप हमारे साथ यानी कि रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ जुड़ सकते हैं। बस अब यहाँ पर लेती हूँ एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइए, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ और साथ ही अगला सेगमेंट भी ला रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा खास ये सेगमेंट होने वाला है, सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें पहेलियाँ आपसे पूछती हूँ। आज की क्या है खास पहेली पूछूंगी, लेकिन फिलहाल अभी कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आए हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपके साथ रहती हूँ, मंडे टू संडे यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी हो रही है हमारी बातें। फिलहाल आपका फेवरेट सेगमेंट लेकर के आ गई हूँ, कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियाँ पूछती हूँ। जो देता है सही सटीक रोजाना जवाब देता है, जब भी मैं पहेली पूछती हूँ पूरे महीने जो रहता है कंसिस्टेंट, उनको मिलता है मौका मुझसे मिलने का, रेडियो मानव रचना 107.8 FM के स्टूडियो आने का और सभी आरजे से मिलने का। बातें हमारी चल रही हैं और आपको बता दूं मैं अभी कि अभी बात मैं कर रही हूँ बहुत सारी और आपसे पहेली पूछ रही हूँ, तो जल्दी से झटपट से इसका जवाब देना है। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। तो जो पहेली आज की है भाई ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको इसका बहुत जल्दी से जवाब देना है। पहेली है, मस्तिष्क का काम करूँ आसान, न्यूरा ट्रांसमिशन में मेरा योगदान, मेरी कमी से हो मूड खराब, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर बेहिसाब, बताओ कौन हूँ मैं? मैं बी विटामिन का हिस्सा हूँ, बीन्स और साबुत अनाज में हूँ समाया, बताओ कौन हूँ मैं? तो जल्दी से इसका झटपट से जवाब देना है। एक बार फिर से मैं पहेली को दोहरा देती हूँ, मस्तिष्क का काम करूँ आसान, न्यूरो ट्रांसमिशन में मेरा योगदान, मेरी कमी से हो मूड खराब, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर बेहिसाब, बताओ कौन हूँ मैं? मैं विटामिन बी में का हिस्सा हूँ, बीन्स और साबुत अनाज में हूँ समाया, बताओ कौन हूँ मैं? फटाफट से इसका जवाब आपको देना है। नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। चलिए अभी आप कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, मंडे टू फ्राइडे, और साथ ही सैटरडे संडे भी आपके साथ रहती हूँ। यानी कि हफ्ते के 7 दिन अब आपके साथ रहती हूँ। 2 घंटे का हमारा सफर है। आपसे पहली मैंने पूछी क्योंकि हमारा सेगमेंट चल रहा है, सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियां पूछती हूँ। तो आज की हमारी पहेली है, मस्तिष्क का काम करूं आसान, न्यूरोट्रांसमिशन में मेरा योगदान, मेरी कमी से हो मूड खराब, मानसिक स्वास्थ्य पर पड़े असर बेहिसाब, बताओ कौन हूँ मैं। विटामिन बी का हिस्सा हूँ, बीन्स और साबुत अनाज में समाया हूँ। तो चलो आपको इसका जवाब जो है वो देना था, और फटाफट से हमारे पास सबसे पहले सटीक जवाब जो है यह चला है हमारी आज के लिसनर जो है आंचल की ओर से। आंचल बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और इसका जवाब है विटामिन B6 इसका जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है, कंग्रेचुलेशंस। और इसी के साथ चलिए यहाँ पर अब पहला जवाब तो हमारे पास आ गया है। अगली एक और पहेली आपसे पूछने वाली हूँ, वो कौन सी है बताऊंगी कुछ ही देर में। फिलहाल कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइव।

वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूँ रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में बहुत सारी बातें, खूबसूरत गाने जो कि मैं लेकर के आ जाती हूँ सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक रहती हूँ आपके साथ मंडे टू संडे, यानी कि हफ्ते के 7 दिन। और बहुत सारी होती हैं बातें। फिलहाल आपको बता रही हूँ आज की हमारी पहेली, क्योंकि सेगमेंट चल रहा है, सेगमेंट का नाम है कौन बनेगा सेहतमंद, जिसमें आपसे पहेलियाँ पूछ रही हूँ। तो आज की हमारी बड़ी आसान सी पहेली, पहली पहेली तो मैंने पूछ ली है, सेकेंड यानी कि दूसरी पहेली का वक्त जो है ये हो चला है। और पहेली है, आंखों की रोशनी का हूँ पहरेदार, रात में दिखने में करता हूँ उद्धार, मेरी कमी से हो अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा, बताओ कौन हूँ मैं, गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान है, बताओ कौन सा वाइटमिन हूँ मेरी पहचान है। इसका फटाफट से आपको जवाब देना है, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078, ये हमारा नंबर है। एक बार फिर से मैं पहेली जो है वो दोहरा देती हूँ, आंखों की रोशनी का हूँ पहरेदार, रात में दिखने में करता हूँ उद्धार, मेरी कमी से हो जाए अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा, गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान, बताओ कौन सा हूँ मैं वाइटमिन, क्या है मेरी पहचान। फटाफट से इसका जवाब आपको देना है, नंबर बहुत ही आसान है 8010781078। चलिए अब कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM। फील गुड, फील लाइफ।

0: धार, मेरी कमी से हो अंधेरा, रात की दुनिया लगे घनेरा, गाजर और हरी सब्जियों में मेरी पहचान, बताओ क्या है मेरा विटामिन का नाम, क्या है मेरी पहचान। तो इस विटामिन का नाम है विटामिन ए, जी हाँ। और इसका सही भी अपने देखिए बहुत सारे लोगों ने इसका जवाब दिया है, सभी ने जवाब दिया है, लेकिन इसका सबसे सटीक और पहला जवाब जो है वो आया है हमारी लिसनर की ओर से। लिसनर का नाम जो है वो है प्रियंका मिश्रा। चलिए इसी के साथ वक्त जो है ये हो चला है आपसे यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक की इजाजत लेने का, तो आप कहीं मत जाइए, आगे और भी करती हूँ बातें, तो जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM, फील गुड फील लाइफ।
1: ना इज्जत की चिंता ना फिक्र कोई अपमान की, जय बोलो बेईमान की, यही पहचान है भक्तजन।
2: गुरुदेव यही बात यदि संगीत धारा में बहकर कहें तो आनंद आ जाए।
1: हाँ गुरुदेव। ना

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। और आज हम बात करने वाले हैं प्रोग्राम ऑल इज वेल में एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो बहुत सारे लोगों की जिंदगी में है। कहने को तो ये छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन ये बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स ले आती है। अगर एक दिन आपको ये दिक्कत हो जाए तो अगले 2-3 दिन काफी ज्यादा मुश्किल दौर से गुजरते हैं। सिर में दर्द तो आपने अक्सर फील किया होगा, कभी कभी बहुत सारा प्रेशर होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, शोर होता है, पोल्यूशन होता है, या फिर वैसे ही तबीयत खराब होती है तो सिर में दर्द होता है। लेकिन क्या ये सिर दर्द माइग्रेन है? इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं कि माइग्रेन को पहचाने कैसे, और ये इतना कॉमनली यूज होने वाला शब्द माइग्रेन आखिर होता क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग जब रेगुलर हेडेक की शिकायत करते हैं तो उन्हें अक्सर पूछा जाता है कि आपको माइग्रेन है। लेकिन माइग्रेन को पहचानना, इसका सोल्यूशन क्या है वो जानना और इसको रोकना, ये भी जरूरी है। तो आज माइग्रेन के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी, SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। डॉक्टर मेघा, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: थैंक यू।
0: तो डॉक्टर मेघा, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हम हेडेक की बात कर रहे हैं तो हेडेक पहले मैं जानना चाहूंगी कि किस किस तरीके के हेडेक होते हैं, क्योंकि जनरली जो हेडेक होता है वो यहाँ पर होता है, साइड्स में होता है।
1: सो हेडेक बहुत तरीके के होते हैं। अगर हम बात करें तो हेडेक्स को हम दो तरीके से बताते हैं कि एक प्राइमरी हेडेक्स है, एक सेकेंडरी हेडेक्स है। प्राइमरी हेडेक्स ही होते हैं जो सबसे कॉमन होते हैं, उसमें सबसे टॉप पे जो आता है वो होता है माइग्रेन।
0: ओके।
1: एंड माइग्रेन के साथ में टेंशन टाइप हेडेक, वो दूसरा टाइप होता है हेडेक का जो कॉमनली देखा जाता है। उसके अलावा अदर हेडेक्स होते हैं जिनमें कि साइनस हेडेक्स हो गए या फिर हमारे क्लस्टर हेडेक्स हो गए। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ हेडेक्स विच आर सीन, बट सबसे कॉमन जो टॉप मोस्ट अगर हम बोले तो इट इज माइग्रेन एंड टेंशन टाइप हेडेक।
0: माइग्रेन और टेंशन टाइप हेडेक होता है। लेकिन डॉक्टर मेघा, माइग्रेन को पहचानना एक अपने आप में बड़ा टास्क है।
1: माइग्रेन जो होता है वो जरूरी नहीं होता है कि इट इज लाइक अ क्लिनिकल डायग्नोसिस। हमेशा मरीज को देख के और उसकी बातें सुन के पता चलता है कि ये माइग्रेन है।
0: Okay.
1: इसके लिए कोई अलग से रेडियोलॉजिकल MRI या कोई टेस्ट नहीं है जिससे कि हम कहें कि ये माइग्रेन है।
0: ओके।
1: सो माइग्रेन का पेशेंट जो सबसे कॉमन सिम्टम लेके आता है वो सर दर्द होता है। सर दर्द आधे सर में टप टप टप जैसा दर्द होना, या फिर टस टस टस महसूस होना कि ऐसा कि थ्रॉबिंग सेंसेशन लग रही है कि सर में ऐसा लग रहा है कि कोई नसें फड़क रही हैं।
0: Okay.
1: ऐसा दर्द होना हमें माइग्रेन में मिलता है। दूसरा माइग्रेन को डिटेक्ट करने का होता है कि धीरे धीरे बिल्डअप होता है, ऐसा नहीं होता कि एकदम से बहुत तेज हो गया। स्लोली स्लोली स्लोली स्लोली माइग्रेन बिल्डअप होता है एंड ओवर अ पीरियड ऑफ 3-4 hours में तेज होने लगता है। एंड कभी कभी माइग्रेन का जो हेडेक होता है वो 24 से 48 घंटे एंड अप टू 72 hours भी लास्ट कर सकता है।
0: ओके, यानी इतना समय तक माइग्रेन का दर्द चलता
1: जी
0: है।
1: तो माइग्रेन बहुत बार लंबे समय तक हमारे को 3 दिन तक भी, अप टू 5 days आई हैव सीन कि पेशेंट का सर दर्द ठीक नहीं हो रहा है। सो उस सर दर्द की वजह से अपना काम, डेली रूटीन जो होता है वो काफी इफेक्टेड हो जाना है।
0: यानी माइग्रेन एक ऐसा सिर दर्द होता है, इसका जो सिम्टम है वो सिर दर्द है, लेकिन इसके अलावा भी क्या इसके कुछ सिम्टम्स हैं और इसको कैसे पहचाने हम कि ये माइग्रेन हो चुका है? ऐसे कुछ सवाल और इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं तो

पूछ सकते हैं, नंबर हमारा है 8010781078। अभी वक्त है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एज अ नॉलेज पार्टनर एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और आज हम बात करें हैं कैसी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में, जो कि बहुत कॉमनली आपने देखी होगी, लोगों को इससे सफर करते देखा है, लेकिन उनके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता है। बहुत सारे लोग सिर दर्द की शिकायत लेते हैं तो उन्हें कहा जाता है कि आपको माइग्रेन है। और माइग्रेन एक ऐसा सिर दर्द है जो कि एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 2 से 4 दिन तक किसी भी व्यक्ति को परेशान करने की क्षमता रखता है। लेकिन माइग्रेन को पहचानना कैसे है? क्या ये सिर्फ सिर दर्द है, या फिर क्या ये कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो बाकी बॉडी पार्ट्स में भी दिक्कत ला सकती है? क्या बच्चों को होता है या बड़ों को होता है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, और बहुत सारे सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय, कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। सो डॉक्टर मेघा, अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि माइग्रेन एक ऐसी प्रॉब्लम है जो 1 दिन से लेकर 4 दिन तक किसी को भी परेशान कर सकती है, मतलब सिर दर्द खत्म ही नहीं होता। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि माइग्रेन सिर्फ सिर दर्द है या कुछ और भी प्रॉब्लम है?
1: सो माइग्रेन हेडेक जो स्टार्ट होती है, सरदर्द जो शुरू होता है, उससे पहले पेशेंट्स को अदर सिम्टम्स भी आ रहे होते हैं, जैसे कि उबासी आना, एक्सेसिव उबासी आ रही है, योनिंग किए जा रहे हैं, या फिर फटीगेबिलिटी है, थकान महसूस हो रही है, चिड़चिड़ापन, मूड में चेंजेस हैं, लो मूड फील कर रहे हैं। एंड उसके बाद में हमारे सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं हेडेक के, कि सरदर्द है। सरदर्द के साथ में बहुत बार पेशेंट को कंप्लेन होती है विजुअल सिम्टम्स की, मतलब कि आंखों के आगे धुंधलापन आना, या आंखों से दिखाई देने में दिक्कत होना, या आंखों के आगे रंगीन गोले बनना। ये भी एक कारण होता है जिसके साथ में माइग्रेन शुरू होता है। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे सरदर्द बिल्डअप होता है, उसके साथ में मरीज बहुत बार उल्टी का मन होना, उसके साथ में एक्सेसिव लाइट या साउंड से इरिटेबिलिटी होना कॉमनली देखा जाता है।
0: यानी सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिरदर्द होगा, चक्कर भी आ सकते हैं, वॉमिट है आपने कहा है, और सबसे बड़ा मुझे लगता है चैलेंज होता है जब आपके विजन पे कुछ इफेक्ट होता है। Definitely. आपको समझ ही नहीं आता कि ये स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है या तकलीफ है, या फिर आप वैसे ही किसी डेफिशिएंसी की वजह से चक्कर आ रहे हैं या फटीग है, और ऐसे में आंखों के सामने कुछ कलरफुल इमेजेस बनना, वो अपने आप में बहुत स्ट्रेस वाली चीज होती है। तो डॉक्टर साहब, ये तो आपने बता दिए कुछ बेसिक सिम्टम्स जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि माइग्रेन है, लेकिन क्या माइग्रेन सिर्फ एक बड़ी उम्र के लोगों को होता है या यंग एज में होता है? क्या बच्चों और बुजुर्गों को भी इफेक्ट करता है?
1: सो माइग्रेन का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी है, मतलब अगर आपके घर में, परिवार में आपके फादर मदर या किसी भी फैमिली मेंबर को माइग्रेन है, तो देयर आर चांसेस, 50% चांसेस कि वो आपको ट्रांसफर होगा। एंड जिनमें होता है ऑनसेट, अगर हम बात करें कि कब शुरुआत होती है सरदर्द की या माइग्रेन के सिम्टम्स की, लेस देन 5 ईयर के बच्चे में भी हेडेक स्टार्ट हो सकते हैं, माइग्रेन के अटैक्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड अदर देन दैट, यूजुअली जो हम बोलते हैं कि किस उम्र से शुरू होता है, दैट इज प्यूबर्टी एज, मतलब कि 10 से 12 साल की उम्र पे सरदर्द जो होता है वो चालू होता है। एंड धीरे धीरे बिल्डअप होता है, इंक्रीज करता है। एंड वंस यू रीच आफ्टर, मतलब 40 से 50 साल की उम्र पे पहुंचने के बाद में आपका जो सरदर्द होता है वो कम होने लग जाता है।
0: ओके, यानी 50 साल के बाद कम हो जाता है, और 12-13 साल की एज से शुरू होता है। क्या ऐसा होता है कि प्यूबर्टी या हार्मोनल चेंजेस की वजह से होता है?
1: सो अगर हम बात कर रहे हैं माइग्रेन की आज, तो माइग्रेन मोस्टली फीमेल्स में कॉमन होता है, लेडीज में, ठीक है। एंड 3 times ज़्यादा कॉमन होता है लेडीज में एज कम्पेयर टू मेल्स। रीजन, हार्मोन्स। हमारी फीमेल्स में जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है एंड प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन होते हैं, 2 main hormones होते हैं जो हमारी फीमेल बॉडी में काम कर रहे होते हैं। तो जब भी बॉडी में ईस्ट्रोजन की कमी होगी, तो उसकी वजह से हमारे को, जिनको हेडेक के लिए प्री डिस्पोजिशन है, उनमें माइग्रेन देखा जाता है, पर्टिकुलरली जैसे कि हमारे पीरियड्स आने से पहले, या फिर प्रेगनेंसी में जब प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बढ़ रहा होता है और हमारा ईस्ट्रोजन कम होता है टू मेंटेन द प्रेगनेंसी, तो उस टाइम पे फर्स्ट 3 months ऑफ प्रेगनेंसी में हमें सरदर्द, या पहले 3 या 4 महीने में सरदर्द की फ्रिक्वेंसी, जिनको पहले से माइग्रेन है, उनमें बढ़ जाती है। एंड एज लेडीज अचीव द मेनोपॉज, तो उनके हेडेक की फ्रिक्वेंसी कम होने लग जाती है।
0: ओके, यानी ये जो 30 साल की एज, 20 से 30 की एज है, ये सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट एज है माइग्रेन,
1: रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप।
0: हाँ, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की बात करें, और ज्यादातर फीमेल्स में होता है। सो ऐसी कुछ बातें और भी चल रही हैं, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं ताकि वो भी कुछ लाभ उठा सकें उसका, तो हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए रेडियो मानव रचना प्ले स्टोर या iOS स्टोर से, और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पॉडकास्ट सेक्शन में आरजी दीक्षा के फोल्डर में डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय के साथ मिल जाएंगी, माइग्रेन से जुड़ी हुई, जिसको आप कभी भी कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में हमारी ऐप के माध्यम से शेयर कर सकते हैं। फिलहाल बहुत सारी सीरियस बातों के बीच में कुछ अच्छे अच्छे गाने जिससे आपका मूड भी फ्रेश हो। तो अभी फिलहाल म्यूजिकल ब्रेक, मैं हूँ दीक्षा, आपके साथ सुन रहे हैं आप प्रोग्राम ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद।

0: खुश रहे।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम, मैं हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एज अ नॉलेज पार्टनर एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने। और आज हम बात करें हैं माइग्रेन के बारे में, एक बहुत कॉमन समस्या जो अक्सर लेडीज को देखी गई है होते हुए, कुछ जेंट्स को भी होती है, लेकिन एक्चुअली में जब सिर दर्द बहुत भयानक हो, दो दिन तक ठीक ना हो रहा हो, तो माइग्रेन कहलाया जाता है और बहुत सारे लोग इससे परेशान होते हैं। लेकिन क्यों ये माइग्रेन हो जाता है, कैसे ये ट्रिगर करता है, अचानक से सब कुछ ठीक चल रहा है पर फिर सिर दर्द हो जाता है। कई लोगों को धूप में जाने से होता है, कई लोगों को शोर से होता है, लेकिन कई बार कुछ ऐसी चीजों से भी होता है जो आपने कभी सोची भी नहीं होती है। तो आपको वो पहले समझना होता है कि किस चीज से एक्चुअली ये ट्रिगर हो रहा है। और यही सब बातें करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद, डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय। डॉक्टर मेघा, माइग्रेन की बात कर रहे हैं तो मैं ट्रिगर्स आपसे जानना चाहूंगी, कैसे होता है, कॉमन ट्रिगर्स क्या होते हैं माइग्रेन के?
2: जैसा कि हमने पहले बात करी कि जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होता है कि 50% चांसेस होते हैं जिनकी फैमिली में है उनको जेनेटिक ट्रांसमिशन होने का टू द नेक्स्ट मेंबर। उसके अलावा नींद का कम लेना, इनएडिक्वेट स्लीप, या हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, कंप्यूटर पे वर्क ज़्यादा है, एक्सेसिव स्टिमुलेशन टू लाइट एंड साउंड, या फिर हम खाली पेट सुबह में बिना नाश्ता करे हुए आए हैं, एक्सपोजर टू परफ्यूम्स, मतलब स्ट्रॉन्ग परफ्यूम स्मेल्स, ऑयल स्मेल्स कैन ऑल्सो प्रीडिस्पोज अस टू माइग्रेन अटैक्स। सो हर पेशेंट का या हर इंसान के जिनको हेडेक्स की कंप्लेन रहती है या माइग्रेन की कंप्लेन रहती है, उनके अपने अपने ट्रिगर्स होते हैं। अगर हम उन ट्रिगर्स को पहचान के उसे कट डाउन करें तो हमारे माइग्रेन के अटैक की फ्रीक्वेंसी एज वेल एज इंटेंसिटी, जो तेजी होती है, वो भी कम की जा सकती है।
1: ओके डॉक्टर मेघा, बहुत सारे लोगों का स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है पोस्ट कोविड, तो मतलब स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम उसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाते हैं। अपना फोन या अपना लैपटॉप देखते हैं तो समझ आता है कि दिन में 5 से 6 घंटे आप सिर्फ स्क्रीन देख रहे हैं, तो क्या ये भी ट्रिगर है?
2: जी बिल्कुल, एक्सेसिव जब स्क्रीन का एक्सपोजर होता है, दैट इज लाइक लाइट का एक्सपोजर टू द आईज होता है, तो वो हमारी नर्व्स को स्टिमुलेट करता है एंड नर्व के स्टिमुलेशन की वजह से हमारे जो ब्लड वेसल होते हैं ब्रेन के, वो डायलेट करते हैं और उसकी वजह से पेन का स्टिमुलेशन जो होता है वो बढ़ता है और पेशेंट्स को बहुत बार पेन कंप्लेन होता है। बहुत देर तक काम कर रहे थे उसके बाद में हमें सर दर्द हो गया, तो वो एक तो आई की फटीगेबिलिटी की वजह से सर में दर्द होता है और दूसरा एक्सेसिव स्टिमुलेशन की वजह से जो हमारी नर्व पे स्ट्रेस आता है उसकी वजह से होता है।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग कुछ चीज़ें ऐसी खाते हैं जिसके बाद उनको कई बार सिर में दर्द शुरू हो जाता है, जैसे कॉफ़ी बहुत लोगों की फेवरेट है, लेकिन कई लोग बिल्कुल कॉफ़ी छोड़ देते हैं क्योंकि सिर में दर्द होता है, और कई लोग कॉफ़ी पीते हैं इसलिए कि सिर दर्द ठीक करना है।
2: सो एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ कैफीन ड्रिंक्स, हमारा इनटेक 1 to 2 cup ऑफ कॉफ़ी पर डे हो सकता है, बट अगर हम दिन में 5-5, 6-7, तो ओवर स्टिमुलेशन ऑफ कैफीन जो होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स को ब्रेन के डायलेट करके हेडेक्स स्टिमुलेट करता है या बढ़ाता है। सो एक्सेसिव, बहुत बार लोगों को चीज़ या ओवर एज चीज़ जो होता है उसे लेने से हेडेक्स होते हैं। समटाइम्स इनटेक ऑफ अल्कोहल स्पेसिफिकली इन द फॉर्म ऑफ रेड वाइन कैन प्रीडिस्पोज द पेशेंट टू हेडेक्स। सो माइग्रेनस वी से डोंट इंडल्ज इन द अल्कोहल कंजम्पशन ऑल्सो। अदर देन दैट अगर आप देखें तो सिट्रस फ्रूट्स कैन ऑल्सो प्रीडिस्पोज टू हेडेक्स।
1: सिट्रस फ्रूट्स जो हम कहते हैं कि विटामिन सी रिच हैं और लेने चाहिए,
2: बट बिकॉज ऑफ द सिट्रिक एसिड द कॉम्पोनेंट इट कैन ट्रिगर्स द माइग्रेन अटैक्स इन द।
1: सो ऐसे में तो अचार वगैरह या चटनी भी अगर आप ज्यादा लेते हैं तो प्रॉब्लम
2: हो सकता है। एंड अदर देन दैट चॉकलेट एंड कोला, सो डार्क चॉकलेट इज हेल्पफुल बट एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ द चॉकलेट, सो किसी का भी ज्यादा होना शरीर में नुकसानदेह होता है। तो इन अ लिमिटेड क्वांटिटी यू कैन कंज्यूम कैफीन इन द फॉर्म ऑफ कॉफी, चॉकलेट एंड कोलाज एज वेल एज द अदर कैफिनेटेड या एरिएटेड ड्रिंक शुड बी अवॉइडेड।
1: यानी जो चीज़ें टेस्ट में बहुत अच्छी हैं पर हेल्दी नहीं है उनको तो अवॉइड कीजिए क्योंकि वो ट्रिगर करती हैं। डॉक्टर मेघा, एक और चीज़ आपसे जानना चाहती हूँ, आजकल बहुत सारे जो यंग गर्ल्स हैं या फिर कहें वेमेन मेकअप बहुत कॉमन सी चीज होती है, डेली यूज में है. सो क्या मेकअप या परफ्यूम्स ये भी ट्रिगर कर सकते हैं?
2: जी, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ द परफ्यूम जो होती है, जिनमें बहुत तेज स्मेल आ रही है परफ्यूम की, तो जिनमें ये ट्रिगर होता है स्मेल का, दैट कैन ऑल्सो प्रीडिस्पोज टू माइग्रेन अटैक्स. आई हैव सीन समवन जिसको काजल लगाने की वजह से हेडेक हो जाता था, एंड वंस शी स्टॉप्ड यूजिंग काजल तो उससे उनका फ्रीक्वेंसी ऑफ हेडेक्स जो थे वो रिड्यूस हो गए.
1: यानी सिर्फ एक काजल जो आप अपनी खूबसूरती के लगाते हैं, और इसको मेकअप भी नहीं कहते हैं, दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी कॉमन,
2: बिल्कुल,
1: वो भी माइग्रेन को ट्रिगर कर सकता है. तो जब भी आप किसी चीज का इस्तेमाल करें और आपको सिर दर्द हो, तो चीजें पहचाने के किस वजह से हो रहा है या क्या ऐसा किया है जो थोड़ा सा अलग है जिसकी वजह से आज सिर दर्द शुरू हुआ है. लेकिन इस माइग्रेन का ट्रीटमेंट क्या है? क्या इसे रोका जा सकता है? क्या इसे रिवर्स किया जा सकता है? क्या इसे कंट्रोल करना इतना मुश्किल है कि आप तीन तीन चार चार दिन परेशान रहे पर ये रुक नहीं रहा है? तो ऐसी कुछ बातें और भी करेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद. मैं हूं दीक्षा आपके साथ.

0: अंधेरे का इशारा समझो, अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो।
0: नहीं
1: छोड़ो ना।
0: आज की रात तो दिल तोड़ो ना।

0: फील गुड फील लाइव. मैं हूं दीक्षा आपके साथ. प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, जिसे सपोर्ट किया है एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद ने. और हम बात करें हैं माइग्रेन के बारे में, एक ऐसी कॉमन सी प्रॉब्लम जिसको शायद आप इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस देते भी नहीं है, लेकिन इसकी प्रॉब्लम सिर्फ वही समझ सकता है जिसको ये माइग्रेन हेडेक हो रहा हो. माइग्रेन के कई और भी सिम्टम्स होते हैं, जैसे आंखों के आगे कुछ कलरफुल सर्कल्स बनना, या फिर वॉमिट फील होना, नौजिया फील होना, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं. बहुत ज्यादा योनिंग आ रही है अगर आपको अचानक से, आपकी नींद भी पूरी है लेकिन फिर भी आपको उबासियां आ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि कहीं ये माइग्रेन की शुरुआत तो नहीं है. बहुत ज्यादा डर के नहीं रहना है, लेकिन हाँ सिम्टम्स को जरूर पहचानना है. बट अब माइग्रेन को कंट्रोल कैसे किया जाए? हमने अक्सर उन लोगों को देखा है जिनको माइग्रेन होता है, वो दवाई खाते हैं पर फिर भी रिलीफ नहीं मिलता है. तो फिर माइग्रेन को कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि जनरली हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो मेडिसिन होती है. सो ऐसी कुछ बातें हम जान रहे हैं डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय से, जो कि कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में. सो डॉक्टर मेघा, ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि माइग्रेन के पेशेंट्स अक्सर परेशान रहते हैं और उन्हें ये बहुत घबराहट होती है कि अगर आज उनका दिन बहुत हेक्टिक चला गया तो उनको कहीं माइग्रेन अटैक ना हो जाए. सो इसका सोल्यूशन क्या है, ट्रीटमेंट क्या है?
1: तो सबसे पहले हमें अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफाई करना है, जो भी हमारे ट्रिगर्स हैं उनको रिड्यूस करना है, कट डाउन करना है. चाहे वो हमारे अगर परफ्यूम का एक्सपोजर है या स्मेल की वजह से है तो उसे अवॉइड करना है. अगर हमारी नींद स्ट्रेस है तो हमें उसे कट डाउन करना है बाय डूइंग लाइफस्टाइल चेंजेस लाइक योगा, मेडिटेशन. ये सब चीज़ें अपनी लाइफ में इंक्लूड करनी है एज अ पार्ट एंड पार्सल, कि ये नहीं है कि आज करा कल नहीं किया है. अ डेली रूटीन विल प्रिवेंट फर्दर अटैक्स ऑफ माइग्रेन. उसके अलावा खाने में मैग्नीशियम रिच फूड जो होता है, दैट इज़ वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंटिंग माइग्रेन. तो मतलब कि जो फूड जिसमें हमारे मैग्नीशियम ज़्यादा होता है, चाहे वो हमारी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, नट्स हैं, ये सब है. एक्सेसिव नहीं बट थोड़ा थोड़ा इन अ एडिक्वेट एंड ऑप्टिमम अमाउंट में लेंगे तो इट विल हेल्प. उसके अलावा जब माइग्रेन को हमने प्रिवेंशन की तरह तो देखा, पर हर माइग्रेन के दो तरीके से ट्रीटमेंट किए जाते हैं. एक जो एक्यूट हेडेक हो रहा है, जो सिम्टम है अभी करेंटली, उसको खत्म करना और आगे ऐसे सरदर्द ना बने, उसको बनने ना देने के लिए दवाइयां देना. सो दोनों तरीके से एक्यूट एंड प्रिवेंशन बोथ हैज टू बी डन, जिससे कि आगे के आपके नंबर ऑफ डेज, आपके ऑफिस, आपके बच्चों के स्कूल वर्क्स या लेडीज का घर का कामकाज जो है वो इम्पैक्टेड या इफेक्टेड ना हो.
0: बिल्कुल.
1: सो एक्यूट ट्रीटमेंट में यूजुअली हम पेन किलर्स, जो सरदर्द की दवाइयां होती हैं, वो देनी होती हैं. बहुत ज्यादा पेन किलर लेना, मतलब कि आप हफ्ते में तीन तीन चार चार बार अगर हेडेक्स की मेडिकेशन लिए जा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, पेशेंट को मेडिकेशन ओवर यूज हेडेक हो जाता है. मतलब कि हम ज्यादा दवाइयां खाने की वजह से सरदर्द की दवाइयां हमारे ऊपर काम नहीं कर रही और हमारे को सरदर्द बना ही रहेगा. सो उन पेशेंट में जिनको हम महीने में या तीन महीने में 15 दिन पर मंथ ज्यादा पेन हो रहा है, या हर मतलब 15 दिन में सरदर्द बना ही रहता है, आधा महीना हमारे सरदर्द में ही निकल जाता है, चाहे वो हल्का है, धीरा है, तेज है, पर वो निकले जा रहा है, तो उन केसेस में हम प्रिवेंटिव या प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट देते हैं, विच आर इन द मेनी फॉर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट, जिसके थ्रू पेशेंट को जो हेडेक की फ्रिक्वेंसी और इंटेंसिटी, जो तेजी होती है, वो कम हो जाती है. एंड दे आर पेशेंट्स हुआ ट्रीटेड एंड 6-6 महीने या साल साल भर भी उनको कोई ऐसा अटैक नहीं आता है सरदर्द का, एंड दे आर डूइंग वेल इन देयर एक्टिविटीज ऑफ डेली रूटीन.
0: ओके. यानी बहुत सारी चीजें आपको अपने लाइफस्टाइल में बदलाव लाने पड़ेंगे जिससे कि आप कंट्रोल कर सकते हैं माइग्रेन को. लेकिन इसके अलावा मैं आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर मेघा, कि बहुत सारे बाम मार्केट में मिलते हैं या आइस पैक कई लोग सजेस्ट करते हैं, वो भी कंट्रोल करने में मदद करता है?
1: जब भी हमें हेडेक या माइग्रेन का अटैक होता है तो आइडियली कहा जाता है कि कमरे की लाइट जो होती है वो डिम रखनी होती है, या तेज नहीं होती है, या फिर बंद करके रखनी होती है. डार्क रूम प्रिवेंट द स्टिमुलेशन टू द आईज एज वेल एज टू आर नर्व्स, जिसकी वजह से हमारे हेडेक्स जो होते हैं वो कम हो जाते हैं. उसके अलावा यूज ऑफ आइस पैक ऑन द फोरहेड और ओवर द स्कैल्प एंड नेक पे हॉट पैक, देयर इज अ डिफरेंस. तो यहाँ से मसल रिलीव होती है नेक की, और हेडेक की मसल, जो मसल लूज हो गई है, जो मतलब नसें फैल रही हैं बिकॉज ऑफ पेन, उसको कंस्ट्रिक्शन मिलता है. तो दोनों का इस्तेमाल, आइस पैक का ओवर द फोरहेड एंड नेक पे हॉट पैक. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन विच हेल्प इन रिलीविंग द पेन. अदर देन दैट, कॉफी कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग एक्सेसिव कॉफी नहीं कि आप कॉफी ही लिए जा रहे हैं सिर्फ वन कप ऑफ कॉफी
0: ब्लैक कॉफी और नॉर्मल कॉफी
1: अब ब्लैक कॉफी विल हेल्प इन प्रिवेंटिंग द हेडेक और रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी जो तेजी है या बहुत तेज दर्द है उसको कम करती है तो ये सब चीजें जो होती हैं ये हमें मदद करती हैं हेडेक को कम करने में
0: जी क्या माइग्रेन को कभी खत्म किया जा सकता है
1: माइग्रेन को खत्म नहीं किया जा सकता इट इज नॉट अ रिवर्सिबल कंडीशन वी कैन ओनली डू द प्रिवेंटिव मेजर्स एंड अगर वो इतना सिम्टोमेटिक है देन वी नीड टू गेट द ट्रीटमेंट डन फ्रॉम द न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोफिजिशियन टू गेट द प्रॉपर ट्रीटमेंट फॉर द पेशेंट कि हमें कैसे कैसे अपने हेडेक्स को कंट्रोल करना है और कब हमें दवाइयाँ खानी है बहुत बार लोग तेज दर्द होने पे दवाई खाते हैं कि जब तक वो पीक पे हो जाता है तो वंस इट हैज रीच्ड इस पीक तो फिर वो टाइम लगाता है खत्म होने पे तो यूजुअली जब आपको पता है जो माइग्रेनर्स होते हैं दे नो कि उनको किस प्रकार का हेडेक है और कब शुरू हो गया है तो आपको इनिशियल पार्ट में ही दवाई खानी है अपना पेन किलर खाना है अगर आप उसको पीक होने पे दवाई खाएंगे तो इट विल टेक टाइम उतना ही टाइम लगेगा एंड दवाई का इफेक्ट भी कम आता है
0: क्या नॉर्मल जैसे सिर दर्द में डिस्प्रिन सबसे ज्यादा सजेस्ट की जाती है इनिशियल स्टेज पे वो भी खाई जा सकती
1: है जी डिस्प्रिन ब्रूफिन नेप्रोक्सिन ये सब दवाइयां होती हैं जो हम कॉमनली देते हैं अपने पेशेंट्स को टू कंट्रोल द पेन एंड उसके अलावा आजकल नेजल स्प्रेज भी आते हैं अगर जिन पेशेंट्स में कंट्रोल नहीं हो रहा डिस्पाइट टेकिंग द एनसेट्स मतलब कि डिस्प्रिन आइब्रोफिन या नेप्रोक्सिन तो दे कैन डू अ स्प्रे अपने नाक में स्प्रे डाल के उस अटैक को कम कर सकते हैं उसकी ड्यूरेशन और तेजी जो होती है उसको कम किया जा सकता है
0: लाइक इनहेलर्स वो भी कंट्रोल करने में मदद करेंगे
1: इनहेलर से थोड़ा डिफरेंट बट इट इज अ टाइप ऑफ स्प्रे
0: ओके जी बहुत सारी चीज़ें मार्केट में हैं आपके डॉक्टर आपको जो सजेस्ट करेंगे प्लीज़ उस चीज़ को फॉलो कीजिए और माइग्रेन एक बार शुरू हो जाता है तो लाइफ लॉन्ग चलता है बट आप इसको अगर कंट्रोल कर सकें अपने लाइफस्टाइल के चेंजेस से तो डेफिनेटली इसको कंट्रोल किया जा सकता है बहुत सारी बातें हमने कर ली हैं और बहुत सारी बातें करना चाह रहे हैं लेकिन वक्त बहुत कम है फिलहाल डॉक्टर मेघा वार्ष्णेय से लेते हैं इजाज़त थैंक यू सो मच डॉक्टर मेघा स्टूडियो में आने के लिए
1: थैंक यू
0: तो बहुत सारी बातों के बाद अब टाइम है आपसे इजाजत देने का फिर से होगी मुलाकात प्रोग्राम ऑल इज वेल में अगले हफ्ते एक नए एक्सपर्ट के साथ और करेंगे एक हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की खोज लेकिन अभी फिलहाल टेक केयर बाय बाय दिस इज दीक्षा साइनिंग ऑफ

0: उसको वीडियो बनाना या कोई ऑडियो बनाना, इस तरह से कवर करना, ये जरूरी होता है या वो ना करे तो चलेगा?
1: नहीं नहीं सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है. और ये क्वेश्चन जो ये बनाए गए हैं लॉ इसके ऊपर कि अगर कोई पुलिस सर्च करने जाती है किसी एक घर पे और उसमें सर्च में जो आर्टिकल्स निकलते हैं
0: जी,
1: उसकी पूरी ऑडियो या वीडियोग्राफी बनाई जाएगी.
0: ओके,
1: ये बहुत ज़रूरी है सर. वो इसलिए क्योंकि कहीं पुलिस कोई प्लांट खुद ना कर दे, खुद ना वहाँ पे लगा दे आर्टिकल्स की हाँ ये रिकवरी हुई है वहाँ से, तो उसकी एक ऑडियो या वीडियोग्राफी बनाई जाएगी कि हमने ये समाज

0: किसी भी तरह की वीडियो वो नहीं बनाते हैं तब क्या होना चाहिए?
1: उन्होंने फिर राइट का उल्लंघन किया है सर, क्योंकि प्रावधान हमें यही कहता है कि उनको बनाना है
0: जी,
1: और जरूर बनाना है, 100% बनाना है। अगर वो ऐसे करते हैं तो उन्होंने अपनी ड्यूटी से ब्रीच किया है अपना, तो राइट्स तो वॉलेट हो ही रहे ना पब्लिक का, तो क्योंकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ही ये प्रावधान दे रखा है, सेक्शन 105, तो ये प्रावधान दे रखा है पुलिस वालों को करना ही करना है सर्च एंड सीजर के टाइम पे, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ही प्रावधान दे रखा है ये।
0: जी
1: जी,
0: तो चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बता दी है शीला जी। अब देखिए, बातें बहुत सारी हो चुकी हैं लेकिन समय और ज्यादा नहीं है
1: जी,
0: इसलिए आखिर में मैं चाहता हूँ कि आपकी तरफ से सभी सुनने वालों के लिए क्या मैसेज है?
1: मैं तो यही कहूंगी सर सबसे कि अपने अधिकारों को जाने, अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो, जो सोता है वो खोता है। अगर आप सोए रहेंगे तो आपको रेमेडी नहीं मिलेगी कोर्ट में, उसके लिए आपको जागना पड़ेगा, न्यायालय का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, अपने अधिकारों को जानना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि आप ये कहें हमें तो अपने कानून के बारे में पता ही नहीं है, आप इंडिया में रहते हैं, और कोई अगर पर्सन बोले कि मुझे तो पता ही नहीं अपने कानून के बारे में, तो ये बात गलत है, इज नॉट एक्सक्यूजेबल। आप अपने अधिकारों को जाने, आजकल तो सबके पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल से हैं, लैपटॉप से हैं, आप उन पे भी अपनी क्यूरीज डाल के अपने क्वेश्चन, अपने आंसर सर्च कर सकते हैं। अपने अधिकारों को जाने और अपने अधिकारों के प्रति जागृत रहे, यही मेरा मैसेज है। धन्यवाद।
0: बिल्कुल शीला जी, आप आए और इतनी अच्छी जानकारियां सभी श्रोताओं को दी, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ।
1: धन्यवाद सर। कहना चाहूंगी कि रेडियो मानव रचनगा के आपने मुझे यहाँ बुलाया और रूबरू कराया ऑडियंस के साथ, थैंक यू सो मच सर
0: जी। तो दोस्तों, अब फहीम भी आपसे इजाजत चाहता है, लेकिन जाते जाते बस यही कहूंगा कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। आप जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक आप किसी भी अन्याय के खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाएंगे। अब मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा, अपना ख्याल रखना, नमस्ते, खुदा हाफिज।
1: शुक्रिया।

नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन मेडलिस्ट इन शूटिंग। आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

कई बार तुमने घूंघट भी खोल लिए, एक घूंघट के भीतर तुमने कोई ना पाया तो भी तुम्हें समझ नहीं आती, तब तुम दूसरा घूंघट खोलने में लग जाते हो। एक मुट्ठी झाग झाग सिद्ध हो गई तो मन कहे चला जाता है सारी ही झाग थोड़ी झाग होगी, एक घूंघट व्यर्थ हुआ दूसरे घूंघट में खोज लेंगे। ऐसा जन्म जन्मों से घूंघट उठाने का क्रम चलता है, किसी घूंघट में कभी किसी को नहीं पाया, सब घूंघट खाली थे। तुमने कभी किसी में किसी को पाया, पति में कुछ पाया, पत्नी में कुछ पाया, मित्र में कुछ पाया, सगे साथी में कुछ पाया, या सिर्फ घूंघट था? नहीं मिलता है, कोई नहीं मिलता है वहां, लेकिन मन की आशा कहती यहां नहीं मिला तो कहीं और मिल जाएगा। इस झरने में पानी सिद्ध नहीं हुआ फिर दूर और झरना दिखाई पड़ने लगता। तुम कब जागोगे इस सत्य से कि झरने तुम कल्पित करते हो, कहीं कोई नहीं है, तुम्हारे अतिरिक्त सब अयथार्थ है, तुम्हारे अतिरिक्त सब माया है। यमराज की दृष्टि से बचकर आगे बढ़ो। अगर जीवन को सचमुच पाना है तो मौत से, जहां जहां मौत हो वहां वहां जीवन नहीं है, इसको तुम समझ लो। जहां जहां परिवर्तन हो वहां शाश्वत नहीं है, और जहां जहां क्षणभंगुर हो वहां सनातन नहीं है, और जहां जहां चीजें बदलती हो वहां समय को मत गमाना, उसको खोजो जो कभी नहीं बदलता है। उस न बदलने को खोज लेने की कला का नाम धर्म है। एस धम्मो सनातनो। विषय रूपी फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उसी तरह उठा ले जाती है जिस तरह सोए हुए गांव को भरी हुई बाढ़, जैसे सोए हुए गांव में अचानक नदी में बाढ़ आ जाए और लोग सोए सोए ही बह जाते हैं, ऐसे ही विषय रूपी फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उठा ले जाती है। सोए ही सोए बाढ़ आ जाती है और जिंदगी विदा हो जाती है। तुम सपने ही देखते रहते हो और बाढ़ आ जाती है। सारी काम वासना स्वप्न देखने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। यह ऐस के बंदे सोते रहे फिर जागे भी तो क्या जागे, सूरज का उभरना याद रहा और दिन का ढलना भूल गए। एक तो जागते ही नहीं, सोए ही रह के बिता देते, और अगर कभी कोई सोचता भी है कि जाग गया तो सोचता ही है कि जाग गया, वो भी जागना जैसे सपने में ही जागना है। सूरज का उभरना याद रहा और दिन का ढलना भूल गए, तो लोग अपने जन्मदिन को याद रखते, मृत्यु दिन की कौन चर्चा करता है। लोग जीवन पर नजर रखते, मौत की बात ही करनी बेहूदी मालूम पड़ती। अगर किसी से पूछो कि कब मरोगे तो वो नाराज हो जाता, मरोगे के नहीं तो फिर तुम्हारा तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं, वो तुम्हें दुश्मन समझ लेगा। पूछा कुछ गलत न था, जो होने ही वाला था वही पूछा था, लेकिन मौत की लोग बात भी नहीं करना चाहते, बात से भी भय लगता है। फिर भी मौत तो है, उस तथ्य को इनकार न कर सकोगे। किसी भांति उस तथ्य को स्वीकार करो तो शायद इस जीवन से जागने की क्षमता आ जाए। जिसने भी मृत्यु को स्वीकार किया वो देखेगा मृत्यु कभी आती है ऐसा थोड़ी, रोज हम मर रहे हैं, अभी आती है, अभी आ रही है, अभी घट रही है, ऐसा थोड़ी कि कभी 70 साल के बाद घटेगी, रोज रोज घटती है, 70 साल में पूरी हो जाती। जन्म के साथ ही मौत का सिलसिला शुरू होता है, मरने के साथ पूरा होता है, लंबी प्रक्रिया है। मृत्यु कोई घटना नहीं है, प्रक्रिया है, पूरे जीवन पर फैली है। जैसे झील पर लहरें फैली हो ऐसे जीवन पर मौत फैली है। अगर तुम मौत को छिपाते हो, ढांकते हो, बचते हो तो तुम जीवन के सत्य को ना देख पाओगे। जिसे तुम जीवन कहते हो इस जीवन का सत्य तो मृत्यु है। सूरज का उभरना याद रहा और दिन का ढलना भूल गए। सूरज उग चुका है, ढलने में ज्यादा देर न लगेगी। जो उग चुका वो ढल ही चुका, जो उग गया है वो ढलने के मार्ग पर है। सुबह का सूरज सांझ का सूरज बनने की चेष्टा में संलग्न है,
सांझ दूर नहीं है अगर सुबह हो गई। जब सुबह ही हो गई तो सांझ कितनी दूर हो सकती है। जिसको तुम भर जवानी कहते हो वो केवल आधे दिन का पूरा हो जाना है, आधी सांझ का आ जाना है। जवानी आधी मौत है, लेकिन कौन याद रखता है? जो याद रख लेके वही शिष्य है। मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, जिंदगी भी जान लेकर जाएगी। मौत ही इंसान की दुश्मन नहीं, जिंदगी भी जान लेकर जाएगी। मौत को दुश्मन मत समझना, जिसे तुम जिंदगी कहते हो वो मौत ही है, वो भी जान लेकर जाएगी। फूलों को चुनने वाले मोहित मन वाले पुरुष को मृत्यु उसी तरह उठा ले जाती है जिस तरह सोए हुए गांव को बढ़ी हुई बाढ़। तू हविस में दुनिया की जिंदगी मिटा बैठा, भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी। तू हविस में दुनिया की जिंदगी मिटा बैठा, दुनिया को पाने की चेष्टा में वो जो जीवन था उसे तूने मिटा दिया, और दुनिया के पाने की चेष्टा को ही तूने जिंदगी समझी, वो जिंदगी ना थी। भूल हो गई गाफिल सोए हुए आदमी, भूल हो गई जिंदगी ही दुनिया थी। इसे थोड़ा समझ लो। जिसे तुम दुनिया कहते हो, तुम्हारे बाहर जो फैलाव है उसे जिंदगी मत समझ लेना। अगर उस बाहर की दुनिया को ही इकट्ठा करने में लगे रहे तो असली जिंदगी गंवा दोगे, पीछे पछताओगे, समय बीत जाएगा और रोओगे, फिर शायद कुछ कर भी ना सकोगे। अभी कुछ किया जा सकता है, मरते क्षण में शायद अधिकतम लोगों को यह समझ आती है। तू हविस में दुनिया की जिंदगी गंवा बैठा, मरते वक्त अधिक लोगों को यह ख्याल आना शुरू हो जाता है। भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी, लेकिन तब समय नहीं बचता। मरते मरते दिखाई पड़ना शुरू होता है कि महल जो बनाए, धन जो इकट्ठा किया, साम्राज्य जो फैलाए, भूल हो गई गाफिल जिंदगी ही दुनिया थी। भीतर की जिंदगी को जान लेते तो दुनिया को पा लेते, बाहर की दुनिया को पाने में लग गए, भीतर की जिंदगी गंवा दी। बाहर और भीतर में उतना ही फर्क है जितना सत्य में और स्वप्न में। बाहर है स्वप्न का जाल, भीतर है साक्षी का निवास। जो दिखाई पड़ता है उस पर ध्यान मत दो, जो देखता है उस पर ध्यान दो। जो भोगा जाता है उस पर ध्यान मत दो, जो भोगता है उस पर ध्यान दो। आंख की फिक्र मत करो, आंख के पीछे जो खड़ा देखता है उसकी फिक्र करो। कान की फिक्र मत करो, कान के पीछे खड़ा जो सुनता है उसकी फिक्र करो। न जन्म की चिंता करो न मृत्यु की, चिंता करो उसकी जो जन्म में आता है और मृत्यु में जाता है, जो जन्म के भी पहले है और मृत्यु के भी बाद है। मरते क्षण में ये याद भी आए तो फिर क्या करोगे? जिनको पहले याद आ जाती है वे कुछ कर लेते हैं। हिचकियों पर हो रही है, हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म, झटके देकर तार तोड़े जा रहे। मरते क्षण में तो फिर ऐसा ही लगेगा कि जिसको जिंदगी समझी। हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म, वो सारे स्वप्न, वे सारे गीत, वो सारा संगीत हिचकियों में बदल जाता है। हिचकियां ही हाथ में रह जाती है। हिचकियों पर हो रहा है जिंदगी का राग खत्म, झटके देकर तार तोड़े जा रहे। इसके पहले कि सब कुछ हिचकियों में बदल जाए, और इसके पहले कि तुम्हारा साज तोड़ा जाए, भीतर के गीत को गा लो। इसके पहले कि मौत शरीर को छीने, तुम उसे जान लो जिसे मौत छीन ना सकेगी। इसके पहले कि बाहर का जगत खो जाए, तुम भीतर के जगत में पैर जमा लो। अन्यथा तुम सोए हुए गांव की तरह हो, बड़ी हुई नदी की बाढ़।
तुम्हें सोया सोया बहा ले जाएगी। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को हानि पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है, वैसे ही मुनि गांव में भिक्षाटन करे। जीवन के गांव की बात है। बुद्ध कह रहे हैं जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को हानि पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है, ऐसे ही तुम इस जिंदगी में रहो। जीवन जो रस दे सके ले लो, मगर रस केवल वे ही ले पाते हैं जो जागृत है। शेष तो उन भौरों की तरह है जो रस लेने में इस तरह डूब जाते कि उड़ना ही भूल जाते। सांझ जब कमल की पखरियां बंद होने लगती तब वे उसी में बंद हो जाते, उनके लिए कमल भी कारागृह हो जाते। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को बिना हानि पहुंचाए रस लेके चुपचाप चल देता है, ऐसे जिंदगी को बिना कोई हानि पहुंचाए, यही अहिंसा का सूत्र है। अहिंसा का सूत्र इतना ही है कि रस लेने के तुम हकदार हो, लेकिन किसी की हानि पहुंचाने के नहीं। फूल को तोड़ के भी भोगा जा सकता है, वो भी कोई भोगना हुआ। भौरा आता है फूल पर चुपचाप गुनगुनाता है गीत, रिझा लेता है फूल को, रस ले लेता, उड़ जाता, तोड़ता नहीं, मिटाता नहीं। भौरे की तरह मुक्त, भ्रमर की तरह मुक्त। बुद्ध कहते हैं जीवन के गांव में तुम जियो जरूर, लेकिन आबद्ध मत हो जाना, बंद मत हो जाना। हमारी हालत तो बड़ी उल्टी है, इससे ठीक उल्टी। बुद्ध कहते हैं दुनिया में रहना, लेकिन दुनिया के मत हो जाना। बुद्ध कहते हैं दुनिया में रहना, लेकिन हमारी हालत से ठीक उल्टी है। बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम है, बाद मरने के भी दिल लाखों तरह के गम है। हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में है। मर भी जाएं हम तो भी गम नहीं मरते, कब्र में भी तुम पड़े रहोगे। हम नहीं दुनिया में, लेकिन एक दुनिया हम में, तब भी तुम सपने देखोगे, तब भी तुम उसी दुनिया के सपने देखोगे जिससे तुमने कुछ कभी पाया नहीं। तुम्हारी आंखें फिर भी उसी अंधेरे में खोई रहेंगी जहां कभी रोशनी की किरण न मिली। तो एक तो है ढंग, या उसके भीतर से नहीं हटती, और एक है सन्यासी का ढंग, वो जीता भी है तो दुनिया उसके भीतर नहीं होती। ये जीवन के विराट नगर के संबंध में भी सही है, और यही बुद्ध ने अपने भिक्षुओं के लिए कहा कि गांव गांव जब तुम भीख भी मांगने जाओ, भिक्षाटन भी करो, तो चुपचाप मांग लेना, ऐसे ही जैसे भौरा फूलों से मांग लेता है, और विदा हो जाना। ले लेना जो मिलता हो, धन्यवाद दे देना जहां से मिले, अनुग्रह पूर्वक स्वीकार कर लेना। न मिले तो दुखी मत होना, क्योंकि मिलना चाहिए धन्यभाग, न मिले संतोष। और जो न मिलने पर संतुष्ट है उसे मिल ही जाता है, लेकिन हमारी स्थिति ऐसी कि मिल जाने पर भी संतोष नहीं, तो मिल के भी नहीं मिल पाता, हम दरिद्र के दरिद्र ही रह जाते हैं। जीवन से बहुत कुछ पाया जा सकता है, सपने से भी सीखा जा सकता है, और मृग मरीचिकाएं भी बुद्धत्व का आधार बन जाती, भ्रम से भी जागने की कला उपलब्ध हो जाती। रस को लेकर चल देता है, वैसे ही मुनि गांव में भिक्षाटन करे। न तो संसार का सवाल है, न संसार को छोड़ने का सवाल है, क्योंकि जो तुम्हारा है ही नहीं उसे तुम छोड़ोगे कैसे। इतने भर जानने की बात है कि हम यहाँ मेहमान से ज्यादा नहीं। जब तुम किसी के घर मेहमान होते हो, जाते वक्त तुम ऐसा थोड़ी कहते हो कि अब सारा घर तुम्हारे लिए छोड़े जाते, त्याग किए जाते। मेहमान का यहाँ कुछ है ही नहीं, घर में ठहरने का सौभाग्य मिल गया, धन्यवाद। अपना कुछ है नहीं, छोड़ेंगे क्या। इसलिए त्यागी वही है जिसने ये जान लिया कि हमारा कुछ भी नहीं, वह नहीं जिसने छोड़ा, क्योंकि जिसने छोड़ा उसे तो अभी भी ख्याल है कि अपना था छोड़ा। अपना हो तो ही छोड़ा जा सकता है, अपना हो ही ना तो छोड़ना कैसा।
इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ छोड़ने की भ्रांति में मत पड़ना, क्योंकि वो पकड़ने की ही भ्रांति का हिस्सा है। तुम तो पकड़ने की भ्रांति को ही समझ लेना, अपना कुछ भी नहीं। अभी नहीं थे तुम, अभी हो, अभी फिर नहीं हो जाओगे। इस संसार को भीतर घर मत बनाने देना। तुम संसार में रहना, लेकिन संसार तुम में न रह पाए। गुजरना पानी से, लेकिन पैर भीगे नहीं। जीना, लेकिन भंवरे की तरह किसी को हानि न पहुंचे। जैसे भ्रमर फूल के वर्ण और गंध को हानि पहुंचाए बिना रस को लेकर चल देता है। क्या रस है, किस रस की बात कर रहे हैं बुद्ध? समझा दूं, क्योंकि डर है कि तुम कुछ गलत ना समझ लो। बुद्ध किस रस की बात कर रहे हैं, किस भंवरे की बात कर रहे हैं? तुम जिन्हें सुख कहते हो उनकी बात नहीं कर, तो वही रस है, क्योंकि जिसने वो जान लिया उसके लिए महारस के द्वार खुल गए। तो जीवन के हर फूल से और जीवन की हर घटना से, जन्म हो की मृत्यु, और जीवन की हर प्रक्रिया से तुम एक ही रस को खोजते रहना और चुनते रहना। हर अवस्था तुम्हें जगाने का कारण बन जाए, निमित्त बन जाए। घरों की गृहस्थी, बाजारों की दुकान, कोई भी चीज तुम्हें सुनाने का बहाना न बने, जगाने का बहाना बन जाए। तो तुमने रस ले लिया। मरने के पहले अगर तुमने इतना जान लिया उनको, महाजीवन को जान लिया, तो तुमने रस ले लिया। तो तुम यूं ही न भटके, तो तुमने ऐसी ही गर्द गुबार न खाई, तो रास्ते पे तुम चले ही नहीं, पहुंचे भी तब तुम अचानक हैरान होगे, चकित होगे कि जिसे तुम खोजते फिरते थे वो तुम्हारे भीतर था। वो परमात्मा का राज तुम्हारे हृदय के ही राज्य का दूसरा नाम है। मोक्ष तुम्हारे भीतर छिपी स्वतंत्रता का ही नाम है। और क्या है, अहंकार का टिमटिमाता दिया बुझ जाता है तो ऐसा नहीं कि अंधकार हो जाता है। उस टिमटिमाते दिए के बुझते ही महासूर्यों का प्रकाश तुम्हें उपलब्ध हो जाता है। रविन्द्रनाथ ने लिखा है कि जब वे गीतांजलि लिख रहे थे तो पद्मा नदी पर एक बजरे में निवास करते थे। रात गीत की धुन में खोए कोई गीत उतर रहा था, उतरे चला जा रहा था। वो एक टिमटिमाती मोमबत्ती को जला के बजरे में देर तक गीत की कड़ियों को लिखते रहे। कोई आधी रात फूक मार के मोमबत्ती बुझाई, हैरान हो, पूरे चांद ही गीत था। जैसे ही मोमबत्ती बुझी कि बजरे की उस छोटी सी कुर्सी में सब तरफ से सूरज, सब तरफ से चांद की किरणें भीतर आ गई। रंध्र रंध्र से वो छोटी सी मोमबत्ती की रोशनी चांद की किरणों को बाहर रोके हुई थी। तुमने कभी ख्याल किया, कमरे में दिया जलता हो तो चांद भीतर नहीं आता? फिर दिया फूंक मार के बुझा दिया, चांद बरस पड़ा भीतर, बाढ़ की तरह सब तरफ से आ गया। रविन्द्रनाथ उस रात नाचे और उन्होंने अपनी डायरी में लिखा कि आज एक अपूर्व अनुभव हुआ, कहीं ऐसा ही तो नहीं, कहीं हम निर्वाण है। इधर तुम बुझे, उधर सब तरफ से परमात्मा या जो भी नाम दो भीतर प्रविष्ट हो जाता है। तो एक तो जीवन को जीने का ढंग है जैसा तुम जी रहे हो, एक बुद्धों का ढंग भी है। चुनाव तुम्हारे हाथ में, तुम बुद्धों की भांति भी जी सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं रहा सिवाय तुम्हारे। और तुम दीनहीन भिखमंगों की भांति भी जी सकते हो जैसा तुम जी रहे हो, कोई तुम्हें जबरदस्ती जिला नहीं रहा। तुमने ही न मालूम किस बेहोशी और नासमझी में इस तरह की जीवन निचानों जिनमें तुम खुद ही कैद हो गए हो। मैं एक घर में मेहमान था, सामने एक मकान बन रहा था और एक छोटा लड़का वहां मकान के सामने पड़ी हुई रेत और ईंटों के बीच में खेल रहा था। उसने धीरे धीरे, मैं देखता रहा बाहर बैठा हुआ, मैं देख रहा था, उसने धीरे धीरे अपने चारों तरफ ईंटें लगा ली और ईंटों की जमाता गया ऊपर। फिर वो घबराया जब उसके गले तक ईंटें आ गई, क्योंकि वो खुद कैद हो गया। तब वो चिल्लाया कि बचाओ, मैं उसे देख रहा था।
और मुझे लगा यही आदमी की अवस्था है, ढंग से रखी है उसी ढंग से गिरा दो। तुमने ही रखी है, तुम ही उठा सकते हो। कारागृह तुम्हारा ही बनाया हुआ है, किसी और ने तुम्हें कारागृह में बंद नहीं किया है, खेल खेल में बना लिया है। खेल खेल में ही आदमी बंद हो जाता है, जंजीरों में उलझ जाता है। चलने को चल रहा हूं पर इसकी खबर नहीं, मैं हूं सफर में या मेरी मंजिल सफर में। अब ऐसे मत चलो, अब जरा जाग के चलना हो जाए, अब जरा होश से चलो। महाकाश्यप उस दिन सुबह खिलखिला के न हंसा होता तो भी क्या बुद्ध उसे मौन के प्रतीक फूल को देते। प्रश्न पूछते समय थोड़ा सोचा भी करे कि प्रश्न का सार क्या है। यदि ऐसा हुआ होता, यदि वैसा हुआ होता, इन सारी बातों में क्यों व्यर्थ समय को व्यतीत करते हो। महाकाश्यप न हंसा होता तो बुद्ध फूल देते या न देते, इससे तुम्हें क्या होगा। महाकाश्यप ना भी हुआ हो, हुआ हो, कहानी सिर्फ कहानी हो, तो भी तुम्हें क्या होगा। कुछ अपनी पूछो, कुछ ऐसी बात पूछो जो तुम्हारे काम पड़ जाए। प्रश्न ऐसे न हो कि सिर्फ मस्तिष्क की खुजलाहट हो, क्योंकि खुजलाहट का गुण है जितना खुजाओ बढ़ती चली जाती है। पूछने के लिए ही मत पूछो, अगर न हो प्रश्न तो पूछो ही मत, चुप बैठेंगे। शायद तुम्हारे बीच कोई महाकाश्यप हंसते। हंसना न हंसना महत्वपूर्ण नहीं है, बाहर जो घटता है उसका कोई मूल्य बुद्ध पुरुषों के लिए नहीं। फूल तो महाकाश्यप को दिया ही होता, वो अकेला ही था वहां जो बुद्ध के मौन को समझ सकता था। हर हालत में फूल उसके पास गया होता, बुद्ध न देते तो भी गया होता। छोड़ दो फिक्र, हंसता नहीं, बुद्ध ना भी देते फूल तो भी मैं कहता हूँ उसी के पास गया होता, फूल खुद चला गया होता, कोई बुद्ध को देने की जरूरत भी न थी। घटना को समझने की कोशिश करो, ब्यौरे की व्यर्थ बकवास में मत पड़ो। घटना सीधी है कि बुद्ध चुप रहे, उस चुप्पी को कोई और न समझ पाया। चुप्पी को समझने के लिए तुम्हें भी चुप होना जरूरी है। जिस भाषा को समझना हो उस भाषा को जानना जरूरी है। मैं हिंदी बोल रहा हूँ तो हिंदी जानना जरूरी है, मैं चीनी बोलूँ तो चीनी जानना जरूरी है, तभी समझ सकोगे। बुद्ध उस दिन मौन बोले, मौन की भाषा बोले, जो मौन का रस जानता था वही समझा, जो मौन का रस नहीं जानते थे उन्होंने उस मौन को भी अपने चिंतन का व्यापार बना लिया। वो सोचने लगे बुद्ध मौन क्यों बैठे। अभागे लोग जब बुद्ध मौन थे तब चुप हो गए होते तो फूल उन्हें भी मिल सकता था, लेकिन वे सोचने लगे कि बुद्ध मौन क्यों बैठे, कि बुद्ध हाथ में फूल क्यों लिए। जिसने सोचा उसने गंवाया। बुद्धों के पास सोचने से संबंध नहीं जुड़ता, बुद्धों के पास तो न सोचने की कला आनी चाहिए। महाकाश्यप चुप रहा, उसने बस भर आंख देखा, उसने सोचा नहीं कौन फिक्र करे। इतना अप्रतिम सौंदर्य उस दिन प्रकट हुआ था, ऐसा सूरज उगा था जैसा कभी कभी सदियों में उगता है। बुद्ध उस दिन सब द्वार दरवाजे अपने मंदिर के खोलकर बैठे थे, निमंत्रण दिया था कि जिसे भी आना हो आ जाए। परमात्मा द्वार पर आके खड़ा था, दस्तक दे रहा था। तुम सोचने लगे, तुम विचार करने लगे, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्यों बुद्ध चुप बैठे हैं, पहले क्यों कभी नहीं बैठे। विचारक चूक गए,
महाकाश्यप कोई विचार रखना था, वो सिर्फ देखता रहा बुद्ध को, जैसे बुद्ध फूल को देखते रहे ऐसा महाकाश्यप बुद्ध को देखता रहा। वही तो इशारा था कि जैसे मैं देख रहा हूँ फूल को मात्र दृष्टा हूँ, ऐसे ही तुम भी दृष्टा हो जाओ। आज हो चुकी बहुत बातें दर्शन की, अब दृष्टा हो जाओ। दर्शन की बात कब तक चला रखोगे? हो चुकी चर्चा भोजन की, अब भोजन करो, अब स्वाद लो। बुद्ध ने थाली सजा दी थी अपनी, तुम सोचने लगे भोजन के संबंध में। बुद्ध भोजन रखे सामने बैठे थे, जैसे बुद्ध फूल को देख रहे थे वैसा ही महाकाश्यप बुद्ध के फूल को देखने लगा। बुद्ध ने एक फूल देखा, महाकाश्यप ने दो फूल देखे, दो फूलों को एक साथ देखा, उन दोनों फूलों का तारतम्य देखा, संगीत देखा, लयबद्धता देखी, एक अपूर्व छंद का उसे अनुभव होने लगा। रुकता भी महाकाश्यप कैसे बिना हंसे? क्यों हंसा महाकाश्यप? हंसा लोगों पर जो कि सोच में पड़ गए, मंदिर सामने खड़ा है और वो मंदिर की खोज कर रहे हैं। सूरज उग चुका है, वो आंख बंद किए प्रकाश की चर्चा में लीन है। महाकाश्यप हंसा लोगों की मूर्ता पर। हंसा कहना ठीक नहीं, हंसी निकल गई, कुछ किया नहीं हंसने में, और रुक न सका, घट गया, फूट पड़ी हंसी। देख के सारी न समझी, हजारों लोग मौजूद थे, चूके जा रहे इस मूर्ता पर हंसा है, और इस बात पर भी हंसा कि बुद्ध ने भी खूब खेल खेला, जो नहीं कहा जा सकता वो भी कह दिया, जो नहीं बताया जा सकता उसको भी बता दिया, जिसको जतलाने में कभी अंगुलियां समर्थ नहीं हुई उस तरफ भी इशारा कर दिया। उपस्थित उस दिन मात हो गए, जो नहीं कहा जा सकता था उसे कृत्य बना दिया, वक्तव्य दे दिया उसका संपूर्ण जीवन से। इसलिए उस दिन के बाद जैन परंपरा में जब भी गुरु प्रश्न पूछता है तो शिष्य को उत्तर नहीं देना होता, कोई कृत्य करना होता है जिससे वक्तव्य मिल जाए, कोई कृत्य, ऐसा कृत्य जिसमें शिष्य संपूर्ण रूप से डूब जाए। महाकाश्यप हंसा ऐसा नहीं, महाकाश्यप हंसी हो गया। पीछे कोई बचा नहीं जो हंस रहा था, कोई पीछे खड़ा नहीं था जो हंस रहा था, महाकाश्यप एक खिलखिलाहट होकर बिखर गया उस संगत पर। जैन फकीर प्रश्न पूछते, एक जैन फकीर हुआ बैठा था, शिष्य बैठे थे,

बर्तन में पानी रखा था। उसने कहा कि सुनो, बिना कुछ कहे बताओ कि ये क्या है, ये बर्तन और ये पानी, बिना कुछ कहे कोई वक्तव्य दो। अर्थात कृत्य से घोषित करो, जैसा महाकाश्यप ने किया था खिलखिलाकर। और जब कृत्य से महाकाश्यप ने घोषित किया तो कृत्य से बुद्ध ने उत्तर भी दिया फूल देकर। आज मैं भी तुम्हें फूल देने को उत्सुक हूं। शिष्य देखने लगे हाथ में कोई फूल तो नहीं था, सोचने लगे कि ये बात तो और उलझन की हो गई। कम से कम बुद्ध हाथ में फूल तो लिए थे, इस आदमी के हाथ में कोई फूल नहीं। वो फूल के संबंध में सोचने लगे और उन्होंने लाख सोचा कि इस पानी भरे बर्तन के संबंध में क्या कहो, बिना कहे कैसे वक्तव्य दो। और तभी भोजन का समय करीब आ रहा था। रसोईया, जो भिक्षु, जो सन्यासी रसोई का काम करता था, वो भीतर आया। उसने ये उदासी चिंतन से तने हुए लोग देखे, उसने पूछा मामला क्या है। गुरु ने कहा एक सवाल है, इस बर्तन जल भरे बर्तन के संबंध में वक्तव्य देना है। कोई वक्तव्य जो इसकी पूरी के पूरे रहस्य को प्रकट कर दे, शब्द का उपयोग नहीं करना है। और जो ये करेगा वही फूल में देने को तैयार हूं जो बुद्ध ने दिया था। लेकिन उस रसोई ने गुरु के हाथ की तरफ देखा ही नहीं कि फूल वहां है या नहीं। गुरु फूल है, अब इसमें फूल क्या देखना। उठा, उसने एक लात मार दी उस बर्तन में, पानी लुढ़क के सब तरफ बह गया। और वो बोला कि अब उठो, हो गई बकवास बहुत, भोजन का समय हो गया। कहते हैं गुरु ने उसके चरण छू लिए, दे दिया फूल, वक्तव्य उसने प्रकट कर दिया। अस्तित्व को तो ऐसे ही बिखेर के बताया जाता है, अब और क्या कहने को रहा। उल्टा दिया पात्र, जल बिखर गया सब तरफ। ऐसे ही उस दिन महाकाश्यप ने भी उल्टा दिया था अपना पात्र, खिलखिलाहट बिखर गई थी सब तरफ। ऐसी फिर हजारों घटनाएं हैं जैन परंपरा में। एक घटना को दोबारा नहीं दोहरा सकते, याद रखना, क्योंकि दोहराने का तो मतलब होगा सोच के। इसलिए हर घटना अनूठी है और आखिरी, फिर तुम उसे पुनरुक्त नहीं कर सकते। अगर मैं आज फूल लेके आ जाऊं तो जो हंसेगा उसको घर नहीं मिलेगा। अगर आज मैं बर्तन में पानी रख के बैठ जाऊं और तुमसे पूछूं तो जो लात मार के लुड़काएगा उसको घर नहीं मिलेगा। वो तो विचार हो गया। अब तो महाकाश्यप की कहानी पता है, हजारों घटनाएं, लेकिन हर घटना अनूठी है और उसकी पुनरुक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि पुनरुक्ति यानी विचार। कुछ कहो पूरे अस्तित्व से और कुछ कहो इस ढंग से जैसा कभी ना कहा गया हो, तो फिर मन को जगह नहीं बचती। मन तो अनुकरण करता है, दोहराता है, यंत्रवत है। मन के पास कोई मौलिक सूझ नहीं होती। एक दूसरे दिन फकीर का एक शिष्य बहुत दिन से चिंता में रखे, गुरु ने कोई सवाल दिया है जो हल नहीं होता। जब सब तरह के उपाय कर चुका तो उसने प्रधान शिष्य को पूछा कि तुम तो स्वीकार हो गए हो, तुम तो कुछ कुंजी दो, हम परेशान हुए जा रहे हैं, वर्षों बीत गए, कुछ हल नहीं होता, कोई राह नहीं मिलती। और जब भी जाते हैं हम उत्तर भी नहीं दे पाते। गुरु कहता बस बकवास बंद, अभी हम बोले भी नहीं, अभी तो हद हो गई, ऐसे तो हम कभी भी जीत ना पाएंगे। कम से कम बोलने तो दो, हम कुछ कहें फिर तुम कहो गलत और सही। हम बोलते ही नहीं और गलत हो जाता है, तो अब तो सही होने का कोई उपाय ना रहा है। गुरु नाराज है। शिष्य हंसने लगा। प्रधान शिष्य का नाराज नहीं, क्योंकि जब तुम विचार करते हुए जाते हो तो चेहरे का ढंग ही और होता है, जब तुम निर्विचार में जाते हो तो चेहरे का ढंग ही और होता है। सोचो थोड़ा, जब तुम विचार से भरे होते हो तो सारे चेहरे पर तनाव होता, आंख में माथे पर बल होते, जब तुम निर्विचार में होते हो सब बल खो जाते हैं, सब तनाव खो जाता है। जब तुम निर्विचार में होते हो तब तुम्हारे चारों तरफ ऐसी शांति झरती है
अज्ञानी भी पहचान ले तो गुरु ने पहचाने। वो तुम्हें दरवाजे के भीतर घुसने देता है, ये भी उसकी करुणा। उस प्रधान शिष्य ने कहा कि मेरी तुम्हें पता नहीं, दरवाजे के बाहर ही रहता था, वो कहता था लौट जा, फिजूल की बकवास लेके मत आ। अभी उसने मुझे देखा भी नहीं था, लेकिन जैसे मेरी छाया मुझसे पहले पहुंच जाती, जैसे मेरा वातावरण, मैं दरवाजे पर होता और उसे छू लेता, जैसे कोई गंध उसे खबर देती थी। तो इस नए शिष्य ने पूछा, फिर तुमने कैसे उसकी अनुकंपा को पाया, उसके प्रसाद को पाया? उसने कहा वो तो मैं कभी ना पा सका, जब मैं मर ही गया तब मिला। उसने कहा भले मानुष पहले क्यों ना बताया, यही हम भी करेंगे। अब कहीं कोई ये कर सकता है? दूसरे दिन वो गया, जैसे ही गुरु ने उसकी तरफ देखा, इसके पहले कि गुरु कहे कि नहीं बकवास बंद, वो भड़ाम से गिर पड़ा, हाथ बंद कर दी, हाथ फैला दिए, जैसे मर गया। गुरु ने कहा बहुत खूब, बिल्कुल ठीक ठीक किया। प्रश्न का क्या हुआ? उस शिष्य ने अब मजबूरी एक आंख खोली और कहा कि प्रश्न तो अभी हल नहीं हुआ। तो गुरु ने कहा ना समझ, मुर्दे बोला नहीं करते और न मुर्दे ऐसे आंख खोलते, उठ भाग यहां से और किसी दूसरे से उत्तर मत पूछना। पूछे उत्तरों का क्या मूल्य है? वो तुम्हारा होना चाहिए, तुम्हारे अंतरतम से आना चाहिए, तुम उसमें मौजूद होने चाहिए। वो तुम्हारा गीत हो, वो तुम्हारा नाच हो, उसमें तुम पूरे लीन हो जाओ, वो जीवन हो कि मौत, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महाकाश्यप उस दिन हंसा, कहना ठीक नहीं हंसा, हंसी फैल गई। देखते ये सारी दशा, बुद्ध का सामने होना और लोगों का अंधे बने रहना, सूरज का निकल आना और अंधेरे का न मिटना, देखते हंसा। ज्ञान बरसता हो और लोगों के घड़े चिकने हो और जल उन तक पड़ता ही न हो, ये देखते हंसा। हंसता या न हंसता, भूल उसे मिलना था। हंसी न हंसी तो संयोगी थी। बुद्ध ने फूल हर हालत दिया होता, हंसने की वजह से नहीं दिया, ध्यान रखना नहीं तो फिर भूल हो जाएगी। यही तो भूल है मन की। तब तुम सोचो कि हंसने की वजह से दिया, तो अगर अब दोबारा कभी ऐसा मौका हमें मिलेगा तो हम हंस देंगे, वहीं तुम चूक जाओगे। हंसने की वजह से नहीं दिया, हंसी के पीछे जो मौन था, हंसी के पीछे विचार भी हो सकता तब व्यर्थ हो गई। हंसी के पीछे जो मौन था, उस खिलखिलाहट के फूलों के पीछे जो परम शांति थी, वो हंसी निर्वाण का फूल थी। न हंसता तो बुद्ध उठ के गए होते, हंसा तो बुद्ध ने उसे बुला भी लिया, न हंसता तो बुद्ध खुद उठ के गए होते, खुद उसकी झोली में उड़ेल दिया होता। लेकिन इस तरह के प्रश्न तुम्हारे मन में उठते क्यों? तुम्हारे जीवन की समस्याएं हल हो गई कि तुम महाकाश्यप की चिंता में पड़े हो? तुम्हारा जीवन समाधान को उपलब्ध हो गया कि तुम इस तरह के बौद्धिक प्रश्न उठाते हो? मत गमाओ समय को इस भांति, अन्यथा कोई महाकाश्यप तुम पर भी हंसेगा, तुम्हारी मूर्ता पर भी हंसेगा। यहां मैं तुम्हारे सामने मौजूद हूं, कुछ हो सकता है। जब मैं मौजूद नहीं रहूंगा तब तुम रोओगे, अगर अभी न हंसे तो तब तुम रोओगे। इस मौजूदगी का उपयोग कर लो, इस मौजूदगी को पी लो, इस मौजूदगी को तुम्हारे रग रेशे में उतर जाने दो। व्यर्थ के ऊहापोह में मत पड़ो। मदरसे तक ही थी बहस आराइयां, पाठशाला तक तर्क तर्क जाल, प्रश्नों प्रश्नों के विस्तार। मदरसे तक ही थी बहस आराइयां, चुप लगी जब बात की तह पा गए। तो जो मैं कहता हूं उसको तुम तर्क मत बनाओ, अन्यथा तुम चूके। तब तुम किसी दिन पछताओगे कि इतने करीब थे और चूक गए।
कभी कभी ऐसा हुआ है कि सोचने वालों ने गमा दिया है और न सोचने वालों ने पा लिया है। कभी कभी क्या हमेशा ही ऐसा हुआ है? जो मैं कह रहा हूं वो इसीलिए कह रहा हूं ताकि चुप लग जाए और तुम बात की तह पा जाओ। तुम बात में से बात निकाल लेते हो, बात की तह नहीं पाते। एक बात से तुम दस दूसरी बातों पर निकल जाते हो। मैं करता हूँ इशारा चांद की तरफ, तुम उंगली पकड़ लेते हो। तुम उंगली के संबंध में पूछने लगते हो, तुम चांद की बात ही भूल जाते हो। कहीं ऐसा न हो कि किसी दिन तुम्हें कहना पड़े, थी ना आजादे फना किस्ती ए दिल ए ना खुदा, मौज तूफान से बची तो नजरे साहिल हो गई। किसी तरह तूफान से बच के आ भी गए तो किनारे से टकरा गए। थी ना आजादे फना किस्ती ए दिल ए ना खुदा, मौज तूफान से बची तो नजरे साहिल हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि हम मेरे किनारे पे आके भी डूब जाओ। कोई एजाजे सफर था या फरेबे चश्मे शौक, सामने आकर नेहा आंखों से मंजिल हो गई। कहीं ऐसा ना हो कि मंजिल सामने आ गई हो और फिर भी तुम चूक जाओ। उस दिन बुद्ध के सामने बैठे लोग चूक गए। सामने आकर नेहा आंखों से मंजिल हो गई, आ गई थी सामने मंजिल, लेकिन जिसे पहुंचना है अगर वही तैयार न हो तो मंजिल भी क्या करे। सामने भी आ जाए तो भी तुम चूक जाओगे, क्योंकि सवाल मंजिल का नहीं तुम्हारा है। व्यर्थ की बातों में मत पड़ो, और यदि ऐसा होता तो कैसा होता ये तो पूछो ही मत। इसकी तुम्हें व्यर्थना नहीं दिखाई पड़ती कि यदि रावण सीता को न चुराता तो रामायण का क्या होता? अब इसका कौन उत्तर दे, इसका कौन उत्तर दे, और उत्तर का क्या अर्थ है? जो हो गया हो गया, उससे अन्यथा नहीं हो सकता था। अब तुम उसमें से और व्यर्थ की बातें मत निकालो, नहीं तुम सोचते ही रहोगे। प्रत्येक पल सोचने में गवाया बड़ा महंगा है, क्योंकि उसी पल में सब कुछ उपलब्ध हो सकता था। दूसरा प्रश्न, बुद्ध के देह में जीवित रहते उनका भिक्षु संघ एकता में रहा, लेकिन बुद्ध के देह विसर्जन के बाद जिस जैसे समय बीतता गया बुद्ध धर्म अनेक शाखाओं एवं प्रशाखाओं में बटने लगा। अज्ञानी संप्रदाय बनाते हैं, लेकिन बुद्ध के ज्ञानी शिष्य भी अनेक विभिन्न एवं विपरीत संप्रदायों में बट गए। कृपया इस घटना पर कुछ प्रकाश डालें। अज्ञानी संप्रदाय बनाते हैं, ज्ञानी भी संप्रदाय बनाते हैं, लेकिन अज्ञानी का संप्रदाय कारागृह हो जाता है और ज्ञानी का संप्रदाय मुक्ति की एक राह। संप्रदाय का अर्थ होता है मार्ग, संप्रदाय का अर्थ होता है जिससे पहुंचा जा सकता है। ज्ञानी मार्ग से पहुंचते हैं, मार्ग बनाते भी, अज्ञानी मार्ग से जकड़ जाते हैं, पहुंचते नहीं। मार्ग बोझिल हो जाता है, छाती पर पत्थर की तरह बैठ जाता है। ज्ञानी मार्ग का उपयोग कर लेते हैं, अज्ञानी मार्ग से ही बंध जाते हैं। संप्रदाय में कुछ बुराई नहीं अगर पहुंचाता हो। संप्रदाय शब्द बड़ा बहुमूल्य है, जिससे पहुंचा जाता है वही संप्रदाय है, लेकिन बड़ा गंदा हो गया। लेकिन गंदा हो जाने का कारण संप्रदाय नहीं है। अब कोई नाव को सिर पर रख के ढोए, इसमें नाव का क्या कसूर है? क्या तुम नाव के दुश्मन हो जाओ कि लोग नाव को सिर पर रख के ढो रहे? मूर्ति तो ढोएंगे ही, नाव ना होती कुछ और ढोते। मंदिर मस्जिद न होते लड़ने को तो किसी और बात से लड़ते, कुछ और कारण खोज लेते। जिन्हें जाना नहीं वे मार्ग के संबंध में विवाद करने लगते, जिन्हें जाना है वे मार्ग का उपयोग

तो काम पड़ जाता है जहर भी जीवन को बचाने के, तुम्हारी औषधि भी जीवन की जानलेवा हो जाती है। असली सवाल तुम्हारा है। बुद्ध के जाने के बाद धर्म शाखा प्रशाखाओं में बटा, बटना ही चाहिए। जब वृक्ष बड़ा होगा तो पेड़ ही पेड़ थोड़ी रह जाएगा, शाखा प्रशाखाओं में बटेगा। पेड़ ही पेड़ बड़ी फूट मालूम पड़ेगी, उस वृक्ष के नीचे छाया किसको मिलेगी जिसमें पेड़ ही पेड़ हो। उससे तो खजूर का वृक्ष भी बेहतर, कुछ तो छाया थोड़ी बहुत कहीं पड़ती होगी। वृक्ष तो वही शानदार है, वही जीवित है जिसमें हजारों शाखाएं प्रशाखाएं निकलती है। शाखाएं प्रशाखाएं तो इसी की खबर है कि वृक्ष में हजार वृक्ष होने की क्षमता थी, किसी तरह एक में समा लिया है। हर्ज भी कुछ नहीं है, जितनी शाखाएं प्रशाखाएं हो उतना ही सुंदर, क्योंकि उतने ही पक्षी बसेरा कर सकेंगे, उतने ही पक्षी घोंसले बना सकेंगे, उतने ही यात्री विश्राम पा सकेंगे, उतनी ही बड़ी छाया होगी, उतनी ही गहन छाया होगी। धूप से तपे मानों के लिए आसरा होगा, सरल होगी। जो वृक्ष फूट रह जाए उसका क्या अर्थ हुआ? उसका अर्थ हुआ वृक्ष बांझ, उसमें फैलने की क्षमता नहीं है। जीवन का अर्थ है फैलने की क्षमता। सभी जीवित चीजें फैलती हैं, सिर्फ मृत्यु सिकुड़ती है। मृत्यु सिकुड़ती है, जीवन फैलाता है, जीवन विस्तार है। एक से दो, दो से अनेक होता चला जाता है। परमात्मा अकेला था फिर अनेक हुआ, क्योंकि परमात्मा जीवित था। अगर मुर्दा होता तो अनेक नहीं हो सकता था। संसार को गाली मत देना। अगर तुम्हें मेरी बात समझ में आया तो समझोगे कि संसार परमात्मा की शाखाएं प्रशाखाएं, तुम भी उसी की शाखा प्रशाखा हो। इतना जीवित है कि चुकता ही नहीं, फैलता ही चला जाता है। वृक्ष भारत में बड़े प्राचीन समय से जीवन का प्रतीक रहा है। बुद्ध के वृक्ष में बड़ी क्षमता थी, बड़ा बल था, बड़ी संभावना थी। अकेली पीर से कैसे बुद्ध का वृक्ष चिपटा रहता? जैसे जैसे बढ़ा शाखाएं प्रशाखाएं हुई, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में उन शाखाओं प्रशाखाओं में कोई विरोध न था। वे सभी एक ही वृक्ष से जुड़ी थी और एक ही जड़ पर जीवित थी। उन सभी का जीवन एक ही स्रोत से आता था, बुद्ध स्रोत थे। ज्ञानी ने इसमें कुछ विरोध न देखा, इसमें इतना ही देखा कि बुद्ध में बड़ी संभावना है। ये जरा हैरान की बात है, सारी मनुष्य जाति में बुद्ध ने जितनी संभावनाओं को जन्म दिया किसी दूसरे आदमी ने नहीं दिया। महावीर के वृक्ष में केवल दो शाखाएं लगी, दिगंबर श्वेतांबर बस, और उनमें भी कोई बहुत फासला नहीं है, क्षुद्र बातों का फासला है। तो कोई महावीर का श्रृंगार करके पूछता है, कोई महावीर को नग्न पूछता है। श्रृंगार के भीतर भी महावीर नग्न है और नग्न में भी उनका बड़ा श्रृंगार है, इसमें कुछ बड़ा फासला नहीं। उनकी नग्नता ही श्रृंगार है, अब और क्या सजाना है उनको? और सजाना तो ऐसे है जैसे कोई सांप पर पैर चिपका है। तो सांप अकेला बिना पैर के खूब चलता था, अब तुम और पैर चिपका के उसे खराब मत करो। ये तो उन पर और श्रृंगार करना ऐसे है जैसे कोई मोर को और रंगों से पोते। मोर वैसे ही काफी रंगीन था, अब तुम कृपा करके रंग खराब मत करो। महावीर की नग्नता में ही खूब श्रृंगार है। उन जैसी सुंदर नग्नता कभी प्रकट हुई तो फिर तुम्हारी मौज है, तुम्हारा मन नहीं मानता। इसलिए नहीं कि महावीर में कुछ कमी है, तुम्हारा मन बिना किए कुछ नहीं मानता। तुम कुछ करना चाहते हो करो भी क्या, महावीर जैसे व्यक्ति के सामने एकदम असमर्थ हो जाते हो। सुंदर कपड़े पहनाते हो, सुंदर आभूषण लगाते हो, ये तुम्हारी राहत है। तो महावीर का कुछ लेना देना नहीं, तुम्हारे सब वस्त्रों के पीछे भी वे अपनी नग्नता में खड़े नग्न ही है। ऐसे छोटे छोटे फासले हैं। दिगंबर कहते हैं कि उनकी कोई शादी नहीं हुई, श्वेतांबर कहते हैं।

क्या फर्क पड़ता है। दिगंबर कहते हैं उनका कोई बच्चा नहीं हुआ, जब शादी नहीं तो बच्चा कैसे हो। स्वयंबर कहते हैं उनकी एक लड़की थी, पर क्या फर्क पड़ता है। महावीर में से क्या फर्क पड़ता है शादी हुई कि ना हुई, ये तो फिजूल के विस्तार की बातें हैं। महावीर के होने का इससे क्या लेना देना है। शादी हुई हो तो ठीक, न हुई हो तो ठीक, जिसको जैसी मौज हो वैसी कहानी बना ले, लेकिन कोई बहुत बड़ा विस्तार नहीं होगा। जीसस के भी दो शाखाएं फूट कर रह गई, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक, कोई बड़ा विस्तार नहीं होगा। बुद्ध अनूठे हैं, अद्वितीय हैं, सैकड़ों शाखाएं हुई और प्रत्येक शाखा इतनी विराट थी कि उसमें से भी प्रशाखाएं हुई। कहते हैं जितना दर्शन के मार्ग अकेले बुद्ध ने खोले उतने मनुष्य जाति में किसी व्यक्ति ने नहीं खोले। बुद्ध अकेले समस्त प्रकार के दर्शनों का स्रोत बन गए। ऐसी कोई दार्शनिक परंपरा नहीं है जगत में जिसके समतुल परंपरा बुद्ध धर्म में ना हो। अगर तुम बुद्ध धर्म का पूरा इतिहास समझ लो तो बाकी सब धर्मों का इतिहास छोड़ भी दो तो कुछ हार जाना होगा, क्योंकि सारे जगत में जो भी कहीं हुआ है, जो विचार कहीं भी जन्मा है, वो विचार बुद्ध में भी जन्मा है। बुद्ध अकेले बड़े विराट वृक्ष, ये तो सौंदर्य की बात है, ये तो अहोभाव और उत्सव की बात है, इसमें कुछ चिंता का कारण नहीं है। ये तो इतना ही बताता है कि बुद्ध में बड़ी संभावना थी। ज्ञानी ने तो उस संभावना का उपयोग किया, उसमें कोई झगड़ा न था। बिल्कुल विपरीत जाने वाली शाखाएं भी, एक पूरब जा रही एक पश्चिम जा रही, फिर भी एक ही तने से जुड़ी होती, विरोध कहां है। और उन दोनों का जीवन स्रोत एक ही जगह से आता है, एक बुद्ध ही फैलते चले गए सब में। इससे कुछ अड़चन न थी, लेकिन अज्ञानी अड़चन खड़ी करता है। अज्ञानी की अड़चन ऐसी है कि वो ये भूल ही जाता है कि सभी विरोध अलग अलग दिशाओं में जाती शाखाएं एक ही स्रोत से जन्मी है। मैंने सुना है एक गुरु के दो शिष्य थे, गर्मी की दोपहर थी, गुरु विश्राम कर रहा था और दोनों उसकी सेवा कर रहे थे। गुरु ने करवट बदली तो दोनों शिष्यों ने आधा आधा गुरु को बांट रखा था सेवा के लिए। बाया पैर एक ने ले रखा था, दाया पैर एक ने ले रखा था। गुरु ने करवट पड़ी तो बदली तो बाया पैर दाएं पैर पर पड़ गया, स्वभावतः झंझट खड़ी हो गई। गुरु तो एक है, शिष्य दो थे, दोनों हिंदुस्तान पाकिस्तान बांटा हुआ था। तो जब दाएं पैर पर बाया पैर पड़ा तो जिसका दाया पैर था उसने कहा हटा ले अपने बाएं पैर को, मेरे पैर पर पैर सीमा होती है सहने की, बहुत हो चुका हटा ले। उस दूसरे का देखूं किसकी हिम्मत कि मेरे पैर को कोई हटा दे, सिर कट जाएंगे, मगर मेरा पैर जहां रख गया रख गया। ये कोई साधारण पैर नहीं, अंगद का पैर है। भारी झगड़ा हो गया, दोनों लठ लेके आ गए। गुरु इस उपद्रव सुनकर उसकी नींद खुल गई, उसने देखी ये दशा। उसने जब लठ चलने के ही करीब आ गए, लठ चलने वाले थे गुरु पर, क्योंकि जिसका दाया पैर था वो बाएं पैर को तोड़ डालने को तत्पर हो गया था और जिसका बाएं पैर था वो दाएं पैर को तोड़ डालने को तत्पर हो गया था। गुरु ने कहा जरा रुको, तुम मुझे मार ही डालोगे, ये दोनों पैर मेरे, तुमने विभाजन कैसे किया। अज्ञानी बांध लेता है और भूल ही जाता है, भूल ही जाता है कि जो उसने बांटा है वो एक ही व्यक्ति के पैर या एक ही वृक्ष की शाखाएं हैं। अज्ञानी ने उपद्रव खड़ा किया, अज्ञानी लड़े, एक दूसरे का विरोध किया, एक दूसरे का खंडन किया, एक दूसरे को नष्ट करने की चेष्टा की। जब संप्रदाय अज्ञानी के हाथ में पड़ता है तब खतरा शुरू होता है। ज्ञानी संप्रदाय को बनाता है, क्योंकि धर्म की शाखाएं प्रशाखाएं पैदा होती, जितना जीवित धर्म उतनी शाखाएं प्रशाखाएं। दुनिया से संप्रदाय थोड़ी मिटाने हैं, अज्ञानी मिटाने हैं। जिस दिन संप्रदाय मिट जाएंगी दुनिया बड़ी बेरौनक हो जाएगी, उस दिन गुरु बिना पैर के होगा।
उसको फिर जैसे डगमगों को थैले पर रख के चलाना पड़ता है ऐसे चलाना पड़ता है। फिर वृक्ष बिना शाखाओं के होगा, न पक्षी बसेरा करेंगे न राहगीर छाया लेंगे। और जिस वृक्ष में पत्ते न लगते हो शाखाएं न लगती हो उसका इतना ही अर्थ है कि जगह सूख गई, अब वहां जीवन नहीं, जीवन छोड़ चुका उसे, उड़ गया। तुम पूछते हो बुद्ध के देह में जीवित रहते उनका भिक्षु संघ एकता में रहा? नहीं, ज्ञानी के लिए तो वो अब भी एकता में है। और तुमसे मैं कहता हूं अज्ञानी के लिए वो तब भी एकता में नहीं था जब बुद्ध जीवित थे, तब भी अज्ञानी अपनी तैयारियां कर रहे थे, तभी फिरके बटने शुरू हो गए थे। बुद्ध के जीते जी अज्ञानियों ने अपने हिसाब बांट लिए थे, अलग अलग कर लिए थे। बुद्ध के मरने से थोड़ी अचानक अज्ञान पैदा होता है, अज्ञानी तो पहले भी अज्ञानी था, वो कोई अचानक थोड़ी अज्ञानी हो गया। और जो अज्ञानी है बुद्ध के जीवित होने से थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है, अज्ञान तो तुम्हें छोड़ना पड़ेगा, बुद्ध क्या कर सकते हैं। बुद्ध ने कहा मार्ग दिखा सकता हूँ, चलना तो तुम्हें पड़ेगा, समझा सकता हूँ, समझना तो तुम्हें पड़ेगा। अगर तुम न समझने को ही जिद किए बैठे हो, अगर समझने के लिए तुमने जरा भी तैयारी नहीं है, तैयारी नहीं दिखाई है, तो बुद्ध लाख सिर पीटते रहे कोई परिणाम नहीं हो सकता।

0: રેડિયો 107.8 એફએમ પર ઢેર સારી મસ્તી ખૂબ સારા ફન ક્યોંકિ યે હૈ ફરીદાબાદ કા રેડિયો નંબર 1.
1: નમસ્કાર, સ્વાગત કરતે હૈ આપ સબકા અવેકનિંગ વિથ બ્રહ્મ કુમારીઝ મેં. જિંદગી કા યે સફર તય કરતે કઈ રોલ્સ નિભાતે કઈ વાર એક સવાલ બાર બાર ઉઠતા હૈ કે કોન હું મેં. ઉસ સવાલ કો હમ દબા કર આગે બઢ જાતે હૈ ઓર હર રોલ કો ફિર નિભાને લગતે હૈ. લેકિન હમને જો યે સફર તય કિયા હૈ ઉસમે ઇસ સવાલ કો સામને લાયે હૈ ઓર ઇસ પૂરે સફર મેં યે તલાશને કી કોશિશ કી હૈ. કઈ જવાબ હમે મિલે ભી હૈ લેકિન હમ ઉસ પડાવ પર પહોંચે થે કિ કિસ તરહ સે જો હમારી ઈગોસ હૈ વો કઈ બિહેવિયર્સ જો હમારે હોતે હૈ ઉનકો બતાતી હૈ કિ વો અડચન બન સકતી હૈ ઓર કૈસે હમ સુપ્ત અવસ્થા મેં અપની જિંદગી ગુજાર દેતે હૈ. જાગના ક્યું જરૂરી હૈ ઓર જાગા કૈસે જા સકતા હૈ યહી આજ તલાશને કી કોશિશ કરેંગે અપની ઇસ કડી મેં. ઓર ઇસ પર બાતચીત કે લિયે હમારે સાથ હૈ બ્રહ્મ કુમારી સિસ્ટર શિવાની. આપકા સ્વાગત.
2: ઓમ શાંતિ.
1: સિસ્ટર શિવાની, બહુત કુછ હમને અપને બારે મેં જાનને કી કોશિશ કી હૈ, જાના હૈ કે ઈગો ક્યા હૈ. જિસે હમ માનતે થે કે ઈગો હૈ વો કહીં ના કહીં અંદર કે આંતરિક ભય સે જુડા થા, અટેચમેન્ટ સે જુડા થા. ઓર અબ યે ભી જાન ગયે હૈ કે હમ સોયે હુએ હૈ, કહીં ના કહીં જાગના જરૂરી હૈ.
2: જાગના ટુ રિયાલિટી.
1: યસ.
2: સે અવેકન ટુ વોટ? અવેરનેસ ઓફ વોટ? અવેરનેસ ઓફ ધ પ્રોસેસ. અભી તક સોયે હુએ થે મતલબ સોચેંગે ક્યા સોયે હુએ થે, કે જો સત્ય હૈ ઉસકી તરફ જૈસે મૂળ ઉસસે પરે હટા હુઆ થા, આંખે બંધ થી, તો જિસકો હમ કહેતે અજ્ઞાન કી નીંદ મેં સોયે હુએ થે. નહીં કહેતે કે તીસરા નેત્ર ખુલ ગયા, મતલબ જ્ઞાન કા નેત્ર ખુલ ગયા. જો અસલિયત હૈ, જો સત્યતા હૈ, જો અંદર એક પ્રોસેસ ચલ રહા હૈ ઉસકે બારે મેં જાગૃતતા હો ગઈ, તો નાઉ ક્યોંકિ અબ પ્રોસેસ પતા ચલ ગયા, અબ ઉસકો ફોલો કરના શાયદ થોડા સા ઇઝી હો જાના ચાહિયે.
1: બિલકુલ સિસ્ટર શિવાની, જૈસા આપને યે કહા કે કિસકે બારે મેં જાગના હૈ, ક્યોંકિ હમે કઈ બાર કહા જાતા થા, મુજે ભી અગર મેં અપને આપકો દેખું તો કહા જાતા હૈ કે ખુદ કે બારે મેં અવેર હો જાઓ, અપને બારે મેં સોચો, મેડિટેટ કરો. યે સારે સવાલ આતે તો થે, સબ કુછ તો થા, લેકિન કરના કૈસે હૈ? આજ જબ યે પ્રોસેસ સમજ મેં આયા હૈ કે યે હોતા હૈ હમારે અંદર, ના કિસ તરહ સે હમારા થોટ જો હૈ વો હમારી ડેસ્ટિની ક્રિએટ કરતા હૈ, કિસ તરહ સે ઈગો દો તરહ કી હો સકતી હૈ. હમ હર્ટ હોને કો, સેન્સિટિવિટી કો અપની, હમ અપની સ્ટ્રેન્થ માનતે થે, વો કહાં કિસ તરહ સે હમારે ભય કા એક રૂપ હોતી
2: હૈ, કોઈ ના કોઈ એક અટેચમેન્ટ હૈ જો પકડી હુઈ હૈ, વી હેવ ટુ લેટ ગો ઓફ
1: ધેટ ગો. લેકિન યે જો અપની સેલ્ફ અવેરનેસ કી જો સુપ્ત અવસ્થા હૈ, કે હમ નહીં જાનતે કે ભાઈ ક્યા હૈ હમ, ઉસકો જાગૃત કરને કા પ્રોસેસ અબ ક્યા હૈ?
2: We will have to go through a few steps. મતલબ યે સબ કુછ જૈસે આપને કહા હમે સમજ પે ભી આ ગયા, ફિર ભી સારા દિન મેં કરને મેં થોડા સા મુશ્કિલ લગતા હૈ, ક્યોંકિ થોડા સા ઉસકો સમય દેના પડેગા. એન્ડ વો સમય દેના મતલબ ક્યા? આપ દેખો, સવેરે સે ઉઠતે હૈ, ઇટ બિગિન્સ વિથ ન્યૂઝ પેપર, ટેલિવિઝન, ઇસ તરફ સે રેડિયો ઓન હૈ, ચોથી તરફ સબ તૈયાર હો રહે હૈ, શોર મચ રહા હૈ. એન્ડ એક્ચુઅલી જો સારા દિન હમારા બીતતા હૈ વો બહોત શોર મેં બીતતા હૈ. શોર નોટ નેસેસરીલી બહાર, લેકિન શોર અંદર. યુ નો, ઇફ યુ જસ્ટ એક મિનિટ કે લિયે ડિટેચ હોકર સબસે પહેલે અપને મન કી સ્થિતિ કો દેખે, તો સારા દિન સાયલેન્સ બહોત કમ હૈ. સારા દિન મન મેં યે કરના, યે કરના, જલ્દી કરો, યહાં હુઆ કે નહીં, ઉસને એસા ક્યું કહા, મુઝે તો યે કરના થા. ધ સ્પીડ ઓફ ધ માઇન્ડ ઇઝ વેરી ફાસ્ટ. અગર ઇતની જ્યાદા સ્પીડ હોગી તો ફિર રાસ્તે મેં કોણ આ રહા હૈ જા રહા હૈ વો નહીં દિખાઈ દેગા. યુ નો, ઇફ યુ આર ગોઈંગ એટ 120 તો યુ વિલ નોટ રિયલી સી વોટ ઇઝ હેપનિંગ ઓન ધ જર્ની.
1: બટ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ધીસ ઇઝ વોટ ઇઝ હેપનિંગ ઇનસાઇડ અસ.
2: ઇનસાઇડ મે
1: અંદર હી ઇતની તેજ સ્પીડ પર ચલ રહે હૈ.
2: ઇટ બહોત જ્યાદા તેજ હૈ ના. આપ દેખો, સંકલ્પો કી ગતિ ઇઝ અબાઉટ 25-30 થોટ્સ પર મિનિટ. ઓર આજકલ હમ બહોત જ્યાદા નોર્મલ સ્પીડ પર ભી નહીં હૈ, વી આર સ્લાઇટલી હાયર સ્પીડ. આપ દેખો, સડક પર ભી ગાડી ચલાને કી એક સ્પીડ રખી જાતી હૈ ના. આજ કિતની પોલીસ ખડી હોતી હૈ કે જૈસે હી આપને ઉસ સ્પીડ કો ક્રોસ કિયા, સ્ટોપ. ક્યું? જહાં સ્પીડ બઢેગી વહાં કુછ ના કુછ એક્સિડન્ટ હોને કા ચાન્સ બઢ જાતા હૈ. મન કી સ્પીડ ઇસ ટાઈમ કૈસી હૈ?
1: બહોત ફાસ્ટ,
2: બહોત ફાસ્ટ હૈ. એક સંકલ્પ ઉસકે બાદ તુરંત દૂસરા, મતલબ દેર ઇઝ નો ટાઈમ, ઇતના ફાસ્ટ હૈ. ઓર જિતની સ્પીડ જ્યાદા હૈ તો સમજ લીજિયે કે ક્વોલિટી ઠીક નહીં હૈ. આપ દેખો, જબ હમ પરેશાન હોતે હૈ, કિસી ને હમે કુછ કહે દિયા, ઉસકે બાદ તો મન કી સ્પીડ કૈસે ચલતી હૈ? ક્યું કહા? અપને કો એસા સમજતા હૈ, સબકે સામને બોલ દિયા, મેરા કુછ નહીં હૈ ક્યા, મેરી સેલ્ફ, ઇટ્સ ફાસ્ટ. અગર કિસી કે લિયે અચ્છા સોચના હૈ, આપ ઉસકી સ્પીડ દેખીએ, ઇટ ઇઝ સ્લો. તો પોઝિટિવ થોટ્સ વિલ ઓલવેઝ બી સ્લોઅર, एंड नेगेटिव थॉट्स आर ऑलवेज फास्टर. तो अगर बहुत स्पीड ज़्यादा है, इसका मतलब डायरेक्ट कंक्लूजन है कि क्वालिटी भी बहुत अच्छी नहीं है. तो अब अवेयरनेस चाहिए, तो पहली बात तो इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा. हम बहुत ज़्यादा नॉइज़ सारा दिन कंज्यूम कर रहे हैं बाहर से, इंफॉर्मेशन, नॉइज, टेलीविजन, रेडियो, मीडिया, यू नो, जस्ट फिलिंग इट इन. जितना भरते जाएंगे उतना
1: हम खाली होते
2: जाएंगे. इट विल गो वेरी फास्ट.
1: इनफैक्ट हमने ये भी देखा है कि जैसे हम खाली होते हैं हम भागते हैं किसी नॉइज की तरफ.
2: हम
1: खाली रहना नहीं चाहते.
2: हमें अभ्यास ही नहीं रहा कि दो मिनट अगर बैठ जाए. सो द फर्स्ट थिंग दैट वी कैन स्टार्ट इज बीच बीच में कुछ क्षण निकाल के जस्ट बी क्वाइट. एंड नॉट बी क्वाइट जस्ट वर्बली, ना? शांत रहना मतलब ये नहीं कि सिर्फ मुख से चुप रहना, लेकिन आंतरिक.
1: तो क्या हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं उस टाइम?
2: सप्रेस नहीं करना और ना थॉट को बंद करना है, लेकिन देखना है इस समय. लेट्स डू इट राइट नाउ. जो सभी देख भी रहे हैं इस टाइम प्रोग्राम को, इस क्षण हम कर सकते हैं. जो कर रहे हैं, जैसे बैठे हैं, एक सेकेंड के लिए जो कर रहे हैं वो रुक जाइए. जस्ट स्टॉप एंड अभी सिर्फ डिटैच होकर देखिए मेरे मन में इस समय कौन सा संकल्प चल रहा. एंड वेरी ऑफन वी विल फाइंड कि वो बहुत रेलेवेंट नहीं होगा इस टाइम. वो या तो पास्ट में होगा, कुछ थोड़ी देर पहले किसी से बात की होगी, कुछ सुना होगा, कुछ देखा होगा, या वो आने वाले टाइम के बारे में प्लान कर रहा होगा अभी ये करना है. वेरी रेयरली वी आर इन द नाउ. इस क्षण का पूरा पूरा लाभ नहीं उठा रहे होंगे. बैठे हैं, बात कर रहे हैं, बैठे हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं मन, लेकिन पूरा पूरा उस बात को, जब हम जो बात अभी सुन रहे हैं उसको ग्रहण ही नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको बहुत ज़्यादा अप्लाई करना कहाँ पॉसिबल है. तो वो तभी होगा जब माइंड थोड़ा सा साइलेंट होगा. उस ब्लॉटिंग पेपर को क्लीन रखना पड़ेगा. वो ब्लॉटिंग पेपर इतना सैचुरेटेड रहता है कि उस पर कोई बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रह जाती कि कुछ नया डाला जाए. तो इसका एक जेन्युइन अभ्यास अगर हम करना शुरू करें कि बीच बीच में जस्ट बी क्वाइट फॉर फ्यू मिनट्स, एक मिनट, दो मिनट, कुछ मत अभ्यास करें कि कुछ नहीं सोच रहे, बट एक्चुअली कुछ नहीं सोच रहे ऐसा नहीं होगा. लेकिन करना क्या है, सिर्फ देखना है कि मेरा मन क्या कर रहा है. जैसे हम बीच बीच में चेक करते हैं ना बच्चे क्या कर रहे हैं. बीच बीच में जो ऑफिस में सीनियर होगा वो एक राउंड मार के देखेगा कि सब लोग क्या काम कर रहे हैं, ठीक से कर रहे हैं. इसी तरह बीच बीच में चेक करना मन क्या कर रहा है. तो डिटैच हो जाएगा और डिटैच होके चेक कर लेगा ठीक काम कर रहा है, नहीं तो थोड़ा सा उसको प्यार से, अभी आपको इस टाइम ये नहीं सोचना है, अभी आपको ये सोचना है, ब्रिंग इट बैक.
1: ओके,
2: यू हैव टू टॉक टू योर माइंड. इट्स योर माइंड. अगर हम दूसरे को जाकर इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप ऑफिस में एक हेड है, आप अपने ऑफिस में चक्कर लगा के सबको इंस्ट्रक्शन देते हैं अभी आपको ये नहीं करना ये करना, आप किससे बात कर रहे हैं? आप उनके मन से ही तो बात कर रहे हैं ना. कान सुनेगा, मन ही तो उस चीज को परसीव करेगा. सबके मन से बात कर सकते हैं, तो अपने मन से क्यों नहीं बात कर सकते?
1: अब अपने मन से, मेरे मन से, मैं, आई द सोल इज टॉकिंग.
2: या इट्स लाइक दिस, आई एम सिटिंग हियर एंड अभी थोड़ी देर पहले मैंने फोन पे बात की थी तो मुझे कोई और चीज के बारे में पता चला. अब मैं यहाँ कुछ और बात कर रही हूँ आपसे और सोच कुछ और रही हूँ, तो मैं अपने साथ और आपके साथ धोखा
1: है.
2: यू नो, बिकॉज मेरा मन यहाँ होना चाहिए इस टाइम, उसको हम कॉन्सेंट्रेशन कहेंगे, लेकिन वो कुछ और ही सोच रहा है एंड आपको पता भी नहीं चलेगा. मैं आराम से आपसे अभी बात करते करते कुछ और सोच सकती हूँ, लेकिन फिर हमारा वो जो रिलेशनशिप बनना चाहिए वो नहीं होगा. थोड़ी देर के बाद आर यू रियली लिसनिंग? ऑफ कोर्स आई एम लिसनिंग. एंड ऊपर ऊपर से वील गो यस यस आई एम लिसनिंग बट नो. एंड फिर हम सुनेंगे लेकिन उसको ठीक से ग्रहण नहीं करेंगे, जाकर कर कुछ और देंगे. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम द माइंड वॉज डूइंग समथिंग एल्स. ऑफिस में आप देखो कितनी बार होता है, मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शन दिया था ना, आपने सुना नहीं था उस टाइम. सुना तो था, कानों ने सुना था,
1: रजिस्टर नहीं हुआ.
2: दैट्स द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. आई एम हियरिंग, कान सुन रहे हैं, लिसनिंग
1: समझ रहे हो.
2: तो दैट विल ओनली बी पॉसिबल अगर बीच बीच में हम चेक कर लें कि मन कहाँ है.
1: अच्छा, हम जब चेक कर रहे हैं तो जो विचार जो संकल्प उसी वक्त चल रहा है उसी को देखें या पीछे जो गुजरा वक्त थोड़ा सा है
2: अभी चेक करें अभी क्या चल रहा है. कुछ और चल रहा है, अपने आप से पूछे, क्या इस टाइम ये इम्पोर्टेंट है? नहीं, ये तो बीती हुई वाली बात है, अभी कुछ और करना है। इसके बारे में कब सोचें? शाम को सोचेंगे, घर जाने के बाद। ठीक है, शाम को हम इसके बारे में सोचेंगे, फुल स्टॉप। इट्स जस्ट दैट वी नेवर टॉक्ड टू आवर माइंड। अगर हमने किसी के साथ बात ही नहीं की, उसको इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया कैसे चलना है, तो वो अपने आप चल रहे
1: हिसाब से जो उसे समझ में।
2: अगर ऑफिस में हम नहीं बताएंगे कि क्या कब करना है, तो वो अपने हिसाब से करेंगे। तो हमें एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है, बीच बीच में स्टॉप करके चेक करना है। दैट इज व्हाट वी से, जस्ट बी क्वाइट फॉर सम टाइम। और थोड़े टाइम के बाद क्या है, मन को पता चल जाएगा काम करने का तरीका कैसा है, एक सिस्टम बन जाएगा, और फिर वो मन उसी सिस्टम के अनुसार चलेगा, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ। एंड दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट स्टॉप, डिटैच, चेक, क्या सोच रहे थे? अच्छा, ये वाली बात तो कल के लिए है ना, ये तो कल की मीटिंग में करना है, अभी ये ओके। लिविंग इन द प्रेजेंट, किसी ने कुछ कह दिया, वो सुनकर घर पहुंच गए, ऑफिस में बॉस ने कुछ कह दिया, घर आ गए, घर में बच्चों के साथ है इस टाइम, वाइफ के साथ है, जितना थोड़ा समय मिलता है इट शुड बी क्वालिटी टाइम। यू नो वी टॉक अबाउट क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम यही है, फिजिकली प्रेजेंट है, मेंटली अवेलेबल नहीं है। मेंटली अभी भी मन सोच रहा है क्यों ऐसा डांटा, इतनी सी तो बात थी, या वट एवर। टेल द माइंड वो ऑफिस की बात है ना, और शायद उन्होंने जो किया वो ठीक ही किया था, जो भी किया था कल सोचेंगे ऑफिस जाने के बाद। एंड इट विल लिसन, गिव इट वेरी क्लियर इंस्ट्रक्शन, माइंड को बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन देना। अगर हम मन को सिर्फ ये कहेंगे अभी नहीं सोचना, पर ये इम्पोर्टेंट है, हाँ ये इम्पोर्टेंट है, कल सुबह 9 बजे आना,
1: तब सोचेंगे।
2: यस, एंड इट इज सो परफेक्ट, वो कल सुबह 9 बजे आपको थॉट आ जाएगा।
1: अच्छा, इट विल लाइक हियर यू,
2: या it is listening, what is it, it is programming, ek instruction feed ho rahi hai, computer mein bhi reminder feed karte hai na, tomorrow morning 9 o'clock reminder, aur wo exact 9 o'clock aa jayega, same to the mind,
1: good, it's a like a good, actually we can always try it out,
2: let's try karenge wo practice develop ho jayegi and it will happen. ek bar agar suppose usne aapki baat nahi mani, fir aa gaya, aapko kaha na kal subah 9 baje, fir aa gaya, क्या कहा था आपको कल सुबह 9 बजे, बस थोड़ा सा, फिर इट्स डन।
1: ओके, दैट्स नाइस,
2: इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल,
1: सो ओके।
2: या द थॉट शुड बी, ये मेरे काम की चीज है ही नहीं, सो स्टॉप, व्हाई एम आई वेस्टिंग माय एनर्जी, फुल स्टॉप। फिर आएगा थॉट, ये मेरे काम की चीज नहीं है, इट्स वेस्टेज ऑफ एनर्जी, स्टॉप, 2 बार 3 बार फिनिश्ड। नहीं, अगर नहीं स्टॉप किया
1: तो आता रहेगा और वो कन्वर्ट करेगा फिर डेस्टिनी में।
2: सिर्फ एक नहीं आएगा, इतनी चेन आती है फिर उस थॉट्स के। इसलिए जहां अगर बीच बीच में रुकते हैं ना, तो थोड़ी सी भी क्वालिटी अगर दूसरी साइड पर जा रही है, तो हम उसको जल्दी से
1: वापस ले आते हैं।
2: तो पूरा दिन वेस्ट नहीं होता। कई बार हम अपनी चेकिंग करते हैं लेकिन दिन के एंड पे, बट बाय देन द डे इज ओवर।
1: सो लाइक इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस, इट्स अ एक्चुअली यू नो लाइक इट्स अ टिप, we can all use it, it's a practical tip actually.
2: So simple hai, beech beech mein thoda sa quiet ho jaye aur apne man ko dekhe. Dusri cheez jo bahut simple hame karni padegi, attachments jo humne dekhi thi, let go karna padega.
1: Now let go to the attachment basically.
2: Yes, to the attachment.
1: So that is like we'll have to go down, you know, like jo humne pura process dekha ki jahan humne ego ki baat ki, wo aisa behavior जो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि हमारी ईगो को जेनरेट कर रहा है, बिकॉज अभी ये मिथ भी तो जेल लेके जी रहे थे हम कि सेंसिटिविटी होना या हर्ट होना तो
2: Absolutely.
1: हमारी स्ट्रेंथ है, यू नो लाइक, और हम अपनी ईगो को कहीं अपनी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ रहे थे,
2: राइट right.
1: तो वो जैसे रियलाइज हुआ, देन वी गो बैक टू द प्रोसेस,
2: सो वी हैव टू लेट गो। इवन ऑब्जेक्ट्स जो हम यूज करते हैं, लोग जिनके साथ हम रहते हैं, हम उन्हीं के साथ रहेंगे, अभी भी वही चीज यूज करेंगे, वही फोन यूज करेंगे, लेकिन डिटैच्ड, ये मेरा है, यूज करने के लिए आया है, एक दिन ये फिनिश हो जाएगा, बट लेट गो, डोंट होल्ड ऑन टू इट। और बहुत चीजें जो हम बहुत अटैच्ड हो जाते हैं, पास्ट और फ्यूचर, उसको लेट गो करना
1: कि फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा, या पास्ट में जो था वो इतना अच्छा था, वो कहाँ चला गया पास्ट,
2: उसके साथ
1: वेरी डिफिकल्ट,
2: अच्छा या नेगेटिव पे,
1: हाँ
2: नेगेटिव को भी पकड़ के रखते हैं,
1: बहुत खराब था, मैंने कैसे जिंदगी गुजारी,
2: उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किसी ने कुछ एक सेंटेंस कह दिया, उसको कितने साल पकड़ के रख सकते हैं, हु विल लेट इट गो, कौन था? आप खुद ही देखो, आप किसी को भी इस समय याद कर लीजिए जिसका आपका कोई बिटर मेमोरी आपके अंदर बैठी हुई है,
1: वो लिंगर है, अभी भी लिंगर है, इसका मतलब अभी भी कभी भी चाहूं रिवाइव कर सकती हूं।
2: और जितनी बार आप उसको रिवाइव करेंगे आप अपने आप को कष्ट देते हैं।
1: बिकॉज वी गो थ्रू द सेम पेन,
2: सेम पेन, थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एवरीथिंग,
1: एंड दैट केमिकल थिंग, आई स्टिल रिमेंबर दैट, यू नो, बिकॉज़ पेन इज समथिंग which people at times do start enjoying.
2: और आपको पता है कई बार जब शरीर को वो केमिकल नहीं मिला होता बहुत देर के लिए और कोई आ भी नहीं रहा आसपास जो मुझे हर्ट कर रहा है, I just pick up something from the past.
1: पुराना कुछ नहीं, तभी मैं स्टोर करता रहता हूँ, करती रहती हूँ।
2: इतना सारा accumulated है कि fresh talk अगर नहीं भी मिला आज सारा दिन में कि किसी ने कुछ आकर नहीं ऐसा कहा जिससे मुझे बुरा लगे, तो पास्ट का कितना सारा पड़ा। कोई भी एक इंसिडेंट उठा लीजिए, just one second is needed, aapne wo incident uthaya and that's it,
1: you get
2: that same pain and everything all over again and then you're like ha mera to bhagya hi aisa hai, wo jo self victimization, self sympathy fir wo shuru ho gayi,
1: we want to change them.
2: Yeah.
1: And especially you know when we fall in love, when we care for the other person, or maybe you know like now so I feel that all our belief systems have been actually wrong, maybe, you know, like standing on wrong aspects. It's like we feel that we are in love with that person, so that person has to become what we expect.
2: Want him to be. So, hum sara din jisko hum kehte hain, hum dusron ki script likhne ki koshish karte hain. Aapko aisa karna chahiye, aapko aise uthna chahiye, aise baithna chahiye, aise bolna chahiye, aise kaam karna chahiye. We are writing the script. Jitna hum dusre ko control karne ki koshish karenge, yahan pressure hai. क्योंकि आप वैसे बनेंगे नहीं जैसे मैं चाहती हूँ, तो वो सारा दिन मेरी इनर जो कॉन्शियस है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, फिर क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं मेरी बात मान रहे हैं। आप देखो, करके देखना, एक दिन का ये एक्सपेरिमेंट है, डोंट कंट्रोल एनीबडी इन द होल डे, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो जैसे हैं, इट डजंट मीन कि हम किसी को डिसिप्लिन नहीं करेंगे। अब जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप डिसिप्लिन करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। आप बहुत ज्यादा उसको पकड़ कर फोर्सफुली अपने अनुसार चेंज नहीं कर सकते हैं। आप इंस्ट्रक्शन देंगे, इंस्पिरेशन देंगे, दैट्स ऑल। उसके बाद वो जैसा है यू विल हैव टू एक्सेप्ट, उससे आपकी इनर लाइफ बहुत पीसफुल हो जाएगी, नहीं तो इट इज अ टर्मोइल, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस चल रही है। तो बी क्वाइट बीच बीच में, लेट गो जो भी अटैचमेंट्स है एंड लेट पीपल बी, वो जो है जैसे हैं बहुत अच्छे हैं। ये एक थॉट पे, ये जो है जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, आई सी यू इन अ डिफरेंट लाइट। लेकिन इफ आई से नहीं आपको ऐसा होना चाहिए, आपको ऐसा होना चाहिए, आई सी यू इन अ डिफरेंट लाइट। तो इट इज एक्सेप्टेंस, तो ये एक्सेप्टेंस भी हमारी इनर स्टेबिलिटी को बहुत अच्छा मेंटेन करके रख सकती है। जैसे ही हम ये तीन चीजें करना शुरू कर देंगे ना, क्योंकि लेट गो और लेट बी जब कर लिया, इनर जो सारा जो सूत बहुत मूंझा हुआ है ना, वो सारा स्ट्रेटन आउट हो जाएगा। हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उसके बाद, यहाँ एकदम क्लैरिटी आने लगेगी। और जैसे ही वो आने लगेगी, फिर जो आपने कहा ना अंदर की आवाज, वो सुनाई देने लगेगी। अंदर की आवाज मतलब जब दूसरों के बारे में सोचना बंद करेंगे, दूसरों को कंट्रोल करना बंद करेंगे, तब तो कहीं अपना कोई प्रोसेस दिखाई देना शुरू कर रहा होगा। एंड इसको हम कहते हैं इंट्यूशन। अपनी सॉल्यूशंस खुद से, अभी पहले क्या था, इधर इतना कंफ्यूजन था तो दूसरों से पूछना पड़ता था, आपको क्या लगता है मुझे क्या करना चाहिए।
1: हाँ, बिल्कुल।
2: लेकिन सॉल्यूशन तो मेरे पास है, आपको तो मेरी प्रॉब्लम पता ही नहीं है। तो लेकिन यहाँ जब ये सब हट जाएगा तो क्लीन, Now I can see my own solution. एकदम स्पष्ट दिखाई देगा। तो we will be able to start listening. अंदर वो जो हमारी intuition है, वो हमारे से बात करना शुरू कर देती है। And then we really wake up. क्योंकि we are awake कि क्या हो रहा है। मतलब फिर क्या हो जाएगा? जो हमने शुरू में कहा कि सब कुछ करते हुए, लोगों से बात करते हुए एक awareness क्या चल रहा है अंदर। अभी क्या होता है, हम गुस्सा कर देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, हर्ट हो जाते हैं, फिर जाके कहीं लगता है शायद ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन जब एक अवेयरनेस में चलेंगे, गलती होगी, अभी भी बात करते करते मुझे आप पे गुस्सा आ जाए, लेकिन करते करते देयर विल बी एन अवेयरनेस, ओके नो दिस इज रॉन्ग, स्टॉप, चेक चेंज फास्ट.
1: जैसे कहा जाता था कि भाई गुस्सा आ रहा हो तो आप 10 तक गिन लीजिए या पानी पी लीजिए, लेकिन दैट्स नॉट पॉसिबल. वो हो ही नहीं पाता था,
2: वो हो नहीं पाता
1: था, क्योंकि पूरा प्रोसेस नहीं होगा.
2: और फिर वो एक बाह्य पुरुषार्थ था ना, आप बाहर से पानी पी रहे थे, बट द आइडिया वाज यही कि गिव योरसेल्फ लिटिल गैप टू सी. लेकिन अब क्या होता है कि जब आप बहुत ज्यादा क्लीन अंदर से चल रहे हैं, आप अवेयर हो जाते हैं कि हाँ नहीं गाड़ी रॉन्ग ट्रैक पे जा रही है, स्टॉप राइट लेन पर उसको लेके जाना है, एंड इट विल गो. तो यू वेक अप टू द प्रोसेस दैट्स गोइंग ऑन इनसाइड. आप कंटिन्यूसली अवेयर हो जाएंगे. जैसे किसी को क्रिटिसाइज किया, तुरंत अवेयरनेस होगी, क्या डर था मुझे, किस लिए मैंने इनको क्रिटिसाइज किया, अच्छा मुझे ये डर था,
1: प्रोसेस शुरू हो जाएगा अंदर तलाश में.
2: मुझे किस बात का डर था, नहीं छोड़ दिया, तो फिर क्रिटिसिज्म बंद. तो बाह्य लेवल से हम नहीं कर सकते क्रिटिसाइज नहीं करना, वो नहीं होगा अनलेस माय दैट इनर प्रोसेस गेट्स सिंप्लीफाइड. तो अब अवेयरनेस आएगी, अब आउटर बिहेवियर और इनर प्रोसेस
1: के बीच का जो
2: हार्मनी. अभी क्या हो रहा था, इनर प्रोसेस चल रहा था लेकिन इतना ऊपर कंफ्यूजन था, कुछ समझ में नहीं आता था, दिखाई नहीं देता था, आउटर बिहेवियर में वो सिर्फ आता जाता था. क्वाइट हो गए, साइलेंट कर दिया, अब दिखाई देता है, एंड देन वी वेक अप. एंड सबसे पहली चीज जब हम वेक अप करते हैं तो हमें पता चलता है कि वी हैव अ चॉइस एट एवरी स्टेप. वी हैव अ चॉइस कि हमें कैसे बिहेव करना, हमें क्या बोलना है. एंड ये इतनी डीप रियलाइजेशन होती है कि हमें पता चलता है कि एक्चुअली कोई हैबिट्स एक्चुअली होती नहीं है. हम जो कहते हैं ना जी ये तो मेरी आदत है, हमें एक एक्सप्लेनेशन दे देते हैं, आपने इस तरह से क्यों बोला, जी मेरी आवाज ही ऐसी है, मेरा बोलने का तरीका ही ऐसा, ये तो मेरी आदत है. आदत मतलब ऑटोमेटिक. अब हम ऑटोमेटिक नहीं है, आदत क्या होगा, कोई चॉइस नहीं है. लेकिन अब तो हमारे पास चॉइस है, हर स्टेप पे चॉइस है. तो देयर विल बी नो हैबिट्स, एवरी टाइम यू विल बी
1: अ न्यू पर्सन. Wow, that's nice actually.
2: Yeah. Even you will not know कि आपका क्या response अब. You will be surprised at your own response. आप खुद हैरान होंगे कि इन्होंने इतना कुछ कह दिया, अच्छा मैंने गुस्सा नहीं किया. How come? पहले तो मैं गुस्सा कर देती थी, but you didn't realize that time you were sleeping. अब आप उठ गए हैं. तो आदतें खत्म हो जाएंगी, and I'll be a new person every time. That's a very important thing. तो ये चार बातें भी अगर हम ठीक से कर लें, let go, let be quiet, start listening, wake up and know yourself. जो हमने पहले भी देखा कि सबसे important अपने आप को जानना कि ये कौन कर रहा है, ये किसका process है, कौन अंदर काम कर रहा है. और सारा दिन याद रखना मैं कौन. जब हम quiet भी हो जाते हैं, quiet होना मतलब यही संकल्प, मैं कौन जो ये कर रहा है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा. उसने इन्होंने आकर ऐसा कुछ कह दिया, लेकिन मैं कौन. मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, वो मेरे ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकते. Changed. At every step we will be able to do with that.
1: It's a whole process actually. But then, अगर हम steps की बात करते हैं तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो बाहर से कुछ आकर होगा. It is within us. You know, सबसे पहले आपने बात यही कही कि quiet, शांति, एक चुप रहकर सुनने की जरूरत है,
2: अंदर से चुप. कई बार हम बाहर बहुत शोर में हो सकते हैं लेकिन अंदर चुप. यू नो, नहीं तो लोग बोलेंगे जी क्या करे, हमेशा ही आवाज है चारों तरफ. बट इट्स नॉट दैट नॉइज, इट्स इंटरनल.
1: इंटरनली यू नो लाइक हम और वो सुनने की कोशिश करें कि क्या चल रहा है मेरे अंदर. एंड देन यू सेड कि डिटैचमेंट, लेट गो. एंड थर्ड इज लेट बी, लेट पीपल द वे दे आर. So in things,
2: बहुत लाइफ इजी हो जाएगी इफ वी लेट पीपल बी द वे दे आर. सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वहीं पर आ रही है.
1: बिल्कुल,
2: बहुत ज्यादा.
1: ये किस तरह से इसको एहसास करना है, ये पूरा प्रोसेस है. बट देन इट डस टेक टाइम एक्चुअली.
2: यू बिगिन, आप शुरू कीजिए कोई भी चीज. आपने शुरू कर दी, इट्स बिगन. इट्स लाइक हमें उठने में तो टाइम लगेगा लेकिन जब नींद खुली, इट्स बिगन.
1: लेकिन मुझे दिन भर में बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि मुझे ये करना है.
2: थोड़ा सा अटेंशन तो रखना पड़ेगा. थोड़े टाइम के बाद इट्स नेचुरल. आप बार बार अपने को याद नहीं दिलाते मुझे पानी पीना. आप बार बार अपने को याद नहीं दिलाते मुझे आराम करना है. करना ही है, नहीं तो शरीर नहीं चलेगा. इसी तरह मुझे मन को बीच बीच में आराम देना है. दैट इज बी क्वाइट, नहीं तो वो थक जाएगा. थोड़े टाइम के बाद नेचुरल.
1: बिल्कुल. ये जो हमने पूरी एक यात्रा तय की है और जागने तक के प्रोसेस पर आए हैं, ये एक बात समझ में आती है कि ये जिंदगी की शुरुआत में ही ऐसा समझ ले जाए तो हम इतना लंबा सोते हुए वक्त नहीं गुजार देंगे। तो सिस्टर शिवानी, बहुत अच्छा लगा ये जो पूरी हमारी बातचीत रही, बहुत बहुत शुक्रिया।
2: थैंक यू।
1: आज हमने ये समझा कि हम जाग सकते हैं, इतनी आसानी से जागा जा सकता है। सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि कुछ क्षणों की चुप्पी बहुत ज़रूरी है, सुनना बहुत ज़रूरी है, सुनना अपने अंदर कि क्या हमारे अंदर चल रहा है, क्या हम कह रहे हैं या जो भी हमारे थॉट आ रहे हैं, और उसके बाद लेट द वे पीपल आर, लेट बी, जिस तरह से हैं उन्हें वैसे ही रहने दें और हम भी लेट गो कर दें, यानी जिसके साथ हम अटैच हो जाते हैं उन्हें हम जाने दें। शायद एक बात एक और कहना चाहेंगे सिस्टर शिवानी कि कहा जाता है कि जो अपना है वो कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा,
2: दे विल कम बैक,
1: और जो कभी था नहीं आपका उसको आप कितना भी रोक लीजिए।
2: तो ये सब फिलोसफिकली हमें पता होता है लेकिन प्रैक्टिकल में
1: बहुत मुश्किल है। नमस्कार।

0: अरे अरे अरे भैया, आप ये कूड़ा सड़क पे क्यों फेंक रहे हैं?
1: अरे मैडम जी, ये सड़क आपके पिताजी की है के?
0: जी हाँ, ये सड़क मेरी है, शहर मेरा है, शहर की सारी गलियाँ मेरी है, इनको साफ करने वाले लोग भी मेरे हैं। सो इन शॉर्ट, ये देश मेरा है और इसकी सफाई की जिम्मेदारी भी मेरी है। तो अब आप इस कूड़े को उठाओ और इसकी सही जगह पे पहुँचाओ, यानी कि कूड़ेदान में। कूड़ेदान में
2: आइए, बेहतर काम करें, कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर सभी श्रोताओं का स्वागत है। श्रोताओं, मैं हूं आपके कम्युनिटी मेंबर मंजू चंदीला और हम आपके लिए लाए हैं शिव पुराण। दोस्तों, शिव पुराण सुनवाने का जो हमारा उद्देश्य है वह है भक्ति का प्रचार प्रसार करना और जन जन के दुखों का विनाश करना, उनका सरल से सरल उपाय ढूंढना। और वो ढूंढने की ज़रूरत नहीं, वो बताएगा हमें शिव पुराण। और शिव पुराण सुनाएंगी हमको डॉक्टर लीना सिन्हा जी। तो लीना सिन्हा जी आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं। लीना जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद मंजू जी।
0: लीना जी, आपने पिछले एपिसोड में हमारे श्रोताओं को बहुत ही मनोरम दृश्य का वर्णन प्रसंग ऐसा सुनाया था कि मन अभी तक भी उन्हीं दृश्यों में खोया हुआ है। और बहुत से फ़ोन आए कि जो दृश्य शिव पुराण में भगवान शिव और माँ आदि शक्ति के विवाह का सुनाया गया, अभी तक भी हम उस पर चिंतन करते रहते हैं, उसके बारे में ही सोचते रहते हैं। आपने बताया कि पहले तो मैं ना तैयार नहीं हो रही थी माँ पार्वती की माँ, लेकिन जब सब विष्णु जी ने समझाया और नारद जी ने शिव को कहा कि आप अपने वास्तविक रूप में आइए, तो मैं ना हैरान हो गई थी उनकी सुंदरता देखकर। तब रत्नों से सुशोभित संसार के देवता को अपने सामने पाकर मैं ना अचंभित सी हो गई थी। तब शिव ने भी, फिर उन दोनों ने, शिव और माँ पार्वती ने अंदर विवाह मंडप में प्रवेश किया। शिव ने भी शिवा को देखा। तब सभी देवताओं ने जो थे उन माँ आदि शक्ति की देखकर, उनकी सुंदरता देखकर, अनुपम छटा देखकर, उनके सामने नतमस्तक होकर सबने प्रणाम किया। और गर्ग ऋषि ने हिमालय से कहा कि अब आप भगवान शिव को पाणी ग्रह के लिए अपने घर में ले आइए। अब उनका विवाह शुरू होने वाला था कि अब मंत्रोच्चारण से, विधि विधान से। तो अब लीना जी हमें बताइए कि हिमालय राज भगवान शिव को पाणी ग्रह संस्कार के लिए अपने घर में ले आए, अब वहाँ क्या हो रहा है वो हम सुनना चाहते हैं
1: जी। अब रुद्र संहिता के पार्वती खंड का,
0: हाँ जी,
1: 47वां अध्याय है। और इस 47वें अध्याय में हम देखते हैं कि आगे क्या होता है कि कहते हैं कि बारात तो अंदर आ गई, शिव जी अंदर आ गए, सभी बड़े खुश, इतना खूबसूरत दूल्हा, इतना अप्रतिम वर और इतने अद्वितीय पति शिव जी बनने वाले थे पार्वती के। और पार्वती भी अनिद्य सुंदरी थी, यानी कि जो सर्वांग सुंदरी कहा जाए, आदिशक्ति हैं, सारा सौंदर्य ब्रह्मांड का जिनमें समाया हुआ है वो आदिशक्ति हैं और सदाशिव हैं। तो ऐसे सुंदर वर वधु का मिलन होने जा रहा था इस विवाह मंडप में, विवाह संस्कार में। और बाराती जो बन रहे थे वो गदगद हो रहे थे, वो धन्य हो रहे थे। धन्यता तो थी ही, क्योंकि ये जिस परमेश्वर को पाने के लिए ऋषि मुनि कितने काल तक तपस्या करते रहते हैं, साधना रत रहते हैं, उपासना में रत रहते हैं, कोई एक पैर पर खड़े रहते हैं क्योंकि ध्यान से उनको देखा जाता है, कोई निर्विकल्प समाधि में, कोई सविकल्प समाधि में जाते हैं परमेश्वर, लेकिन नजर तो आए। और उन परमेश्वर की शादी है, उन परमेश्वरी का विवाह है। तो ये अद्भुत दृश्य देखने के लिए हर कोई व्याकुल है, हर कोई लालायित है कि आखिर यह मनोरम दृश्य उनकी आंखों से ओझल ना हो जाए। तो इसके लिए सभी एक टक नज़र वहाँ डाले हुए हैं, निहार रहे हैं भगवान शिव की अप्रतिम छवि को और वधू की अप्रतिम छवि को। अब देखिए आगे क्या होता है कि सब जो है सब सुखपूर्वक शिव जी की सेवा करने लगे तथा हिमालय ने अनेक प्रकार की संपत्तियों से उन सबका सम्मान किया जो बाराती थे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, ततः शैल वरह सो अपि प्रीत्या दुर्गो पपीतकम कार्यामा सोत्साहम वेद मंत्र ही शिवस्य च अथ विष्णु वादयो देवा मुनय सकुतूहलम हिमाचल प्रार्थनया विवेशांतर गृहम गिरे श्रोत्याचारम भवाचारम विधाय च यथार्थतः शिवामलंकृता कृताम चक्रुः शिवदत्त विभूषण प्रथमम स्नापयित्वा ताम भूषयित्वात् सर्वसः। अब क्या कहते हैं ब्रह्मा जी कि तब हिमालय ने उत्साह पूर्वक दुर्गा और शिव जी का उपनयन संस्कार वैदिक मंत्रों द्वारा करवाया। ब्रह्मा जी ने कहा कि गर्ग मुनि ने क्या किया, दोनों का उपनयन संस्कार करवाया
0: गर्ग मुनि,
1: और पार्वती को दुर्गा शब्द से ही संबोधित किया जा रहा है क्योंकि पार्वती ही दुर्गा है, दुर्गा ही पार्वती है। अब कहते हैं कि फिर विष्णु आदि देवता और मुनिजन गिरिराज हिमालय की प्रार्थना को सुनकर कुतूहल के साथ प्रवेश किए, वेदाचार और लोकाचार को यथोचित विधि से करके शिवजी द्वारा दिए गए आभूषणों से शिवा को विभूषित किया। पहले उसे स्नान कराया, फिर ब्राह्मणों की स्त्रियों तथा सखियों ने उनकी आरती की, दो नए वस्त्रों को उसे पहनाया जिनसे वह सुशोभित हुई। उस समय वह हिमालय की कन्या शंकर की पत्नी शोभित हुई। हिमालय की कन्या थी लेकिन शंकर से उनका विवाह हो रहा था तो वो उससे सुशोभित हुई। वीरराज महाशैल दुहिता शंकर प्रिया कंचुकी परमा दिव्या नाना रत्नान्विता अद्भुता विधृता च तया देव्या विलसंती अधिकम मुने सा बभार तदाहारम दिव्य रत्न समन्वितम वलयानी महारानी शुद्ध चामी करानी च स्थिता तत्रैव सुभगा ध्यायन्ति मनसा शिवम सुशुभे अति महाशैल कन्यका त्रिजगत प्रसु। अब कहते हैं कि उस समय उसने अनेक रत्न जटित सुंदर कंचुकी को धारण किया, उससे वह अधिक सुशोभित हुई। उसके बाद उसने दिव्य रत्न जटित हार को धारण किया और बहुमूल्य शुद्ध सोने की चूड़ियों को भी उसने धारण किया। वह सौभाग्यवती गिरिराज पुत्री तीनों लोकों की माता मन से शिव जी का ध्यान करती हुई वहीं बैठी हुई शोभित हो रही थी। उस समय दोनों ओर आनंददायक उत्सव मनाया जा रहा था। ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए गए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उस समय औरों को भी दान दिया गया। उत्सव के साथ गीत वाद्य भी वहां हो रहा था। फिर मैं यानी ब्रह्मा जी विष्णु आदि देवता तथा मुनिजन सभी प्रसन्न होकर उत्सव मनाने लगे। भक्ति से शिवा को प्रणाम कर और शिव जी के चरण कमलों का ध्यान कर हिमालय की आज्ञा पाकर अपने अपने स्थान पर बैठ गए। इस बीच वहां ज्योतिष शास्त्र के पंडित गर्ग मुनि ने गिरिराज हिमालय से कहा। अब गर्ग मुनि जो है वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पानी ग्रहण संस्कार के लिए शिव जी को ले आइए। अब सभी उठ गए और वेद मंत्रों के साथ बाजे बजने लगे, प्रसन्न होकर आपस में कहने लगे शिव जी को लेने के लिए संभवतः पर्वत आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि हम सबके बड़े भाग्य से पानी ग्रहण का समय आ गया है। और सभी हिमालय के घर पहुंच गए थे। कहते हैं कि काली जो है वो कौन है, पार्वती, पार्वती ही दुर्गा है, पार्वती ही काली है। कहते हैं काली के प्राप्त होने की इच्छा से शंभु अत्यंत प्रसन्न हुए क्योंकि हर जन्म में काली किनकी बनती है, भगवान शिव की। और यद्यपि माता पार्वती जब शिव से विलग होती है तो सब कुछ भूल जाती है, जीवात्मा रूप में जब इस संसार में आती हैं तो सब कुछ भूल जाती हैं, सब कुछ नए सिरे से उनका होता है, लेकिन अंदर में परमेश्वर के प्रति इतना प्रेम भरा हुआ है कि वो प्रेम खत्म नहीं होता। और जिस तरह से बारिश के समय में सूखी हुई दूब हरी हो जाती है, ठीक उसी तरह से भावनाएं समय पा करके हरी हो जाती हैं कि पार्वती और शिव का पहला साक्षात्कार जब होता है तो पार्वती अपने शिव को कहीं ना कहीं से पहचान लेती हैं और फिर उनके अंदर प्रेम का अंकुरण होता है, चाहे वो जिस किसी भी रूप में आए इस धरती पर, लेकिन अंततः भगवान शिव को वो पहचान ही लेती हैं। यानी जीवात्मा परमात्मा की सहचरी है और जीवात्मा हमेशा परमात्मा को ढूंढती रहती है
0: और इस ढूंढने के क्रम में जो उत्सुकता, जो प्रेम उनके अंदर जागृत होता है, वही वैराग्य का भी रूप धारण करता है, क्योंकि परमात्मा को वैराग्य से ही वो पा सकती है। प्रेम में वैराग्य ये होना पार्वती से कोई सीखे। वैराग्य मतलब कि संसार से उन्होंने अपने आप को खींच लिया और जोड़ दिया किससे? भगवान शिव से। संसार को माइनस कर दिया, शिव जी को प्लस कर दिया। शिव का अनुराग जिनके रग रग में बह रहा हो, शिव के प्रति पुलकन है, शिव के प्रति ही उनकी धड़कनें धड़कती हैं, शिव ही जिनकी सांसों में बसे हुए हैं, शिव ही जिनके रोम रोम में हैं, वो हैं पार्वती, वो हैं काली, वो हैं दुर्गा।
1: तो कहते हैं कि दोनों जो है सुंदर सुंदर वस्त्र पहने हुए थे और महोत्सव मन रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सब आगे चल रहे थे। उस महोत्सव में शंख, भेड़िया, नगारे, बड़े ढोल, गोमुख आदि बार बार बजाए जा रहे थे। गायक मंगल गान गा रहे थे, स्त्रियां अनेक प्रकार से नृत्य कर रही थीं। इन सब के साथ संसार के एकमात्र

0: शिव जी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, बारात के साथ आए, यज्ञ मंडप में उन्होंने प्रवेश किया, वहाँ उनकी अनेक प्रकार से स्तुति की गई। अब कहते हैं आगे कि विषाद दुतार तारयामास सुमहेशम पर्वतोत्तम निन्यूड गुहांतरम प्रीत्या महोत्सव पुरः सरम हिमालयो अपि संप्राप्तम सा देवगण मिश्वरम प्रणम्य विधि बद भक्तया नीराजनम अथा करोत। नीराजनम मतलब आरती। कहते हैं कि पर्वत श्रेष्ठों ने उन्हें बैल से उतारा और महान उत्सव तथा प्रेम के साथ उन्हें घर के भीतर ले गए। देवताओं के साथ अपने घर में आए हुए शिव जी को हिमालय ने भक्ति से विधिवत प्रणाम किया और उनकी आरती उतारी। सभी देवताओं मुनि आदि को प्रणाम कर बड़े उत्साह के साथ अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए हिमालय ने उन सब का सम्मान किया। वह हिमालय विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को अर्धपाद्य द्वारा सम्मानित कर अपने घर के भीतर ले गया और उसने ब्रह्मा विष्णु शिव आदि प्रमुख देवताओं को आंगन में रत्न सिंहासनों पर बैठाया, क्योंकि राजा का घर था भाई, रत्न सिंहासनों की कमी नहीं थी, तो उन रत्न सिंहासनों को उसने विशिष्ट अतिथियों के लिए रखा हुआ था, वो थे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब कहते हैं कि मीना ने, उसकी सखियों ने, ब्राह्मणियों ने तथा सौभाग्यवती स्त्रियों ने प्रसन्नता से उनकी आरती। कर्मकांड के ज्ञाता पुरोहित ने शिव जी के हाथ से मधुपर्क आदि कृत्य विधिवत करवाए। हे मुनि, मैंने पुरोहित को प्रस्ताव के अनुसार मंगल कार्य करने की प्रेरणा दी, उसने भी तदनुसार सब किया। हिमालय ने अत्यंत प्रेम के साथ घर के भीतर प्रवेश कर वहाँ समस्त आभूषणों से विभूषित वेदी के ऊपर बैठी वह कृशोदरी पार्वती सुशोभित हो रही थी। मेरे और विष्णु के साथ शिव जी को वहाँ ले आए। कन्यादान के योग्य लग्न की प्रतीक्षा करते हुए बृहस्पति आदि देवता वहाँ आनंदित हो रहे थे। खूबसूरत वर्णन है। और देखिए, जो विवाह आजकल करवाया जा रहा है, ऐसा लगता है कि सतयुग में जो शिव पार्वती का विवाह हुआ था वहीं से सब कुछ लिया,
1: वही विधि विधान,
0: वही विधि
1: मंत्रोच्चारण द्वारा,
0: वही मंत्रोच्चारण है, वही सब कुछ है, और उसी के अनुसार दंपति में जो कहा जाता है कि सर्वश्रेष्ठ दंपति शिव और पार्वती को ही कहा जाता है। हमेशा वामांगी बन करके पार्वती उनके साथ रहती है, शिव पार्वती को नहीं छोड़ते, पार्वती शिव को नहीं छोड़ती, चाहे जन्म जन्मांतर क्यों नहीं पार्वती के हो जाए, लेकिन पार्वती हमेशा शिव की ही होती है और शिव हमेशा पार्वती को कहीं ना कहीं से ढूंढ ही निकालते हैं।
1: और ये भी तो एक बात देखिए लीना जी, कि विवाह के मंत्रोच्चारण के लिए, विधि विधान के लिए, सारे संस्कार के लिए एक विद्वान पंडितों को ही चुना जाता है
0: जी,
1: जिन्हें ये सारे सब कुछ विद्या आती हो। कोई छोटे मोटे या थोड़ी सी उच्च श्रृंखल से विद्या वाले पंडित को विवाह के लिए नहीं चुना जाता। तो ये पहले से ही परंपरा चली आ रही है कि गर्गाचार्य ऋषि, गर्ग के जैसे महाऋषि जो वहाँ पे मंत्रोच्चारण हो रहा है और उनको पाणि ग्रहण संस्कार करा रहे हैं, तो उसी परंपरा को आज भी ये यहाँ पर चल रही है हमारे समाज में, कि विद्वान ब्राह्मणों को ही चुना जाता है जो विधि विधान से और उचित मंत्रोच्चारण द्वारा पूरी तरह से विवाह को संपन्न करा सके और उसके पूरे वेदोचित जो हैं जितने भी मंत्र हैं उनका सही तरह से वहाँ पर पालन हो सके।
0: लेकिन आजकल क्या होता है कि रात्रि में सब कुछ होता है, रात में लोग नाच गा करके थक जाते हैं, थकने के बाद खाना पीना खाया, यानी कि वर वधु भी खा लेते हैं प्रायः सब खा पी लेते हैं, उसके बाद आराम करने का समय आता है और उस समय विवाह होता है। विवाह जैसा शुभ कार्य उस समय होता है जिस समय सभी थक करके चूर हो जाते हैं, तो फिर विवाह हुआ कहाँ ठीक से। वेदोच्चारण जहाँ होता है वहाँ उसी समय कान में फूंक देते हैं कोई कि पंडित जी जरा जल्दी जल्दी करवा दो, उतना समय नहीं है। हर चीज़ के लिए समय है, फोटो खिंचाने के लिए समय है, बारात के स्वागत के लिए समय है, खान पान के लिए समय है, सब कुछ के लिए समय है, लेकिन विवाह के लिए समय नहीं होता। जबकि अगर पूर्ण विधि विधान के साथ विवाह कराया जाए तो 2-3 घंटे लग जाते हैं,
1: बड़े आराम से।
0: हाँ,
1: बड़े आराम से लग जाते हैं,
0: लेकिन ऐसा होता नहीं है।

0: लीला जी, आप याद करिए कि अभी भी, अभी पिछली पीढ़ी को लेकर चलते हैं, तभी भी 12 बजे के करीब जो है वो शुरू होते थे फेरे मंत्रोच्चारण के साथ में, और सुबह के 4-5 बजे तक जो है ख़त्म होता था विवाह का मंत्रोच्चारण। लेकिन अब क्या है कि 1 बजे तक, जैसा कि आपने बताया कि वो नाच गाना चलता रहता है, फ़ोटो सेशन चलते रहते हैं, और फिर उसके बाद में 2 बजे के करीब वो फिर शुरू होता है। तो उसमें क्या है कि पुत्र के और पुत्री के जो घर वाले हैं तक बस वही लगभग वही हो जाते हैं। हाँ, और आप ठीक कह रही हैं कि ये उनके कान में डाल दिया जाता है कि थोड़ा विवाह भाई जल्दी ख़त्म कर देना। अब 2 बजे वो बैठे हैं दूल्हा दुल्हन, या 2:30 बजे बैठे हैं, और 4 बजे फिर उनको ख़त्म करना पड़ेगा।
1: दुल्हन सो रही है, दूल्हा भी सो रहा है, नींद आती रहती है, प्राय नींद आती रहती है, स्वाभाविक है नींद आएगी। तो इसलिए सवेरे का टाइम जो होता था प्रातः काल का, उस समय जो विवाह होता था वो दैवी विवाह होता है,
0: क्योंकि एक
1: देवताओं का अनुग्रह बरसता है। लेकिन इस समय पिशाच, प्रेत, राक्षस ये सब घूमते रहते हैं
0: ब्रह्म मुहूर्त में जब,
1: तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में जो विवाह होता था, विवाह कार्य होता था, वो सबसे अच्छा होता था। और ब्रह्म मुहूर्त नहीं हुआ, दिन में फिर भी विवाह करिए वो भी अच्छा है, लेकिन 12 बजे रात के बाद तो भूत प्रेतों का टाइम आनंददायक नहीं रहता, स्थिति आनंददायक नहीं होती है उस समय। हाँ, नींद तोड़ करके लोग आते हैं और कुछ देर बैठते भी हैं, लेकिन ज्यादातर जो है ये अरुचिकर होता है। और इस समय वेद मंत्र भी लोगों को कान में मधुर नहीं लगते हैं, तो इसलिए हम लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए।
0: लीना जी, जैसे आजकल का ब्रह्म मुहूर्त जो है, जैसा कि कहा है, मैंने भी सुना है कि ब्रह्म मुहूर्त में 3 बजे से फिर 5 बजे तक का, और उससे ऊपर भी जा सकते हैं, वो सारा ब्रह्म मुहूर्त माना जाता है। तो उसे अवधि में, उसी काल में जो है विवाह संपन्न होना चाहिए, जैसा कि आप कह रही हैं।
1: लेकिन प्राय सुबह हो ही जाती है, वो तो हो गई, लेकिन रात की जो थकान रहती है वो उस ब्रह्म मुहूर्त को जो है आनंदित नहीं कर पाती। तो इसलिए इस विषय पर हमें विचार करना चाहिए आज के समय में। अब देखिए, जब शिव का विवाह हो रहा था तो सभी दिवस में गए थे और आनंद मग्न थे, उत्सव हो रहा था, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी वहाँ पर विराजमान हैं, और पार्वती के साथ शिव जी का विवाह हो रहा है, और जितनी भी नागरिक स्त्रियाँ थी, नगर की वधुएँ थी, सब इन दोनों को देख देख करके क्या हो रहे थे, मगन हो रहे थे, विभोर हो रहे थे, आत्मविभोर हो रहे थे। कहते हैं कि जब गर्ग ऋषि जब बोलते हैं कि ये शिव जी को ले आइए, तो सब विभोर होकर के उनको देख रहे हैं। कहते हैं जहाँ घड़ी रखी थी वहीं गर्गाचार्य बैठे हुए थे, जैसे ही घड़ी समाप्त हुई वैसे ही ओम का उच्चारण किया। गर्गाचार्य ने पुण्य वचन कह करके अपने हाथ से पार्वती की अंजलि में अक्षत डाले, और उन अक्षतों को उसने शिव जी के ऊपर डाला। वधू ने वर का क्या किया, पूजन किया। दही अक्षत तथा कुसोदक द्वारा उस प्रसन्नचित सुमुखी पार्वती ने शिव जी की पूजा की, जिनको प्राप्त करने के लिए पहले शिवा ने कठोर तप किया था। पूजा के अवसर पर उन शिव जी को देखते हुए अत्यंत सुशोभित हो रही थी। हे मुनि, मैंने गर्ग आदि ऋषियों से कहा, लोक व्यवहार में तत्पर शिव जी शिवा की पूजा करें। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि शिव जी की पूजा तो शिवा ने कर दी, लेकिन शिव जी शिवा की पूजा करें। देखिए, उस समय भी ये चलन में था कि वर वधू की पूजा करे या वधू वर की पूजा करे, क्योंकि दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित होता है इससे। और अगर हम मन से, तन मन धन से एक दूसरे को सम्मान देते हैं, तभी सम्मान मिलेगा, नहीं तो सम्मान नहीं मिलेगा। आजकल तो एक छत के नीचे रह करके भी पति पत्नी में बातें नहीं होती हैं कभी कभी। तन मन मिलते हैं, आत्मा नहीं। तो तन मन और आत्मा, ये तीनों मिल जाए तभी विकास है, मुक्ति है। अब कहते हैं कि इस प्रकार वे दोनों पार्वती परमेश्वर लौकिक रूप से परस्पर पूजा करते हुए सुशोभित हो रहे हैं। पार्वती और शिव जी एक दूसरे क्या कर रहे थे, उनकी पूजा कर रहे थे। तीनों लोकों की शोभा से सुशोभित एक दूसरे को देखने वाले उन दोनों की लक्ष्मी आदि स्त्रियों ने आरती उतारी, उसी प्रकार ब्राह्मणों की स्त्रियों और नागरिक स्त्रियों ने उनकी आरती की और शिव शिवा को देखती हुई बहुत प्रसन्न हुई। शिवांच शंभुंश विलोकयंत्यो अपूर्वम मुदम ताह सकला महोत्सवम, कि अपूर्व मोद उन्हें होने लगा, आमोद प्रमोद में दोनों रम गए और इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हुआ। अब आगे देखिए क्या कहते हैं। रुद्र संहिता के पार्वती खंड का 48वां अध्याय अब शुरू हो रहा है। अभी विवाह जो है पूर्णतः संपन्न नहीं हुआ है, अभी दोनों एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, अब क्या कहते हैं। इसी समय गर्गाचार्य द्वारा प्रेरित हिमालय मेना के साथ कन्यादान करने के लिए तैयार हुए। अब कन्यादान भी हो रहा है, यानी कि जितनी विवाह परंपरा है
0: तभी से है,
1: वो उसी समय से है। पानी ग्रहण हो रहा है, द्वार पर पूजन हो रहा है वर का, फिर वधू वर वधु दोनों का पूजन एक दूसरे लोग कर रहे हैं। अब पानी ग्रहण संस्कार हो रहा है, कन्यादान हो रहा है। तो अब कन्यादान में क्या है, कहते हैं सोने का घड़ा लेकर वस्त्र तथा आभूषणों से शोभित भाग्यवती मेना हिमालय के बाईं ओर आकर खड़ी हो गई। माँ बाप करते हैं कन्यादान, और कन्यादान जो होता है वो थोड़ा सा विव्वल भाव विव्वल कर देने वाला क्षण होता है, क्योंकि माता पिता यही सोचते हैं कि चलो अब तो हम कन्या को दान दे दिए और कन्या पराई हो गई। कन्यादान के पहले पराई नहीं होती है, कन्यादान करने के बाद पराई होती है, क्योंकि कन्यादान को सबसे अधिक शुभ माना गया कि आपने कन्या का दान किया तो आपके जीवन में मंगल ही मंगल है, कि क्योंकि कन्या बहुत प्रिय होती है हर किसी को, हर माँ बाप को। पर सबसे प्रिय वस्तु का दान जिसने कर दिया,
0: सबसे बड़ा दान,
1: ये सबसे बड़ा दान
0: दान कहलाता है।
1: तो अब कहते हैं कि हिमालय के पास मेना आकर के खड़ी हो गई। पाद्यादि भी ततः शैल प्रहिष्ट सपुरोहित तम वरम वर्यामास वस्त्र चंदन भूषण ततो हिमाद्रिना प्रोक्ता द्विजा तिथ्या कीर्तन प्रयोगो भन्यताम तावद विस्मयम समय आगते। अब कहते हैं कि तब पुरोहित सहित हिमालय ने प्रसन्न होकर पाद्यादि तथा वस्त्र चंदन आभूषणों से उस वर का वरण किया। तब हिमालय ने ब्राह्मणों से तिथि आदि सहित समय के आने पर कन्यादान संकल्प पढ़ने के लिए कहा। यह सुनते ही उन ज्योतिषी ब्राह्मणों ने निश्चिंत होकर तिथि आदि का उच्चारण किया। शिव जी द्वारा हृदय से प्रेरित हिमालय ने सृष्टिकर्ता शिव जी से हंसते हुए कहा, हे शिव जी, अपना गोत्र प्रवर कुल नाम वेद तथा शास्त्र कहिए, देर मत कीजिए। क्यों हंस रहे थे हिमालय, क्योंकि वो तो जानते थे कि शिव जी का ना कोई कुल है ना कोई गोत्र है। तो हंसते हुए कहते हैं कि स्वगोत्रम कथ्यताम संभो प्रवरश्च कुलम तथा नाम वेदम तथा शाखाम मा कार्षी समयात्ययम। अब ब्रह्मोवाच इत्याकर्ण्य वचस्तस्य हिमाद्रे शंकरः तदा सुमुखो विमुखः सद्यो अपि असोच्य सोच्यताम गतः एवं विधः सुरवरैः मुनिः मुनिभिः तदानीं गंधर्व यक्ष गण सिद्ध गणैस्तथैव दृष्टो निरुत्तर मुखो भगवान महेशो अकार्षी सदाय मथ तत्र स नारद तुम। अब कहते हैं कि ब्रह्मा जी कहते हैं कि हिमालय के इस वचन को सुनकर सुमुख शिवजी उदास हो गए, अशोचनीय होने पर भी चिंतित हो गए। इस प्रकार उस समय देवता मुनि सिद्ध गंधर्व तथा यक्षगणों ने भगवान शिव जी को चुप हुए देखा तो तुमने हे नारद उनकी सहायता की। हे नारद, ब्रह्म तत्व को जानने वाले तुमने शिव जी से प्रेरित होकर उस समय वीणा बजाई, तब बुद्धिमान गिरिराज ने हठ के साथ तुम्हें रोका और उसके बाद ब्रह्मा विष्णु देवता मुनि आदि ने भी रोका। शिव जी की इच्छा से जब तुम रुके नहीं तब हिमालय ने तुमसे कहा, वीणा मत बजाओ हे पंडित देवर्षि। जब तुम्हें हठ से उन्होंने रोका तब तुमने शिव जी का स्मरण कर उनसे कहा। अब क्या कहे नारद जी, सुनने लायक बात है। नारद जी ने कहा कि तुम ही मूढ़त्वम आपन्नो न जानासि च किंचन वाच्य महेश विषय अतिव असि तुम बहिर्मुख त्वया पृष्टो हरह साक्षात गोत्र कथनम प्रति समय स्मित ददंत्य उपहास करम वचः अस्य गोत्रम कुलम नाम नैव जानन्ति पर्वत विष्णु ब्रह्मा देव अपि परेशाम का कथा स्मृता। अब नारद जी कहते हैं कि तुम महान मूर्ख हो जो उनके कुल और गोत्र को पूछ रहे हो, तुम कुछ भी नहीं जानते, शिव जी के बारे में तुम सर्वथा अनभिज्ञ हो। तुमने शिव जी से पूछा कि तुम्हारा क्या गोत्र है, इस समय तो यह पूछना उपहास करना है। इनके गोत्र कुल नाम को तो हे पर्वत ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु आदि भी नहीं जानते, दूसरों की तो बात ही क्या है। हे शैल, जिनके एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, एक दिन में करोड़ों ब्रह्मा लय हो जाते हैं, उन्हीं शिव जी को आज तुम काली के तपोबल से देख रहे हो। तुम शिव जी को जो साक्षात देख रहे हो वो काली का तपोबल था इसलिए देख रहे हो, बहुत सुंदर, देख नहीं पाते।
0: बहुत सुंदर विवाह का वर्णन आपने सुनाया लीना जी, हम सब की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद
0: दोस्तों, अब समय इजाज़त नहीं दे रहा है कि मैं इस एपिसोड को आगे बढ़ाऊं, तो आप कृपया मुझे भी इजाज़त दीजिए और अगली बार पुनः अगले एपिसोड में हम यहीं पर मिलेंगे मानव रचना रेडियो स्टेशन 107.8 FM पर। फील गुड, फील लाइफ।

0: तो फिर कहना
1: सिटी का जंक्शन 107.8 FM फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन, अपना रेडियो स्टेशन,
2: मन का रेडियो बजने दे जरा।
3: रेडियो मनोविष्णा 107.8 FM पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रांगा और लेकर के आ गई हूं प्रोग्राम आत्मबोध। ये खूबसूरत सा प्रोग्राम शुरू हो चुका है और इसी के साथ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम हर हफ्ते आपके पास चले आते हैं और हमारे साथ में मैं अकेली नहीं होती हूं, स्टूडियो में होते हैं बीके ज्योति जी और बीके प्रिया जी। तो आज भी ये स्टूडियो में मौजूद है, तो चलिए इनसे बात करते हैं, इनसे हालचाल जानते हैं और उसके बाद बताती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं इस प्रोग्राम में। बीके प्रिया जी और बीके ज्योति जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करते हूँ इस प्रोग्राम में।
4: ओम शांति। मैं बीके ज्योति और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रियंका, आपको भी से मिलके भी बड़ा अच्छा लगता है जब हम आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम इस अध्यात्म की बातें करते हैं तो और ही वातावरण के अंदर भी बहुत एक पॉजिटिविटी हो जाती है और जो लोग सुनते हैं उनके भी मन में पॉजिटिविटी जरूर होती होगी। यही हमारी शुभकामना
3: जी। और पूरे दिन में सुबह सुबह का जो वक्त होता है ना, वो बहुत ही ऐसा जिंदगी को जीने वाला वक्त होता है, क्योंकि उसके बाद तो भाग दौड़ शुरू हो जाती है।
4: बिल्कुल।
3: तो सुबह सुबह ऐसी वाणी सुन लेना ही अपने आप में दिन बनाने वाली बात है। बीके प्रिया जी, आप कैसे हैं?
5: बहुत अच्छे हैं और उम्मीद है हमारे जो भी लिसनर्स हैं, श्रोतागण हैं, वो भी बहुत ही खुश होंगे, बहुत सुखी होंगे। और इसी खुशी और सुख को बढ़ाने के लिए ही हम सभी आप सबके बीच में आज राम चरितमानस जी का शुरुआत कर रहे हैं। और प्रियंका, आप कैसे हैं?
3: जी, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और आप लोगों से मिलती हूँ और इतनी सुबह मिलती हूँ तो और बढ़िया हो जाती हूँ, एक अलग सी पॉजिटिविटी। और आप दोनों से मिलती हूँ तो मैं और अच्छी हो जाती हूँ, और साथ ही आप लोगों का साथ हमें मिलता है। शुक्रिया, अपना साथ आप ऐसे ही बनाए रखें। और आप जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं और अभी अभी सुनना शुरू किया है या कुछ समय से सुनना शुरू किया है और आपको नहीं पता कि अपनी बातों को रेडियो तक पहुंचाना कैसे, यानी कि हमारे तक पहुंचाना कैसे, तो बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल सा नंबर है। नंबर है 8010781078। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी बातें, अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि प्रोग्राम है आत्मबोध और हम श्री रामचरितमानस शुरू कर चुके हैं, यानी कि पिछले ही हफ्ते हम लोगों ने श्री रामचरितमानस को शुरू किया और उसकी विशेषताएं जानी। इसी के साथ आज भी बहुत कुछ होने वाला है प्रोग्राम में, लेकिन उससे पहले चलिए हम एक प्यारा सा भजन सुन लेते हैं और उसके साथ ही बहुत सारे सवाल मेरे मन में हैं जो मैं शेयर करने वाली हूँ बीके प्रिया जी और ज्योति जी से। अच्छा बीके ज्योति जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, श्री रामचरितमानस हम आगे शुरू करें, उससे पहले मैं नमन वंदना देख रही थी, इसमें श्री रामचरितमानस में शुरू होते ही नमन वंदना है, जिसमें मैंने जितना पढ़ा तो मुझे यही समझ में आया कि देवताओं को तो नमन किया ही गया है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज, असुरों को भी नमन किया गया है
4: जी।
3: जिनको धिकारा जाता है, यहाँ पर उनको नमन करने की मतलब क्यों ऐसा किया गया है और ये पूरी नमन वंदना क्या है, आप इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए।
4: बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत गहराई से जानने की बातें हैं कि तुलसीदास जी ने इस पूरे रामचरितमानस में बहुत सुंदर ढंग से हर एक चीज की बड़ी अच्छी क्लेरिफिकेशन की है। उन्होंने सबसे, जैसा कि हमने अगर श्रीमद् भगवद गीता आपको याद हो तो हमने किया था
3: जी,
4: उसके अंदर परमात्मा की जो बात कही थी कि परमात्मा सभी जो पुष्पों में सबसे सुंदर पुष्प है, नदियों में जो सबसे उत्तम नदी है, उसकी संज्ञा दे करके और उनको नमन किया गया था, उनकी महिमा की गई थी परमात्मा के बराबर। ऐसे ही यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी भाषा, किसी भी कुल का है, लेकिन उनमें अगर अच्छे आचरण हो जाते हैं तो वो वंदनीय हो जाता है, वो भी पूजनीय हो जाता है। और इसी चीज को उन्होंने कहा कि जो भी, चाहे वो उत्पत्ति करने वाले हैं, क्योंकि वो चाहे पालना करने वाले, चाहे विनाशकारी, तीनों ही चीजें, क्योंकि ये जरूरी है, तो इस दृष्टि में हम जो लोग हमारी कमियों को निकालते हैं या जो लोग हमें निग्लेक्ट करते हैं या जो लोग हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते तो हम कई बार उनसे नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन तुलसीदास जी ने कहा कि वो भी कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा रहे हैं, उनका वो व्यवहार भी कहीं ना कहीं हमें कुछ शिक्षा दे जाता है और हमें आगे बढ़ाता है। और जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने सबको नमन किया, चाहे वो यक्ष हैं, देव हैं, अक्षर हैं या फिर राक्षस हैं, उन्होंने उनमें बताया, जैसे कि राक्षसों की बात कही गई तो रावण में रावण के भाई विभीषण राक्षस कुल में थे, लेकिन उनके अंदर परमात्म चिंतन था, परमात्मा को वो याद करते थे और परमात्मा से उनका कनेक्शन रहा, उसके नाम में वो डूबे हुए थे, इसीलिए उनको उच्चतम बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया और उनकी वंदना की गई है। ऐसे ही अगर हम यक्षों की बात करें या हम जैसे हम गाते भी हैं कि वो अंधन को आंख देते हैं,
0: कोढ़िन
4: को काया देते हैं, तो अर्थ इसका क्या है? कोई आंखों के अंधों की बात यहाँ नहीं है, यहाँ जो अहंकार में अंधे हुए पड़े हैं उनको भी वो आंखें खोलते हैं कि आप खोलो आंखें ज्ञान की रोशनी से अज्ञानता के अंधकार को मिटाओ। कोढ़िन को काया अर्थात जो शरीर होते हुए भी अपने शरीर से कार्य नहीं लेते हैं, जो शरीर को बैठा देते हैं, उनको कहा गया कि उनमें वो बल भर देता है परमात्मा का नाम, उनमें वो ताकत भर देता है। कोई भी तरह की शरीर की विक्षिप्तता भी, अगर शरीर में हमारे कोई कमी है तो हम सब ये बात जानते हैं कि परमात्मा ने अगर किसी की पांचों इंद्रियों में एक भी इंद्री कमजोर है तो उसकी छठी इंद्री बहुत मजबूत होती है, तो परमात्मा ने उसको कहीं ना कहीं चीज दी हुई है जिसको हम समझ नहीं रहे और हम उसको वीकनेस समझ लेते हैं। तो यहाँ जो महिमाएं की गई हैं, यहाँ जो भी चीजें कही गई, जैसे कहा गया है तुलसीदास जी ने कहा भी, जो सुमिरत सिद्धि हुई गण नायक करिबर बंदन, करूं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं। बस याद करें मेरा साथी कौन है, परमात्मा, और मेरे सारे कार्य हुए पड़े हैं, माना मेरे अंदर वो सारी ताकत, वो सारी एनर्जी वो चार्ज हो जाती है और उसी से हम जो है, जिसके अंदर बताया भी उन्होंने, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करो। गणेश जी को भी आवाहन कर रहे हैं, चाहे वो श्याम वर्ण वाले नील कमल पर विराजित क्षीर सागर में सोए हुए श्री विष्णु जी की बात कहें, चाहे वो शिव की बात करें, चाहे वो पार्वती जी की बात करें, सबकी उन्होंने वंदना की है। और वंदना के पीछे ये है कि सब मेरे लिए सम्माननीय है, चाहे वो फूल है, चाहे वो पशु है, चाहे वो देव है, चाहे वो मनुष्य है, सब मेरे लिए वंदनीय है। और उसी वंदना के शिखर को ये लेकर के इस श्री रामचरितमानस का शुभारंभ किया गया है और सबको नमन किया गया है, और इसके शुभारंभ हम भी कर रहे हैं, तो हम भी आप सबको नमन करते हैं। जितने भी श्रोतागण हैं उनको भी हमारा नमन वंदन है कि वो सुने और अपने बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करके इसके अर्थ को जाने।
0: जी, और जब हम कोई चीज सुनते हैं तो उससे जुड़े कई प्रश्न भी आते हैं, तो अगर आपके जहन में कोई प्रश्न है, कोई बात जो आप हम तक पहुंचाना चाहें, तो हमारा नंबर है जो कि बहुत ही आसान है, नंबर है 8010781078। इस नंबर पे आप मैसेज करके अपनी बातें हम तक पहुंचा सकते हैं, और जब आप मैसेज करें तो नीचे अपना नाम और अपनी जगह जहां से आप भेज रहे हैं वो लिखना ना भूलें। बीके ज्योति जी ने नमन वंदना बताया कि किस तरीके से तुलसीदास ने श्री रामचरितमानस शुरू करने से पहले नमन वंदन किया है, जिसमें देवताओं को भी नमन किया गया है, असुरों को भी नमन किया गया है, यहाँ तक कि जो पशु हैं उसमें जो सर्वश्रेष्ठ हैं उनको भी नमन किया गया है। अब जो एक चीज मेरे दिमाग में आई है, जो मैंने इसी में ही देखी, और मैं जानना चाहूंगी बीके प्रिया जी से। प्रिया जी, एक लाइन में मैंने पढ़ा था कि किसी के लिए अगर उसे सिद्धि पानी है या किसी को अपना जीवन तारना है तो उसके लिए राम नाम ही काफी है। इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे राम नाम काफी है और किस तरीके से एक आदमी अपने आप को सिद्ध कर सकता है या फिर अपने आप को उतार सकता है संसार से।
5: जिस प्रकार से श्री रामचरितमानस जो लिखी गई है तुलसीदास जी द्वारा, तो उसमें अगर आप शुरू के ही अर्थ को समझेंगे तो वहां दो शब्द विशेष करा रहे हैं, जिसका हम आगे चलकर भी और आपको और अच्छे से बता पाएंगे कि नाम और रूप, यहाँ दो चीजों की चर्चा हो रही है। तो दोनों ही अलग बताए जा रहे हैं। जो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने आईक्यू लेवल, जो उस समय उनका लेवल था, उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, और जो सज्जन अर्थात जो समझदार है, जो समझ सकते हैं वो समझें, और जहां मैं गलत हूँ वहां उस चीज को वो करेक्ट करें। तो मैं समझती हूँ कि उनका आईक्यू लेवल हमारे लेवल से तो काफी समय से हाई है, तो उन्होंने वहां इस चीज को बहुत स्पष्ट कहा है कि नाम अलग है और रूप अलग है। रूप वो है जो हम देख पा रहे हैं, अर्थात तीर धनुषधारी जो है वो राम जी को देख पा रहे हैं, और नाम जो राम है वो बहुत बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़ा है, बहुत फलदायी है, लेकिन ये राम अलग है। और यहाँ राम नाम जो बताया गया है, इसकी संज्ञा किसी देहधारी पुरुष को नहीं दी गई है। यहाँ राम नाम में अग्नि, सूर्य और चंद्र का समावेश दिखाया है, जो र, आ और म को संबोधित कर रहा है। यहाँ र, आ और म ब्रह्मा, विष्णु और शंकर अर्थात महेश को भी संबोधित कर रहा है। अर्थात ये राम नाम इतना बड़ा है कि प्रकृति के जो तीन जो विशेष बताए, जैसे अग्नि, सूर्य और चांद, ये उनसे भी पावरफुल है, और जो पूरी सृष्टि का ही जिसको कहे स्थापना, पालना और विनाश के लिए निमित्त बताए जाते हैं, ये उनसे भी बड़ा है। तो ये वो राम जो नाम लिया जा रहा है, ये इतना पावरफुल है, इतना सृष्टिकर है, कि अगर इसको हम, जो तुलसीदास जी कहते हैं कि इसको अगर हम उल्टा भी पढ़ते हैं कि मरा मरा मरा मरा भी अगर हम बोलते हैं, तो भी ये बाद में आकर आपको सुनाई राम राम राम देगा। तो ये इतना सृष्टिकर है कि अगर आप इसे उल्टा भी पढ़ते हो तो भी आपको इसका फल प्राप्त होता है,
6: इतना पावरफुल,
5: इतना पावरफुल है। लेकिन अगेन कि हमें नाम और रूप को पूरी बारीकी से समझना होगा, क्योंकि अगर मैं नाम लेते वक्त रूप किसी और दिशा की तरफ चली जाती हूँ, बुद्धि मेरी उधर चली जाती है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैं सेब, दिल में मेरे सेब खाने की चाहत है, पर मुंह मतलब दिख मुझे सेब ही रहा है, पर मुंह से मैं आम बोल रही हूँ, तो वो चीज फिर क्लैश होती है। तो वो चीज मुझे मेरे अंदर को संतुष्टता पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगी। फल वो भी है आम और फल वो भी है सेब, लेकिन मैं चाहती सेब खाना हूँ पर मांग में आम रही हूँ, तो फिर वो पूर्ति नहीं होती है। उसी प्रकार से तुलसीदास जी इसको बहुत सुंदर रीति से स्पष्ट कर रहे हैं कि जो नाम है वो बहुत ऊंचा है और बहुत श्रेष्ठ है, बहुत पावरफुल है, लेकिन जो रूप जब हम नाम लेते हुए अपने मनस्पटल पर धारण करते हैं, अगर मेरी बुद्धि उस रीति या उस दिशा में चली जाती है, तो फिर मेरे को उतनी पावर की जो मेरे को होनी चाहिए प्राप्ति, वो नहीं होती है। तो यहाँ इन दोहों में बहुत स्पष्टता है, लेकिन उस स्पष्टता को जानने के लिए हमें उतने ही सरल भाव से, उस नजर से हमें देखना होगा कि यहाँ दो चीजों का वर्णन है, किसी एक का वर्णन नहीं है। और ये हमारे पूरी की पूरी शुरुआत में ही ये दिया गया है, इसीलिए श्रोतागणों से भी मेरा अनुरोध है कि जब भी हम श्री रामचरितमानस को पढ़ें, रामायण को पढ़ें, तो इस बात को हम जरूर ध्यान दें कि यहाँ पर दो चीजों का ही बहुत सुंदर रीति से वर्णन है। तो राम नाम बहुत ऊपर है, बहुत ऊंचा है, जिसका देवता भी, जैसे आपने अभी जो शुरू में देखा कि सभी को वंदना की गई है, तो सभी ने रिटर्न में राम नाम की वंदना भी की है, यानी देव गण, असुर गण, दानव गण, पशु गण, जो भी समस्त है, वो सब राम नाम को याद कर रहे हैं। लेकिन चोला जो रूप बोला गया है, वहां वो शब्द यूज नहीं हो रहा है। अर्थात हमें ये चीज लेनी होगी, जब रूप वर्ड आ रहा है तो हम राम जी जो धनुष वाले हैं उनको समझेंगे, और जहां नाम लिया जा रहा है वहां उस रूपधारी राम जी को नहीं बोला जा रहा है, इस चीज को हमें समझने की आवश्यकता है।
6: जी, यानी कि राम नाम जो है वो इतना पावरफुल और इतना स्ट्रांग है कि अगर आप अपने मन में अगर कोई चीज चाहते हैं और आप चाहते हैं कि मुझे ये नाम पाना है, मुझे अपने मन में वो चीज रखनी होगी, जी बहुत ही पावरफुल ये कहें कि नाम है, और जैसे कि हम सब भी कहते हैं कि अगर मन में कोई चीज आपके है और अगर आप दिल से वो चीज करते हैं तो डेफिनेटली पूरी होती है, तो वही इस नाम के साथ में है। अच्छा, आप राम नाम की बात हुई है तो मुझे याद आ गया, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने चार राम की बात की थी। मैं दोबारा से इस पर आना चाहूंगी, बात करना चाहूंगी। और हमने पिछले अध्याय में बात की थी चार राम की, हमने चार राम की इम्पोर्टेंस बताई थी। तो ये चारों राम जो हैं, मैं ज्योति जी आपसे जानना चाहूंगी किस तरीके से अलग हैं और इनमें भी सबसे ज्यादा महिमा किनकी है? क्या ये एक ही रूप हैं या ये अलग अलग रूप हैं, और अलग अलग रूप हैं तो महिमा सबसे ज्यादा किसकी है?
4: जैसा कि चार राम की बात कही गई है तो इसमें तो विदित ही है कि चार राम है तो अलग अलग बताए गए हैं, तो नेचुरली उसमें डिफरेंस तो होगा ही। तो जैसे साधारण और महत्वपूर्ण जो राम की बात कही गई, तो जो कहा गया कि एक राम जो सकल पसारा, जो दुनिया में बच्चों का नाम रख देते हैं राम श्याम, और एक राम जो घट घट लेता, माना जो हम सबके अंदर आत्मा राम विराजमान है, उसके लिए कहा जाता है। तो इसके बारे में तो बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो दो राम की बात कही गई कि एक राम जो जग से न्यारा और एक राम जो त्रेता युगी श्री रामचंद्र जी हुए, इन दो राम में कौन महत्वपूर्ण है? तो तुलसीदास जी ने इसके लिए भी बहुत सुंदर इसके अंदर चित्रण किया है कि जो त्रेता युग के श्री रामचंद्र जी थे, उनकी जो बात कही गई है वो एक दैहिक रूप में व्यक्ति आए और उन्होंने आकर के अपने कर्मों से श्रेष्ठता दिखाई कि कैसी भी जटिल परिस्थितियों में उन्होंने अपने गुणों को नहीं छोड़ा, अपनी मर्यादाओं को नहीं तोड़ा। लेकिन यहाँ नाम और रूप दो बातें कही गई हैं, और तुलसीदास जी ने उन्होंने बहुत अच्छा बताया भी है। कहा गया कि एको छत्रु एको मुकुटमणि सब बरनिन पर जो, तुलसी रघुवर नाम के बरन विराजत दो। माना तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक छत्र रूप और एक जो है मोर मुकुटधारी, जिसमें आगे भी समझाए कि समझूत सरिस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी, नाम रूप दुई इस उपाधि, अखत अनादि सुसा मुझी साधी। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, लेकिन दोनों में एक स्वामी है और एक सेवक के समान है। अब स्वामी और सेवक की दोनों की प्रीति है, इसको अगर हम समझना चाहें तो इस विधि से भी समझ सकते। मान लिया हम कोई परेशानी में हम फंसते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं।
6: हाँ जी,
4: भगवान को याद करते हैं, मुझे कोई हेल्प चाहिए और मेरे को जैसे ही मैं भगवान को याद कर रही हूँ तब तक परमात्मा ने आपको भेज दिया, आपने मेरी मदद की। तो यहाँ पर आप मेरे लिए उस समय भगवान का रूप बन गए, भगवान को याद किया लेकिन मदद मुझे आपसे मिली है। यहाँ दो हैं, आप डिफरेंट हैं लेकिन जिसको याद किया वो डिफरेंट है, लेकिन मदद मुझे क्योंकि आपसे मिली है तो मैं आपको भी डिनाई नहीं कर सकती हूँ। तो आपकी भी इम्पोर्टेंस है, प्लस में उसको जिसको याद किया उसकी भी इम्पोर्टेंस है। तो नाम और नामी, माने जो मदद कर रहे हैं वो दैहिक रूप के व्यक्ति हैं, क्योंकि परमात्मा मदद करने नहीं आते, वो निराकार हैं, वो किसी ना किसी के माध्यम द्वारा हमारे को मदद कराते हैं। तो दो चीजें हैं, ऐसे ही रामचंद्र जी जो है वो दैहिक रूप है, लेकिन जो नाम है उनका, जो राम नाम की बात कही गई वो निराकार की बात कही गई है। इसी को इसमें कई बार कई लोग सोचते कौन बड़ा कौन छोटा, तो कहीं हम ऐसा ना हो कि अपराध कर दें किसी को डिनाई करके। तो हमें किसी को हम छोटा बड़ा कह नहीं सकते, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट है। अगर परमात्मा को याद किया और आपको नहीं भेजते तो मेरा कार्य तो नहीं हो रहा है।
6: बिल्कुल,
4: तो आप भी मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं और परमात्मा भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट, इसीलिए वहाँ सबसे पहले सबकी वंदना की गई है। तो परमात्मा ने यहाँ पर बताया भी है कि कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता। अब अगर मैंने नहीं वो किया और मदद मिल रही है तो मैं नहीं पहचानूंगी, लेकिन मैंने अगर याद किया है और उसको तुरंत मुझे मदद मिली तो मेरा माइंड तुरंत जाएगा भगवान ने देखो मेरे को इनको मेरी मदद के लिए भेज दिया है। तो दोनों को याद करना, नाम को भी और रूप को भी, लेकिन हमें दिखता रूप है तो हम ज्यादा फंस किस में जाते हैं?
6: रूप में,
4: रूप में। नाम को भूल जाते हैं। और इसको सबसे ज्यादा जो आगे भक्तों की बात कही गई या जो भी हम भक्त में शिरोमणि, तो उनके बहुत से ऐसे भक्तों की बातें की गई जिन्होंने जाना है और आगे बताया भी है कि ये सिर्फ समझदार ही समझ सकते हैं। प्रभु श्री राम अपने नाम ना का ही अनुगमन करके चले आते हैं। जैसे ही राम नाम लिया तो हमारी बुद्धि में तुरंत आया कि राम जी मेरी मदद के लिए आ गए। तो वो दोनों चीजें एक साथ चल रही हैं, लेकिन परमात्मा जो निराकार है, उस निराकार परमात्मा ने ही हमारे लिए बहुत से लोगों को मददगार रूप में, तो हमें दोनों का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है कि ये दोनों राम डिफरेंट हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं। इसके अंदर जो बात कही गई है कि जैसे दोनों का, तो एक अंधकार साइड है और एक उजाला है, लेकिन हम अंधकार वाली चीजों को तो देख पा रहे हैं
6: उजाले,
4: लेकिन जो उजाला है, जो अंधकार को दूर करने वाला है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं। मान लीजिए कमरे में रोशनी दिख रही है, लेकिन वो बल्ब नहीं हमें दिखाई दे रहा है, कहाँ से रोशनी आ रही है। तो सेम यही चीज आगे भी बताई गई है, जिसको हम आगे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अंधकार क्या है और रोशनी क्या है, नाम और रूप का और क्या डिफरेंस है, इसको बहुत अच्छे से तुलसीदास जी ने आगे बताया है।
6: जी, हम ये जरूर जानेंगे और जानेंगे बीके प्रिया जी से। बीके ज्योति जी ने चार राम के बारे में बताया, लेकिन हाँ एक चीज और बताई अंधकार और उजाले की। तो राम नाम यहाँ पर क्या काम कर रहा है, या अंधकार और उजाला क्या इसके मायने हैं, किस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है राम की इम्पोर्टेंस, ये हम जानेंगे बीके प्रिया जी से। तो प्रिया जी आप बताइए कि जो ज्योति जी ने अंधकार और उजाले की बात की गई है, वो किस तरह से की है और क्या वजह है और किस तरीके से राम की इम्पोर्टेंस वहाँ पर है।
5: जी, जैसे कि उन्होंने बताया कि हथेली पर अगर कोई चीज, दो चीज सिमिलर पड़ी है लेकिन आपको नाम नहीं पता, तो दोनों सेम मना होते हुए भी हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आपको क्या लेना है, क्योंकि हमें पता ही नहीं इसे बुलाना कैसे,
6: बुलाना कैसे।
5: लेकिन अगर वही हमें नाम पता है और सामने कोई भी चीज नहीं पड़ी है, तो भी हम बता सकते कि मुझे क्या चाहिए। क्लियर? तो उसी प्रकार से अंधकार और यहाँ प्रकाश की बात हुई है कि प्रकाश, ये वो भौतिक प्रकाश की बात नहीं है, या आध्यात्मिकता की प्रकाश कह सकते हैं, या आंतरिक जगत जो आत्मा का उजाला हम कह सकते हैं, कि ये वो उजाला है जो हम भौतिकवाद में नहीं देख सकते या फिजिकल लेवल पर हम इसको नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए भी हमें एक समझ की आंख चाहिए या बुद्धि रूपी एक आंख नेत्र हमें चाहिए, और वो हमें ये दर्शाने की कोशिश में तुलसीदास जी है कि यहाँ पर राम को सिर्फ एक नहीं लेकर के चलना है। जो बहुत ही सुंदर एक एग्जाम्पल ज्योति जी ने अपने व्याख्यान में दिया है कि अगर हम भगवान को याद करते हैं उसकी मदद के लिए, और सडनली कोई एक व्यक्ति आकर के मुझे मदद करता है, तो मैं ना तो उस व्यक्ति को नकार सकता हूँ और ना मैं उस परमात्मा का तिरस्कार कर सकता हूँ, क्योंकि परमात्मा ने ही अब मेरी हेल्प के लिए उस व्यक्ति को मेरे पास भेजा है। तो यहाँ पर बस इसी तरीके से हमें श्री राम चरित्र मानस को भी समझना है।

0: कि एक निराकार परमात्मा जो सुप्रीम है, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी भी बोल देते हैं, जिसे हमने ब्रह्म भी शब्द शास्त्रों में लोगों ने लिखा है, तो वो परमात्मा अलग है जिसका नाम हम याद कर रहे हैं और रूप जिसके द्वारा कार्य कराने के लिए परमात्मा ने भेजा है, क्योंकि वो तो बिन पग बिन हाथ के है, तो वो तो शरीरधारी ना है, इसीलिए उन्होंने हमारे कार्य करने के लिए, क्योंकि कार्य भौतिक है तो उसको भौतिक रीति यानी शरीर से किया जाएगा, तो यहाँ एक शरीरधारी राम नाम के जो देवत्व देवताई गुणों वाला जो व्यक्तित्व दिखाया गया है तो वो अलग है। तो यहाँ जैसे बात हुई कि किसको बड़ा माने और किसको छोटा माने, तो हम इस द्वंद में ना जाएं तो भी अच्छा है, क्योंकि ना तो मेरे लिए वो व्यक्ति कम है जिसने मेरी मदद करी, और ना ही मेरे लिए वो परमात्मा कम हो सकता है जिसकी वजह से मदद
1: भेजी
0: जी। तो यहाँ पर हम इस चीज को लेकर के श्री रामचरितमानस को ना पढ़ें, लेकिन ये बात हम जरूर ध्यान रखें कि दोनों का अपना महत्व है, और हमने इनमें से किसी एक को भी हटाया तो फिर हमारी श्री रामचरितमानस की जो प्राप्ति है, उपलब्धि है, वो हमारी इनकम्प्लीट रह जाएगी। तो एक बहुत सुंदर दोहा है जो तुलसीदास जी ने लिखा है कि नाम रूप गति अखत कहानी, समुझत सुखद न परति बखानी, अगुन सगुन बीच नाम सुखासी, उभय प्रबोधक चतुर दुभाषी। अर्थात वो ये कहना चाहते हैं कि नाम और रूप की गति की कहानी अकथनीय है, यानी इन दोनों को एक्सप्लेन करना ये इतना ज्यादा माना इजी नहीं है। अकथनीय यानी वो बोल नहीं पा रहे, उनके पास शब्द नहीं है उस चीज को अच्छे से क्लियर करने के लिए। वो समझने में सुखदायक है, आप इस चीज को अगर समझ जाएंगे कि यहाँ दो चीजों की बात हो रही है, लेकिन दो चीज में टेक्निकली अगर आप जाएंगे तो शायद कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर दिल से समझने की कोशिश करेंगे कि यहाँ एक उस निराकार की बात हो रही है और एक साकार शरीरधारी की बात हो रही है, तो ये सुखदायी लगेगा। तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि निराकार को एक्सप्लेन हमारे शास्त्रों में उस रीति से करने में हमारे जो उस स्तर के लेवल के जो महर्षि रहे या ऋषिगण रहे, उन्होंने कहा है ये बात को कि हम नेति नेति, अर्थात हम पूरी तरह से नहीं जानते। तो जितना हमें बताया गया है उस निराकार के बारे में, तो यहाँ तुलसीदास जी भी वही कह रहे हैं कि वो अकथनीय है, उनके बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बता पाऊंगा। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है, और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषीय है, यानी वो कह रहे हैं यहाँ परमात्मा को उन्होंने निर्गुण कहा, तो निर्गुण को शब्द वाचक हम ना लें, निर्गुण माना जिसमें कोई गुण ना हो, लेकिन यहाँ निर्गुण वो बोला गया कि जिसमें भौतिकता का कोई गुण नहीं है, जिसको हम देख नहीं सकते, यहाँ वो निर्गुण बोला गया कि वो गुण और अवगुण सगुण जो भी शब्द आते हैं ये उनसे बियॉन्ड है, पार है। तो परमात्मा को उन्होंने निर्गुण कैटेगरी यानी किसी भी तुलना से भी अतुलनीय बताया है, और जो राम जो फिजिकल हम देख पाते हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि वो जो सगुण है, जिनके गुण हमें दिख रहे हैं कि भाई मधुर भाषी है, बहुत शांत स्वभाव के हैं, बहुत उनका हृदय जो है कोमल है, तो जो हमने उनके गुण पढ़, ये सगुण बोला गया है। तो यहाँ तुलसीदास जी बता रहे हैं कि दोनों को एक्सप्लेन करना, ये दुभाषी यानी जो समझाने वाला भी बहुत इंटेलिजेंट है, जो इन चीजों को समझ पाए या समझा पाए, तो उन्होंने अपने पूरा लेवल जोर लगा करके बताया है कि यहाँ पर दो चीजों का वर्णन है, और हमें उन दोनों को अपनी बुद्धि में रख करके अगर हम पढ़ते हैं तो इसका संपूर्ण प्राप्ति है। और परमात्मा के अंत में वो ये कहते हैं कि जो परमात्मा के गुण या रहस्य को जानना चाहते हैं, यहाँ पे राम जी का नाम नहीं यूज हुआ है ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, यहाँ वो स्पष्ट कहते हैं कि जो परमात्मा के गुण रहस्य को यानी यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। यानी अगर हम अगर उस निराकार की तरफ जाना चाहते हैं, तो अगर मैं उस निराकार को अपने माइंडसेट में रखता हूँ और मुंह से उनका नाम भी लेता हूँ तो भी मैं स्पष्ट समझ सकता हूँ, लेकिन अगर मेरे मनस्पटल में वो चीज नहीं आ रही है और सिर्फ मैं जप रहा हूँ, जो हम करते हैं नॉर्मली, हम राम राम राम राम राम राम राम राम राम कर रहे हैं, लेकिन मेरा आई जो बुद्धि का जो मनस पटल है, जो मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ, वो क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ इस चीज पर तुलसीदास जी जोर देते हैं कि आपके मन बुद्धि में क्या है, तो फिर जीव से भी जो आप बोलेंगे वो ठीक है।
1: बिल्कुल।
0: और अगर आपके मन बुद्धि में वो चीज नहीं है, तो जो जीव से आप बोल रहे हैं वो पूरी तरीके से सटीक नहीं होगा।
1: तो यानी कि अगर उनको पाना है और उनसे किसी प्राप्ति की अगर हमें कहें कि उम्मीद है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर भी वो चीज रखनी होगी, राम नाम रखना होगा, तभी वो जबान से निकलेगा और उसकी कहें कि फल की प्राप्ति हो सकती है। और यही हम लोग प्रैक्टिकली देखते भी हैं। अगर मन में ही वो चीज नहीं है तो वो आपको, आप चाहे जितने भगवानों का नाम ले लें, आपको वो नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके लिए मन में संकल्प लेना जरूरी है और राम नाम या जो भी आप जिस भी भगवान को मानते हैं उनके बारे में एक वो सोच रखना, एक वो अच्छी कहें कि कामना रखना बहुत जरूरी है। बहुत खूब, ये प्रोग्राम यहीं समाप्त होता है, लेकिन अभी बहुत सारी बातें हैं जो हमें करनी है, लेकिन ये सारी बातें हम करेंगे अगले एपिसोड में। फिलहाल आज दीजिए हमें इजाजत, और चलते चलते बस आपसे यही कहूंगी कि अपना ध्यान रखिए और आप जहां हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जिस माहौल में हैं, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें, और अगर कठिन परिस्थिति में फंसे भी हैं तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये हमेशा आपके साथ नहीं रहने वाली है। तो बस इसी के साथ और इसी अच्छे विचार के साथ में हमें दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी अब अगले हफ्ते, तब तक के लिए नमस्कार।
2: ज्वाला, समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश, तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
3: और मैं ये कह रही हूँ, भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती, नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें, जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
2: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
3: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
2: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
3: तो फिर एक वादा करो,
2: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
3: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
2: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: खैनी गुटका जर्दा पान ले रहा है सबकी जान। उठता है जब धुआं सिगरेट का, मंजर होता है वो मौत का। कैंसर की बीमारी लाता, फेफड़ों में धुआं भर जाता। परिवार वाले होते चिंतित, नहीं लगता नशे बिना कहीं चित।
1: समय रहते नशे को खत्म कर दो, वरना समय आने पर नशा तुम्हें खत्म कर देगा। रेडियो मानवरचना 107.8 देता है ये संदेश, नशे से रहे दूर, बनाए स्वस्थ देश।

0: नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और श्रोताओं, शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। जैसा कि आप सब जानते हैं, पिछले कई एपिसोड से हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही महान ग्रंथ के बारे में जिसका नाम है महाभारत। और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरण आशित युवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदान नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। जी, तो श्रोताओं, पिछले कई एपिसोड से हम जान रहे हैं महाभारत के बहुत सारे प्रसंगों के बारे में, बहुत सारी कथाओं के बारे में। और पिछले एपिसोड में भी हमने बहुत कुछ जाना कि किस तरह से जो विदुर हैं वो गए थे पांडवों के पास उनसे भेंट करने, जब धृतराष्ट्र ने उनको एक तरह से निकाल दिया था, और उनके जाने के बाद बहुत व्याकुल भी हो गए थे धृतराष्ट्र, जबकि ये सारी कहानी हमने जानी। मैत्री मुनि का अपमान दुर्योधन ने जिस तरह से किया, ये वाली कथा भी हमने जानी थी। तो आज आगे बढ़ते हैं और रागलेखा दासी जी से आगे की कथा जानते हैं। जी,
1: आज हम चर्चा करेंगे अर्जुन की तपस्या जी के साथ युद्ध, पशुपात अस्त्र, अदिव्य अस्त्रों की प्राप्ति।
0: जी,
1: तो अर्जुन हिमालय कटीले जंगल में जा पहुंचे, क्योंकि अर्जुन अभी वनवास में है, 12 वर्ष के वनवास में, क्योंकि उन्होंने लंघन किया था। और युधिष्ठिर जी जब द्रौपदी जी के साथ थे एकांत में, तो उन्होंने वहां जाके अपने अस्त्र लिए थे। इसलिए यही वो रखी गई थी कि कोई भी भाई के उसको लंघन नहीं किया जाएगा, यदि जो करेगा तो उसको 12 वर्ष का वनवास रहना
0: पड़ेगा।
1: इसलिए अर्जुन अभी वनवास है। तो अर्जुन हिमालय लांग कर एक बड़े कटीले जंगल में पहुंचे, वस्त्र दंड वृक्षाला कमंडलू धारण करके आनंद पूर्वक तपस्या करने लगे। बड़े बड़े ऋषि उन्होंने भगवान शंकर के पास जाके प्रार्थना की। उन्होंने कहा, भगवान अर्जुन की तपस्या से के तेज से दिशाएं धूमिल हो गई हैं। भगवान शंकर ने उनसे कहा, मैं आज अर्जुन की इच्छा पूर्ण करूंगा। ऋषियों के जाने पर भगवान शंकर ने सोने का सा दमकता हुआ भील का रूप ग्रहण किया, सुंदर धनुष सर्पाकार बाण लेकर पार्वती के साथ अर्जुन के पास आए। भगवान शंकर ने अर्जुन के पास आके देखा कि एक मूक दानव जंगली शूकर का वेश धारण कर तपस्वी अर्जुन को मार डालने की घात देख रहा है। संख्य बाणों से शूकर का शरीर बिद गया और दानव के रूप में प्रकट होकर मर गया। अर्जुन ने उनको मार डाला। ये शूकर मेरा तिरस्कार करने के लिए यहाँ आया था, मैंने पहले ही इसे उसको मारने का विचार कर लिया था, फिर उसका वध क्यों किया? भील कह रहे हैं, अब मैं तुझे जीता नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन के बाण जैसे ही भील के पास आते वह उन्हें पकड़ लेता, अर्जुन के बाण समाप्त हो गए और अर्जुन ने धनुष की नोक से मारना शुरू कर दिया। भील ने अर्जुन धनुष भी छीन लिया, तलवार का प्रहार किया, वह दो टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। पत्थरों और वृक्षों से प्रहार करना चाहा तो भील ने प्रहार करने से पहले ही छीन लिया। अब भील ने अर्जुन

अर्जुन ने कहा, शरणागत को क्षमा कीजिए। भगवान शंकर हंस पड़े और अर्जुन का हाथ पकड़कर बोले, क्षमा किया। फिर भगवान शंकर ने अर्जुन को गले लगा लिया। शंकर जी ने कहा, आज मैंने माया से भील का रूप धारण करके तुम्हारे अनुरूप गांधीर धनुष और अक्षय तरकस को छीन लिया है। अब तुम इन्हें ले लो, तुम्हारा शरीर भी निरोग हो जाएगा। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। अर्जुन ने कहा, भगवान यदि आप मुझ पर प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो मुझे आप अपना पता अस्त्र दे दीजिए। शिव जी ने कहा, मैं जानता हूँ कि मंत्र पढ़कर सोने पर पशुपता अस्त्र हजारों त्रिशूल भयंकर गदाओं और सर्पाकार बाण उससे निकल पड़ते हैं। मैं उस पशुपता अस्त्र के भीष्मद्रोण कृपाचार्य और कुतुबादी कंस के साथ लड़ी। इंद्र यमराज कुबेर वरुण और वायु भी इस अस्त्र को धारण और प्रयोग और उपसंहार में कुशल नहीं है। मैं तुम्हें यह अस्त्र देता हूँ, परंतु तुम इसे किसी के ऊपर सहसा मत छोड़ दे। अल्प शक्ति मनुष्य के ऊपर प्रयोग करने पर यह जगत का नाश कर डालेगा। अर्जुन स्नान करके पवित्रता के साथ भगवान शंकर के पास गए। महादेव जी ने अर्जुन को प्रयोग से लेकर उपसंहार तक सब तत्व रहस्य समझा दिया। शंकर जी ने अर्जुन को आज्ञा दी कि अब तुम स्वर्ग में जाओ। यमराज जी ने मधुर वाणी में कहा, अर्जुन देखो सब लोकपाल तुम्हारे पास आए हैं। आज तुम हम लोगों के दर्शन के अधिकारी हो गए हैं, इसलिए दिव्य दृष्टि लो, हमारा दर्शन करो। तुम सनातन ऋषि नर हो, तुमने मनुष्य रूप में अवतार ग्रहण किया है। अब तुम भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर पृथ्वी का भार मिटाओ। मैं तुम्हें अपना दंड देता हूँ जिसका कोई निवारण नहीं कर सकता। वरुण ने कहा, मेरा वारुण पाश युद्ध में कभी निष्फल नहीं होता। वो संग्राम में इसी पाश से मैंने हजारों दैत्यों को पकड़कर कैद कर लिया था। तुम इसके द्वारा चाहे जिसे भी कैद कर सकते हो। अर्जुन के पास शिकार कर लेने पर धनाधीश कुबेर ने कहा, तुम मुझसे ये अंतर्ध्यान नामक अनुपम अस्त्र ग्रहण करो, इससे शत्रु सोए से होकर नष्ट हो जाते हैं। देवराज इंद्र ने कहा, प्रिय अर्जुन तुम भगवान के नर रूप हो, मातली सारथी तुम्हारे लिए रथ लेकर आएगा, इसी समय मैं तुम्हें दिव्य अस्त्र भी दूंगा। मातली सारथी ने अर्जुन को पास आके प्रणाम करके कहा, इंद्र नंदन श्रीमान देवराज इंद्र आपसे मिलना चाहते हैं, आप उनके इस प्यारे रथ पर सवार होकर शीघ्र ही चलिए। अर्जुन को देवराज इंद्र के दर्शन हुए। रथ से उतरकर अर्जुन ने देवराज इंद्र के पास जाकर सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। इंद्र ने अपने प्रेमपूर्ण हाथों से अर्जुन को उठाकर अपने पवित्र देवासन पर बिठा लिया और फिर अपनी गोद में बिठाकर प्रेम से सिर चुंगा। अप्सराएं नाचने लगी। गंधर्वों ने उत्तम अर्घ्य से अर्जुन का सेवा सत्कार किया, उनके पैर धुलवाकर आचमन कराया। इंद्र के प्रिय और शत्रुघाती वज्र का भी अभ्यास करने लगे। समस्त शस्त्र अस्त्र का ज्ञान प्राप्त करने के बाद अर्जुन अपने वनवासी भाइयों का स्मरण करके स्वर्ग से मृत्युलोक में आना चाहते थे, किंतु इंद्र की आज्ञा से वे 5 वर्ष तक स्वर्ग में रहे। प्रिय अर्जुन अब तुम चित्रसेन गंधर्व से नाचना और गाना सीख लो, साथ ही मृत्युलोक में जो बाजे नहीं है उन्हें भी बजाना सीख लो। अर्जुन इस विद्या में प्रवीण हो गए। उस दिन की बात है, इंद्र ने देखा कि अर्जुन निर्निमेश नेत्रों से उर्वशी की ओर देख रहे हैं। उन्होंने चित्रसेन को एकांत में बुलाकर कहा कि तुम उर्वशी अप्सरा के पास जाके कह मेरा संदेशा देना कि वे अर्जुन के पास जाए। चित्रसेन के चले जाने के बाद अर्जुन की सेवा करने की लालसा से उर्वशी ने आनंद के साथ चंद्र स्नान किया। वो सुंदर तो थी ही, अच्छे अच्छे वस्त्र आभूषण भी धारण कर लिए। सुगंधित पुष्पों की माला पहनकर उर्वशी जब तब प्रकार से सज भर चुकी, तब वह मुस्कुराती हुई पवन और मन के समान तेज गति से क्षणभर में ही अर्जुन के स्थान पर जा पहुंची। वे कहने लगी, जब से मैंने आपके गुणों को सुना है तभी से मेरा मन आप पर लग गया है। मैं काम के वश में हूँ, बहुत दिनों से मैं लालसा कर रही थी कि आप मुझे स्वीकार कीजिए। अर्जुन तो संकोच के मारे धरती में गड़े जा रहे हैं। उन्होंने अपने हाथों से काम बंद कर लिए और बोले, हरे हरे ये बात मेरे कान में प्रवेश न कर जाए। निसंदेह तुम मेरी गुरु पत्नी के समान हो। देव सभा में मैंने तुम्हें निर्निमेश नेत्रों से देखा था, परंतु मेरे मन में कोई बुरा भाव नहीं था और गुरु वंश की यही आनंदमयी माता है। तुम्हें पहचानते ही मेरी आंखें आनंद से खिली थी। मेरे लिए बड़ों से खीवी बड़ी और मेरे पूर्वजों की जमीनी है। उर्वशी ने कहा, वीर

0: मतराओं का किसी के साथ विवाह नहीं होता, हम स्वतंत्र हैं, इसलिए मुझे गुरुजन की पदवी पर बैठाना उचित नहीं है। अर्जुन ने कहा, जैसे कुंती माद्री इंद्र पति शक्ति मेरी माताएं हैं, वैसे ही तुम पूर्व वंश की जननी होने के कारण मेरी पूजनीय माता है। मैं तुम्हारे चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करता हूँ। तुम मेरी माता के समान मेरी पूजनीय और मैं तुम्हारा पुत्र के समान रक्षणीय हूँ। अर्जुन की बात सुनते हुए ऋषि क्रोध के मारे कांपने लगी। उसने बहुत देरी करके अर्जुन को श्राप दिया, अर्जुन मैं तुम्हारे पिता इंद्र की आज्ञा से कामातुर होकर तुम्हारे पास आई हूँ, फिर भी तुम मेरी इच्छा नहीं पूर्ण कर सकते, इसलिए जाओ, तुम्हें स्त्रियों में नर्तक होकर रहना पड़ेगा और सम्मान रहित होकर तुम नपुंसक के नाम से प्रसिद्ध हो गए।
1: जी तो श्रोताओं, बहुत ही सुंदर प्रसंग जान रहे हैं अब किस तरह से उर्वशी ने जो है अर्जुन को एक श्राप दे दिया है, जिसके बारे में अभी लागदेखा दास जी ने बताया। और जिस तरह से बताया कि अर्जुन जो है वो 12 साल के वनवास पर हैं, और अभी जो हमने जाना इंद्र से उनकी भेंट के बारे में, शंकर जी से उनकी भेंट के बारे में, और उर्वशी जो हैं वो अर्जुन से मिलने जब गई और उनके बीच में जो वार्तालाप हुआ और किस तरह से उर्वशी ने अर्जुन को जो श्राप दिया उसके बारे में अभी लागदेखा दास जी ने बताया। तो अब आगे बढ़ते हैं, इस कथा को आगे जानते हैं। जी,
0: अर्जुन शीघ्रता से चित्रसेन के पास गए और उर्वशी ने जो कुछ कहा था वह सब कह सुनाया। चित्रसेन ने सारी बातें इंद्र से कही। इंद्र ने अर्जुन को एकांत में बुलाकर बहुत कुछ समझाया बुझाया और हंसते हुए कहा कि प्रिय अर्जुन, तुमने अपने धैर्य से ऋषियों को भी जीत लिया है। उर्वशी ने जो तुम्हें श्राप दिया है उससे तुम्हारा बहुत काम बनेगा। जिस समय तुम 13वें वर्ष में गुप्तवास करोगे उस समय तुम नपुंसक के रूप में 1 वर्ष तक छिप कर ये श्राप भोगोगे, फिर तुम्हें पुरुषत्व की प्राप्ति हो जाएगी। अर्जुन बात के समय उनकी चिंता मिट गई। चित्रसेन के साथ स्वर्ग के सुख लूटने लगे। इन्हीं दिनों एक दिन महर्षि लोमस स्वर्ग से आए। उन्होंने देखा अर्जुन इंद्र के आधे आसन पर बैठे हुए हैं। वे भी एक आसन पर बैठ गए, पर मनोमन सोचने लगे कि अर्जुन को ये आसन कैसे मिल गया। देवराज इंद्र ने लोमस मुनि की मन की बात जान लिया। उन्होंने कहा, महर्षि आपके मन में जो विचार उत्पन्न हुआ है उसका मैं उत्तर दे देता हूँ। ये अर्जुन केवल मनुष्य नहीं है, ये मनुष्यधारी देवता है। ऋषि में तो इसका अवतार हुआ है, ये सनातन ऋषि नर है, इसने इस समय पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। नल दमयंती की कथा, दमयंती का सुंदर और विवाह। महर्षि बृहदासव ने कहा, धर्मराज आपका ये कहना ठीक नहीं है कि मुझसे दुखी राजा और कोई नहीं है, क्योंकि धर्मराज जो थे युधिष्ठिर कहने लगे कि मैं बहुत दुखी राजा हूँ, जंगलों में भटक रहा हूँ और मुझसे क्योंकि मैं तुमसे अधिक दुखी और मंदभागे राजा का वृतांत जानता हूँ, तुम्हारी इच्छा हो तो सुनाओ। धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पर महर्षि बृहदासव ने कहना आरंभ किया, विषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। इन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीमक नाम के एक राजा राज्य करते थे। दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत, दमन और पुत्री का नाम दमयंती। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। उसने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए और हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य अवश्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वह उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती वही बोल उठा, अरे दमयंती, निषद देश में एक नल नाम का राजा रहे, यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों सफल हो जाएंगे। दमयंती हंस के मुंह से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़ कर विदर्भ राज से निवेदन किया कि आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीमक ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। निर्णय में पहुंचे कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसलिए उसका स्वयंवर कर देना चाहिए। दमयंती एक एक करके देखकर सबको आगे बढ़ने लगी। स्वयंवर आरंभ हुआ। आगे एक ही स्थान पर नल के समान आकार और वेशभूषा के राजा इकट्ठे 5 बैठे हुए थे। दमयंती को संदेह हो गया, ये राजा नल, ये राजा नल को नहीं पहचान सकी। अंत में दमयंती ने यही निश्चय किया, देवताओं की शरण में जाना उचित है। हाथ जोड़कर प्रणाम पूर्वक स्तुति करने लगी। देवताओं, हंसों के मुंह से नल का वर्णन सुनकर मैंने पति रूप में वर्णन कर लिया है। शैलशाली लोग पालो, आप लोग अपना रूप प्रकट कर दो, उससे मैं पुण्य लोग नरपति नल को पहचान लूं। देवताओं ने दमयंती का ये आर्त विलाप सुना। दमयंती ने देखा कि देवताओं के शरीर पर पसीना नहीं है, पलके गिरती नहीं है, माला कुमलाई नहीं है, शरीर पर मैल नहीं है, फिर मैं परंतु धरती नहीं छूते। इधर नल के शरीर पर छाया पड़ रही है, माला कुमलाई गई है, शरीर पर कुछ धूल और पसीना भी है, पलके बार बार गिर रही है और धरती छूकर स्थित है। दमयंती ने इन लक्षणों से देवता और पुण्य श्लोक नल को पहचान लिया और फिर धर्म के अनुसार नल को वरण कर लिया। दोनों ने प्रेम से एक दूसरे का अभिनंदन करके इन आदि देवताओं की शरण ग्रहण की। देवता भी बहुत प्रसन्न हो गए। उन्होंने नल को 8 वर दिए। इंद्र ने कहा, नल तुम्हें यज्ञ में मेरा दर्शन होगा और उत्तम गति मिलेगी। अग्नि ने कहा, जहाँ तुम मेरा स्मरण करोगे वही मैं प्रकट हो जाऊंगा और मेरे ही समान प्रकाश में लोग तुम्हें प्राप्त होंगे। यमराज ने कहा, तुम्हारी बनाई हुई रसोई बहुत मीठी होगी, तुम अपने धर्म में दृढ़ रहोगे। वरुण ने कहा, जहाँ तुम जाओगे वही जल प्रकट हो जाएगा। इस प्रकार दो दो वर देकर सब देवता अपने अपने लोक में चले गए। राजा नल अपनी राजधानी में धर्म के अनुसार प्रजा का पालन करने लगे। सचमुच उनके द्वारा राजा नाम सार्थक हो गया। उन्होंने अश्वमेध आदि बहुत से यज्ञ किए। समय आने पर दमयंती के घर से इंद्रसेन नाम का पुत्र और इंद्रसेना नाम की कन्या का भी जन्म हुआ। जिस समय दमयंती ने चैंबर से लौटकर इंद्र आदि लोकपाल अपने अपने लोगों को जा रहे थे, उसी समय उनके मार्ग में कलयुग और द्वापर की भेंट हो गई। इंद्र ने पूछा, क्यों कलयुग कहाँ जा रहे हैं? कलयुग ने कहा, मैं दमयंती के चैंबर में उससे विवाह करने जा रहा हूँ। इंद्र ने हंसकर कहा, जी वह चैंबर तो कभी का पूरा हो गया। दमयंती ने राजा नल को वरण कर लिया, हम लोग ताकते ही रह गए। कलयुग ने क्रोध में भर कर कहा, ओ अब तो बड़ा अनर्थ हुआ, उसने देवताओं की उपेक्षा करके मनुष्य को अपनाया, इसलिए उसको उसको दंड देना चाहिए। द्वापर और कलयुग दोनों ही नल की राजधानी में आ बसे। 12 वर्ष तक वे इसी बात की प्रतीक्षा में रहे कि नल में कोई दोष दिख जाए। एक दिन राजा नल संध्या के समय लोगी शंका से निवृत्त होकर पैर धोए बिना ही आचमन करके संध्या वंदन करने बैठ गए। ये अपवित्र अवस्था देखकर कलयुग उनके शरीर में प्रवेश कर गया और साथ ही दूसरा रूप धारण करके वह पुष्कर के पास गया और बोला, तुम नल के साथ जुआ खेलो, मेरी सहायता से जुए में राजा नल को जीत कर निषिद्ध राजा के राज्य प्राप्त करो। द्वापर भी पासों का रूप धारण करके उनके साथ खेल लिया। उन्होंने उसी समय पासा खेलने का निश्चय किया। उस समय नल के शरीर में कलयुग घुसा हुआ था, इसलिए राजा नल दाव में सोना चांदी रथ वाहन आदि जो कुछ लगाते हुए हार जाते। पुष्कर और नल में कई महीनों तक जुआ होता रहा और राजा नल बार बार हारते गए। पुष्कर ने पासों के खेल में राजा नल का राज्य और धन ले लिया। उसने नल को संबोधन करके हंसते हुए कहा, और जुआ खेलोगे? परंतु तुम्हारे पास दाव लगाने के लिए कुछ नहीं है। यदि तुम दमयंती को दाव पर लगाने योग्य समझो तो फिर खेल लो। वे पुष्कर से कुछ भी नहीं बोले। उन्होंने अपने शरीर से सब वस्त्र आभूषण उतार दिए और केवल एक वस्त्र पहने नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी केवल एक साड़ी पहनकर अपने पति का अनुगमन किया। नल और दमयंती दोनों नगर के बाहर 3 रात तक रहे। पुष्कर ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया, जो मनुष्य नल के प्रति सहानुभूति प्रकट करेगा उसको फांसी की सजा दे दी जाएगी। एक दिन राजा नल ने देखा, बहुत से पक्षी उनके पास बैठे हैं, उनके पंख सोने के समान दमक रहे हैं। नल ने सोचा, इनके इनके पंख से कुछ धन मिलेगा। ऐसा सोचकर उन्हें पकड़ने के लिए नल ने उनके ऊपर पहनने का वस्त्र डाल दिया। पक्षी उस वस्त्र को लेकर उड़ गए। अब नल नंगे होकर बड़ी दीनता के साथ मुंह नीचा किए खड़े हो गए। पक्षी ने कहा, दुर्बुद्धे, तू नगर से एक वस्त्र पहनकर निकला था, उसे देखकर हमें बड़ा दुख हुआ था। वे अब तेरे शरीर का वस्त्र लिए जा रहे हैं, पक्षी ने जुए के पासे हैं। नल ने दमयंती से पासों की बात कह दी। दमयंती ने कहा, यदि आप मुझे मेरे पिता या किसी संबंधी के घर भेजना चाहते हैं तो ठीक है, हम दोनों साथ साथ चलें। मेरे पिता आपका सत्कार करेंगे, आप वहाँ सुख से रहिएगा। नल ने कहा, ये तुम्हारे पिता राजा है और मैं कभी राजा था, इस समय मैं संकट में पड़कर उनके पास नहीं जाऊंगा। राजा नल दमयंती को समझाने लगे। तदनंतर दोनों एक ही वस्त्र से शरीर ढककर पन्ने इधर उधर घूमते रहे। भूख और प्यास से व्याकुल होकर दोनों एक धर्मशाला में आए और ठहर गए। नल सोचने लगे कि दमयंती मुझ पर बड़ा प्रेम करती है, प्रेम के कारण मैं इतना दुख भी भोग रही है। यदि मैं इसे छोड़कर चला जाऊं तो ये अपने पिता के घर चली जाएगी। राजा नल ने विचार किया कि मैं नंगा हूँ और दमयंती के शरीर पर केवल एक ही वस्त्र है, फिर भी इसके वस्त्रों में से आधा फाड़ लेना श्रेयस्कर है, परंतु फाड़ू कैसे, शायद ये जग जाए। ये धर्मशाला में इधर उधर घूमने लगे, उनकी दृष्टि एक म्यान की तलवार पर पड़ गई। राजा नल ने उसे उठा लिया और धीरे से दमयंती का आधा वस्त्र फाड़ कर अपना शरीर ढककर रख लिया। दमयंती नींद में थी, राजा नल उसे छोड़कर चले गए। शरीर में कलयुग का प्रवेश होने के कारण बुद्धि नष्ट हो गई थी। ये अंततः वे अपने प्राण दिया, पत्नी को वन में अकेली छोड़कर वहां से चले गए। दमयंती इस प्रकार विलाप करती हुई इधर उधर दौड़ने लगी। वे उन्मत्त की होकर इधर उधर घूमती हुई एक अजगर के पास जा पहुंची। शोकग्रस्त होने के कारण उसे इस बात का पता भी नहीं चला, अजगर दमयंती को निगलने लगा। उसी समय दमयंती की आवाज एक व्याध के कानों में पड़ी। वह उधर ही घूम रहा था, दौड़ कर आया। उसने देखा दमयंती को अजगर निगल रहा है। अपने तेज शस्त्र से अजगर का मुंह उसने चीर डाला। दमयंती ने व्याध के बलात्कार की चेष्टा को बहुत रोकना चाहा, परंतु जब वह किसी प्रकार न माना तो उसने उसे शाप दे दिया। यदि मैंने निष्ठन वेश राजा नर को छोड़कर किसी पुरुष का मन से भी चिंतन नहीं किया हो तो ये पापी शूद्र व्याध मरकर जमीन पर गिर जाए। दमयंती के मुंह से ऐसी बात निकलते व्याध के प्राण कठोर उड़ गए। नल का पता पूछती हुई वह उत्तर की ओर बढ़ने लगी। तीन दिन तीन रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बड़ा सुंदर तपोवन है। तपस्वी ऋषि निवास कर रहे हैं, वे वृक्षों की छाल और मृगशाला धारण किए हैं। ऋषि ने कहा, स्वागत है, बैठ जाओ, हम तुम्हारा क्या काम करें। सब शुद्धि दृष्टि से देख रहे हैं कि तुम्हें आगे बहुत सुख मिलेगा और थोड़े ही दिनों में राजा नल का दर्शन होगा। इस प्रकार कहकर वे सब तपस्वी अपने आश्रम के साथ अंतर ध्यान हैं।
1: जी, तो श्रोताओं, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। नल और दमयंती की कथा हम जान रहे हैं, किस तरह से उनका मिलन हुआ, किस तरह से वियोग हुआ, ये सारी कथा हमने अभी जान ली है। लेकिन अब वो पुनः दोबारा मिलेंगे या नहीं, किस तरह से मिलेंगे, ये कथा हम आगे जानेंगे अगले एपिसोड में, क्योंकि अभी वक्त हो चुका है आपसे इजाजत लेने का। तो राघलेखा दास जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। जी, तो श्रोताओं, अगले एपिसोड में महाभारत के इस प्रसंग को, नल दमयंती की इस कथा को आगे जानेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को भी। फील गुड, फील लाइव।

0: रेडियो मानव रश्रा 107.8 एफएम सुन रहे हैं आप। मैं हूं साक्षी, आपके साथ प्रोग्राम लेकर के आई हूं रिचार्ज मॉर्निंग। और इस रिचार्ज मॉर्निंग में हम बहुत सारी बातें आज कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं, आज हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गुरु दीदी। जी हाँ, गुरु दीदी आ जाती हैं अपने अलग अलग टॉपिक्स के साथ और हम करते हैं उस पर चर्चा। बहुत सारी आज भी बातें होने वाली हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी, गुरु दीदी आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में।
1: थैंक यू साक्षी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी।
0: टाइम मैनेजमेंट, ये जो है मतलब शब्द जो है बहुत ही आसान लगता है हमें कि टाइम मैनेज कर लो हो जाएगा, लेकिन ये होता बड़ा डिफिकल्ट है अगर हम असल जिंदगी में हम टाइम मैनेज करने की कोशिश करें तो। लेकिन मुझे लगता है कि आप हमारे लिसनर को आज जरूर बता देंगे कि किस तरह से हम इजीली इफेक्टिवली अपना टाइम को मैनेज कर सकते हैं।
1: जी, तो साक्षी ये जो टाइम मैनेजमेंट का आज आपने टॉपिक लिया है बहुत ही इम्पोर्टेंट है
0: जी।
1: और मुझे लगता है कि आज के समय में चाहे वो बच्चा है, चाहे वो एडोलेसेंट गर्ल एंड बॉय है, चाहे वो वर्किंग हमारे जो कम्युनिटी है कोई भी हो, चाहे घर में हाउस वाइफ है, उन सभी को टाइम मैनेजमेंट जो है करना पड़ता है। और सभी से हम ये सुनते भी हैं कि टाइम नहीं होता है ना, तो वो टाइम नहीं होता है तो टाइम को हमें कैसे मैनेज करना है। तो टाइम के लिए मैं पहले टाइम मैनेजमेंट का यही कहना चाहूंगी कि ये एक तरह से एक प्रोसेस है, या एक कह लीजिए कि हमारी तरह एक एक्सरसाइज है, जो एक्सरसाइज इन द सेंस कि हमें ये प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, जिसमें हम ये देखें कि हमारी जो पूरे दिनचर्या की जो एक्टिविटीज हैं, जो पूरा दिन जो डेली रूटीन हमारा रहता है, उन सभी एक्टिविटीज को हम किस तरीके से कितना टाइम दे रहे हैं, वो प्लान करना, उन चीजों को कॉन्शियसली वो एफर्ट्स करना। तो अगर हम वो एक्टिविटीज को प्रॉपर तरीके से लिस्ट डाउन कर लेते हैं, अगर हम अपने डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज के अकॉर्डिंगली टाइम को डिवाइड कर लेते हैं, तो डेफिनेटली हम कम समय में ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, और इसी को कहते हैं टाइम मैनेजमेंट।
0: बिल्कुल। तो गुरु दीदी मैं यहाँ पर जरूर जानना चाहूंगी कि आज हम बात करें अलग अलग कैटेगरीज की, हम बात करेंगे आज ना थोड़ा सा कैटेगराइज कर देते हैं अपने सेशन को, वो इसलिए ताकि हम जो है ये बता सकें सभी को कि पहले इम्पोर्टेंट होता है कि अलग अलग अगर कैटेगरीज हो जाती है तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाती है, क्योंकि हर किसी का टाइम को मैनेज करने का तरीका और वैल्यूज अलग अलग होती है। अब यहां पर अगर बात करें स्टूडेंट्स की, क्योंकि अब स्कूल स्टूडेंट्स की बात करें तो हमें बस इतना ही लगता है स्कूल से आओ और उसके बाद अपना खाना खाया, थोड़ी पढ़ाई कर ली और बस फिर उसके बाद होमवर्क करके सोने चले गए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। टाइम को मैनेज करना, क्योंकि अलग अलग एक्टिविटीज की भी जरूरत होती है, हमें जरूरत होती है कि पेरेंट्स के साथ भी बैठे, तो बच्चा ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपसे जानना चाहती हूं कि पढ़ाई के साथ साथ कैसे एक शेड्यूल जो है वो बना सके कि अच्छे से पढ़ाई भी हो सके, पेरेंट्स को टाइम भी दे सके, क्योंकि पिछले सेशन हमारे इसी बारे में था कि पेरेंट्स को टाइम देना जरूरी होता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे?
1: देखो, क्योंकि आपने साक्षी सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स के लिए उठाया है
0: जी,
1: तो स्टूडेंट्स का अगर हम लोग उनकी एक्टिविटीज के बारे में बात करें तो सबसे अहम एक्टिविटी उनके लिए होती है उनकी पढ़ाई। तो मैं उन सभी स्टूडेंट्स को ये कहना चाहूंगी कि दे शुड यूज प्लानर टू एलोकेट द स्पेसिफिक टाइम फॉर देयर स्टडी सेशन। जितने भी उनके जो स्टडी सेशन हैं उनके लिए एक अच्छा सा एक प्लानर बनाएं, और प्लानर में क्या करना है उनको, दे हैव टू बैलेंस देयर सब्जेक्ट्स। कई बार होता है कि कुछ सब्जेक्ट्स हमें डिफिकल्ट लगते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स हमें आसान लगते हैं। कुछ सब्जेक्ट्स की अपनी एक डेडलाइन होती है कि उनको हमें मैक्सिमम समय देना है, उनको हमें ज्यादा समय देना है। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं, यूजुअली जब स्टूडेंट्स भी बात करते हैं, तो जैसे अकाउंट्स जैसा सब्जेक्ट है या मैथमेटिक्स है या आप साइंस बेस्ड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, दे रिक्वायर मोर टाइम, है ना। तो उनको हमें बैलेंस बना के चलना चाहिए कि हमें अपना एक प्लान ऑफ एक्शन बनाएं कि हमें रोज में कंसिस्टेंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब हम प्लान ऑफ एक्शन बना रहे हैं, जब हम अपना प्लानर बना रहे हैं, तो उसमें हमें इंक्लूड करने चाहिए ब्रेक्स भी। और ब्रेक्स किस लिए, क्योंकि दीज ब्रेक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी जो पर्सनल एक्टिविटीज हैं या जो हम एक मोनोटनी जो कहते हैं कि हम बच्चे कहते हैं ना, हम पढ़ के बोर हो गए, पढ़ के मामा थक गए, मैम हम थक गए, तो वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए जो भी हम प्लान बना रहे हैं, जो भी हम अपना टाइम टेबल बना रहे हैं। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब बच्चों की हम बात कर रहे हैं, स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो जैसे स्कूल और यूनिवर्सिटी सिस्टम में या कॉलेज सिस्टम में हमारा टाइम टेबल होता है,
0: करेक्ट,
1: एवरी सब्जेक्ट का जो है अकॉर्डिंग टू देयर मार्क्स एक एलोकेशन होता है। इसी तरीके से जब बच्चे घर पर आ जाते हैं, अपना कुछ समय थोड़ा रेस्ट करने के बाद, अपने माता पिता के पास बैठने के बाद, उनका एक टाइम टेबल होना चाहिए जिसमें वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे वो आर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, दे शुड देन प्रिपेयर अ टाइम टेबल अकॉर्डिंग टू दी सब्जेक्ट डिफिकल्टी एंड कि सब्जेक्ट की डेडलाइन क्या है. कई बार होता है कि कुछ हमें अपने प्रैक्टिकल फाइल सबमिट करने हैं, कुछ प्रोजेक्ट सबमिट करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए. वो टाइम टेबल भी मैं यही कहना चाहूंगी कि टाइम टेबल बहुत लंबे समय के लिए नहीं बनाए. टाइम टेबल शुड बी फॉर 1 वीक और 15 डेज, उसके बाद फिर उसको रीशेड्यूल करें. क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमारी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो जाती है, प्रायोरिटीज चेंज हो जाती हैं. तो वो आपका 1 वीक या 10 दिन के लिए वो टाइम टेबल बनाए और उसके बाद उसका रीशेड्यूलिंग करें.
0: बिल्कुल बिल्कुल. तो देखिए, इस तरीके से अपनी पढ़ाई के शेड्यूल को तो आप बना के रख सकते हैं. इसके साथ देखिए, जब आप पढ़ाई का शेड्यूल बना लेंगे ना, तो मुझे लगता है उसके बाद टाइम थोड़ा सा आपके पास बच जाएगा. वो टाइम देना है आपको अपने पेरेंट्स को, वो टाइम देना है जो एक्स्ट्रा आप कुछ कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं या आपको खेलने जाना है, किसी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में आपने पार्ट लिया, वो आप कर सकते हैं. तो जब आप ये पूरा दिन मैनेज करना सीख जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आपकी जो प्रोडक्टिविटी है स्टडीज में भी, जो रिजल्ट है वो बेहतर होने लगेगा. टाइम को मैनेज करना जितना हमें आसान है ये कहना, लेकिन उतना ही ज्यादा मुश्किल है. लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं है कि चीजें देखिए हो नहीं सकती हैं. अगर आप चाहते हैं, अगर आप कोशिश करेंगे, तो हर चीज पॉसिबल है ना. तो चलिए अभी हम जानते हैं कि मैम, जैसे कि सवाल मेरा अगला है आपसे कि बात करें अभी यहाँ पर प्रोकेस्टिनेशन की बात करें, तो पहली बात तो ये प्रोकेस्टिनेशन होता क्या है इस बारे में, क्योंकि हमारे लिसनर को ये बहुत ज्यादा जरूरी है जानना है. अक्सर ये टर्म जो है हम बड़ा सुनते हैं आजकल, बड़ी पॉपुलर, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे ये होता क्या है.
1: प्रोक्रेस्टिनेशन होता है, जैसे हम कहते हैं ना, आज नहीं तो कल, टालम टोल जैसे हम बात करते हैं, तो वही होता है. तो वो क्यों होता है? क्योंकि हम अपने टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, हम अपने टाइम को मैनेज नहीं करते, इसीलिए हमें इन वर्ड्स का सहारा लेना पड़ता है कि आज नहीं, कल कर लेंगे, अभी नहीं, थोड़े समय बात कर लेंगे. तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अब आपका बहुत ही अच्छा सवाल रहा कि इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कि आपने कहा कि इसका मीनिंग बताइए, और बहुत लोग इसका सहारा भी लेते हैं, तो हम इसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं? अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें छोटे छोटे ब्रेक्स लेने चाहिए, राइट? तो हमें अपने जो डेडलाइंस को सेट करना पड़ेगा कि कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हमें उनको एक डेडलाइन सेट करना पड़ता है कि हमारे काम को कितना टाइम लगेगा या हम कितने समय में उस काम को पूरा कर लेंगे. और कोशिश करना चाहिए कि जब हम कोई काम कर रहे हैं तो हम उसको पूरे फोकस के साथ करें. तो साक्षी, मैं इसमें यह भी बताना चाहूंगी कि देयर आर सो मेनी टेक्निक्स टू यू नो इंक्रीज योर फोकस, कि हम अपना फोकस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. तो नॉर्मली एक बहुत ही कॉमन सा टेक्निक है जिसे कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक. तो उससे जो है एक फोकस जो है वो इंक्रीज होता है. अदरवाइज भी अगर हम छोटे छोटे मेडिटेशन करते हैं तो उससे भी हमारा फोकस जो है वो मेंटेन रहता है. और सबसे बड़ी बात कि हम टालम टोल इसलिए करते हैं क्योंकि हम किसी भी काम को जब हम कर नहीं पाते हैं तो हमको उसका कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है. पर जब हम छोटे छोटे काम कर लेते हैं, जब हम अपना टास्क कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमें खुद को ही उसके लिए अप्रिशिएट करना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए. तो आई थिंक जब हम अपने को पैट करते हैं ना कि यस वेल डन, यू हैव डन इट, आई हैव डन इट, तो दैट मीन्स कि वी आर रिवॉर्डिंग आवर सेल्फ. और जब हम रिवॉर्ड अपने को कर रहे हैं तो हम नेक्स्ट टास्क के लिए रेडी हो जाते हैं. तो उस केस में हम प्रोक्रास्टिनेशन की मदद नहीं लेंगे.
0: बिल्कुल बिल्कुल, टालम टोली की मदद नहीं लेंगे. जी हां, अक्सर ऐसा देखा जाता है, बच्चे बहुत करते हैं कि बच्चे जब हम पढ़ाई के लिए उन्हें कहते हैं कि अच्छा ये होमवर्क कर लो, अच्छा कल कर लेंगे. अगर सैटरडे संडे होता है ना तो इसमें ज्यादातर होता है. फ्राइडे बच्चा आता है स्कूल से, आता है और उसके बाद जब मम्मी कहती है कि अच्छा बेटा होमवर्क करो, तो वो कहते हैं कि ना मम्मा कल, पक्का कल हम करेंगे क्योंकि सैटरडे है. और उसके बाद होता है जब सैटरडे आता है तो मम्मा कल संडे है, कल भी तो छुट्टी है. और उसके बाद हर संडे मुझे लगता है सारी मम्मियां रात के टाइम बच्चों को लेके बैठी होती है कि नहीं अब तो करना ही करना है क्योंकि अगले दिन स्कूल जाना है. तो ये इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप अपने बच्चों को थोड़ा सा ट्रेन कर सकते हैं, थोड़ा उनको आप अप्रिशिएट कर सकते हैं, रिवॉर्ड दे सकते हैं, जिस वजह से बच्चे थोड़ा सा ज्यादा चीजों को करने में उनको आसानी महसूस होगी और वो ना सारा होमवर्क करके या कोई भी पढ़ाई करके या कोई भी वर्क करके, कोई भी काम करके, कोई भी खेल कूद करके उनको अच्छा लगेगा क्योंकि उनको पता है कि सामने से उन्हें इस चीज का रिवॉर्ड जरूर मिलेगा. और जरूरी नहीं है कि रिवॉर्ड में उनको आपको गिफ्ट ही देना है, आपका अप्रिसिएशन, आपकी बातें, आपकी मोटिवेशन भी उनके लिए एक रिवॉर्ड होगी. दीदी, मेरा अगला सवाल, क्योंकि हमने अब बात करी स्टूडेंट्स की, अगली कैटेगरी हमारी जो ऑफिस गोइंग है, जो एम्प्लॉयज हैं, तो सबसे ना मुश्किल हो जाता है डेडलाइंस को हैंडल करना। हम अक्सर सुनते हैं कि डेडलाइन आ गई है लेकिन काम अभी तक हुआ नहीं है, वर्क प्रेशर, स्ट्रेस। अच्छा, ये जो स्ट्रेस है ना, ये डेडलाइन की वजह से ज्यादा और ज्यादा बढ़ जाता है हमारा। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर कोई एम्प्लॉय है वो कैसे मल्टीपल प्रोजेक्ट्स की डेडलाइन को हैंडल कर सकता है, अगर वो टाइम मैनेजमेंट करे तो किस तरह से आप उन्हें हेल्प करेंगे या क्या टिप्स उन्हें देंगे?
1: ये बहुत ही अच्छा सवाल साक्षी आपने पूछा है कि जो एम्प्लॉयज हैं वो अपने जो मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स होते हैं और उनकी डेडलाइंस को वो कैसे मीट करें। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर भी देखो टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है। अब उसको करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि हमारे जितने भी जो हमें प्रोजेक्ट दिए गए हैं या जो हमें टास्क असाइन किए गए हैं उनको हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा कि हमारा लीस्ट प्रायोरिटी का काम कौन सा है और हाईएस्ट प्रायोरिटी में कौन सा काम जा रहा है। तो वी नीड टू प्रायोरिटाइज आवर टास्क कि हमारा बहुत इम्पोर्टेंट जो इमिडिएटली हमें प्रेजेंट करना है या हमें सबमिशन देना है उसको हमें प्रायोरिटी देना पड़ेगा। कौन सा इम्पोर्टेंट है जो कि जिसके बिना हो सकता है कि अगर वो पर्टिकुलर टास्क नहीं हम कर रहे हैं तो आगे के टास्क भी सफर होंगे या पूरे डिपार्टमेंट का टास्क सफर होगा। तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल दी फोरमोस्ट थिंग एम्प्लॉय शुड डू इज कि वो अपने जितने भी टास्क हैं जो अगर वो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर रहे हैं तो उनको अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। एंड दे शुड ऑल्सो ट्राई टू टेक द हेल्प ऑफ द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। देर आर सो मेनी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, डिफरेंट तरीके के हैं। एक बहुत ही सिंपलेस्ट है जिसे हम गैंट चार्ट भी कहते हैं, तो उससे हमारे को हमारी ट्रैकिंग रहती है कि अगर हम गैंट चार्ट बना के चल रहे हैं कि हमारा क्या डेडलाइन है, हमने कितना अचीव कर लिया है। तो दैट इज अ वेरी कॉमन जो आजकल एम्प्लॉयज यूज करते हैं गैंट चार्ट को, तो उससे भी हम लोगों को पता चल जाता है कि हम कहां पर हैं, कितना हमने अचीव कर लिया या कितना हमको अचीव करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट इज कि अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप अपनी टीम के साथ काम करते हैं, आप एक आइसोलेशन में तो काम करते नहीं है। तो ऑलवेज ट्राई टू कम्युनिकेट विद योर टीम मेंबर्स टू मैनेज द एक्सपेक्टेशंस ऑफ द हायर अथॉरिटीज। अगर आप अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ या अपने कलीग्स के साथ उन डेडलाइंस को या अपने प्रोजेक्ट को या जो मल्टीपल टास्क आपको असाइन किए गए हैं उनको आप कम्युनिकेट करते हैं, उनसे आप डिस्कशन करते हैं, तो डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड सॉल्यूशन टू मीट दोस एक्सपेक्टेशंस ऑफ द मैनेजमेंट।
0: बिल्कुल। अच्छा गुरु दीदी, ये भी बहुत बार देखा गया है कि जब भी ये टाइम आता है जैसे मंडे जब आता है तब हम क्या करते हैं कि ट्यूजडे हो जाएगा काम, वेंसडे हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा, और ऐसे करते करते हम खुद ही अपनी डेडलाइन को, हम खुद ही एक जो लिमिट है बहुत ज्यादा उसको कर देते हैं कि हमारा जो वर्क प्रेशर है हम पे खुद ज्यादा आ जाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए?
1: ये तो साक्षी वही वाली बात हुई जो अभी हमने पहले क्वेश्चन में बात करी कि हम टालम टोल कि ठीक है आज तो हमारे पास टाइम है, अभी ट्यूजडे होगा, मंडे अगर हमको मान लीजिए कोई चीज फ्राइडे को सबमिट करना है तो हम कहते हैं कि ठीक है अभी हमारे पास एक दिन और है, दो दिन और है, तो हम वो टालम टोल करते रहते हैं। तो रादर दिस इज एक्चुअली अ सेल्फ प्रैक्टिस, हमारी ये अपनी टाइम मैनेजमेंट एक इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने को कैसे मैनेज कर रहा है, अपने टाइम को। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी साक्षी, थोड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगी कि 24 आवर्स तो 24 आवर्स ही होते हैं ना, तो 24 आवर्स से ऊपर एक सेकंड भी हमें नहीं मिलता है।
0: करेक्ट।
1: तो उन 24 आवर्स को नॉर्मली व्हाट वी डू, वी डिवाइड इनटू थ्री पार्ट्स, 8 आवर्स ऑफ वर्क, 8 आवर्स ऑफ रेस्ट एंड 8 आवर्स ऑफ स्लीप। अब 8 आवर्स ऑफ वर्क अगर हम वो 8 घंटे बिल्कुल अपने जद्दोजहद के साथ, अपने दिल के साथ, जो भी हमारे पूरे दिन का काम है अगर उनको हम अच्छी तरीके से कर रहे हैं और उसको नेक्स्ट डे तक नहीं छोड़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो हमारा एक्यूमुलेशन नहीं होगा। और यही बात अभी आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया कि हमें कुछ सबमिशन करना है, मान लीजिए थर्सडे और फ्राइडे को, तो हम कहते चलो ट्यूजडे को कर लेंगे, वेनेसडे को कर लेंगे। तो मुझे लगता है ये इंडिविजुअल बिहेवियरल प्रैक्टिस है, जितना हम उस पे वर्कआउट करेंगे एज एन इंडिविजुअल तो हम इस चीज को कम कर सकते हैं कि हम अपने काम को पाइलअप ना करें। जब काम पाइलअप नहीं होगा तो डेफिनेटली हमारे माइंड में भी स्ट्रेस नहीं रहेगा, क्योंकि जब स्ट्रेस होता है, जब हमको लगता है अरे इतना काम हो गया, अब तो ये भी सबमिट करना है, वो भी सबमिट करना है, तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। और उस स्ट्रेस में हम लोग अपना बिहेवियर भी खराब करते हैं, अपना एटीट्यूड भी खराब करते हैं, और एट द एंड हमको वो रिजल्ट भी नहीं मिलता है। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव अ प्लान ऑफ एक्शन, अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करें, अपनी चीजों को एक दूसरे के साथ साझा करें, कम्युनिकेट करें, एंड ट्राई टू डेलीगेट द थिंग्स एज मच एज यू कैन।
0: बिल्कुल। बिल्कुल गुरु दीदी, मैं यहाँ पर जानना चाहूंगी आपसे कि अच्छा ये भी बहुत बार होता है कि जब हम काम कर रहे हैं तो हम ना डिस्ट्रैक्ट बड़ी जल्दी हो जाते हैं
1: जी।
0: कोई भी चीजें हैं, अच्छा कोई कुछ कह रहा है तो हम उनकी ना बात सुनने लग जाते हैं, उन बातों में हम कॉन्वर्सेशन में हम पार्ट लेने लग जाते हैं। अच्छा कुछ और कुछ कर रहा है तो हम वो करने लग जाते हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत जल्दी हो जाता है। ऐसे में मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस डिस्ट्रैक्शन को हम कैसे मिनिमाइज कर सके, क्योंकि ये जब डिस्ट्रैक्शन जो है बढ़ती रहेगी टाइम हमारा वेस्ट होता रहेगा। तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे?
1: इसके लिए साक्षी मैं एक छोटा सा आपको थंब रूल देना चाहूंगी, एक छोटा सा ही फॉर्मूला है, उसमें हमें क्या करना है। देखो हम नॉर्मली 8 घंटे ही अपने ऑफिस में बिताते हैं राइट, और अगर हम उन 8 घंटों में अपने जितने भी हमारे कलीग्स हैं उनके साथ हम एक अपनी बाउंड्री सेट कर लें कि ये 3 घंटे अब सब लोग मन लगा के काम करेंगे तो सब मन लगा के काम करेंगे, बीच में छोटा छोटा ब्रेक दें कि अभी ठीक है 1/2 घंटा है, अब आइए हम सब बैठते हैं और अपना बातें करते हैं और जो है काम करेंगे। पर कई बार ऐसे होता है कि ये पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती है कि सभी का ही सेम टाइम ब्रेक का रहे या सभी का वही टाइम वर्क का रहे, तो उस केस में हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट हैं, कुछ ऐसे एप्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। आजकल बहुत टेक्नोलॉजी का जमाना है तो हम नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स को यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपको डिस्ट्रैक्शन हो रही है, कोई आपके साथ जो आपका कुलीग बैठे हैं वो कुछ फोन पे कोई गेम्स खेल रहे हैं या वीडियो गेम्स खेल रहे हैं या ऊंचे आवाज में बातें कर रहे हैं, तो आप अपने जो हेडफोन्स को यूज कर सकते हैं, अपने जो वर्क प्लेस को थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर लें। क्योंकि कई बार चीजें होती हैं कि जो डिस्ट्रैक्शन की जो चीजें होती हैं कि कई बार हम अपना जो वर्क प्लेस है ना वो ओवर क्राउडेड भी कर देते हैं, हमारा जो टेबल है वो जैम पैक्ड रहता है चीजों से, तो मुझे लगता है वो भी एक डिस्ट्रैक्शन का कारण होता है कि कहीं हमारा पेन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, कहीं हमारा लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, कहीं चार्जर गिरा हुआ है, कहीं और प्लग लगा हुआ है। तो मुझे लगता है वी नीड टू ऑर्गेनाइज दी वर्क प्लेस प्रॉपरली। दूसरा, हम कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स को यूज करें, और आजकल तो बहुत सारे एप्स भी आ रहे हैं जो डिस्ट्रैक्शन को यू नो कंट्रोल करते हैं। सो देयर आर सर्टेन नोटिफिकेशंस ऑन दी वेबसाइट, देयर आर नोटिफिकेशंस ऑन दी फोन दैट अ पर्सन इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, तो उनको भी हम यूज कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के जमाने में।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात यहाँ पर कही है कि ऐसा देखा जाता है बार बार ना। अच्छा बहुत सारी ऐसे रील्स भी वायरल हो रही हैं कि चलिए हम तो ब्रेक पे जा रहे हैं, ये इतना ब्रेक ले लेते हैं, अच्छा अब 9 बजे का हमारा चेक इन हो गया है, उसके बाद 15-20 मिनट काम किया, एक चाय ब्रेक हो जाए। चाय ब्रेक्स बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो इस चीजों को अवॉइड करने के लिए आपको थोड़ा सा ऑर्गेनाइज रहना पड़ेगा, अपने काम में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप डेडलाइंस को मीट कर पाएंगे। नहीं तो वो डेडलाइंस जो है बाद में आपके ऊपर प्रेशर आके मीटिंग्स में फिर उसके बाद जो है वो काफी ज्यादा परेशानियां हमें झेलने को मिलती है और फिर स्ट्रेस हो जाता है और फिर हमारी सेहत पर इसका असर पड़ता है। तो अगर ये सारा प्रोसेस नहीं चाहते आप तो अपना टाइम आप थोड़ा सा मैनेज करिए और चीजें ठीक हो जाएंगी। अब एक ऐसी मैं कैटेगरी की बात करना चाहती हूँ जिनके पास टाइम तो है लेकिन ये डिवाइड नहीं कर पाती अपना टाइम, पूरा दिन उनको ये लगता है कि बस काम चलता ही रहता है चलता ही रहता है, उनको सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, इनफैक्ट इतना भी नहीं कि वो अपना जो खाना है वो भी टाइम पर खा सके। और मुझे लगता है इस कैटेगरी को तो बहुत ज्यादा टाइम मैनेजमेंट की जरूरत है। मैं बात कर रही हूँ होममेकर्स की। तो बात करें कि अगर होममेकर्स की बात करें तो ये जो है अपने पूरे काम में जो है एक के बाद एक काम में लगी रहती हैं, तो इनको मैनेज करना कितना जरूरी है और कैसे मैनेज हो सकता है?
1: होममेकर की बात करें साक्षी, तो सबसे पहले तो मैं उन सबको सैल्यूट करना चाहूंगी जो होममेकर्स हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि दे आर दी वर्ल्ड बेस्ट मैनेजर्स। अगर हम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वो सबसे बड़े मैनेजर्स होते हैं, बट उस मैनेजमेंट में वो कहीं ना कहीं टाइम को मिस कर जाते हैं। वो काम तो बहुत करते हैं जैसे तुमने कहा कि सुबह से लेके शाम तक रात तक वो लगे रहते हैं, बट दे आर नॉट एबल टू मैनेज देयर टाइम्स। क्यों? क्योंकि वो समय को कभी देखते ही नहीं, क्योंकि उनको लगता है वो तो घर में उनके पास समय ही समय है, तो वो समय को इतना जो है ना इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो काम को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो नाउ व्हाट दे हैव टू डू इज, उनके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वो अपने शेड्यूल को फिर से लिस्ट डाउन करें। शेड्यूल तो वही है, सुबह उठेंगे, पहले बच्चों को तैयार करेंगे, घर का ब्रेकफास्ट बनाएंगे, फिर घर को संभालेंगे, मतलब वो एंड द लिस्ट इज एंडलेस उनके लिए। बट दे हैव टू सी कि ये पूरा टाइम वो खुद ही लगे रहें वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उनको अपने फैमिली मेंबर्स को भी टास्क को डेलीगेट करना चाहिए। चेकलिस्ट बनाएं कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, और कोशिश करें, मोस्टली घर में गृहिणी जो होती हैं या जो होम मेकर्स होती हैं ना, वो लाड प्यार में या कहते हैं कि बहुत एक जैसे कहते हैं दिल से जैसे काम करते हैं, तो वो हर चीज अपने हाथ से करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं वो अपनी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं, और समय तो वो कभी घड़ी देख के तो वो काम ही नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो प्रायोरिटी उनको देना चाहिए कि टाइम मीन्स टाइम। तो उनको अगर सुबह ब्रेकफास्ट का काम खत्म करना है, आप देखो कभी भी नॉर्मली हमारे इंडियन सिस्टम में संडे का जो ब्रेकफास्ट होता है वो मतलब दोपहर में ऑलमोस्ट 11:30-11 तक वो महिला जो है ना होम मेकर खड़ी रहेंगी किचन में कि अब सब लोग तैयार होकर आ जाएं, नहा धोकर आ जाएं और अब जो है वो ब्रेकफास्ट खाया जाएगा। वो सुबह 7 बजे से खड़ी रहती हैं जो अपने किचन में, और उसके बाद ब्रेकफास्ट लेने के लिए सभी मेंबर्स जो हैं वो 11:30-11 तक टेबल पर आते हैं। दैट मीन्स कि हाउ मच टाइम शी हैज डिवोटेड इन द किचन, और जबकि वो जरूरत नहीं थी, वो 1 घंटे में भी काम खत्म हो सकता है। तो वो टाइम टेबल बनाना भी बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि होम मेकर्स के लिए एक मैसेज है कि थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालें, और मी टाइम निकालना बहुत जरूरी है, और अपने को प्रायोरिटी देना भी जरूरी है। जब हम लोग कहते हैं कि अपने घर के कामों को कैसे मतलब संजो कर रखें, और थोड़ा सा अपने लिए भी उनको टाइम निकालना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है अपने लिए घर में। देखिए ऐसा होता है बहुत बार हम ये देखते हैं कि अच्छा मैं ये चाहती हूँ गुरु दीदी ये जरूर बताएं कि एप्रिसिएशन भी कितना ज्यादा वर्क करता है एक महिला के लिए जब वो जो होम मेकर है उनके लिए, क्योंकि हम ये देखते हैं कि वो लगी रहती हैं, उनको कोई ये भी नहीं पूछता है कि आपने कुछ खाया नहीं खाया है, या जो वो पराठे दे रही हैं क्या उनके लिए वो खाना बचा है या नहीं बचा है। और उसके बाद ये होता है कि जब सब कुछ हो जाता है तब वहां पर क्या आता है कि उनके लिए कि खाना नहीं बचा, अब वो कहती है कि अब मुझे दोबारा खाना बनाना भी नहीं है, वो बस अच्छा 2 ब्रेड पड़ी होगी, 1 रोटी पड़ी होगी, मैं ये खा लूंगी मेरा हो जाएगा और उसके बाद फिर से अपने काम में लग जाती है। तो इन चीजों को किस तरह से और बेटर किया जा सकता है फैमिली में, ना सिर्फ बच्चे बल्कि उनका जो लाइफ पार्टनर है और इनफैक्ट जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे भी अगर एप्रिसिएशन मिले, आप क्या कहना चाहेंगे?
1: एप्रिसिएशन बहुत जरूरी है, यू नो होम मेकर्स के लिए एप्रिसिएशन जो है ना बहुत बहुत मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि उनको कहीं और से एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, उनको अपने वो घर वालों से एप्रिसिएशन मिलेगा। और अगर कभी आपने देखा होगा नॉर्मली हम लोग यही कहते हैं कि आप तो पूरा दिन घर पे रहते हो करते क्या हो, अब वो करते क्या हो अगर एक दिन वो महिला घर में सिर्फ बैठी रहें और कोई काम ना करें तो सबको समझ में आ जाएगा कि वो करते क्या है। यू नो इसके लिए पीछे एक स्टोरी भी है जो आई थिंक हम सब लोग सुनते हैं कि जो एक बड़ी महिला थी उनके उन्होंने हस्बैंड आए, उन्होंने बोला कि तुम करती क्या हो सारा दिन, तो नेक्स्ट डे उस महिला ने क्या किया कि सुबह उठी और वो कुछ काम नहीं किया उन्होंने, तो जब शाम को जब हस्बैंड घर में आए तो उन्होंने जैसे ही उसने दरवाजा खोला तो कुछ बर्तन गिरे हुए हैं, कुछ बैग स्कूल बैग इधर गिरा है, सॉक्स इधर गिरे हैं, बच्चे स्कूल से आए थे तो उनको खाना नहीं मिला, पूरा किचन जो है वो फैला हुआ था। तो तब उन्होंने बोला कि क्या हो गया आपने, मतलब आप कुछ प्रॉब्लम है, तो बोले हम तो कुछ करते ही नहीं है, तो मैंने सोचा आज कुछ नहीं करते हैं, तो ये वो रियलाइज कराना चाहती थी कि भाई हम क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि एप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे वो बच्चों से एप्रिसिएशन मिले, चाहे उनके बेटर हाफ से उनको एप्रिसिएशन मिले, चाहे उनके घर में इन लॉज हैं या कोई और बड़े बुजुर्ग हैं उनके तरफ से एप्रिसिएशन मिले, वो एप्रिसिएशन उनका एक रिवॉर्ड होता है। और क्योंकि वो बाहर तो नहीं जा रहे हैं कहीं काम करने के लिए, तो उनको वही एक मोटिवेशनल फैक्टर होता है। और सभी का ये रोल है, सभी का ये कर्तव्य है, सभी का ये फर्ज है या रिस्पॉन्सिबिलिटी कह लीजिए, कि हमें होम मेकर का काम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। दे आर दी बेस्ट मैनेजर्स इन दी वर्ल्ड और बहुत काम करते हैं, उनके बिना अगर काम नहीं करें तो शायद हस्बैंड एक दिन भी बाहर ऑफिस के लिए नहीं जा सकते, और बच्चे भी जो है अपना खुशी खुशी ना तो पढ़ाई कर सकते हैं ना स्कूल जा सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही है। मैं यहाँ पर बता दूं कि बहुत बार ऐसा भी होता है कि टाइम मैनेजमेंट करने में उन्हें इसलिए भी दिक्कत आती है क्योंकि जैसे अब क्या होता है बच्चे हैं स्कूल गए उन्होंने सारा घर समेटा, अब इतने में सारा टाइम निकल जाता है घर ठीक करने में, बच्चे स्कूल से वापस आ जाते हैं और फिर से क्या होता है कि उनकी बुक्स उनकी कॉपीज फिर से फैल जाती हैं, फिर उन्हें काम करना होता है और उसके बाद टाइम हो जाता है कि हस्बैंड जो है अब ऑफिस से आ गए हैं, अब उनका काम समेटना। ऐसे करते करते जो टाइम है, अगर ये जो काम है छोटे छोटे ये हस्बैंड हो गए या फिर जो बच्चे हैं वो खुद समझ जाएं और खुद करने लगे, तो हो सकता है कि जो होम मेकर्स है उनके पास अपना खुद का टाइम जरूर निकले। गुरु दीदी, हमने बात करी है स्टूडेंट्स के बारे में, ऑफिस वर्कर्स के बारे में, बात करी हमने होम मेकर्स के बारे में, लेकिन अब एक जरूरी बात और वो आती है हमारे बड़े बुजुर्गों की। देखिए, बड़े बुजुर्ग जो होते हैं ना हमारे, उनको हमें लगता है कि वो तो फ्री है, बैठे हुए हैं, तो आप यहाँ बैठ जाइए, अपना अखबार जो है वो पढ़ लीजिए या आप थोड़ा न्यूज देख लीजिए, लेकिन कभी कभार होता है कि उनको भी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत होती है। तो अब बात करें कि किस तरह से वो अपना डेली रूटीन जो है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, क्योंकि होता है कि कभी वो होता है कि जल्दी टाइम से उठ जाते हैं, वॉक कर ली, अब वो बैठे हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ज्यादा टाइम हो जाना, किसी एक्टिविटी में इंडल्ज ना भी होना एक प्रॉब्लम साबित होता है, तो आप इस बारे में क्या कहेंगे?
1: साक्षी, जो ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं घर में, मुझे लगता है कि उनका टाइम टेबल बहुत अच्छा होता है ना जी। तो नॉर्मली अगर हम लोग देखें तो हम कहते हैं कि हमारे दादाजी या हमारे इन लॉज, उनका एक टाइम टेबल बिल्कुल सेट है कि वो सुबह 5 बजे उठ जाएंगे या 4 बजे उठ जाएंगे, उसके बाद अपना नहा धोकर वो पूजा पाठ करेंगे, फिर वॉकिंग के लिए भी जाएंगे, फिर वो अपना जो भी, क्योंकि एल्डरली पॉपुलेशन है तो ऑब्वियसली कई बारी मेडिकेशन भी होता है, डॉक्टर्स के पास जाना होता है, तो दे हैव अ सेट टाइम टेबल। एंड मैं उन घर में जो भी हाउस होल्ड हैं, जो ज्वाइंट फैमिलीज में रह रहे हैं, जहां पे ओल्डर एडल्ट्स रह रहे हैं, मैं उन सबको ये एक बताना चाहूंगी कि जो उनका टाइम टेबल है वो बहुत अच्छा रूटीन होता है। अगर हम अपने बड़े बुजुर्गों को फॉलो करें, वो अपने समय के बड़े पाबंद थे और आजकल की जनरेशन बल्कि पाबंद नहीं है, तो हमें उनको बल्कि फॉलो करना चाहिए कि वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करते हैं। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज जो है ना, जो उनका एक फॉर्मूला होता था हमारे बड़े बुजुर्गों का, आई थिंक अगर हम लोग वो आज फॉलो कर लें तो ये जो टाइम मैनेजमेंट की समस्या के बारे में आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ये जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमें बड़े बुजुर्गों को फॉलो करना चाहिए और वो कैसे कर सकते हैं, वो कैसे करते हैं, बिकॉज दे हैव अ यू नो डेली प्लानर, वो एक अपना कैलेंडर, उनका एक सेट रूटीन होता है। आप देखो कभी भी बड़े बुजुर्गों को, अगर आप उनको टाइम को, कुछ भी उनके रूटीन को अगर इधर उधर करने की कोशिश करोगे तो वो अनकंफर्टेबल भी रहते हैं और वो मना कर देंगे, कहेंगे हाँ। नहीं, ये हमारा पूजा का समय है, ये हमारा ब्रेकफास्ट का समय है, ये हमारा सोने का समय है। दे हैव अ प्रॉपर रूटीन। तो मुझे लगता है वो डेली प्लानर, डेली रूटीन या जो कैलेंडर उन्होंने सेट किया है वो बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ जो उनकी डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं, चाहे वो पार्क में जाके थोड़ी देर फ्रेंड्स के साथ बैठना, या शाम को मंदिर या गुरुद्वारे जाना, या लाफिंग क्लब जो आजकल पार्क्स में बहुत आजकल एक प्रथा चली हुई है, उसको ज्वाइन करना, या सुबह अर्ली मॉर्निंग में कुछ योगा क्लासेस लेना या मेडिटेशन की क्लासेस लेना, तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छी चीज है और ये होना भी चाहिए। और अगर कहीं पे लगता है कि बहुत एज बढ़ती चली जा रही है और हम टाइम को नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, तो उस केस में दे कैन ट्रैक, दे कैन यूज देयर फोन्स टू फॉर द रिमाइंडर्स, क्योंकि आजकल फोन में बहुत सारे अच्छे ट्रैकिंग एप्स भी आ गए हैं, तो दे कैन सेट द रिमाइंडर्स कि अभी इनको दवाई खानी है, अभी इनको सोना है, अभी इनको खाना खाना है, अभी इनको बाहर घूमने जाना है या टहलने जाना है। तो वो अगर हम लोग फोन पे ट्रैकिंग अपना रख लेते हैं तो ओल्डर एडल्ट पॉपुलेशन, जो एडल्ट पॉपुलेशन है, वो भी अपने टाइम को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और मैं यहाँ कहूंगी कर सकते नहीं, वो करते भी हैं,
0: करते भी हैं बिल्कुल। तो मुझे लगता है हमसे ज्यादा अच्छे से जो है वो टाइम को मैनेज कर रहे हैं और इम्पोर्टेंट भी है टाइम को मैनेज करना, तो आप कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि ये जो बाल है ऐसी सफेद नहीं हुए, ये हमेशा एक तकिया कलाम होता है हर बुजुर्ग का कि ये बाल ऐसी धूप में सफेद नहीं हुए हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। तो देखिए, वो एक्सपीरियंस, वो जो जमा पूंजी है ना, वो सिर्फ पैसे नहीं बल्कि उनका एक्सपीरियंस है जो आपको लेना है, वो गेन करना है वहां से सीखना है, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये टाइम मैनेजमेंट कितना आसान भी है और कैसे इसे आप आराम से कर सकते हैं। अब बात करें यहाँ पर जो हमारे साथ सभी जो मेल है या फिर ऑफिस गोइंग लोग हैं, एक बैलेंस होता है एक पर्सनल लाइफ में और एक प्रोफेशनल लाइफ में, एक वर्क लाइफ बैलेंस होता है, इसको मेंटेन करना कितना जरूरी है। और क्योंकि टाइम मैनेजमेंट करना, अब जैसे होता है कि चाहे वो फीमेल हो चाहे वो मेल हो, घर पे जो काम करें या बाहर भी जाके जो काम करें, वो हमेशा एक ही चीज कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा थक जाते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है खुद के लिए, बहुत ज्यादा एक हौच पौच रहती है, बहुत ही मैसी सी एक पूरा दिन उनका रूटीन रहता है। इसको कैसे मैनेज किया जा सके?
1: साक्षी देखो, वर्क लाइफ बैलेंस जो किसे हम लोग कहते हैं कि पर्सनल लाइफ में और हमारे जो वर्क में जो है वो एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है। अब वो हम इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि हम अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स कर देते हैं। हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं अपने प्रोफेशनल लाइफ में कि वो उसका जो बर्डन है, जो वर्क, जो काम का जो बर्डन है, वो हम घर लेके भी चले जाते हैं। तो इन दैट केस हम लोग एक वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट कि हमें अपनी क्लियर जो बाउंड्रीज हैं, जो एक बाउंड्रीज को हमें सेट करना पड़ेगा क्लियर कि ये हमारा ऑफिस का काम है, ये हमारा घर का काम है। हमें घर में भी अपने टाइम को प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटी देनी है। हमें अपने घर में अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके साथ बैठना है और उनके साथ एक यू नो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। हमें अपने लिए एक रिलैक्सेशन का जो टाइम है वो भी निकालना है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा नॉर्मली जो महिलाएं वर्किंग होती हैं या जो हस्बैंड्स जब ऑफिस से आते हैं तो वो अपने काम का बोझ साथ में लेकर आते हैं। अभी आते हैं, चाय पीते हैं, लैपटॉप ऑन करके बैठ जाते हैं। तो दैट मीन्स वी आर नॉट मेंटेनिंग दी बैलेंस बिटवीन द टू। जब हम घर में आए हैं तो हमें घर में टाइम देना है, घर के काम में टाइम देना है, घर के लोगों के लिए टाइम देना है और अपने लिए टाइम देना है। और ये तभी हो पाएगा जब हम दोनों में एक बाउंड्री सेट कर पाएंगे कि ये हमारा प्रोफेशनल काम था, ये यहाँ खत्म हो गया, अब यहाँ पे हमारी पर्सनल लाइफ खत्म हो, पर्सनल लाइफ स्टार्ट हो गई है, अब हमने ये काम करना है, अब हमने अपने बच्चों को टाइम देना है, अब हमने अपनी वाइफ को टाइम देना है या हस्बैंड को टाइम देना है या इन लॉज को टाइम देना है, अपने घर के कामों को टाइम देना है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल बिल्कुल। गुरु दीदी, मेरा एक और सवाल यहाँ पर आपसे कि अभी हमने बात करी है जो बाहर ऑफिस के लिए जा रहे हैं, लेकिन आजकल एक नया ट्रेंड भी है, ये कुछ टाइम से जब से लॉकडाउन हुआ है कि वर्क फ्रॉम होम का ये जो कल्चर है ये आया है सामने। अब इसमें होता है कि सुबह से जो काम शुरू होता है वो

0: जो अच्छे अच्छे कॉर्पोरेट्स हैं उनका मैंने देखा है सिस्टम, दे हैव अ वेरी रोबस्ट सिस्टम, मतलब बहुत अच्छा सिस्टम होता है. अगर उनका सुबह 9 बजे मीटिंग स्टार्ट हुई है तो वो उसके बाद 2 घंटे के बाद दे विल प्रोवाइड दी यू नो बीच में एक ब्रेक देते हैं कि भई आप जाइए ब्रेकफास्ट कर लीजिए या जो भी आपको टाइम देना है कर लीजिए, उसके बाद फिर से वो अपने काम पे लगते हैं. एंड डॉट अगर वो यू नो 9 से 5 का ऑफिस है या जो भी उनका जो 8 आवर्स का या 8.5 आवर्स का जो शेड्यूल है उसके बाद दैट ऑफिस इज क्लोज, मतलब ऑनलाइन वो ऑफिस क्लोज हो जाता है. नाउ इट इज द इंडिविजुअल जो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है. एक एज अ हम लोग जैसे कहते हैं एम्प्लॉय, हम घर में बैठे हमें लगता है कि अच्छा चलो हम अभी ये भी काम कर लें, अभी हम ये भी बैठे हैं. कई बारी दो एस्पेक्ट हैं कि जो घर में वर्क फ्रॉम होम कर रहा है उसके लिए दो एस्पेक्ट होते हैं. एक तो आपने कहा कि वो मोनोटनस सा हो जाता है, वो मोनोटनस इसलिए हो रहा है क्योंकि वो काम कर रहा है लैपटॉप पे बहुत टाइम से, वो उसको कंटिन्यूसली स्क्रीन को देख रहा है तो वो मोनोटनस सा है, तो वो बीच में वो छोटे छोटे ब्रेक्स ले सकते हैं. कई बार हम खुद ही उसको मोनोटनस बना देते हैं कि हम लगे रहते हैं इररेस्पेक्टिव ऑफ कि वो उतना काम जरूरी है या नहीं है. अगर उसको नहीं करना है थोड़ी देर के लिए, हम ऑफिस काम नहीं कर रहे होते उसमें, हम कई बार कुछ और काम लेकर बैठ जाते हैं, हम अपनी मेल्स चेक करना शुरू कर देते हैं, हम व्हाट्सएप पे चले जाते हैं, हम यूट्यूब पे चले जाते हैं, तो आई थिंक हम अपने आप ही अपने को बिजी कर देते हैं
1: वर्क
0: फ्रॉम होम वाले कल्चर में. तो मुझे लगता है कि उससे ज्यादा हमें थोड़ा सा उस रूम से बाहर निकल के अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हम लोग बातें करें या कुछ छोटे छोटे काम कर लें, म्यूजिक सुन लें या डांसिंग कर लें या किचन में चले जाएं या कोई और काम कर लें, तो
1: बिल्कुल
0: वो मोनोटनी हम ब्रेक कर सकते हैं
1: बिल्कुल. और अभी हमने बात करी है वर्क फ्रॉम होम कल्चर की जो नया चला है, आपने बताया किस तरह से मैनेज कर सकते हैं टाइम. मैं अब जानना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो कि नाइट शिफ्ट करते हैं. अब ये बड़ा टफ हो जाता है कि पूरी रात जब काम किया ना तो अगले दिन, क्योंकि हमारी जो रात की नींद होती है ना, अगर हमने वो चाहे 8 घंटे की ली हो चाहे वो 7 घंटे की, वो रात की नींद होती है, वो अगर कंप्लीट नहीं होती तो हमें लगता है वो जो पूरा दिन है उसमें हमें पूरा दिन नींद आती रहती है और हम पोड़ लेते भी हैं. ऐसे में जब पूरा दिन चला गया है, शाम का टाइम है, खाना खाया और फिर से हम काम करने बैठ गए, टाइम कहीं भी मैनेज नहीं हो रहा है, आप इस पर क्या कहेंगे और किस तरह से हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं यहाँ?
0: तो साक्षी, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो लोग नाइट शिफ्ट करते हैं ऑब्वियसली उनको टाइम मैनेजमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है. बट यहाँ पर भी मैं ये कहना चाहूंगी कि दोबारा से एक बार रिपीट करना चाहूंगी कि 24 आवर्स ही हमारे पास होते हैं, तो 8 आवर्स ऑफ वर्क, 8 आवर्स ऑफ रेस्ट एंड 8 आवर्स ऑफ स्लीप. तो जो लोग नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो जो रात को 8 घंटे काम कर रहे हैं, तो अपने घर पे आके उनको ये एक देखो हमारा जो बॉडी क्लॉक है वो चेंज हो जाता है, बट उनको आके रेस्ट करना चाहिए, उनको आके सोना चाहिए. तो जब वो 1-2-3 दिन ये प्रैक्टिस करते हैं तो उनका बॉडी क्लॉक वैसा ही बन जाता है. तो इन दैट केस देन दे आर इन अ पोजीशन टू मैनेज देयर टाइम कि उन्होंने रात भर काम किया, सुबह आके थोड़ा रेस्ट किया, दोपहर तक जब वो उठते हैं तो उनके पास वो शाम तक रात तक का टाइम होता है जिसमें वो अपनी बाकी की एक्टिविटीज को पूरा कर सकते हैं. बट होता क्या है कि हम लोग जब रात का काम करके आते हैं, नाइट शिफ्ट में जो लोग होते हैं, तो वो सुबह आके कोशिश करते हैं कि वो ना सोएं, क्योंकि वो फैमिली मेंबर्स के साथ होते हैं तो उनको लगता है कि हम उनसे बातें कर लें, तो वो अपना टाइम उसमें व्यर्थ कर देते हैं. तो आई थिंक उनको रेस्ट करना और उनको सोना बहुत जरूरी है. जब वो सोकर उठेंगे तो वो फ्रेश रहेंगे, एनर्जाइज रहेंगे और उनके पास काम करने की क्षमता रहेगी और वो अपनी बाकी की एक्टिविटीज भी कंप्लीट कर सकते हैं.
1: बिल्कुल. तो देखिए, ये तो बात रही टाइम मैनेजमेंट के बारे में. आज हमने बहुत सारी बातें इन डिटेल जानी है. गुरु दीदी, मैं जानना चाहूंगी वो आखिरी सवाल, क्या वो खास संदेश है जो आप हमारे सभी लिसनर्स को देना चाहेंगे? क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की बात है, आपने काफी सारे डिटेल में जानकारी जो है हमें दी है, लेकिन जाते जाते क्या वो कुछ कहना चाहेंगे आप सबसे, कुछ मैसेज जो होगा आपकी तरफ?
0: हाँ, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूंगी कि अगर आप टाइम को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली मैनेज करना चाहते हैं तो यू नीड टू वर्क स्मार्टर देन हार्डर. हम वर्क हार्ड ठीक है, जरूरी है, बट हमें स्मार्टली करना चाहिए. और जब हम स्मार्ट वर्क की बात करते हैं तो हमको जो हमने अभी पूरा डिटेल डिस्कशन किया है कि हमें अपनी चीजों को प्रायोरिटाइज करना है, गोल्स को हम सेट करके रखें, हम हर चीज को प्लान बना के करें, प्लानिंग के साथ करें, हम कोशिश करें कि अपने चाहे हम घर परिवार में हैं या हम वर्क प्लेस में हैं, हम अपने काम को थोड़ा थोड़ा डेलीगेट भी करें.

0: सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं श्रोताओं को बोलना चाहूंगी कि हमको अपनी बाउंड्रीज को सेट करना चाहिए और कहीं ना कहीं हम नो भी कहने की क्षमता रखें। कई बारी एवरी टाइम सेइंग यस यस एंड यस विल गिव यू लॉट ऑफ बर्डन, वो बहुत बर्डन हो जाता है लाइफ में और वो कहीं ना कहीं आके वो स्ट्रेस बन जाता है हमारी लाइफ में। तो हमको नो कहना भी आना चाहिए एंड वी शुड ऑलवेज बी फोकस्ड इन आवर लाइफ कि जो भी काम करें पूरी फोकस के साथ करें, 100% होकर करें, खुश होकर करें। अगर खुश होकर करेंगे तो वो हमारा टाइम से खत्म होगा एंड वी आर इन अ पोजिशन टू यू नो अपना टाइम मैनेजमेंट हम कर पाएंगे। और लास्ट में सिर्फ 4 D's के बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि टाइम मैनेजमेंट के लिए 4 D's आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डू काम करिए पर डेलीगेट भी कीजिए, डेलीगेट डेफर एंड डिलीट। सो विद दिस मैं ये सभी श्रोताओं को एक बार फिर से कहना चाहूंगी कि काम हंस के कीजिए, खुशी से कीजिए, देखिए आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा।
1: बिल्कुल, देखिए पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है और हम यही तो बात करते हैं ना, पॉजिटिव रहना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसी के साथ ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपने टाइम को मैनेज कीजिए। और गुरु दीदी थैंक यू सो मच, आप हमारे यहाँ स्टूडियो आई, इतनी सारी बातें करी है हमारे लिसनर्स तक, इतनी सारी जानकारी पहुंचाई है, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: थैंक यू साक्षी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया आपसे इजाजत लेने का, कल होगी फिर से आपसे मुलाकात, तब तक के लिए कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रश 107.8 FM। फील गुड फील लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ और इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और क्या हालचाल, क्या कर रहे हैं आप, और मुझे आप बताइए कि पॉजिटिव सोचते हैं, एक पॉजिटिव नज़रिया रखते हैं। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारा मूड भी हैप्पी हैप्पी हो जाता है, यानी कि हम अच्छा सोचने लगते हैं, अच्छा महसूस करने लगते हैं, अच्छा वो सब पूरा समा लगने लगता है, होता है ना ऐसा। और पता है एक बात जो अपने बड़ों से भी सुनी होगी और आपको ये पता भी होगी कि अच्छा अगर महसूस करना है, अच्छा काम करना है, तो जो अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, उनके साथ में उठना बैठना शुरू कर दीजिए। पता है क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत फ़र्क पड़ता है। आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, अपना वक्त बिताते हैं, इसका असर बहुत पड़ता है हमारे ऊपर। इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करनी चाहिए जो जीवन को लेकर के हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, एक पॉजिटिव नज़रिया रखते हैं और कुछ करने के बारे में सोचते हैं, कुछ अच्छा जो लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, आज के यूथ को एक मैसेज दे सकता है। जो इस तरह की सोच रखते हैं ना, हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए। और हमारे आसपास ऐसे लोग हैं और आपको सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है, आपको बात करने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे तो बहुत अच्छा दिमाग रहेगा। पॉजिटिव लोगों के साथ में इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, तो ये आप कर दीजिए। और एक चीज़ आपको मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप सिर्फ दो तीन चीज़ें ही लाइफ में कर रहे हैं तो थोड़ा सा और एडवांस हो जाइए। ये सोचिए कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ अभी करना है, ये सोच के जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको कई बार ऐसा भी होगा कि जाने अनजाने में ऐसे रास्ते भी आपके खुल जाएंगे जहाँ आपको आपको राह ही राह मिलेगी। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये सब तभी हो सकता है जब आपका हेल्दी माइंड रहेगा, खुश रहेंगे, हल्का महसूस करेंगे और ज़िंदगी को जीने के लिए पूरी तरीके से एक्साइटेड रहेंगे। ये तभी चीज़ें पॉसिबल है। इसलिए मैं जो आपसे बातें कर रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं हम सब की ज़िंदगियों से ही जुड़ी चीज़ें हैं। इसको आप फॉलो कीजिए, इसको अपने दिमाग में बैठाइए, इसको अपना रूटीन बनाइए, फिर देखें ज़िंदगी कितनी तेज़ी से बदलती है और ये बदलाव डेफिनेटली अच्छे होंगे। अच्छा, बहुत से लोगों को ना तुलना करने की बहुत आदत होती है, वो तुलना करते हैं एक दूसरे से, और ये वाली चीज़ आपके लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है आपको मैं बताऊंगी। वाकई में ये बहुत बुरी चीज़ है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए। इसके बारे में बात होगी रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ।

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और काफ़ी सारी बातें हमने की खुशियों को लेके कैसे खुश रहना है ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है लेकिन एक चीज़ जिससे आज के टाइम पर काफ़ी लोग इफ़ेक्टेड हैं और देखिए हमें लाइफ में लोगों से जुड़ना होता है चीज़ें सीखने के लिए आगे बढ़ने के लिए बेहतर बनाने के लिए दूसरों से जुड़ना पड़ता है लेकिन पता क्या होता है हम धीरे धीरे खुद को कंपेयर करने लगते हैं जब देखते हैं कि हम मान लो किसी के साथ किसी ग्रुप में हैं जहां हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं बट हमारे सामने वाला जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है लाइफ में तो हम कंपेयर करने लगते हैं और पता है यही कंपेयर करने की जो आदत है ये हमें कितना नुकसान पहुँचा सकती है और अक्सर ऐसा होता है जब एक मुकाबला शुरू हो जाता है और अपने आप को ये मुकाबला कब कैसे हम कंपेयर करने लगते हैं ये वाली चीज़ जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के अंदर ये होती है तो ये आप नहीं कीजिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है कंपेयर करना तो बिल्कुल मतलब अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है राइट इसलिए अगर आप भी कंपेयर करते हैं वो कंपैरिजन की आदत है आपके अंदर इसको आज ही से छोड़ दीजिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉइजन है जो आपको धीरे धीरे धीरे धीरे गला रहा है तो वो आप मत कीजिए अपनी आदत को आप समझिए आप समझ सकते हैं कि ख़ुद को दूसरे से बेवजह तुलना करना एक ऐसी आदत हो सकती है जो आपने अपने जीवन में या तो बचपन में या किसी एक टाइम पर आपने सीखी और अब वो तुलना इतनी ज़्यादा होने लगी है कि आप खुद परेशान होने लगे हैं तो देखिए ऐसा होता है कई बार ऐसा हो जाता है तो आपको बस अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि आप जो हैं जैसे हैं आप अपने लिए बेहतर हैं और एकदम फिट हैं और आप जो हैं वो आप ही हैं भाई आप किसी से कंपेयर खुद को कर ही नहीं सकते हैं ये वाला ना मुझे लगता है कि एटीट्यूड ना अपने अंदर आपको रखना चाहिए ये एटीट्यूड जिस दिन आ जाएगा ना आपके अंदर में आपको ऐसा लगेगा बस मैं ही मैं हूँ और आपको आप खुद अच्छे लगने लगेंगे तो ये आपको एटीट्यूड रखना ज़रूरी है दूसरी चीज़ खुद से आप सवाल कीजिए कि आप खुद की तुलना दूसरों से क्यों करते हैं जब आप अपनी वजह को पहचान लेंगे तो उसे संभालना आपके लिए इजी हो जाएगा शुरुआती टाइम पर आपको थोड़ा वक्त लगेगा और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि एक आदत है जो शुमार हो चुकी है और अब इसको थोड़ा ठीक करने में टाइम लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते आप ये खुद से सवाल कीजिए कि मैंने अगर कंपेयर किया तो क्यों किया मे बी बचपन से आप करते आ रहे हैं लेकिन अब क्यों मैं क्यों नहीं अपने लिए अच्छा कर पा रहा है या कर पा रही ये सवाल अपने लिए रखना ज़रूरी है जिस दिन आप ये रख लेंगे उस दिन मुझे लगता है कि चीज़ें इजी हो जाएंगी तो कंपेयर करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है राइट तो मैं तो यही कहूँगी कंपेयर मत कीजिए बल्कि ज़िंदगी को इंजॉय कीजिए ऐसी ही एक चीज़ आपके साथ में और शेयर करना चाहूँगी और वो क्या है किस बारे में है ये आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर में चलिए एंजॉय करते हैं गाना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और ये मेरी लाइफ में काफ़ी सारी बातें हम कर चुके हैं और अभी मैं एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर रही हूं, एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई लोग इससे घिरे हुए हैं, कई लोग इससे परेशान हैं और वो है अपने आप को कंपेयर करना। पता है कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है और कई बार पता है क्या होता है, हमें दूसरे लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कि देखो आप उतने अच्छे से नहीं कर पाए लेकिन देखो वो कितने अच्छे से कर रहा है। मे बी हमारे करीबी हो सकते हैं, मे बी आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कंपेरिजन लोग करते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पर है कि आप कितना अफेक्टेड हो रहे हो उससे, इस चीज़ के बारे में बस आपको सोचने के लिए कह रही हूँ, क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ना, अगर आप सोच लेते हैं तो मुझे लगता है कि आगे की ज़िंदगी आपकी काफ़ी ईजी होने वाली है। तो ख़ुद को कंपेयर किसी भी सूरत में नहीं करना है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि अपने आप को जानने की तलाश में आप बढ़ते रहिए, आगे उस चीज़ को जारी रखिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने साथ में रखना, अपने अंदर रखना ये ज़रूरी है, राइट? तो ये जिस दिन आप कर लेते हैं उस दिन मुझे लगता है कि आपका जो जीवन है वो काफ़ी इजी हो जाएगा। और पता है आज के टाइम पे ना हम हर चीज़ पा सकते हैं अगर हमने ठान लिया कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है, हमें खूब सारी पढ़ाई करनी है, एक मुकाम पर आना है, अच्छी जॉब हमें लेनी है या किसी पोस्ट पर हमें आना है, अच्छी सैलरी, ऑफ कोर्स सबको चाहिए अच्छी सैलरी और अच्छी जगह पर हमें रहना है, हर कोई सब अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही चाहता है। और ये वाली चीज़ें अगर आप देखें, अगर हम अच्छे से डट के मेहनत करते हैं तो हम इस चीज़ को पा सकते हैं। लेकिन पता है आजकल अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाना, अपनी ज़िंदगी को समझना, अपनी खुशियों को समझना, इस चीज़ को पाने के लिए ना तो हम सोच पाते हैं, और सोच पाते हैं तो इसको पाने के लिए हमें कई वक्त लग जाता है, कई बार पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो जो चीज़ें हमारे हाथ में है लेकिन हम उसको नहीं पा रहे हैं, काम उस पर कीजिए, राइट? और मुझे लगता है कि आप यकीनन अपने आप को पा पाएंगे। कोई सवाल आपका है, कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं, कोई मैसेज आपको हम तक पहुंचाना है, नंबर हमारा है 8010781078। होप करती हूं कि आप इन चीज़ों को अमल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए। मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर. देखा कितना प्यारा सा गाना मैंने आपको सुनाया है. ये गाना सुन के तो कोई अगर सैड भी होगा ना तो वो भी खुशी से झूम उठेगा. मैं गाने ही ऐसे लेकर के आती हूँ, 90s के खूबसूरत गाने. और अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं या अपनी फरमाइश हमसे करना चाहते हैं तो नंबर, मैं पता है आपको इस प्रोग्राम में इतनी बार नंबर बताती हूँ कि कोई भी ऐसा ना हो जो मेरे से ये बोले कि आपने का नंबर नहीं बताया. मैं नहीं चाहती हूँ कि आप नंबर से बिल्कुल एकदम आपको समझ ही ना है कि करना क्या है. तो बिल्कुल आपको आते ही नंबर देती हूँ और जाते वक्त भी. बहुत ही आसान ये नंबर है, नोट कर लीजिए, 8010781078. ये हमारा नंबर है. देखा कितना आसान है. तो बस इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कीजिए. तो चलिए, मेरे चलने का वक्त हो गया है. मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, बाय.

0: क्या कोई इंसान बंजर पर्वत पे हरियाली ला सकता है, वो भी बिना पैरों के? 70 साल के एक चीनी बुजुर्ग ने बीमारी में दोनों पैर गंवाने के बावजूद एक बंजर पर्वत पे 17,000 पेड़ लगाकर उसे एक हरा भरा जंगल बना दिया।
1: लेकिन हमें किसी पर्वत पर नहीं जाना है, हमें अपने आसपास पेड़ लगाना है।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कवि देव के बारे में। रीतिबद्ध काव्य परंपरा के आचार्य कवि देव रीति काल में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। माना जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश साहित्य अपने आश्रयदाताओं और राजाओं को समर्पित करने के उद्देश्य से रचा था। वो खास तौर से श्रृंगार रस के कवि हैं और उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य के भावपूर्ण और सूक्ष्म चित्र मिलते हैं। उनकी कविताएं, जिनमें हंसी की चोट, सपना और दरबार को विद्यालयों के साथ साथ बीए और एमए के पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाया जाता है, तो आज इनके बारे में, यानी कि रीतिबद्ध कवि देव के बारे में बहुत सारी बातें करूंगा। इनके जीवन की बात आपके साथ साझा करूंगा और इनकी रचनाओं का जिक्र भी होगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों बात हो रही है आज कवि देव के बारे में। देखिए दोस्तों, रीतिबद्ध काव्य के प्रतिनिधि कवि देव का कोई प्रमाणिक जीवन वृत्त अब तक सुलभ नहीं हो सका है, लेकिन साहित्यविदों और इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म लगभग सन 1673 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। उनका मूल नाम देवदत्त द्विवेदी था, लेकिन वो अपनी काव्य रचनाओं में देव उपनाम का प्रयोग करते थे। कुछ स्रोतों में पिता का नाम बिहारीलाल बताया गया है। उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के विषय में अधिक प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी है आज आपके साथ साझा करूंगा कवि देव के बारे में। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप हैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, माना जाता है कि कवि देव ने अपना अधिकांश साहित्य अपने आश्रय दाताओं और राजाओं के सम्मान में रचा था। मुगल बादशाह यानी औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद उन्हें अनेक आश्रयदाताओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा संतोष सहृदय आश्रयदाता यानी भोगी लाल के यहाँ प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उनके काव्य से प्रसन्न होकर भोगी लाल ने उन्हें लाखों की संपत्ति उपहार स्वरूप प्रदान की थी, जबकि देव का अधिकांश जीवन राज दरबारों, नवाबों और अमीरों के आश्रय में बीता था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें राज दरबारों का आडंबर, दिखावा और चाटुकारिता भरा जीवन कचोटने लगा था, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहते थे। कविदेव की रचनाओं के बारे में भी आपसे जिक्र होगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कवि देव की रचनाओं के बारे में। बताया जाता है कि 16 वर्ष की किशोर अवस्था में ही देव ने भाव विलास जैसी प्रौढ़ रचना का सृजन किया था। वहीं इनकी काव्य रचनाओं में संस्कृत, प्राकृत और साहित्य शास्त्र की पैठ स्पष्ट दिखाई देती है। विद्वानों द्वारा उनके ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। अब मैं आपको उनकी कुछ काव्य रचनाओं के नाम बताता हूँ, जैसे रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सृजान, सुजान विनोद, राग रत्नाकर, शब्द रसायन, देव माया प्रपंच, सुख सागर, प्रेम दीपिका, सुमेल विनोद और काव्य रसायन। तो ये इनकी वो काव्य रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ सवैये भी लिखे थे। कविदेव के सवैयों के बारे में भी बात होगी और सवैये लिखने में ये किस भाषा का इस्तेमाल करते थे वो बात भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, बात हो रही है कवि देव के बारे में। उनके कुछ सवैये हैं जो कि बड़े मशहूर हैं और उनकी भाषा भी अपने देश भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। वो लिखते हैं, ता दिन ते अति व्याकुल है, तिये जा दिन ते पिये पंत सिधारे, भूख ना प्यास बिना ब्रजभूषण, भामिनी भूषण भेष बिसारे, पावत पीर नहीं कवि देव, करो रिक मोरी सवै करे हारे, नारी निहारी निहारी चले, तजी बैद बिचारी बिचारी बिचारे। कवि देव अपने दूसरे सवैये में लिखते हैं, बोली उठो पपीहा कहूं, पीब सु देखिए को सुनी कै धुनी धाई, मोर पुकारी उठे चहूं ओर, सुदेव घटा घिर की चहूं धाई, भूली गई ती को तन की सुधी, देखे उते बन भूमि सुहाई, सांसन सो भरी आयो गरु, अरु आसुन सो अखियां भरी आई। तो दोस्तों, इस तरह के सवैये लिखने का अंदाज था कवि देव का। इनके बारे में कुछ और भी बातें हैं, वो मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, कवि देव के सवैयों के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था। एक उनका सवैया जो कि राधिका की बात करता है, कान्हा की बात करता है, वो अपने सवैये में लिखते हैं, राधिका कान्हा को ध्यान धरे, तब कान्हा है राधिका के गुण गावे, त्यों असुवा बरसे बरसानी को, पाती लिखे लिखी राधिका धावे, राधे है जाई ते ही छिन्नदेव, सुप्रेम की पाती ले छाती लगावे, आपू ते आपू ही में उर्जे, सुरझे बिरझे समुझे समुझावे। तो इस तरह से दोस्तों अपने सवैये के माध्यम से उन्होंने राधिका और कान्हा की बात को भी लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन कहते हैं संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो इस संसार में आया है उसे वापस जाना भी है। आचार्य कविदेव ने कई दशकों तक अपने आश्रयदाताओं के लिए अनुपम काव्य रचनाओं का सृजन किया था, लेकिन वृद्धावस्था के कारण सन 1767 के आसपास उनका देहांत हो गया। फिर भी वो अपनी लोकप्रिय काव्य रचनाओं के कारण आज भी साहित्य जगत में विख्यात हैं। अब दोस्तों वक्त मेरे जाने का हो चुका है, आपसे इजाजत चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूंगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज़।

0: और ये बिल्लू ने पूरी जान से बल्ला घुमा दिया और ये लगा छक्का।
1: ये क्या किया, मेरी सारी साड़ी खराब कर दी, बदतमीज कहीं का। बोल दिया तेरे घर जाकर अभी तेरी मम्मी को।
2: आंटी जी, इतनी सी गलती पर हमारी मम्मी को बुलाते हो और रोज अपने कचरे से सड़क गंदी करते हो, आपकी मम्मी को बुलाएं?
3: अनजाने में की गई गलती गलती नहीं होती, पर जानबूझकर की गई गलती के लिए अनजानापन

मिट्टी से गहरा रिश्ता रखता हूँ। अरे भाई, किसान का बेटा हूँ ये गर्व से कहता हूँ। किसान भाइयों, जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा था सीताफल के बारे में, सीताफल केवल स्वादिष्ट फल ही नहीं है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बेहद फायदेमंद माना जाता है। इसमें मौजूद पोषक तत्व शरीर की कई समस्याओं को दूर करने में मदद करते हैं और ये पाचन तंत्र को एकदम मजबूत कर देता है और शरीर की मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट शरीर को हानिकारक रसायनों और फ्री रेडिकल्स के बचाने में भी बहुत मदद करते हैं। डॉक्टर अक्सर गर्भवती महिलाओं को सीताफल खाने की सलाह देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ये एनीमिया को कम करने और गर्भावस्था के दौरान पोषण प्रदान करने में सहायक होता है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने, त्वचा को स्वस्थ बनाने, बालों को पोषण देने और शरीर की कमजोरी दूर करने में भी उपयोगी माना जाता है। स्वास्थ्य के प्रति लोगों की बढ़ती जागरूकता के कारण बाजार में सीताफल की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिससे किसानों को अच्छे दाम मिल रहे हैं। तो किसान भाइयों, आप भी इसकी खेती करके अच्छे दाम हासिल कर सकते हैं, लेकिन सीताफल के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो जानना जरूरी हैं, जैसे इसकी बुवाई कब होनी चाहिए या इसका सही समय क्या है या फिर जलवायु कौन सी होनी चाहिए। इन सारे प्रश्नों का उत्तर देगा आपका दोस्त फहीम। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, हम कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो जाएं, लेकिन बिना किसान की मेहनत के जिंदा नहीं रह सकते।
1: किसान भाइयों, आज आपसे बात कर रहा हूं सीताफल के बारे में। देखिए, सीताफल की खेती के लिए सही समय और अनुकूल जलवायु का चयन बहुत जरूरी होता है। इसकी जो बुवाई है साल में दो बार की जा सकती है, पहला समय जुलाई से अगस्त के बीच और दूसरा फरवरी से मार्च के बीच सबसे उपयुक्त माना जाता है। ये जो फल है ना किसान भाइयों, सीताफल, ये गर्म और हल्की शुष्क जलवायु में अच्छी पैदावार देता है। जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा ठंड और पाला नहीं पड़ता, वहां इसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड से पौधों की वृद्धि प्रभावित हो सकती है। इसलिए किसान भाइयों, आपको ऐसे क्षेत्रों का चयन करना चाहिए जहाँ तापमान संतुलित बना रहे। गर्म मौसम में पौधे तेजी से विकसित होते हैं और फलों की जो गुणवत्ता है वो भी बेहतर होती है। यही कारण है कि देश के कई राज्यों में इसकी खेती तेजी से बढ़ती चली जा रही है। लेकिन किसान भाइयों, सीताफल की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होनी चाहिए, उस मिट्टी के बारे में भी आपसे बात करूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर।

0: दोस्तों, किसान वो भगवान है जो खुद का पेट खाली रखकर दूसरों का पेट भरता है।
1: आइए किसान भाइयों, बात कर लेते हैं, अगर हम सीताफल की खेती करना चाहते हैं तो उसके लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। देखिए, सीताफल की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टियों में की जा सकती है, पहली बात तो यह है, लेकिन अच्छी जल निकासी वाली दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। कमजोर और पथरीली जमीन पर भी इसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। खेती शुरू करने से पहले मिट्टी की जांच करवाना बेहद जरूरी होता है किसान भाइयों, ताकि पीएच मान की जानकारी मिल सके और सीताफल की खेती के लिए मिट्टी का आदर्श पीएच मान जो है 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए। खेत तैयार करते समय 60x60x60 सेंटीमीटर के गड्ढे खोदे जाते हैं और हर एक गड्ढे के बीच लगभग 5x5 मीटर की दूरी रखी जाती है। खुदाई के बाद गड्ढों को 15 से 20 दिनों तक खुला छोड़ दिया जाता है, ताकि मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीट और जीवाणु नष्ट हो सकें। इसके बाद गड्ढों में सड़ी हुई गोबर खाद, खली और एनपीके उर्वरक मिलाकर भराई की जाती है। अब सवाल आता है कि इसकी बुवाई का समय क्या होता है या इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो किसान भाइयों, सीताफल की बुवाई के बारे में भी आपके साथ बातें साझा करूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: मशहूर हो जाए।
1: दोस्तों, एक दिन जीकर देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो मिट्टी से सजा देता है थालियां हिंदुस्तान की। किसान भाइयों, सीताफल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। अब मैं बात कर लेता हूँ इसकी बुवाई की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत अगर आप काम करेंगे तो आपकी फसल अच्छी होगी, और फसल अच्छी होगी तो उसका दाम भी आपको अच्छा ही मिलेगा। सीताफल की बुवाई के लिए पौध तैयार करने की वैज्ञानिक विधि अपनाना अधिक फायदेमंद माना जाता है। देखिए किसान भाइयों, आप क्या कर सकते हैं, पॉलिथीन की जो थैली होती है, उन पॉलिथीन की थैलियों में मिट्टी भरकर उसमें बीज डालना चाहिए, और पौध तैयार होने के बाद इन्हें खेत में रोपित किया जाता है। इससे पौधों की जो वृद्धि है वो बेहतर होती है और नुकसान की संभावना कम हो जाती है। गड्ढों में खाद और उर्वरक डालने के बाद 3 से 4 दिनों तक सिंचाई की जाती है ताकि मिट्टी अच्छी तरह तैयार हो सके। इसके बाद पौधों की रोपाई की जाती है। पौधों की उचित दूरी बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है किसान भाइयों, ताकि उन्हें पर्याप्त धूप और पोषण मिल सके। विशेषज्ञों के अनुसार अगर शुरुआत में पौधों की सही देखभाल की जाए तो आगे चलकर उत्पादन काफी बेहतर मिलता है। तो किसान भाइयों, आप भी तो यही चाहते हैं ना कि आप जो भी फसल अपने खेत में बोएं उसका उत्पादन बेहतर से बेहतर हो। तो चलिए कुछ और भी बातें हैं आपको बताऊंगा सीताफल के बारे में, कि इसमें खाद और उर्वरक का जो प्रबंधन होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है, इसके बारे में भी बात होगी। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: दोस्तों, छत टपकती है उसके कच्चे घर की, फिर भी वो किसान करता है दुआ बारिश की।
1: आइए किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं खाद और उर्वरक के प्रबंधन के बारे में। सीताफल की अच्छी पैदावार के लिए संतुलित मात्रा में खाद और उर्वरकों का उपयोग करना बेहद आवश्यक होता है। प्रति पेड़ लगभग 20 से 22 किलोग्राम जैविक खाद या गोबर की खाद देना लाभकारी माना जाता है। इसके साथ ही 40 ग्राम नाइट्रोजन, 60 ग्राम फास्फोरस और 60 ग्राम पोटाश की मात्रा भी हर साल दी जानी चाहिए। हालांकि किसान भाइयों, उर्वरकों का उपयोग करने से पहले मिट्टी की जांच अवश्य करवा लेनी चाहिए और कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेना बेहतर होता है। होता क्या है किसान भाइयों, जैविक खाद जो है ना, उसका उपयोग करने से मिट्टी की जो उर्वरता है वो लंबे समय तक बनी रहती है और पौधों को आवश्यक पोषण मिलता रहता है। संतुलित पोषण मिलने से पौधों की वृद्धि तेजी से होती है और फलों की गुणवत्ता भी बेहतर से बेहतर होती चली जाती है। अब सवाल आता है सिंचाई का, कि सिंचाई और इसकी देखभाल कैसे करने चाहिए जिससे कि हमारी उपज और भी बेहतर हो सके। तो किसान भाइयों, सिंचाई और इसकी देखभाल के बारे में आपको बहुत सारी बातें बताऊंगा। आप मेरे साथ जुड़े रहिए और बस सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर अन्नदाता।

0: एक दरिया मोड़ा उसने, एक समंदर बांध रखा है, किसान के एक टूटे हल ने पूरे देश को संभाल रखा है।
1: किसान भाइयों, देखिए सीताफल के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ। सीताफल की खेती में सिंचाई का विशेष महत्व होता है। ड्रिप सिंचाई और छिड़काव विधि इस खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, क्योंकि इससे पानी की बचत होती है और पौधों को पर्याप्त नमी मिलती रहती है। गर्मियों के मौसम की अगर बात करें तो गर्मियों के मौसम में पौधों को हर 15 दिन के अंतराल पर सिंचाई करना जरूरी होता है। और किसान भाइयों, पौधों की नियमित देखभाल, खरपतवार नियंत्रण और समय समय पर छिड़काव करने से रोगों और कीटों से बचाव किया जा सकता है। एक पूर्ण रूप से विकसित पौधे से हर साल लगभग 100 फल प्राप्त किए जा सकते हैं, जो करीब मेरे ख्याल से 50 किलोग्राम उत्पादन के बराबर होता है। अच्छी देखभाल और वैज्ञानिक तकनीकों का उपयोग करके आप लोग उत्पादन को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं फहीम के साथ अन्नदाता।

0: करता है।
1: चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूँ, मैं किसान हूँ, चैन से कहाँ सोता हूँ। देखिए किसान भाइयों, सीताफल की खेती के बारे में बहुत सारी बातें आपसे मैंने कर ली हैं, और साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सीताफल की खेती कम लागत में अधिक मुनाफा देने वाली फसल मानी जाती है। एक एकड़ खेत में लगभग 400 से 450 पौधे लगाए जा सकते हैं। इससे सालाना लगभग 30 क्विंटल तक उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। बाजार में सीताफल की अच्छी कीमत मिलने के कारण किसान इससे सालाना 1 लाख से 1.25 लाख रुपए तक की कमाई कर सकते हैं। और अगर किसान भाइयों आप लोग आधुनिक तकनीकों और उचित प्रबंधन के साथ खेती करें तो मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है। मौजूदा समय की बात करें तो मौजूदा समय में बागवानी फसलों की मांग तेजी से बढ़ रही है, और सीताफल की खेती किसानों के लिए आय का स्थायी स्रोत बन सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले सालों में इसकी खेती और अधिक लोकप्रिय होगी और किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अब इसी बात के साथ आपका दोस्त फहीम भी आपसे आज्ञा चाहता है। अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई का ख्याल रखिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं, और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। और चलते चलते सभी किसान भाइयों को फहीम का राम राम।

कौन वो लोग हैं जिनकी वजह से हम ऐसे अलग अलग सर्विसेज देख पाते हैं अपनी कंट्री में, और दूसरा ये कि हमारे देश में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है उसका। तो आज फिर से आए हूं लेकर के शो, बहुत सारी बातें करेंगे, बताएंगे आपको कौन सी इंडस्ट्री है, बात करेंगे कंपनी कौन सी है, बट फिलहाल मेरा सलाम कबूल करिए, अभी हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उस म्यूजिकल ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

एंड विद दिस नोट कि आपको ये गाने अच्छे लगे अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। दोस्तों मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा समझते हैं कौन सी मार्केट है और

मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस शो को एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी बातचीत में, मार्केट को जितना भी आप चीज समझेंगे उसमें से आपको ये भी समझ में आएगा, एज अ न्यू प्लेयर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली रोड मैप कैसा हो सकता है। उसके बाद कंपनी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे उस कंपनी ने कौन सा रोड मैप फॉलो किया। तो जो आज की कंपनी डील करती है जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का नाम है ब्यूटी टेक। ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये वर्ड बना है। अब ये टेक लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। आई मीन एड टेक आ चुका है, फिनटेक आ चुका है, देन उसके बाद फैशन टेक आ चुका है, मेड टेक आ चुका है। तो क्योंकि हर जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करती है। तो जो ब्यूटी टेक मार्केट है उसको हम थोड़ा समझें, अगर यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं इस एक टर्म को, टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटी का मिलाकर एक कोलैबोरेशन है, इस एक चीज को हम जानते हैं ब्यूटी टेक के नाम से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने घर पर चीजों को मंगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इनोवेशंस, जैसे कि एआई पावर्ड स्किन केयर डिवाइसेस होते हैं, एआई पावर्ड जो वर्चुअल ट्राई ऑन्स होते हैं, या पर्सनलाइज्ड आपको ब्यूटी सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है फिजिकली मार्केट जाने का। अब जब आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, मानकर चलिए मेकअप की आप कोई चीज देख रहे हैं, या आप मे बी मस्कारा देख रहे हैं, आपके ऊपर वो सूट करेगा नहीं करेगा, जो आप टोन देख रहे हैं, जो शेड आप देख रहे हैं, फीमेल्स के केस में अगर बात करें तो लिपस्टिक या स्किन केयर का कुछ और चीज है, तो वो तमाम चीजें आप घर पे अपना ट्राई कर सकते हैं। जब ये हमें सुविधा मिल जाती है, जब इतना एक्सेस हमें मिल जाता है, दैट मींस कि टेक्नोलॉजी ने अपना काम अच्छे से प्ले कर दिया है। तो कुल मिलाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी सर्विसेज जो हमें मिलती हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसको हम ब्यूटी टेक के नाम से रेफर कर सकते हैं। और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है यंगस्टर्स की है, और जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो हमारे यूथ है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सब चीजों में। सेकंड, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम्स जो है वो बढ़ती जा रही है रैपिडली, एंड इसी के साथ डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लगभग हर एक इंसान के हाथ में अब स्मार्टफोन है, और जहां पर स्मार्टफोन है वहां पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो आप कर सकते हैं उसको एक्सेस। सो दैट्स हाउ वी आर रेफरिंग ब्यूटी टेक इंडस्ट्री। बात करेंगे कि ये मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, बात करेंगे क्या क्या हाइलाइट्स हैं, बात करेंगे कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। पहले मार्केट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कंपनी की बात करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, मजा लीजिए गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइव।

0: ज्वाला, समुंदर की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चलें। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
1: और मैं ये कह रही हूं भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहां से हमें कोई अलग ना कर सके।
0: ज्वाला, हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
1: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
0: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
1: तो फिर एक वादा करो,
0: मेरी जान मांग लो, जान मेरी।
1: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
0: ज्वाला, ये मेरा वादा है।

0: वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे। अब इसी नोट पे अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों। और क्योंकि आज की इंडस्ट्री हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दैट इज ब्यूटी टेक इंडिया में जो ऑपरेट करती है। अभी तक आपको एक ओवरव्यू मिला, बात करेंगे मार्केट इवॉल्व कैसी हुई है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर फैक्टर है, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, लाइक नायका, पर्पल एंड स्माइटन। ये जो नए स्टार्टअप आए हैं, जो नए ब्रांड्स आए हैं, इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज किया है और इस इंडस्ट्री को रीशेप किया है, जिसके बाद से लोग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को देखने लगे हैं और एक्सेस ज्यादा आ गया है। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें आई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी जो है वो हमें डिलीवर करते हैं। नाउ यू हैव दैट ऑप्शन। पहले क्या होता था कि फिजिकली आप किसी मार्केट में गए हैं तो आप अब यहाँ पर लिमिटेड लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लाइक यू हैव नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज पर्सनलाइजेशन। आप इस एक इंडस्ट्री में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग है, हर एक इंसान का जो है हेयर स्टाइल अलग है, हेयर का पैटर्न अलग है। तो वो एक चीज अब लोगों को समझ में आती है कि सब कुछ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पर एक्ने है, तो अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट मेरे को सूट करेगा। उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, और एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में हमारी आज की कंपनी डील करती है। थर्ड पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन ब्यूटी। अब लोग डिमांड करने लगे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, अब लोग डिमांड करने लगे हैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की, जहां पर किसी भी तरीके से कोई क्रुएल्टी नहीं की जाती है किसी भी एनिमल के ऊपर। इसी वजह से शायद ये जो इंडस्ट्री है अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रीडिफाइन होने लगी है। क्लीन ब्यूटी फॉर्मुलेशंस हमें देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ वियरेबल डिवाइस। एआई पावर्ड अगर आप बात करते हैं, किसी एक सर्विस को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, या एआई पावर्ड स्किन एनालाइजर्स होते हैं जो घर पर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एलईडी थेरेपी मास्क होते हैं जिनको आप पहनेंगे अपनी स्किन के ऊपर और वो पूरी आपकी स्किन को रीड करके एनालाइज करके आपके हाथ में डेटा दे देगा, उसके आधार पर आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स। अब इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें कंटेंट क्रिएशन के एरा के पहले की, तो बहुत ही वैसे होता था कि ठीक है ले लेंगे, शॉपकीपर ने बोल दिया है, ब्रांड क्लेम कर रहा है। अभी लेकिन क्या सहूलियत होगी कि लोग आके प्रॉपर कंटेंट बनाते हैं, फुल फ्लैश्ड वीडियोस बनाई जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता रहता है ओके ये प्रोडक्ट है, चलिए ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो चीजें काफी सिंप्लीफाई हो गई हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग एजुकेट होते जा रहे हैं इस एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर। सो दैट्स हाउ ब्यूटी टेक जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में इवॉल्व कर रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी के साथ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे और चीजें जो इस इंडस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए जरूर आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड, फील लाइक
1: ज्वाला। समुद्र की लहरों को देखो जो बार बार हमारे करीब आकर जैसे कह रही हूं कि आओ हमारे कंधों पर बैठ जाओ ताकि हम तुम्हें तुम्हारे देश तुम्हारे घर ले चले। और मैं इनसे कह रहा हूं कि सिर्फ दो दिन और, बेचारे डॉक्टर ने हमारे लिए किश्ती तैयार करवाई है जिसे हम तुम्हारे कंधों पर रखकर नाचते कूदते अपने घर चले जाएंगे।
2: और मैं ये कह रही हूँ भगवान ने हमें नया जन्म दिया है, नई धरती नया घर दिया है, हम क्यों ना प्यार में गुमसुम अपने सारे जन्म इसी जजीरे पे गुजार दें जहाँ से हमें कोई अलग ना कर सके।
1: ज्वाला हमें कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं।
2: तुम उस कमीने दीवान को नहीं जानते भारत, और मेरे सीधे साधे पिताजी को भी नहीं जानते। वहां पहुंचते ही जबरदस्ती मेरी शादी दीवान से कर दी जाएगी।
1: ऐसा कभी नहीं हो सकता ज्वाला, मेरी जिंदगी कोई मुझसे छीन नहीं सकता।
2: तो फिर एक वादा करो।
1: मेरी जान मांग लो जान मेरी।
2: सिर्फ इतना वादा कि अपने देश पहुंचने के बाद तुम मुझे एक पल भी अपने से जुदा नहीं करोगे। इतना याद रखोगे कि राजकुमारी चित्रलेखा मर चुकी है और तुम्हारी ज्वाला जिंदा है, सिर्फ तुम्हारे लिए।
1: ज्वाला ये मेरा वादा है।

फील गुड फील लाइव। दोस्तों मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानवप्रस्थ 107.8 एफएम। अब इसी नोट पर अपने शो को अगर आगे लेकर चले तो यहां पर हम आज बात कर रहे हैं अब ब्यूटी टेक इंडस्ट्री की। इसमें बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो पिलर हैं, क्या क्या वो बेस है जिसके आधार पर ये इंडस्ट्री इंडिया में ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। अब क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन रहने लगे हैं, हर एक इंसान की पॉकेट में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप शहर में हैं, उसमें भी टीयर वन टीयर टू टीयर थ्री कहीं भी आप चले जाएं, या फिर आप रूरल एरिया में हैं या किसी सेमी अर्बन एरिया में हैं, आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। और मोबाइल फोन है तो इंटरनेट भी इजीली पहुंच पाया है हर जगह पर। अब ऐसे में जब आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो आपके पास एप्लीकेशंस का एक्सेस है, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहां से कहीं पर चार्जेबल होता है, सो बहुत सब्जेक्टिव है, बट हाँ यू हैव दैट एक्सेस। तो इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से बहुत ग्रोथ देखी है इस एक इंडस्ट्री ने। सेकेंड ड्राइविंग फैक्टर आता है कि हम लोगों की इनकम्स थोड़ी सी बढ़ने लगी, आई मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने एनहेंस किया है काफी। अब जब ये होने लगता है तो हम बाकी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम ब्यूटी टेक प्रोडक्ट्स की अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे मैंने देखा अभी 1000 रुपए का फेस वॉश, और बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, या 1500 रुपए के मॉइस्चराइजर हमने देखे हैं। सनस्क्रीन जैसी चीजों को लेकर लोग अवेयर हो गए हैं कि यूवी रेडिएशन जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। सो ये सब वो चीजें हैं जो अब लोग एक्नॉलेज करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट ग्रो कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग। अब देखिए कंज्यूमर्स के पास, आप माने या ना माने, लेकिन एक्सेस है इंटरनेट का, तो उनके पास अवेयरनेस है, क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए, बीट फेसबुक, बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो लोग आपको बता रहे होंगे। अब भले ही कुछ लोग अपने कंटेंट के लिए करते हैं, लेकिन हमें जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड्स भी अब खुद से प्रमोट करते हैं, कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जो है पैसा खर्च करते हैं, ताकि लोग कंटेंट बनाएं उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसको लोगों को बताएं सिंप्लीफाई करके। तो इस वजह से लोग अब अवेयर होने लगे हैं, स्किन केयर को लेकर अब सीरियस होने लगे हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले हमें अच्छे से याद है कि हद से हद मैक्सिमम एक फेस वॉश कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता था, या तो नीम वाला उठा लाए या कोई भी ऐसे उठा लाए रैंडम। अभी लेकिन प्रॉपर लोग चूज करते हैं कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा, और जरूरी है एक प्रॉपर स्किन केयर, लाइक फेस वॉश करना, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, देन उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो ये चीजें हम लोगों को समझ आने लगी हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो ड्राइविंग फैक्टर है, COVID-19 के बाद से चीजें सारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से ये मार्केट भी ग्रो हुई। लेकिन उसके पहले टेक हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया था, टेक के ऊपर बहुत काम होने लगा था, हमारे पास इंटरनेट आ चुका था, दैट्स व्हाई हम यहाँ पर शिफ्ट हो पाए। तो लोगों ने इजीली उसको अडॉप्ट कर लिया, जिससे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, यानी कि ब्यूटी टेक को, एक पुश मिला वहां पर, जिससे ऑनलाइन एक्सपीरियंस लोगों का काफी अच्छा हुआ और ब्रांड्स भी ग्रो करते चले गए। सो या ऑल दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स, फर्स्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, सेकंड एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग, फोर्थ इज COVID-19 इंपैक्ट। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। फील गुड फील लाइव।

फील गुड फील लाइव। नाउ विद दिस नोट दोस्तों, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, ब्यूटी टेक इंडिया में ऑपरेट करती है, क्योंकि आज की कंपनी इस एक इंडस्ट्री में डील करती है। बात करेंगे अगले सेगमेंट की, दैट इज की ब्यूटी टेक को क्या यूनिक बनाता है इंडिया में। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है डाइवर्स कंज्यूमर बेस, और इसी चीज को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये आपकी बहुत मदद करने वाला है अगर आप इस एक पर्टिकुलर सेगमेंट में कुछ अपना स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है, दैट इज डाइवर्स कंज्यूमर बेस। इंडियन कंज्यूमर्स के जो स्किन टाइप्स हैं वो बहुत आपको डाइवर्सिफाइड देखने को मिलेंगे, बहुत ही ज्यादा यू नो वेरिएशंस आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें स्किन टाइप्स अलग हैं, स्किन टोन्स अलग हैं, कल्चरल ब्यूटी प्रेफरेंसेस सबकी अलग हैं। तो वहीं पर हर एक चीज का आपको सोल्यूशन मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोग हैं जो सोलली रेफर करते हैं मेरे को ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही चाहिए, कुछ लोग हैं जिनको चाहिए सिर्फ आयुर्वेदा कि मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ लोग हैं वहीं पर जो कुछ प्रीमियम ब्यूटी की तरफ जाते हैं। सो इट्स ऑल डाइवर्सिफाइड। उसमें भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक कि किसी की ऑयली स्किन, किसी की ड्राई स्किन, किसी को क्या कोई अगर कंडीशन है तो उसके लिए कुछ मिलेगा क्या। इस वजह से आप कह सकते हैं कि ये जो इंडस्ट्री है इंडिया में बहुत खास हो जाती है, क्योंकि हर एक स्किन टाइप के हिसाब से प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सेकेंड आता है कल्चरल इन्फ्लुएंस। देखिए, ट्रेडिशनल जो ब्यूटी प्रैक्टिसेस हुआ करती थी, आयुर्वेदा की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, वो भी अब थोड़ी सी चेंज हो गई है, मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ ब्लेंड कर दी गई है, जिससे आपको देखने को मिलेगा कि आपको इनोवेटिव हाइब्रिड प्रोडक्ट्स अब देखने को मिल जाते हैं, जो एक्सेसिबल भी है, ट्रस्टवर्दी भी लोग उसको कंसिडर करते हैं। दैट्स हाउ ये चीज थोड़ी खास हो जाती है इंडिया में, क्योंकि आयुर्वेदा इंडिया में उसका ओरिजिन है। थर्ड इज अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। अब कंपनीज केवल ऐसा नहीं है कि काम कर रही है प्रोडक्ट के ऊपर, क्वालिटी के ऊपर, वो ये भी ध्यान में रखते हैं कि यार हमारा कंज्यूमर इसको अफोर्ड कर पाएगा, तो इसलिए कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। तो अब ये कह सकते हैं जो प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स हैं, एक और कैटेगरी यहाँ पर हम कंसिडर कर रहे हैं, प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स के पास भी ऑप्शन है प्रोडक्ट्स खरीदने का, और वो भी एक अफोर्डेबल प्राइस पे, यानी कि बहुत ज्यादा भारी भरकम पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होगी, प्लस आपको एक प्रोडक्ट भी मिल जाएगा जो आपके मन का है। सो यू आर गुड, कंपनी का रेपुटेशन भी काफी अच्छा होगा उसमें, और कंज्यूमर को अगर प्रोडक्ट अच्छा मिला तो ट्रस्ट फैक्टर भी वहां पे बिल्ड होगा, एंड वर्ड ऑफ माउथ से अच्छा मैं कह रहा हूँ कोई मार्केटिंग मॉडल नहीं हो सकता। अगर कंज्यूमर खुश है और वो खुद से उसकी मार्केटिंग कर रहा है, इट्स अमेजिंग। सो या, ऑल दीज थ्री आर दी यू नो इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो इस एक चीज को यूनिक बनाती हैं, इस इंडस्ट्री को यूनिक बनाती हैं इंडिया में। डाइवर्स कंज्यूमर बेस, कल्चरल इन्फ्लुएंस एंड अफोर्डेबिलिटी विद इनोवेशन। नाउ विद दिस नोट हम लेंगे एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो में आगे बात होगी। जुड़े रहिए अपने दोस्त आरजे सागर के साथ। फील गुड।

वेलकम बैक। नाउ दिस नोट अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको अच्छा लग रहा है और जो केस स्टडी आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अभी तो मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं, अभी तक जितना आपको समझा है वो आपको पसंद आया। अब इसी नोट पे आगे बात करेंगे अपने शो में, क्योंकि ब्यूटी टेक हमारी आज की इंडस्ट्री है जो इंडिया में ऑपरेट करती है। उसमें जो अगला पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी ने कैसे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को जो है ग्रोथ दिलाई है या ड्राइव किया है। तो सबसे पहला आता है AI एंड मशीन लर्निंग। यहाँ पर स्किन टाइप को एनालाइज किया जाता है, उसके आधार पर रेकमेंड किया जाता है कि क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके लिए सुटेबल होंगे, जो आप खुद भी घर पे कर सकते हैं कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स या गैजेट्स ऑर्डर करके, या फिर आप ऑनलाइन ट्राई ऑन जैसे फीचर्स को आप ऑप्ट कर सकते हैं जिनके थ्रू आपको पता लग जाएगा। इसके अलावा आप कंसल्ट कर सकते हैं किसी भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट से जो आपको रेकमेंड कर सकते हैं। देन इसी के साथ ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। कंपनीज के पास ये ऑप्शन है कि जो चीजें ट्रेंड कर रही हैं, लाइक अभी जैसे अगर देखा जाए तो साउथ कोरियन स्किन केयर काफी फेमस है, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स यहाँ पर बनाए जाने लगे हैं। राइस से बनी हुई कुछ कुछ चीजें आती हैं, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पता है मुझे, लेकिन हाँ कुछ कुछ ऐसे ट्रेंड्स के बारे में मैं जानता हूँ जो डर्मेटोलॉजिस्ट खुद से बताते हैं, शेयर करते हैं। देन इसके बाद कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो प्रॉपर AI का इस्तेमाल करके आपको पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड आता है ऑगमेंटेड रियलिटी, जहां पर आप वर्चुअल ट्राई ऑन आपके मेकअप, हेयर कलर, मतलब अगर आप फिजिकली वो सारी चीजें अप्लाई कर लेंगे, खरीद के ले आएंगे, उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा सो यू माइट फील बैड। तो ऐसे में कंपनीज ने क्या नया इनोवेट किया है कि आपको वर्चुअल ट्राई ऑन का एक ऑप्शन दे दिया है। आप कोई भी पर्टिकुलर मेकअप या कोई भी पर्टिकुलर आप बालों का जो शेड है वो आप वर्चुअली ट्राई कर सकते हैं, उसके बाद अगर आपको जम रहा है, आप कन्विंस हो गए हैं, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। दैट्स हाउ यू वांट टू सेव योर पीस एंड सेव योर टाइम एंड सेव योर मनी। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है IoT डिवाइस। स्मार्ट मिरर्स आ गए हैं, स्किन एनालाइजर्स आ गए हैं, LED बेस्ड कुछ डिवाइसेस आ गए हैं जो अपने घर पे आप यूज कर सकते हैं, अपनी स्किन को आप एनालाइज कर सकते हैं, एंड देन उसके बाद आप जो है कोई भी स्किन केयर का रूटीन आप चेक कर सकते हैं, प्रोडक्ट आप चेक कर सकते हैं आपके लिए सुटेबल रहेगा नहीं रहेगा, तमाम चीजें इसमें फॉल करती हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है डेटा एनालिटिक्स। देखिए, कंज्यूमर बिहेवियर को समझना, सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, प्रॉपर किस रीजन में किस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की हमें नीड होगी, वो तमाम चीजें जो है देखना, प्रेडिक्ट करना, ये कंपनीज करती हैं, और ये सब इसी एक पर्टिकुलर चीज की वजह से हो पाया है जिसको हम एड्रेस कर रहे हैं, दैट इज टेक्नोलॉजी। उसके बाद लास्ट पॉइंट आता है कि टेक्नोलॉजी कैसे इस इंडस्ट्री को ड्राइव करती है, वो है ब्लॉकचेन, जहां पर ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है, क्योंकि लोग अवेयर हो गए हैं। अब उन्हें चाहिए कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हों, एथिकल प्रोडक्ट्स हों, जो उनकी स्किन को नुकसान ना पहुंचाएं और उनका कोई साइड इफेक्ट ना हो। सो या ये तमाम वो चीजें जो इस एक इंडस्ट्री को ड्राइव करती हैं या जिसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। अभी हमने आपको बताया AI एंड मशीन लर्निंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, IoT डिवाइसेस, डेटा एनालिटिक्स एंड ब्लॉकचेन। नाउ दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। बट आप लोग जुड़े रहिए, कहीं जाइएगा मत। मैं हूं सागर, शो है आत्मनिर्भर भारत कहानियां।

दोस्तों, अब इसी उम्मीद के साथ कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक हमने पहुंचाई वो आपको अच्छी लगी, अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं। आज की इंडस्ट्री है ब्यूटी टेक। उम्मीद कर रहा हूं अभी तक काफी कुछ आपको पता लग चुका है। अब फाइनली अपने लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि एज अ न्यू प्लेयर कोई अगर एंटर करना चाहता है इस एक मार्केट में तो क्या क्या चीजें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज है अपना नीश आपको आइडेंटिफाई करना होगा, क्योंकि ब्यूटी टेक इस इंडस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है अपना एक नीश आइडेंटिफाई करना और उसमें कुछ बहुत अच्छा डिलीवर करना। बहुत अच्छा एज इन जो थोड़ा खास है, जो अभी तक नहीं हुआ है डिलीवर, जो आपको गैप नजर आएगा। और परफेक्ट कुछ होता नहीं है दुनिया में, तो देयर इज ऑलवेज अ स्कोप, तो वो आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि मेंस ग्रूमिंग की तरफ आपको एंटर करना है, या इको कॉन्शियस ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको बनाने हैं, या रूरल कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है, या फिर प्राइस सेंसिटिव कंज्यूमर्स को आपको एड्रेस करना है। सो आपको एक नीश आइडेंटिफाई करना होगा। उसके बाद फर्दर उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें करनी होंगी, लाइक तमाम रिसर्चेज होंगी, बहुत कुछ आप ट्राई करेंगे तब

जाकर एक फाइनल प्रोडक्ट आप बना पाएंगे। सेकंड आता है लेवरेज टेक्नोलॉजी। देखिए एआई ड्रिवन पर्सनलाइजेशन हमें करना ही होगा आज अगर हम ब्यूटी टेक में एंटर कर रहे हैं तो, क्योंकि बाकी सभी ब्रांड्स ये कर रहे हैं। एआर टूल्स बनाने होंगे, आईओटी डिवाइसेस आपको जो है वो देने होंगे लोगों को, सो दैट कि वो थोड़ा सा सहूलियत के साथ जो है शॉपिंग कर पाए। थर्ड पॉइंट आता है बिल्ड ब्रांड क्रेडिबिलिटी। यहाँ पर आपको ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है इन्वेस्ट करना होगा, क्रुएल्टी फ्री सर्टिफिकेशन आपको जो है लोगों को देना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अब काफी जागरूक हो गए हैं, उनका सवाल होता है अब इज दिस प्रोडक्ट सस्टेनेबल, इज दिस प्रोडक्ट क्रुएल्टी फ्री, क्योंकि कस्टमर अब काफी एजुकेट हो चुके हैं कि हमारे कुछ चीजों के लिए कितने सारे जानवरों को जो है हार्म पहुंचाया जाता है, क्रुएल्टी की जाती है। तो वो सब चीजें हमें अब लोगों को वो देना होगा कि वी आर नॉट डूइंग दिस। इसके बाद फोर्थ आता है कोलैबोरेट विद इन्फ्लुएंसर्स। इनिशियली आपको करना होगा अपने प्रोडक्ट की पब्लिसिटी कराने के लिए, क्योंकि लोग फॉलो करते हैं इन्फ्लुएंसर्स को। फिफ्थ आता है ओमनी चैनल स्ट्रेटजी। आपको ऑनलाइन प्रेजेंस साथ साथ फिजिकल स्टोर्स ओपन करने चाहिए अगर आपके पास अच्छा बजट है तो, या एटलीस्ट एक पॉपअप एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए। सिक्स्थ आता है अफोर्डेबल लग्जरी, मतलब ये बहुत सब्जेक्टिव हो जाएगा, अगर आप लग्जरी में जाना चाहते हैं तो आपको हाई टेक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने होंगे जिससे आप ब्रॉड एक ऑडियंस को कैटर कर सकते हैं। सेवन्थ आएगा लोकलाइज्ड ऑफरिंग। देखिए हर एक जगह पर अलग तरह का तापमान होता है, अलग तरह की भाषा कल्चर सब चीज होती है, तो तमाम चीजें पढ़ के जहां पे भी आप जिस रीजन में आप एंटर कर रहे हैं वहां पर आपको वहां की कोई चीज देनी होगी। दैट्स हाउ यू कैन एंटर दिस इंडस्ट्री एज अ न्यू प्लेयर। अब लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद फाइनली बात होगी आज की कंपनी।

बिना किसी देरी के आपको बताते हैं भैया, आज की जो कंपनी है इसका नाम है कलर बार। कलर बार 2004 में स्टार्ट हुई थी और एग्जैक्टली आप इसको टेक के स्टार्टअप के तौर पे नहीं देख सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा एडवांस आपको टेक का फीचर नहीं देखने को मिलता है। बट देर आर सो मेनी थिंग्स जो इस कंपनी के वजह से फॉल करती है। इमेजिन यू आर एंटरिंग अ स्टोर जहां पर मेकअप का सामान आपको मिलता है एंड दिस इज द टाइम ऑफ अर्ली 2000s जहां पर आपको या तो एक्सपेंसिव लग्जरी ब्रांड्स मिलते हैं या फिर आपको चीप लोकल प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, ठीक है, जिनके ऊपर आप क्वेश्चन करते हैं क्वालिटी के ऊपर। तो एक गैप था इन दो चीजों के बीच में। नाउ व्हाट दिस कंपनी डिड इज उन्होंने सिंपली इस थॉट को चैनलाइज किया कि इंडियन कंज्यूमर्स इंटरनेशनल क्वालिटी की चीज अफोर्डेबल प्राइस पर क्यों नहीं ले सकते, या फिर व्हाई कांट वी गेट क्वालिटी स्टफ विदाउट पेइंग फॉर लग्जरी प्राइस। दैट वाज अ थॉट बिहाइंड दिस कंपनी एंड जिसके बाद ये कंपनी स्टार्ट हुई। तो एक इंडियन ब्यूटी एंड कॉस्मेटिक्स कंपनी है जो डील करती है मेकअप में, स्किन केयर में, नेल प्रोडक्ट्स में, ब्यूटी एक्सेसरीज में, प्रीमियम ब्यूटी एक्सपीरियंस में। 2004 में कंपनी स्टार्ट हुई न्यू दिल्ली से एंड इट ऑपरेट्स थ्रू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, ब्रांड आउटलेट्स एंड मल्टी ब्रांड स्टोर्स, इंटरनेशनल मार्केट्स। सो बेसिकली ये कंपनी जो है टाइम के साथ इवॉल्व हुई है काफ़ी, इसने अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सपेंड किया है। सो दिस इज अ थॉट बिहाइंड इट कि आपको या तो लग्जरी ब्रांड मिलते थे या फिर चीप ब्रांड्स आपको मिलते थे जिनके ऊपर आप क्वेश्चन रेज करते हैं, क्वालिटी के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस कंपनी ने दोनों को मर्ज करके बीच का एक ऑप्शन आपको दिया कि अच्छी क्वालिटी का सामान आपको मिलेगा विदाउट पेइंग हाई एंड प्राइसेस। दैट वॉज द आइडिया बिहाइंड इट। आई होप यहां तक आप शो को समझ पाए हैं। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

अगर आपके पास कोई फीडबैक है तो 8010781078 इस नंबर तक अपनी बात जरूर पहुंचाइएगा। ऑन दिस नोट शो को आगे लेकर चलेंगे। शो हमारा चल रहा है आत्मनिर्भर भारत एंड द स्टार्टअप दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज कलर बार। अगले पॉइंट के ऊपर आते हैं। सो हाउ डिड स्टार्ट, ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। तो ये कंपनी स्टार्ट इसलिए नहीं हुई कि किसी को मेकअप से प्यार था, ये कंपनी इनफैक्ट स्टार्ट इसलिए हुई किसी ने मेकअप से रिलेटेड एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और उस गैप को फिल किया, और वो इंसान थे समीर मोदी। उन्होंने देखा कि इंडियन कंज्यूमर्स बहुत फैशन कॉन्शियस तो हो गए हैं बट ऑप्शंस बहुत लिमिटेड हैं, और जैसे मैंने प्रीवियसली कहा कि या तो आप हाई एंड प्राइस पे करेंगे अगर आपको अच्छी क्वालिटी का स्टफ चाहिए, या फिर अगर आप कम प्राइस में ले रहे हैं तो आप क्वालिटी की गारंटी नहीं ले सकते हैं। सो व्हाट ही डिड, उन्होंने लग्जरी जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स थे उन्होंने इंडिया के लिए उनको अफोर्डेबल बना दिया, और बिगिनिंग बहुत स्मॉल थी, मात्र 16 लिपस्टिक्स एंड 16 नेल कलर्स जो है इतना वो लेकर के आए थे। बट दैट वॉज द थिंग, पर्सनली इन्होंने खुद जाके स्टोर्स पे विजिट किया, रिटेलर्स को कन्विंस किया कि उनके प्रोडक्ट्स को आप रखिए यहाँ पर लगाइए, देखिए लोग इनको पसंद करेंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों जो पैशन के साथ स्टार्ट नहीं करते, ऑब्जर्वेशन के साथ स्टार्ट करते हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड एक स्टार्टअप आप इसको बोल सकते हैं। सिमिलर स्टोरी रितेश अग्रवाल की रही है, हु स्टार्टेड ओयो। उनका भी सेम था कि एक पर्टिकुलर चीज उन्होंने देखी कि यार यहाँ पर ना गैप है एक बहुत बड़ा, लोग बहुत ज्यादा प्राइस पे कर रहे हैं और जो होटल्स हैं वो खाली पड़े हुए हैं, तो उसको मर्ज किया। सो ही ऑल्सो डिड द सेम थिंग कि वो जाकर होटल्स को कन्विंस करते थे कि मैं आपके होटल को कुछ दिन के लिए लिस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ फ्रूटफुल लगे तो हम लॉन्ग टर्म काम करेंगे, अदरवाइज आप उसको ड्रॉप कर दीजिएगा। और एग्जैक्टली ऐसे अभी भी अगर आप देखेंगे बहुत सारी मार्केट्स में आपको ऐसे गैप नजर आएंगे। इट्स जस्ट हाउ टू मर्ज दीज टू थिंग्स, दैट्स हाउ द आइडिया वर्क्स। सो ये एक उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है कि आपको बहुत ज़्यादा पैशनेट अगर आप नहीं भी किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेकर के, लेकिन आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है, आपको समझ में आ रहा है कि बॉस यहाँ पर गड़बड़ है, इसको फिक्स किया जा सकता है, यू आर स्टिल गुड टू गो। दैट्स हाउ दिस होल कंपनी स्टार्टेड। लेते हैं म्यूजिकल ब्रेक, देन वी विल कंटिन्यू द शो। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील लाइफ।

All right. बिना किसी देरी के अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं. What was the main idea? So the idea was not to sell the lipstick or sell the beauty products. The idea was let's democratize the beauty. मतलब हर एक इंसान का अधिकार है सुंदर दिखने का, हर एक इंसान का अधिकार है अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का. तो ब्यूटी प्रोडक्ट्स में एक्सेस दिलाने का काम किया इस कंपनी ने. कलर बार ने फोकस किया कि आपका फील प्रीमियम हो, आपके स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल हो, इंडियन स्किन टोन्स के साथ वो मर्ज हो, ठीक है, वाइडर कलर चॉइसेस आपको मिले, इंक्लूसिविटी आपको मिले. एंड लेटर ऑन उन्होंने बाद में अपग्रेड किया खुद को. उसके बाद ये वीगन प्रोडक्ट्स की तरफ गए, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की तरफ गए, सस्टेनेबल पैकेजिंग की तरफ गए. जैसे जैसे टाइम बढ़ा उन्हें समझ में आया कि ओके एनवायरनमेंट को डैमेज पहुंच रहा है और लोगों की चॉइसेस चेंज हो रही हैं एंड वी एज अ कंपनी कुछ करना चाहिए. तो उन्होंने बाद में उन चीज़ों का अडॉप्ट किया जिससे आप मदर नेचर को यू नो एटलीस्ट ज़्यादा डैमेज पहुंचने से या ज़्यादा हार्म पहुंचने से बचा सकते हैं. सो हिज नेम इज़ समीर मोदी. फाउंडर की स्टोरी की बात करते हैं. सो पहले थोड़ा सा बात करेंगे बिफोर कलर बार वर्ड. बिफोर कलर बार उन्होंने एज अ मैनेजमेंट ट्रेनी काम किया एट फिलिप मॉरिस जो कि यूएस की कंपनी है, ठीक है. देन उसके बाद उन्होंने मोदी केयर बिजनेस जो है स्टार्ट किया. उसके बाद मल्टीपल ग्रुप वेंचर्स जो है उन्होंने अपने स्टार्ट किए, ठीक है. एंड ही इज नॉट जस्ट अ बिजनेसमैन. स्टेट लेवल के बॉक्सिंग चैंपियन रह चुके हैं, आर्ट एंथुजियास्ट रह चुके हैं, म्यूजिक लवर हैं, ठीक है. एंड दिस इज रियली यूजफुल फॉर ऑल ऑफ अस क्योंकि मोस्टली लोगों को लगता है कि जो लोग एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उन्होंने सिर्फ बिजनेस पढ़ा होता है, बट ऐसा नहीं होता है. समटाइम्स आपके अलग अलग इंटरेस्ट हो सकते हैं. ओके एंड कलर बार जो ये कंपनी है ये ओवरनाइट सक्सेसफुल नहीं हुई थी. एंड याद रखिएगा 2004 की हम लोग बात कर रहे हैं, वे बिफोर यू स्टार्टेड यूजिंग फेसबुक इंस्टाग्राम ऑल दिस स्टफ. उससे बहुत पहले की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर. उस टाइम पर इन्होंने इस चीज़ को देखा और वहाँ पर गिव अप नहीं किया अपना. सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये रहा कि ही वॉज कन्विंस्ड विद दिस बिजनेस आइडिया कि लोगों को पसंद आएगा. और अगर कोई आइडिया आपको अच्छा लग रहा है उसे सिर्फ अपने दिमाग तक क्यों रखना, लेट्स टेक अ शॉट, एग्जीक्यूट करके देखते हैं. देन उसके बाद फिर बहुत सारे और कॉम्पिटिटर्स थे जो उस टाइम पर, उनके साथ कम्पीट भी किया. उसके बाद अपने बिजनेस को स्केल अप किया एंड कॉन्स्टेंटली इनोवेट करते गए, कॉन्स्टेंटली रीडिजाइन करते गए, कॉन्स्टेंटली इंप्रूव किया स्टोर एक्सपीरियंस को, कॉन्स्टेंटली कैटेगरीज को एक्सपेंड किया, कॉन्स्टेंटली ये भी ट्रैक किया कि लोगों की चॉइसेस क्या है. एजुकेशन है इनकी डून स्कूल, हिंदू कॉलेज एंड हार्वर्ड बिजनेस स्कूल. So this is the whole life of this founder, Mr. Samir Modi. Now we'll take another musical break. उसके बाद show continue करेंगे. कुछ और चीजें हैं जो इस कंपनी के बारे में आपको बतानी चाहिए, but वो later on discuss होगी. फिलहाल मजा लीजिए गानों का. Stay tuned, feel good, feel.

उम्मीद यही कि आपको गाने पसंद आए, साथ साथ उम्मीद कर रहा हूँ शो आपको पसंद आ रहा है और जो पर्पज है हमारा शो का फुलफिल हो पा रहा है। आइए थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। कलर बार हमारी आज की कंपनी है। अब बात करेंगे इसकी यूएसपी की, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन। ये सबसे इंटरेस्टिंग फैक्टर होता है कि आपको हजारों कंपनीज नजर आएंगी लेकिन हर एक कंपनी की अपनी यूएसपी होती है कि कौन सी वो चीजें हैं जो उस कंपनी को खास बनाती है। सो इस कंपनी की यूएसपी है लग्जरी फील एट एक्सेसिबल प्राइस, ठीक है। बट इसमें बहुत डीप लेयर्स भी हैं, जैसे कि आपको बहुत सारी रेंजेस मिल जाती हैं शेड्स की, लार्ज रेंज ऑफ शेड्स आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स आपको मिलते हैं, क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, वीगन प्रोडक्ट लाइंस आपको मिलती हैं, एंड ब्यूटी पर्सनलाइजेशन का भी एक यहाँ पर अभी ऑप्शन आपको मिल जाता है। सो प्रीमियम एक्सपीरियंस आपको मिलता है विदाउट पेइंग फॉर द लग्जरी प्राइस। की ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर बात करें, कंज्यूमर शिफ्ट, ठीक है, इंडियन कंज्यूमर्स चेंज हुए, नीड बेस्ड बाइंग से हट करके हम लोगों के थोड़ी थोड़ी चीजें एक्सपेंड हुई, हमने एक्सपीरियंस को प्रायोरिटाइज करना शुरू किया। तो लोगों ने क्या चेंज किया, मुझे लिपस्टिक चाहिए यहां से लेकर के आई वॉन्ट दिस ब्रांड, ये अभी आप देखते हैं कि लोगों की चीजें चेंज हो रही हैं, लोग ज्यादा खुल रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी में जो कंज्यूमर है वो अब नीड से थोड़ा सा ऊपर उठ चुका है और इस बात से हम सब लोग अग्री करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस। तो यहाँ पर इंस्टाग्राम एंड ब्यूटी क्रिएटर्स जो हैं उनका बिहेवियर जो है वो चेंज हुआ, बाइंग बिहेवियर, ठीक है। ब्यूटी बिकेम लाइफस्टाइल, ब्यूटी बिकेम एक्सप्रेशन, ब्यूटी बिकेम आइडेंटिटी। देन उसके बाद प्रीमियम ब्रांड्स की तरफ लोग जाने लगे, पैकेजिंग अच्छी होनी चाहिए, ट्रस्ट हो, क्वालिटी हो, ये भी इस कंपनी ने अच्छे से अडॉप्ट किया और पूरी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ ये कंपनी 2004 से लेकर अभी तक काम करती आ रही है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रोडक्ट इनोवेशन, सबसे इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी कर ले, कितना ही अच्छी आप मार्केटिंग कर ले, कितना ही अच्छी आप चीजें कर ले, लेकिन अगर आप रेलिवेंट नहीं है, अगर आप अप टू द डेट अपने प्रोडक्ट्स को नहीं रख पा रहे हैं, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। इसके बहुत सारे एग्जांपल आपको दिखाई देंगे कि अगर लेट्स से कोई कंपनी है जो डील करती है कि बर्थडे डेकोरेशन में, अब रिसेंटली कोई थीम आई है, कोई मूवी आई है, फॉर एग्जाम्पल बीते दिनों बार्बी एक मूवी आई थी, तो हमने देखा कि कुछ कंपनीज ने ना जैसी बार्बी मूवी लॉन्च हुई एग्जैक्टली वैसे ही अपनी किट्स बनानी शुरू कर दी बार्बी बेस्ड थीम। व्हाट वाज दैट? अ मार्केटिंग थिंग, कि ऑलरेडी हाइप चल रही है, ऑलरेडी क्रेज चल रहा है, हम आपको आपके घर पर ही डिलीवर करके देंगे, दिस इज द थिंग, और अच्छा किया उन कंपनीज ने। सिमिलरली आपको हर एक ट्रेंड के साथ अप टू डेट रहना पड़ता है, हर एक ट्रेंड को आपको समझना पड़ेगा, और जब आपको ट्रेंड समझ आने लगते हैं तब आपको ये भी समझ में आता है कि लोगों का टेस्ट चेंज होता है और बहुत सारा इन्फ्लुएंस होता है उनके आसपास का। दैट वॉज द कोर आइडिया बिहाइंड दिस। सो आप अगर कोई स्टार्टअप कर रहे हो या इनफैक्ट अगर आप जॉब भी करते हो, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अपग्रेड योर स्किल्स, अपग्रेड योर बिजनेस, स्टे अप टू डेट, दैट्स हाउ थिंग्स ग्रो। आई होप यहां तक मैं समझा पाया हूं। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद शो कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

इसी उम्मीद के साथ कि आपको मजा आ रहा है, शो को अपने आगे बढ़ाएंगे। एंड नाउ इज द टाइम टू कंक्लूड आवर शो। आज हमने जिस कंपनी की बात करी, इस कंपनी का नाम है कलर बार। अभी इस कंपनी के 100 से ज्यादा खुद के स्टोर्स हैं, 1200 से ज्यादा मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, मतलब अलग अलग ब्रांड के आउटलेट्स पे आपको इनके प्रोडक्ट्स नजर आते हैं। इंटरनेशनल एक्सपेंशन प्लान्स हैं इनके पास, ठीक है। स्किन केयर एंड फ्रेग्रेंसेस के ऊपर बहुत फोकस करते हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ है, वैसे वैसे कंपनी ने खुद को चेंज किया है, खुद को इवॉल्व किया है। दैट इज द कोर आइडिया बिहाइंड इट। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो सक्सेसफुल कंपनीज होती हैं वो स्टार्ट ही बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ होती हैं या कोई रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी होती है, बट नो, दैट्स इनकरेक्ट। परफेक्शन इज अ मिथ। दिस इज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, चाहे आप कोई भी काम करते हैं, परफेक्शन इज जस्ट अ मिथ। और ये बात बार बार बार बार बार बार अलग अलग कंपनीज के थ्रू हमने प्रूव करके भी आपको दिखाई है, सिमिलरली यहाँ पर है। तो एक गैप देखा इन्होंने अफोर्डेबिलिटी एंड क्वालिटी के बीच का, उसको मर्ज किया, फिक्स किया उसको, देन उसके बाद खुद को इवॉल्व किया। लिपस्टिक और नेल पेंट से स्टार्ट करते करते आज इतनी वाइड वैरायटी इनके पास है कि लोग ट्रस्ट करने लगे हैं। इनकी पैकेजिंग बहुत प्रीमियम है, अफोर्डेबल प्राइस पर ये देते हैं और कम्पीट करते हैं इंटरनेशनल ब्रांड से जो बहुत लग्जरी आपको एक्सपीरियंस देते हैं। सिंपल आइडिया। आप मुझे बताइए आपको आज की केस स्टडी कैसी लगी, और साथ साथ अगर आप ऐसा कोई सिमिलर केस जानते हैं तो मुझे बता सकते हैं 8010781078 पे। फिलहाल वक्त है शो को यहाँ पर हॉल्ट देने का। उम्मीद कर रहा हूँ आज का शो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा। फिर लौटेंगे लेकर रिकॉर्ड शो। तब तक अपना ख्याल रखिए, खैरियत से रहिए। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: ओवर्स भी करते हैं, अपार्ट फ्रॉम दिस थिएटर किया है, सो मेनी थिंग्स आर देयर. आज प्राइमरली हम लोग जो फोकस करेंगे दैट वी गोना टॉक अबाउट कंटेंट क्रिएशन, हाउ यू कैन लर्न इट, हाउ टू मेक योर वीडियोस, हाउ टू राइट अ स्क्रिप्ट, हाउ टू अपलोड इट, व्हाट आर द थिंग्स दैट ऑल यू नीड टू यू नो और यू कैन से जस्ट जॉट इट डाउन जस्ट फॉर द सेक ऑफ दैट कंटेंट क्रिएशन. सो टुडेज शो इज गोना बी रियली स्पेशल फॉर ऑल ऑफ अस. ऑन दिस नोट वी विल स्टार्ट द शो और यहां पर सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे यतिन सेठिया का. यतिन, स्वागत है हमारे शो में.
1: थैंक यू
0: सो मच सागर जी. सबसे पहले आप क्या करते हैं exactly, क्या क्या चीजें आपके डोमेन में फॉल करती हैं?
1: जी मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं और इंस्टाग्राम पे मैं वीडियोस बनाता हूं. ऑलमोस्ट 100K मेरे इंस्टा पे हो चुके हैं फैमिली, और उसमें मैं बेसिकली फनी, रिलेटेबल, कभी कभी इमोशनल वीडियोस डालता हूं. और मुझे मिमिक्री करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे मिमिक्री आती है. मैं कम से कम 10 वॉइस प्लस आवाजें मैं निकाल सकता हूं. और इससे पहले मैं एज अ फोटोग्राफर वर्क करता था, क्रिएटर्स के लिए रील्स बनाता था, मैं उनके शूट करता था. और अब मैं खुद कैमरा के आगे आ चुका हूँ. तो मेरी जर्नी कैमरा से पीछे से लेके आगे तक की मेरी जर्नी रही है और अभी आगे बहुत चलेगी. तो ये है यतिन यार.
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही सुंदर सी यात्रा यहाँ पर रही है. एंड ये हम सब लोग देख पा रहे हैं 100K से ज्यादा इनकी फैमिली है यहाँ पर. एंड प्योरली हार्डवर्क है उनका और जो उन्होंने अर्न किया यहाँ पर. एक सवाल यहाँ पर उठता है कि व्हाट ट्रिगर्ड यू और व्हाट इंस्पायर्ड यू टू स्टार्ट योर कंटेंट जर्नी? क्या ऐसा था जिससे आपको ट्रिगर किया और आपको लगा कि नहीं यार मेरे को ये करना चाहिए?
1: ये कीड़ा मुझे स्कूल टाइम से था. तो मुझे काफी स्कूल टाइम से ऐसे एक्ट करने का शौक, अच्छा मतलब ऐसे एक्ट करना मुझे अच्छा लगता था. मैं स्कूल टाइम में मिमिक्री करता था अपने टीचर्स की और अपने आसपास लोगों की. तो वहां से मुझे था कीड़ा, बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं कभी इसको प्रोफेशनली करूंगा. मैं तब मजे में कर रहा था. बट धीरे धीरे धीरे धीरे जब मैं ऐसे लोगों से मिलता गया जो ये इस कंटेंट में कर रहे हैं, मैं एज अ प्रोफेशनली उनसे मिला था कि मैं शूट करता हूँ और वो ये चीजें वीडियोस क्रिएट करते हैं. वो काफी फेमस क्रिएटर हैं और उनके साथ मैं करता गया. फिर वहां से जब मैं शूट उनका करने लगा, धीरे धीरे धीरे उनको देख के मेरा वो कीड़ा जो दबा हुआ था, जो मेरे अंदर जो चाह थी, वो बाहर आने लगी. तो मैंने उनको देख देख के अपना शुरू करा कंटेंट बनाना. मैं मिमिक्री अपना करता था, मिमिक्री वॉइस निकालता था, वो उसको मैंने थोड़ा और सीरियसली लेना शुरू करा. फिर मैं यूट्यूब वगैरह पे देखता था वॉइस एक्सरसाइजेस. और ये हमारे बीच में जो अभी हमसे जो इंटरव्यू ले रहे हैं सागर जी, इनसे पूछता था मैं वॉइस के बारे में. इनको बहुत नॉलेज है, ये बहुत अच्छे एक्टर है, तो इन्होंने अपनी वॉइस पे बहुत अच्छा काम किया है. तो ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए. तो मैं इनसे पूछता था सागर जी से कि कैसे करना है, क्या करना है. तो एक्सरसाइज पे अपना ध्यान देता, वॉइस एक्सरसाइज पे. फिर धीरे धीरे धीरे धीरे करके करते करते इंस्टा पे मैंने फाइनली मुझे जो जिनका मैं शूट करता था, ऋषभ भैया और पूरी टीम, ऋषभ भैया ने मुझे मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, तेरे में पोटेंशियल है, टैलेंट भी है, तुझे ट्राई करना चाहिए. तो उनके कहने पे मैंने फिर वीडियोस बनाना शुरू करा. इनिशियली तो बहुत ऐसे ही वीडियोस बनाता था, बट धीरे धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया, करता गया और सबके साथ से मैं सीखता गया और अब अच्छा कर रहा हूँ, ऐसा मुझे ऑडियंस बोलती है, प्यार देती है, व्यूज आते हैं, कमेंट्स आते हैं. तो ये जर्नी थी कि एक स्कूल का कीड़ा जग गया, फिर यहाँ पे अच्छे क्रिएटर्स को देख के मेरा भी मन करा कि हाँ करना है.
0: उसका प्रमाण ये भी है कि आज आप रेडियो पर लाइव हैं, लोग आपको सुन पा रहे हैं, तो वो उस चीज का प्रमाण है कि आप अच्छा कर पा रहे हैं. डेफिनेटली अपने आप में ये चीजों को सीखना एक हुनर होता है सीखने का भी. तो हर इंसान में ये चीज जो है होनी चाहिए कि आपको सीखना आना चाहिए चीजों को उठाना कैसे है. हमारे आसपास एलिमेंट मौजूद होते हैं. इसी नोट पर दोस्तों लेंगे म्यूजिकल ब्रेक. यहाँ पर अभी तक हमने यतिन से बात करी, इनके डोमेन के बारे में जाना है. आइए इसको थोड़ा सा टेक्निकल लेकर के जाएंगे, आगे कंटेंट के बारे में बात करेंगे, बट ये सब बातें होंगी इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद. सो स्टे ट्यून्ड विद अस. आई एम आरजे सागर. राइट नाउ यू आर लिसनिंग टू रेडियो मधुबन 107.8 एफएम.

0: जल हूं, मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं केवल पृथ्वी ग्रह पर ही हूं, तभी यहां जीवन संभव है। और अगर मैं नहीं रहा तो यहां पर भी जीवन असंभव हो जाएगा।
1: तो क्या आप ऐसा चाहते हैं? नहीं ना, तो आज ही खुद से करें एक वादा, जल बचाएंगे और पृथ्वी पर जीवन को सुरक्षित बनाएंगे। रेडियो मानव रचना 107.8 का संदेश।
0: समय की तुम सुनो आहट, पानी का ना छाए संकट।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Welcome back. I just hope you are loving the vibes of this show. You are loving the vibe of this musical break. And अगर आपके पास कोई feedback है मेरे लिए यतन के लिए कोई भी चीज है जो आपके जहन में है और हम तक पहुंचानी है do make sure 8010781078 इस नंबर तक आप पहुंचा चुके हो. फिलहाल अपने शो को आगे बढ़ाएंगे. यतन मेरा next question आपसे रहेगा content creation के बारे में. When you think about a content, a piece of content, तो उसको कैसे आप सोचते हो and what is the process? क्या जाता है उसके पीछे?
1: प्रोसेस यही है कि जैसे कि मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है कि मैं रिलेटेबिलिटी पे कंटेंट बनाता हूँ और उसको फिर बाद में फनी करने का ट्राई करते हैं. तो वो जो रिलेटेबिलिटी आती है जो हमारे आसपास चीजें हो रही हैं, जो मैं अपने दोस्तों के साथ घूम रहा हूँ या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो मेरी एक बचपन से ही मतलब आदत थी, मैं ऑब्जर्व बहुत ज्यादा करता हूँ. तो छोटी छोटी चीजें मुझे ऑब्जर्व करने की आदत है. तो मैं वही अगर मैं कहीं भी जा रहा हूँ, किसी के साथ जा रहा हूँ, कुछ भी हो रहा है, अगर कोई जो क्रैक हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चल रहा होता है कि मुझे कंटेंट बनाना है. तो वो ऑटोमेटिकली मैं ग्रैब कर लेता हूँ कि हाँ यार इस टॉपिक पे बनाया जा सकता है, ये टॉपिक शायद अभी कवर नहीं हुआ, इस टॉपिक को पे कुछ और अच्छे से इसको लिख के करा जा सकता है. तो पहले तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन से मुझे रहता है कि मैं ऑब्जर्व करूँ, और फिर उसके बाद मैं राइटिंग के लिए बैठता हूँ. राइटिंग के लिए मैं मेरा दिमाग से या तो रात को चलता है या फिर मैं जब गाड़ी चला रहा होता हूँ, ड्राइव कर रहा होता हूँ, तब मेरा दिमाग चलता है. तो ये दो टाइम पे मेरा दिमाग चलता है. फिर मैं उसके वॉइस नोट्स बनाता हूँ सबसे पहले रफ, कि इसमें इस तरीके से कर सकते हैं, इसमें इस तरीके से कर सकते हैं. फिर मैं उसको आराम से रात में बैठ के प्रॉपर लिखता हूँ कि ये डायलॉग्स होने चाहिए, ये सब होना चाहिए. तो फिर उसके बाद जाके मैं उसको शूट करता हूँ, और फिर शूट करने के बाद एडिट मैं साथ साथ ही उसी टाइम मोमेंट पे कर लेता हूँ, सो दैट कि कुछ अगर दिक्कत होती है तो मैं फटाफट कुछ शॉट लेना हो तो वो कर लेता हूँ. और कभी कभी ऐसा होता है कि इम्प्रॉम्प्ट शूट्स भी हो जाते हैं. कभी कभी जैसे हम बैठे हुए हैं, जैमिंग कर रहे हैं, दोस्तों से बात कर रहे हैं, कुछ आइडिया आया और फटाफट उसको शूट कर लिया और वन टेक मतलब बना के कुछ भी, जैसे कि वो गैबल करके फटाफट उसको ऑन मोमेंट और उस टाइम पे शूट कर लिया. कभी कभी वो रेयर ऐसे केसेस होते हैं, बट हाँ इस तरीके से लेकिन मैं करता हूँ कि पहले मैं अपना स्क्रिप्टिंग कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं शूट करता हूँ. और मतलब अगर आपको सच में इंटरेस्ट है, अगर कोई दिक्कत नहीं, अगर आपको नहीं आता, आप मतलब आप 1% जानते हो, 2% जानते हो, नॉलेज आपकी बहुत कम है, अगर कुछ भी नहीं आता, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट आपके अंदर एक जिद है कि मुझे करना है और सीखना है, तो आप शुरू करो. सबसे पहले सबसे पहला काम ही है, सबसे मुश्किल काम है शुरू करना. अगर आपने शुरू कर लिया ना, उसके बाद धीरे धीरे चीजें आपके रास्ते आराम से खुलते जाएंगे, आप कर लोगे. सबसे पहले जीवाइए, 0 to 1 जाना बहुत मुश्किल होता है, 1 to 10 जाना थोड़ा सा इजी हो जाता है, और 10 to 100 की जर्नी बहुत आराम से हो जाती है. तो सबसे पहला मुश्किल काम है स्टार्ट करना, शुरू करना. आप कैमरा लेके, आप कुछ नहीं, अगर आपको लग रहा है तो आप कुछ नहीं, आप नॉर्मली वीडियोस कैमरा ऑन करके आप अपना बोलना शुरू करो. आप अपने आपको देखो कि क्या बोल रहे हो, कैसे, क्या कॉन्फिडेंस लेके आओ. और ये है सबसे पहले, आप अपना ही मतलब कैमरे के आगे बोलना शुरू करो, और धीरे धीरे धीरे करके हो जाएगा. सबसे मेन चीज है शुरू करना. और शुरू कैसे करना, आपको खुद ही, अगर जिद है, दिल है, तो आप कर सकते हो.
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर. और प्रोसेस क्या हो सकता है अपार्ट फ्रॉम जीर? अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्निकल बात करूँ कि एक बिगिनर के लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए, कि क्या क्या चीजें हैं जिसमें फॉल करती हैं?
1: यही है कि टेक्निकल अगर आए तो आपके पास नॉर्मली एक अच्छा कैमरा होना चाहिए. जरूरी नहीं आपके पास सबसे महंगा कैमरा हो, फोन कैमरा, बेसिक फोन कैमरा आईफोन के अच्छे आते हैं जो बेस स्टार्ट हो जाते हैं वहां से, नहीं तो एंड्रॉयड के भी कुछ आज के एंड्रॉयड बहुत अच्छे चल रहे हैं आजकल एंड्रॉयड. तो आप वीडियो, बेसिकली वीडियो क्वालिटी अच्छी हो, आप पॉसिबल हो सके माइक भी, बहुत बेसिक से शुरू हो जाते हैं, माइक भी रखो, क्योंकि ऑडियो वीडियो क्वालिटी मैटर करती है कंटेंट क्रिएशन में. वो जितनी अच्छी होगी लोग उतना अच्छा देख पाएंगे, उतना अच्छा समझ पाएंगे. तो ये दो चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, ऑडियो और वीडियो क्वालिटी सबसे पहले अच्छी होनी चाहिए. उसके बाद आपकी राइटिंग के ऊपर आती है, धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे आपको उस पे काम करना चाहिए. मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें एक कपल था, उन्होंने मिस्टर बीस्ट से ये बात पूछी थी कि हमें ग्रो करना है, हमें चैनल को अच्छा बनाना है, अपनी वीडियोज को बेहतर बनाना है, तो क्या करें. तो मिस्टर बीस्ट ने ये एडवाइस दिया था कि आप 100 वीडियोस बनाओ और डेली आप एक वीडियो जब बनाओगे तो आपको जो भी कमी है अपनी पिछली वीडियो में वो आप नेक्स्ट वीडियो में करेक्ट करोगे। तो आपको भी ऐसा ही करना है, आप वीडियो शुरू करो और 100 वीडियोस का एक टारगेट बनाओ और आप नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाओगे तो पिछली वीडियो से एक कमी आपको इम्प्रूव करनी है, आपको सुधारना है। ऐसे करते करते उस कपल ने 1 मिलियन कर लिए थे 100 वीडियोस में।
0: बहुत सुंदर,
1: कुछ भी नहीं था, सबसे मेन चीज थी कंसिस्टेंसी जो होनी चाहिए।
0: यही दोस्तों ये प्रोसेस होता है, मतलब लाइफ में हर चीज का प्रोसेस यही होता है कि व्हेन यू आर स्टार्टिंग समथिंग द फर्स्ट मोस्ट रिजर्व्ड एरिया इज द बिगिनिंग पॉइंट। वंस यू स्टार्ट डूइंग इट सो आप खुल जाते हो थोड़ा सा एंड उसके बाद फिर आपको ये सिर्फ देखते रहना है कि मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ। जैसे यतन ने बताया कि आपको अपनी प्रीवियस वीडियोस, अपने प्रीवियस वर्क को देख करके आपको इम्प्रूव करना है, जो गलतियां पहले हुई हैं वो अगले में ना हो। बहुत ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट इट, राइट। अब दिस नोट लेकर चलेंगे अपने शो को आगे दोस्तों, और उसके बाद अपने शो में आगे बात करेंगे। कुछ और चीजें हैं, कुछ और सवाल है मेरे ध्यान में जो हम पूछेंगे, बड़े हमारे शो का लास्ट फेज होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस कॉन्टेक्स्ट तो आप मुझे 8010781078 इस नंबर पर जरूर बताइएगा।

0: वंस अगेन आई एम होपिंग आपको गाने अच्छे लगे। वंस अगेन आई एम होपिंग ये बातचीत आपको पसंद आ रही है। यतिन बहुत ही खूबसूरत कलाकार हमारे शहर फरीदाबाद के हमारे साथ यहाँ पर जुड़े हुए हैं और बहुत प्यारे प्यारे बातें हमें बता रहे हैं और ईमानदारी से हमें जवाब दे रहे हैं कि आप जेन्युइनली कैसे ग्रो कर सकते हो। अभी तक हमने बात करी यतिन के डोमेन के बारे में, हमने बात करी कॉन्टेंट क्रिएशन के बारे में, हमने बात करी प्रोसेस कैसे होता है, हमने ये भी बात करी है कि एक बिगिनर को अगर स्टार्ट करना है तो कैसे स्टार्ट किया जा सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो बहुत लोगों के दिमाग में एक अवहम होता है कि कॉन्टेंट क्रिएशन में पैसा कैसे होता है नहीं होता है। थोड़ा सा फाइनेंशियल पार्ट के ऊपर बात करते हैं। ये दिन बहुत सारे लोगों को कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट तो करना है लेकिन दे आर नॉट श्योर अबाउट इट कि पैसा होता है नहीं होता है, दाल चावल का जुगाड़ कैसे होता है। आप हमें थोड़ा सा गाइड करिए कि पैसे की व्यवस्था कैसे की जाती है व्हाइल परस्यूइंग द कंटेंट क्रिएशन जर्नी।
1: इसमें पैसा होता है, अच्छा होता है, और लेकिन ये है कि वो एक समय बाद आता है। जैसे कि हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हम फर्स्ट डे से उसमें से रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा। अगर कंटेंट क्रिएशन में भी इस तरीके से अगर आप अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, अपनी चीजें इन्वेस्ट करेंगे, अपना टैलेंट इन्वेस्ट करेंगे, अपनी स्किल्स इन्वेस्ट करेंगे, तो ये नहीं है कि आपको पहले दिन से ही रिजल्ट मिलना शुरू होगा। आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। किसी को 3 महीने लग जाएंगे, किसी को 3 साल भी लग जाते हैं। तो इट ये ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक बिजनेस की तरह है कि आप इसको कितना आप जितना पानी डालेंगे उतने पौधा उगेगा, उतना ज्यादा पौधा बड़ा होगा। तो ये भी वैसा ही है, इसके अंदर पैसा अच्छा है। लेकिन हाँ, एक बार जब पौधा उग गया, जब पेड़ उग जाएगा तो उसमें से फल निकलेंगे ही, और मीठे मीठे फल निकलेंगे जितना आप पानी डालेंगे। तो पैसा अच्छा है, बढ़िया है। शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें भी होंगी लेकिन जब आना शुरू होगा तो अच्छा होगा। इसमें बहुत अलग अलग तरीके होते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, स्नैपचैट, अलग अलग जगह हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं। आप सेम वीडियो एक बना के 4 प्लेटफॉर्म पे डाल सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म इसमें से आपको मॉनेटरी फायदा देती है और जो चौथा इंस्टाग्राम है वो आपको ब्रांड्स के थ्रू फायदा देता है। आपकी फेस वैल्यू बढ़ती जाएगी, आपके पास ब्रांड्स आएंगे, ब्रांड्स आपसे काम कराएंगे। इंस्टाग्राम पे इस तरीके से काम होता है और बाकी प्लेटफॉर्म पे भी ब्रांड्स आ सकते हैं उस, लेकिन साथ साथ आपका बेस जो पैसिव इनकम रहेगी वो इस तरीके से रहेगी। आप डालेंगे शॉर्ट्स फॉर्म को डालेंगे, स्नैपचैट पे डालेंगे, यूट्यूब पे डालेंगे, फेसबुक पे डालेंगे, तो ये 3 प्लेटफॉर्म आपको पे करता है। मोनेटाइजेशन होता है पूरा, सारी चीजें प्रोसेस होती हैं, उसके बाद इसमें आपको पैसा मिलता है। लेकिन उसका भी प्रोसीजर है, एक आपको अचीव करना होता है, वो एक टारगेट होता है इनका, पॉलिसी होती है प्लेटफॉर्म की, वो आप क्रॉस करते हैं उसके बाद आपका चैनल मोनेटाइज होता है और उसके बाद ही होता है। तो ये चीज है कि हाँ, आप करते रहोगे, वही वही बात है कि जितना पानी जितनी मेहनत डालोगे आप अपने काम में, जितना अच्छी तरह आप अपने आप को स्किल्स इंप्रूव करोगे और अपना टैलेंट को बढ़ाते जाओगे, आप अपने फॉलोअर्स बढ़ाते जाओगे, आपका अर्निंग उस हिसाब से बढ़ती जाएगी।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत उम्दा बात उम्दा। और यदि आपने, अगर मैं आपकी बात करूं तो अभी आपका चैनल जो है अच्छा हुआ है, अभी आप अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं, आपको ब्रांड्स भी आ रहे होंगे, पैसा वैसे आ रहा होगा। बट इफ आई टॉक अबाउट द बिगिनिंग पार्ट, जब आपने शुरू किया था तो जाहिर सी बात है डे 1 पे आपके पास पैसा नहीं होगा। उस फेज में जब आपके पास ब्रांड नहीं आ रहे हैं, जब तक आपने ग्रो नहीं किया, ग्रोइंग फेज में हो, कैसे अपने आपको सस्टेन किया जाता है, कैसे दाल चावल का जुगाड़ किया जाता है, या आपने कैसे किया?
1: मैं अपना बताता हूँ मैंने कैसे किया। मेरा फोटोग्राफी बिजनेस था, मैं उसमें बहुत अच्छा कमा रहा था, तो मैंने इतनी सेविंग्स कर ली थी कि मुझे था कि मैं 1 साल तक का बिना कमाए मैं अपने लिए खर्च कर सकता हूँ, तो मैंने उतना सेव कर लिया था और इसी वजह से मैं वो कर पाया। बट आप इसको इनिशियली, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो साथ साथ आप कमाते कमाते आप ये करते रहें कि कुछ, मतलब अगर आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हैं तो ये साथ में पैरेलली करते रहें। मेन स्ट्रीम इनिशियली बना रहे हैं तो आप, या तो आप घर से, आपका बहुत सपोर्ट होना चाहिए, बहुत पैसा होना चाहिए, तभी आप ये काम कर पाएंगे। वरना ये है कि इसमें ये काम आपको इतना निचोड़ देगा कि आपको लगेगा कि पैसा भी नहीं, और ये सब वो आपको डिमोटिवेट करेगा। तो आपको पहले ही बैकअप लेके चलना पड़ेगा, आइदर आपके पास जॉब होनी चाहिए, कुछ सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, अच्छा बेसिक हो, आप अपने खर्चे निकाल पाओ। इनिशियली आपको ये सब तक ध्यान देना पड़ेगा, या फिर आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मुझे कम में सेटल करना है इनिशियली, या तो आप उस चीज के लिए माइंड सेट कर लो।
0: Alright, we are concluding the show here. यदि कोई ऐसी चीज़ है जो मैं आप पूछ पाए हो और आप कहना चाहते हो तो please feel free.
1: बस यही कहूंगा कि सबसे मुश्किल स्टेप होता है शुरू करना, सबसे हार्ड स्टेप होता है, किसी चीज का शुरू करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। आप ये सोचते रहोगे मैंने करना है करना है करना है, सोचते रह जाओगे तो रह ही जाओगे। तो अगर आपको जेन्युइनली आपको कुछ करना है, कोई भी काम करना है, नॉट कंटेंट क्रिएशन, तो शुरू करें, खड़े हुए अभी और वेट मत करें किसी चीज का।
0: बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यहाँ पर हमने यदन से बात करी है, यदन एक कंटेंट क्रिएटर हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं इनकी प्रोफाइल को, यदन यार नाम से इनकी प्रोफाइल है इंस्टाग्राम के ऊपर, 100K से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं एंड सच अ लवली गाय, सच अ ब्यूटीफुल सोल, ब्यूटीफुल पर्सनालिटी। आप जाके एक बार चेक जरूर करिएगा इनका काम। और यहाँ तक हमने बात करी है यदन से, यदन ने हमें बहुत अच्छे शब्दों में एक गाइड के तौर पर समझाया है कि कॉन्टेंट क्रिएशन एग्जैक्टली दुनिया कैसी होती है, कैसे स्टार्ट करना होता है, काम कैसे करना होता है, पैसा कैसे आता है, कैसे अपना सस्टेन करना होता है। तो तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा यदन, मैं आपका। थैंक यू सो मच मैन। इसके बाद और शोज है जरूर सुनिएगा रेडियो मानवश्ना 107.8 FM पर। दिस इज आरजे सागर साइनिंग ऑफ।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ, और टाइम हुआ है एक बार फिर से प्रोग्राम ऑल इज वेल का, जिसमें हमारे नॉलेज पार्टनर हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। और आज हम बात करने वाले हैं आपकी सेहत के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसका शब्द आपने शायद कभी कभी सुना होगा, लेकिन इसके बारे में डिटेल शायद आप नहीं जानते। सिर्फ वो लोग जानते हैं जो इस चीज से सफर करते हैं या फिर उनके आसपास के लोग। अगर आप बहुत ज्यादा अपने पैरों की तरफ नजर दौड़ाएं, खास तौर पर से अपनी काफ मसल्स या अपने पैरों की तरफ, तो वहां पर आप देखेंगे बहुत सारी नसें विजिबल होती हैं। जी हाँ, ये जो नसें होती हैं ये वैसे तो हमें फिट रखने के लिए ही होती हैं, हमारी बॉडी का पूरा ब्लड सर्कुलेशन सही से इनसे चलता रहता है, लेकिन कई बार अगर ये ज्यादा विजिबल हैं तो फिर आपको सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम वेरिकोज वेन्स भी हो सकती है। मैं तो सिर्फ आपको बेसिक ही बता सकती हूँ, लेकिन हमारे साथ एक्सपर्ट हैं जो आपको बताएंगे बहुत सारी बात वेरिकोज वेन्स से जुड़ी हुई कि आखिर वेरिकोज वेन्स है क्या। आज हमारे कार्यक्रम ऑल इज वेल में हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं डिपार्टमेंट ऑफ लेप्रोस्कोपिक लेजर और जनरल सर्जरीज में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से रेडियो मानव रचना में।
1: धन्यवाद। थैंक यू। मैं डॉक्टर प्रेम कुमार हूँ, आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया
0: जी।
1: और आजकल हम लोग लेप्रोस्कोपिक तो कर रहे थे पिछले 20 साल से, रिसेंटली 5 इयर्स बैक लेजर इंक्लूड हुआ हमारे आर्मामेंटेरियम में
0: जी।
1: और हम लोग उसको बहुत अच्छे से यूज कर रहे हैं, डिफरेंट इंडिकेशंस के आ रहे हैं। तो आपने आज जो इंट्रोड्यूस किया कि वेरिकोज वेन्स के बारे में
0: जी, तो
1: वेरिकोज वेन्स एक प्रॉब्लम है और उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे कि किस में होता है, क्यों होता है और इसका क्या करना चाहिए, नहीं करने से क्या होगा प्रॉब्लम।
0: जी बिल्कुल। तो सर, पहला सवाल बहुत सिंपल सा है, क्योंकि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में हर किसी को नहीं पता। ये खांसी जुकाम की तरह नहीं है, बहुत लिमिटेड लोगों को होता है, लेकिन जिनको होता है वो बहुत तकलीफ में रहते हैं। सो बेसिकली वेरिकोज वेन्स है क्या?
1: जैसे कि आपने कहा कि पैरों में नसें होती हैं, तो नसें तो चाहिए, आर्टरीज हैं जो आर्टरीज हैं जो ले जाते हैं खून को आगे दूर की तरफ, और उस तरफ से फिर रिटर्न के लिए जो नस होती है उसको वेन्स बोलते हैं, जो ब्लू ब्लू दिखते हैं आपको कई बार पैरों में
0: जी।
1: तो ये नॉर्मल है, इसके अंदर जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसकी वॉल होती है और वॉल में कुछ वॉल्व होते हैं जो बैक फ्लो को रोकता है। तो कई कारणों से इनका बैक फ्लो कम हो जाता है और धीरे धीरे ये वेन्स डायलेट होने लगते हैं बिकॉज ऑफ द हाई प्रेशर ऑफ ब्लड ऑन द वेन्स। तो फिर वो डायलेट होने से जो मोटे मोटे वेन्स दिखने लगते हैं लोगों को, या कई तरह के होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कितने तरह के हैं, और उसको वेरिकोज वेन्स बोलते हैं
0: जी। यानी ये जो नसें विजिबल हो जाती हैं, एक जाल की तरह हमारे पैरों में दिखने लग जाती हैं, ये वेरिकोज वेन्स कहलाई जाती हैं। अब वेरिकोज वेन्स होने से प्रॉब्लम क्या होती है और क्यों इसे कंट्रोल करना जरूरी है, या फिर किन लोगों को हो सकती है, ऐसे बहुत से सवाल आपके मन में आ रहे होंगे, लेकिन इन सवालों के जवाब देंगे डॉक्टर प्रेम कुमार। अगर आप इनसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछ सकते हैं, नंबर हमारा बहुत आसान है 8010781078। इसके साथ साथ आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, जिसके थ्रू आप इंटरनेट रेडियो के माध्यम से दुनिया में किसी भी कोने में ये खास जानकारी किसी के साथ भी शेयर कर सकते हैं। रेडियो मानव रचना प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर अवेलेबल है। पॉडकास्ट सेक्शन में जाइए, आरजे दीक्षा के फोल्डर में डॉक्टर प्रेम कुमार के साथ ये सारी जानकारी वेरिकोज वेन से जुड़ी आपको मिल जाएगी। फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का, मैं हूँ दीक्षा आपके साथ।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातें चल रही हैं वेरिकोज वेन्स के बारे में, एक ऐसी समस्या जो काफी आम नहीं है लेकिन फिर भी जिसको होती है वो ही इसकी तकलीफ समझ सकता है। आज हमारे साथ डॉक्टर प्रेम कुमार स्टूडियो में मौजूद हैं जो कि जाने माने सर्जन हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करें वेरिकोज वेन्स से जुड़े कुछ बहुत ही अहम सवाल। सर आपसे अब मैं जानना चाहूंगी वेरिकोज वेन्स के बारे में हम बात करें। आपने बताया कि जो आर्टरीज ब्लड लेकर जाती हैं वेन्स वापस लेकर आती हैं और इस वेन्स का जो एक जाल बन जाता है वो वेरिकोज वेन्स कहलाया जाता है। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहूंगी ये किन लोगों को इफेक्ट कर सकता है, किस एज में कर सकता है, क्या बच्चों को हो सकता है या बुजुर्गों को हो सकता है, यंगस्टर्स को हो सकता है?
1: एक्चुअली वेरिकोज वेन्स जैसे आपने बोला ना जाल हो जाते हैं, तो कई तरह के वेरिकोज वेन्स के कई टाइप्स हैं
0: जी।
1: जैसे कुछ वेरिकोज वेन्स जो स्पेसिफिक बोलते हैं उसमें जो खून की नसें डायलेट हो जाती हैं मोर देन 3 mm साइज अगर हो जाए
0: अच्छा।
1: तो वेरिकोज वेन्स बोलते हैं
0: okay.
1: अगर 1 mm से कम है तो फिर वो टेलेंजेक्टेसिया बोलते हैं
0: okay.
1: और अगर उससे थोड़े बड़े हों 1 to 2.9 तक अगर होता है तो उसको बोलते हैं रेटिकुलर वेन्स
0: okay.
1: जैसे आप बोलते हैं जाल, जाल इज रेटिकुलर
0: okay.
1: तो जाल की तरह होते हैं। और वेरिकोज वेन जो 3 mm से बड़े होते हैं वो आप देखेंगे टॉर्सुअस हो जाते हैं और एकदम लंबे लंबे से सांप की तरह आपको पैर के ऊपर दिखेंगे,
0: स्वेलिंग जैसी दिखने लग जाते हैं।
1: तो वो वेरिकोज वेन्स है बेसिकली 3 mm से बड़े साइज के तो ये होते हैं। और इसका कारण क्या होता है मेनली कि सारे जगह वर्म्स होते हैं। पैर में 2 सिस्टम ऑफ वेन्स हैं, 2 डीप है और 1 सुपरफिशियल है, उस दोनों के बीच में वाल्व होता है। तो जब हम खड़े रहते हैं तो उसमें बहुत हाई प्रेशर जनरेट होता है, मतलब मोर देन 100 mm ऑफ एचजी तक हो जाता है वेन में अगर लॉन्ग स्टैंडिंग हम रहते हैं खड़े। तो उसको सस्टेन करने के लिए वाल्व्स होते हैं जो बैक फ्लो को रोकता है, क्योंकि पैर से जब ब्लड निकलता है, पैर में आपने सुना हो एक पेरिफेरल हार्ट भी होता है, सोलियस मसल होता है, तो जब हम चलते हैं काफ मूव करता है तो फिर वो वेन ब्लड जो है ऊपर पंप होता है हार्ट की तरफ, फिर और सांस भी लेते हैं लंबी तो वहाँ निगेटिव प्रेशर होता है चेस्ट में, तो वेन ब्लड को सक करता है ऊपर तब ब्लड जो है पेरिफेरी से हार्ट में आता है तो इस तरह से उस प्रोसेस में हिंड्रेंस हो जाता है, वाल्व खराब होने से बैक फ्लो हो जाता है, ब्लड का पुलिंग होने लगता है, पैर में ब्लड जमा होने लगता है तो इसको इससे ये जो फिजियोलॉजिकल चेंज ये हो जाता है कि हार्ट को कम ब्लड जाता है, पैरों में ब्लड स्ट्रेसिस हो जाता है
0: यानी वो नसें जो है वो इतनी स्वेलिंग सी हो जाती है कि ऊपर तक ब्लड नहीं पहुंच पाता और उसकी वजह से हार्ट पर भी असर पड़ सकता है। ये तो मुझे लगता है कि एक आम इंसान को अंदाजा ही नहीं है कि पैरों की नसों में प्रॉब्लम आने से आपके दिल पे असर पड़ता है। और डॉक्टर साहब उम्र क्या होती है जिसको ये इफेक्ट करता है, क्या किसी बच्चे को, क्योंकि बच्चे जनरली इतना ज्यादा
1: बच्चों में नॉर्मली ये नहीं होता है, बहुत रेयर, बहुत कम चांस परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स में एजेनेसिस ऑफ वाल्व होता है, वाल्व बनते ही नहीं है
0: अच्छा।
1: तो उनको अर्ली स्टेज में हो सकता है लेकिन ज्यादातर ये एक्वायर्ड रहते हैं। और जो यंग एज की बात करते हैं तो प्रेगनेंसी में जब लेडीज जो यंग एज में प्रेगनेंसी है जैसे 20s-30s में शुरू हो जाता है प्रेगनेंसी तो इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने से कई बार वाल्व खराब होते हैं तो प्रेग्नेंट लेडी में थोड़े कॉमन होते हैं ये वेरिकोज वेन्स, बनना शुरू हो जाता उसी समय से बट मैनिफेस्ट होते होते कई साल लग जाते हैं
0: यानी उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए बाद में और बुजुर्गों में काफी देखे गए
1: जैसे जैसे एज बढ़ता है वेरिकोज वेन्स का इंसिडेंस बढ़ने लगता है तो ये एज से रिलेटेड है, कुछ फैमिली प्रीडिस्पोजिशन होता है, कुछ फैमिली में भी चलते हैं ये
0: यानी हेरिडिटरी भी हो सकता है,
1: हेरिडिटरी भी हो सकता है, फैमिलियल बोलते हैं तो ये हो जाता है। और कुछ मोटे मोटापा हो, वेट गेन हो गया, लॉन्ग स्टैंडिंग वाले जो प्रोफेशन है उसमें भी होता है ये, जैसे टीचर्स हैं या पुलिस में हैं या फिर सर्जन जो लॉन्ग आवर ऑफ सर्जरी करते हैं तो उन लोगों में ये होने के चांसेस थोड़े रहते हैं
0: जी। यानी अगर आप 6-7 घंटे के आसपास खड़े हो रहे हैं डेली नॉन स्टॉप जैसे मॉल्स में बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो एम्प्लॉयज होते हैं या फिर गार्ड्स बहुत सारे होते हैं,
1: टीचर्स गार्ड हैं, उन लोगों में सबके चांसेस रहते हैं।
0: सो अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है तो वेरिकोज वेन्स होने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं क्योंकि आप 6-7 घंटे-8 घंटे अगर खड़े हुए हैं तो आपको तकलीफ तो एक अलग लेवल पर हो रही है, बाकी चीजें भी आपकी बढ़ सकती हैं, जैसे आपकी कमर में दर्द हो सकता है, आपके घुटनों में दर्द हो सकता है, आपके पैरों में तकलीफ बढ़ सकती है। लेकिन वेरिकोज वेन्स भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपके लॉन्ग स्टैंडिंग पॉस्चर की वजह से आपको परेशान कर सकती है। तो अब ऐसे सिचुएशन में आपको करना क्या चाहिए ये हम आपको बताएंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और साथ ही जानेंगे कि पहचाने कैसे इस प्रॉब्लम को। लेकिन अभी वक्त एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेने का, इसके बाद आते हैं वापस बात करते हैं वेरिकोज वेन से जुड़ी। तब तक आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं 8010781078 पर।

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल। बातें चल रही हैं आपकी हेल्थ के बारे में और हेल्थ का टॉपिक है वेरिकोज वेन्स। एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में बात करनी बेहद जरूरी है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आप शायद उन्हें ना जानते हुए या आपसे कभी उन्होंने डिस्कस ही ना किया हो, लेकिन अगर उनकी बहुत लंबे समय तक खड़े होने की जॉब है, जैसे बहुत सारे टीचर्स या फिर सर्जन या फिर गार्ड्स या फिर मॉल में खड़े हुए बहुत सारे एम्प्लॉयज जो आपकी हेल्प के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन एक्चुअली में काफी परेशानी भी झेल रहे होते हैं क्योंकि वेरिकोज वेन्स उन तक पहुंच रही होती हैं। शुरुआत में इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और कब आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, ये जानना भी बेहद जरूरी है। हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है SSB हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर प्रेम कुमार, जाने माने सर्जन, और इनसे हम जानने की कोशिश करें हैं वेरिकोज वेन से जुड़े बहुत सारे सवालों के जवाब। सो डॉक्टर प्रेम कुमार, अब मैं सिम्टम्स के बारे में बात करना चाहूंगी क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो रही है, सपोज हमारे ऑफिसेज में जो सिक्योरिटी गार्ड हैं खड़े रहते हैं घंटों, या लिफ्ट मैन होते हैं वो घंटों खड़े रहते हैं, अब ऐसी परिस्थिति में वो अपनी इस तकलीफ को पहचाने कैसे?
1: बहुत अच्छी बात है कि पहले तो प्रॉब्लम है और वो कैसे मैनिफेस्ट करता है वो जानना चाहिए हम लोगों को। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम होता है पैर में सूजन आना शुरू हो जाता है।
0: अच्छा, पैरों में।
1: जैसे आपने बोला बहुत से लोगों को, स्टैटिस्टिक है कि मोर देन 50% ऑफ द पॉपुलेशन को कुछ ना कुछ वेनस प्रॉब्लम है फुट लेग में, लोअर लिम में 50% लोगों को है। सो दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एंड हाई परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ वेनस डिजीज। तो उसमें सबसे पहले जो लॉन्ग स्टैंडिंग जो आप देखते होंगे सफर में जाते हैं या कोई लंबा काम करके आते हैं तो पैरों में थोड़ी सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो सिर्फ वो कॉस्मेटिक नहीं है, उसके पीछे कुछ पैथोलॉजी भी प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद जब थोड़े दिन और निकलते हैं, बिकॉज ये तुरंत नहीं होता है, वेरिकोज वेन डेवलप नहीं होते, इट टेक्स लॉन्ग टाइम,
0: एक दो साल का समय लग जाता है।
1: हाँ जी, उससे भी ज्यादा भी लग सकता है। तो उससे पहले पैर में सूजन आना शुरू होगा, उसके बाद धीरे धीरे आपको वेनस प्रोमिनेंस देखेंगे, जो ब्लू ब्लू वेन्स दिखना शुरू हो जाएंगे। फिर आप अगर उसको भी इग्नोर करते हैं तो और प्रोमिनेंट होगा और वो टॉर्चुअस से हो जाते हैं, मतलब टेढ़े मेढ़े से दिखने लगेंगे, स्ट्रेट वेन्स नहीं होके उसका कैपेसिटी बढ़ने लगता है, जिसमें वेनस पुलिंग होने से क्या होता है वो लंबा और मोटा हो जाता है, तो वो टॉर्चुअस हो जाता है,
0: जैसे आपने कहा वो स्नेक वाला वैसा दिखने
1: टाइप के दिखेंगे आपको। तो ये सेकंड उसके बाद का स्टेज है। उसके बाद भी अगर हम छोड़ देते हैं, नहीं अटेंशन देते हैं, तो फिर आप देखेंगे ब्लैकिश पिगमेंटेशन होता है, हीमोसिड्रोसिस बोलते हैं, मतलब ब्लड के कतरे, जो खून की कतरे हैं वो बाहर, रेड ब्लड सेल्स बाहर आते हैं और उसमें से जो आयरन निकलता है वो स्किन को ब्लैकिश पिगमेंटेशन देने लगता है। जी हाँ, तो वो एक उसके बाद का स्टेज है जिसपे भी आप अगर ध्यान नहीं देंगे तो फिर कुछ उसमें फैट डिपोजिट होने लगता है। और फिर उसके बाद इचिंग शुरू हो जाएगा। तो कई बार आप देखते होंगे लोग बोलेंगे कि शाम को घर आता हूँ पैर में बहुत खुजली होता है, इचिंग सा रहता
0: है, दर्द बहुत होता है, खुजली बहुत होती है,
1: तो इचिंग सा होने लगेगा। इवनिंग होते होते पैरों में काफ में क्रैम्प्स होना और भारीपन लगना, तो ये सब उसके सिम्टम्स होते हैं। अगर इनको भी अभी इग्नोर करते हैं, मेडिकल एडवाइस नहीं लेते हैं, कुछ केयर नहीं कर पाते हैं, तो फिर अल्सर्स बनने लगते हैं, छोटे छोटे इचिंग के बाद छोटे छोटे घाव बनेंगे और वो ग्रेजुअली डीप हो जाते हैं और उनको वेनस अल्सर कहते हैं। ये फुल थिकनेस स्किन लॉस हो जाता है
0: वहाँ,
1: एंड दे आर वेरी डिफिकल्ट टू हील, किसी भी मेडिसिन से हील नहीं होता है। कुछ भी आप एंटीबायोटिक देते हैं, लोग कुछ भी करते हैं, उससे ठीक नहीं होगा जब तक कि हम उसके कॉज को खत्म नहीं करेंगे। लाइक जब तक वेरिकोज वेन को एबलेट नहीं करेंगे, खत्म नहीं, ट्रीट नहीं करेंगे, तब तक घाव बंद नहीं होगा।
0: बिल्कुल, और ये बहुत सीरियस सिचुएशन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है, आप बहुत देर तक खड़े रहते हैं, चाहे आप टीचर हों, चाहे आप सर्जन हों, चाहे आप गार्ड हैं, या फिर किसी भी प्रकार की आप जॉब कर रहे हैं और आप खड़े बहुत देर तक रहते हैं, 6 से 7 घंटे 8 घंटे, सो आपको अपने सिम्टम्स को समझना है। पैरों में होने वाली स्वेलिंग, साथ ही पैरों में होने वाली इचिंग जो होती है, आपकी टांगों में अगर इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा और नसें जो हैं वो अब विजिबली दिखाई दे रही हैं, थोड़ी मोटी हो गई हैं और आपको तकलीफ दे रही हैं, तो फिर आपको डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि ये प्रॉब्लम आगे जाकर वेरिकोज वेन्स में तब्दील हो सकती है। ये अभी शुरुआत है, इसलिए ये सिम्टम समझना ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे जाकर जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है, बड़े बड़े घाव हो सकते हैं और वो ठीक नहीं होते हैं, कोई दवाई उसको ठीक नहीं कर पाती है। इसलिए अभी अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम महसूस हो रहे हैं तो बिना देर करें डॉक्टर से ज़रूर मिलें। फिलहाल बहुत सारी बातें और भी ट्रीटमेंट के बारे में जानेंगे और अपना ख्याल कैसे रख सकते हैं आप इसके बारे में जानेंगे इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद।

0: फील गुड फील लाइव रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम है ऑल इज वेल सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और मैं हूं दीक्षा आपके साथ। बातें चल रही हैं वेरिकोज वेन से जुड़ी हुई। वेरिकोज वेन एक ऐसी समस्या जो आपकी टांगों में होने वाली प्रॉब्लम है, नसों का बहुत ज्यादा विजिबल होना, बहुत ज्यादा स्वेलिंग की वजह से आपको पेन होना, इचिंग होना, ये सारी प्रॉब्लम्स शुरुआती दौर में सिम्टम्स के तौर पर आती हैं, लेकिन धीरे धीरे धीरे धीरे ये घाव यानी चोट सी भी बन जाती है जिसका ट्रीटमेंट होना बहुत मुश्किल है। पर अगर ये शुरुआती दौर के सिम्टम्स आपने समझ लिए तो फिर क्या इलाज होगा और डॉक्टर कैसे आपकी वेरिकोज वेन्स की समस्या को सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं डॉक्टर प्रेम कुमार से, जो कि जाने माने सर्जन है, एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट है और हमारे आज के एक्सपर्ट भी। सो डॉक्टर साहब, क्या ट्रीटमेंट रहेगा? अब एक व्यक्ति है, कोई टीचर है सपोज, और 36-37 साल की उम्र है, उनको ये दिक्कत जो है वो शुरू हो गई है, उनके पैरों में स्वेलिंग हो गई है, या फिर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उनके पैरों में वेरिकोज वेन्स की हल्की हल्की समस्या आने लगी है, जैसे आपने कहा कि वेट की वजह से हो जाती है प्रॉब्लम, सो अब उनको क्या ट्रीटमेंट आप देंगे?
1: बहुत अच्छी बात। पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका मैग्नीट्यूड ऑफ प्रॉब्लम, जो कितना समस्या कितनी गहरी है, कितना कहां से शुरू है, ये पता करना चाहिए हम लोगों को। उसके लिए सबसे पहले तो क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है, जो हम देख के आंख से और डिफरेंट मेथड से ये पता करें कि ये प्रॉब्लम कहां से शुरू है
0: जी।
1: और उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं जिससे हम लोग उसको कन्फर्म करते हैं
0: जी।
1: तो नॉर्मली पैर में ना दो वेन सिस्टम है, एक तो डीप और सुपरफिशियल बताया। सुपरफिशियल में भी एक ग्रेट सेफेनस वेन है, लंबी वाली, जो जांग के पास से थाइक्स के से शुरू होके और फुट तक जाती है।
0: ओके।
1: तो उसको ग्रेट सेफेनस वेन बोलते हैं। और एक नी के पीछे से
0: काफ मसल्स,
1: फुट, काफ मसल्स के थ्रू फुट में जाती है
0: जी।
1: उसको शॉर्ट सेफेनस वेन बोलते हैं। तो ये दो सिस्टम ऑफ वेन्स हैं जिसमें वेरिकोज वेन्स होते हैं नॉर्मली। तो उनको हम लोग पहले इवेलुएट करते हैं, क्लिनिकल मेथड से देखते हैं कि किस सिस्टम का प्रॉब्लम है, और फिर एक अल्ट्रासाउंड टाइप का चीज होता है जो डॉपलर बोलते हैं।
0: वेनस डॉपलर वगैरह,
1: कलर डॉपलर
0: जी।
1: तो वेन्स का भी करते हैं, आर्टरी का भी करते हैं। इसमें वेनस डॉपलर करके हम लोग ये पता करते हैं कि हमारा रियल वाल्व कौन सा खराब है, किस लेवल पे खराब है, और फिर उसके नीचे डीप और सुपरफिशियल वेन्स के बीच में कई कनेक्शंस होते हैं, उसमें जो परफोरेटर है उसमें वाल्व होते हैं, तो वाल्व कहाँ पे खराब है। तो जहां जहां होता है उसको हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं स्किन पेंसिल से ड्यूरिंग प्रोसीजर डॉपलर के टाइम में, और फिर उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट को प्लान करते हैं
0: जी। जी जी तो यानी पहले आप उस चीज को समझेंगे कि कहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब डॉक्टर साहब, अगर ट्रीटमेंट की बात मैं करूँ तो ट्रीटमेंट क्या खाली ओरल मेडिकेशन से ठीक हो जाता है, या फिर कोई सर्जरी या किसी तरीके की और कुछ आप चीजें करते हैं?
1: कई स्टेज है ट्रीटमेंट के। अगर बहुत अर्ली है तो मेडिसिन भी है, लेकिन बहुत इफेक्टिव नहीं होते हैं और उनको बड़े लॉन्ग टर्म लेना पड़ता है विद मॉडिफिकेशन ऑफ लाइफस्टाइल, जैसे वेट लॉस करो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, क्योंकि वॉक करने से जो हमारे पेरिफेरल हार्ट, जो सोलियस मसल के अंदर जो पंप है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और फिर वेनस फ्लो को बढ़ा देते हैं अपवर्ड ऊपर की तरफ, तो स्ट्रेसिस कम हो जाता है। तो एक तो ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। उसके बाद एक स्टॉकिंग सुना होगा आपने, कंप्रेशन स्टॉकिंग होते हैं, तो उसमें कई टाइप के हैं, ग्रेड 1, 2, 3 करके। तो उस स्टॉकिंग को आप पहन सकते हैं ड्यूरिंग डे टाइम, जब आप वॉक करते हैं या लॉन्ग खड़े रहते हैं, तो उस समय आप पहन के उसको यूज करके अपने वेनस रिटर्न को बढ़ा सकते हैं, और अर्ली स्टेज में इससे फायदा भी हो सकता है।
0: यानी चीजें बेटर हो सकती हैं सिर्फ ओरल मेडिकेशन से,
1: ओरल मेडिकेशन एंड कंप्रेशन स्टॉकिंग, जिसका लॉन्ग स्टैंडिंग जॉब है, जो बड़े सारे दिन खड़े रहते हैं, तो उनको अगर पैर में सूजन आना शुरू हो गया तो कंप्रेशन स्टॉकिंग पहनना शुरू करना चाहिए।
0: जी जी डॉक्टर साहब, सर्जरी जो होती है वो किस तरीके से होती है? लेजर होती है या जैसे आप करते हैं नॉर्मल सर्जरीज वैसे होती है, और कितने टाइम में रिकवरी हो जाती है इसमें?
1: शुरू में जब हम लोग पढ़े कॉलेज में थे तो उस समय तो ओपन सर्जरी ज्यादा होता था, स्ट्रिपिंग करते थे वेन के अंदर, एक तार डाल के उसको खींच के निकाल देते थे। थोड़ा सा म्यूटिलेटिंग था, कुछ साइड इफेक्ट्स भी उसके होते थे, नर्व इंजरी वगैरह हो जाता था। धीरे धीरे वो ऑब्सोलीट सा हो गया है, और आज के दिन में जैसे एडवांसमेंट हुआ सर्जरी में, बहुत सा चीज आ गए, तो लेजर के आने से एकदम से रिवोल्यूशनाइज हो गया। पिछले 10-15 साल से लेजर वेरिकोज वेन हम लोग कर रहे हैं जी, और उसमें बहुत कम तकलीफ होता है, बस एक नीडल प्रिक करते हैं वेन में और अल्ट्रासाउंड में देखते हुए, और फिर एक सीथ डाल के उसके थ्रू लेजर फाइबर जाता है, और ट्यूमिसेंस देते हैं, मतलब ठंडा पानी या उसमें विथ कुछ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट डाल के, सो दैट की पोस्ट ऑपरेटिव पेन ना हो. तो उसमें फिर लेजर फाइबर से मतलब 60 जूल पर सेंटीमीटर एनर्जी डिलीवर करते हैं, सो दैट कि वो बर्न हो जाए, कोलैप्स हो जाए वेन्स. फिर वेन धीरे धीरे नीचे आते जाते हैं, वो बंद होता जाता है.
0: जी, और इसमें रिकवरी कितने समय में हो जाती है? क्या व्यक्ति दोबारा वही जो जॉब है अपनी कर सकता है? सपोज कोई टीचर है तो वो टीचिंग प्रोफेशन वापस अपना शुरू कर सकती है?
1: कब से रिज्यूम करे अपना जी? तो मैं आपको ये बता था कि पहले तो एक लेजर था, फिर उसके बाद थोड़ा आरएफए आया, रेडियो फ्रिक्वेंसी एबलेशन बोलते हैं वो. फिर कुछ हाल के दिनों में कुछ ग्लू भी आए हैं, तो उससे वो थोड़ा एक्सपेंसिव है ज्यादा, बट और बिकम पेन और फास्टर रिकवरी जो आप बोलिए कब ज्वाइन कर सकता. तो नॉर्मली ये सारे जो भी कोई प्रोसीजर करते हैं हम लोग 24 आवर में सारे पेशेंट घर चले जाते हैं. मतलब कैन डू इन डे केयर आल्सो, बट एहतियातन उनको रख लेना, थोड़ा रेस्ट देना अच्छा रहता है. तो 24 घंटे में तो 99% लोग घर चले जाते हैं.
0: अच्छा, और उसके बाद 2-3 हफ्ते में काम शुरू कर सकते हैं.
1: मतलब 1 वीक के बाद भी अगर शॉर्ट स्टैंडिंग का काम है तो जा सकते हैं, लेकिन स्टॉकिंग पहनना बड़ा जरूरी रहता है. 1.5-2 महीने तक स्टॉकिंग दिन में पहनना चाहिए, रात को सोते वक्त में उतार
0: देना चाहिए. डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या वेरिकोज वेन्स की समस्या ये ट्रीटमेंट सारे होने के बाद दोबारा भी आ सकती है?
1: बड़ा इम्पोर्टेंट है और सब लोग ये पूछते हैं, जानना भी चाहिए कि रिकरेंस के थोड़े बहुत चांसेस रहते हैं. मतलब 5-10% लोगों को 5 years डाउन द लाइन हो सकता है दोबारा, क्योंकि बॉडी में एक बड़ा मतलब फैंटास्टिक फीचर बोले कि हमारा बॉडी खुद को रिकवर करता है, रिपेयर करते रहता है. तो जिस वेन को हम लोग बर्न कर देते हैं वो धीरे धीरे देखेंगे रिकैनलाइज हो जाते हैं.
0: अच्छा,
1: जैसे कई बार आपने सुना होगा पैर के नसों में ब्लड जमा हो गया, थ्रोम्बस बन गया, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है. तो 4-6 महीने में आप देखेंगे वो रिकैनलाइज हो जाते हैं, फिर से उसमें नए वेन्स पेटेंट हो जाते हैं, बन जाते हैं. तो वैसे ही बॉडी अपने को रिपेयर करता है और वो वेन फिर से पैदा हो जाते हैं. और लेकिन बहुत कम नंबर ऑफ पेशेंट्स में, 5-10% बहुत ज्यादा नंबर नहीं है, तो ऐसे लोगों को होने की संभावना है 5 years के बाद.
0: सो वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट आपने समझ लिया है, सर्जरी से या फिर ओरल मेडिकेशन से, लाइफस्टाइल चेंज से या फिर ग्लू से. जी हाँ, ग्लू से भी वेरिकोज वेन्स को ठीक किया जा सकता है, ये डॉक्टर साहब ने हमें बता दिया है. लेकिन आगे हम जानेंगे कि वेरिकोज वेन्स की समस्या आए ही ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, और अगर किसी को ऑलरेडी वेरिकोज वेन्स का ट्रीटमेंट हो चुका है, रीअकरेंस ना हो, तो भी हमें क्या करना चाहिए, जानेंगे ये सारी चीजें इस छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद.

0: वेलकम बैक रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम में हूं दीक्षा आपके साथ। प्रोग्राम का नाम है ऑल इज वेल, सपोर्टेड बाय एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद। बातें चल रही हैं आज वेरिकोज वेन से जुड़ी हुई, क्योंकि एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में अक्सर आपने बहुत कम लोगों को बात करते हुए देखा होगा, पर बात करना जरूरी है। अगर आपकी स्टैंडिंग जॉब है, आप काफी घंटों तक नॉनस्टॉप खड़े रहते हैं, तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर आपके पैरों में बहुत स्वेलिंग आ रही है और नसें जो हैं आपकी वो विजिबल हो रही हैं, थोड़ी मोटी दिख रही हैं, आपके पैरों में बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है या आप क्रैम्प्स भी उठने लगे हैं, तो भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये वेरिकोज वेन्स के सिम्टम्स हो सकते हैं। वेरिकोज वेन्स खतरनाक क्यों है ये भी डॉक्टर साहब ने बताया है हमें कि भाई ये हार्ट पर भी असर डालती हैं। अगर नसों में कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम रहेगी तो सीधा दिल पर असर पड़ेगा, और दिल पर असर पड़ेगा तो आपकी पूरी हेल्थ खराब हो सकती है। इसलिए वेरिकोज वेन्स को ठीक करना बहुत ज़रूरी है। ट्रीटमेंट के बारे में हम बात कर चुके हैं, ग्लू हो या फिर सर्जरी हो या फिर ओरल मेडिकेशन, लेकिन अब ये जानना जरूरी है कि वेरिकोज वेन्स की नौबत आए ही ना, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। सो डॉक्टर प्रेम कुमार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, जाने माने सर्जन हैं, सीनियर कंसल्टेंट हैं एसएसबी हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में। सो डॉक्टर साहब, अब जानना चाहूंगी आपसे कि कैसे कोई व्यक्ति इस सिचुएशन में पहुंचे ही ना, उसके लिए अपना ख्याल क्या रखें, क्या डाइट ठीक रखें, एक्सरसाइज रेगुलर करें, क्योंकि जनरली हमने यही देखा है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से बहुत सारी प्रॉब्लम्स को पहले ही रोक दिया जाता है।
1: मैडम, इसमें ना दो तरह के दो पार्ट हैं। एक तो ये है कि जो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल में और कुछ चीजें जैसे हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे एजेनेसिस ऑफ वाल्व है या फैमिलियल ट्रेट्स हैं, तो ये इतनी ग्रुप है किसी किसी देश में किसी किसी रीजन में ज्यादा होता है, तो ये सब अपने कंट्रोल में तो है नहीं, तो इनको लेकिन इनका रोल बहुत कम है
0: जी,
1: बहुत रेयर है ये सब, तो उनको तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। बट जो कंट्रोल करने वाले पार्ट हैं उस पर हम लोगों को थोड़ा कॉन्शस रहना चाहिए और ध्यान देना चाहिए। जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है वेट गेन को रोकना, तो उसमें आपको डाइटरी मोडिफिकेशंस और फिजिकली एक्टिव रहना, ताकि आपके जो पेरिफेरल हार्ट हैं, सोलियस मसल्स का मूवमेंट हो, काफ का मूवमेंट ज़्यादा रहे, तो उससे क्या होगा कि ये वेन डेवलप नहीं होंगे। या जैसे आपका आप बात कर रहे हैं कि लॉन्ग स्टैंडिंग वाले जॉब हैं, तो वो भी बीच में थोड़ा ब्रेक लें और पैर को मजबूत रखें विद गुड एक्सरसाइज, वॉक करके बीच बीच में आप काफ को मूव करें, फुट को मूव करते रहें, सो दैट कि आपका काफ रिलैक्स रहे मसल्स को। जैसे आप देखते होंगे लॉन्ग फ्लाइट में हम लोग जाते हैं तो वो उसमें लिखा रहता है प्लेन में भी कि पंजे को चलाते रहें, बीच बीच में पैर को उठाएं ताकि आपका ब्लड का फ्लो बना रहे। तो ये एक्सरसाइज, ये मॉडिफिकेशंस आप अपने डे टू डे लाइफस्टाइल में भी डाल सकते हैं, जो आपके वेरिकोज वेन को प्रिवेंट कर सकता है।
0: ओके जी जी, यानी अपना जो है फिजिकली फिट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने वजन को कंट्रोल करें, अपनी डाइट को लिमिटेड ठीक ठाक तरीके से मैनेज करें और फिजिकल एक्टिविटीज करते रहें, तो आपकी ये प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो सकती है अगर हो गई है, और अगर नहीं हुई है तो आप तक पहुंचेगी भी नहीं। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने बहुत सारी बातें हमें बताई, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: तो वेरिकोज वेन्स के बारे में हम जान चुके हैं, बस हमारा तात्पर्य या फिर हमारी कोशिश ये रहती है कि आप अपना ख्याल रखें और फिट रहें, फिजिकली भी, मेंटली भी और इमोशनली भी, क्योंकि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप सब कुछ कमा सकते हैं, बस सेहत नहीं कमा सकते जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे। फिलहाल प्रोग्राम में आज बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर से होगी मुलाकात एक नए हेल्थ एक्सपर्ट के साथ एक नए टॉपिक से जुड़ी हुई बातचीत पर। तब तक मुझे यानी दीक्षा को दीजिए इजाजत। Feel good, feel live. This is Deeksha signing off.

0: Dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum tana dere na dim tana na dir tanum dir tana
1: नमस्कार, मैं बोल रहा हूँ सिंगराज धाना। टोक्यो 2020 पैरालंपिक सिल्वर ब्राउन्ज मेडलिस्ट इन शूटिंग, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 फील गुड फील लाइफ।

हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर एक लंबे समय से मैं आप

0: को लेकर जाती हूँ और आप लोगों को ह्यूमैनिटी के बारे में याद दिलाती हूँ। उन सभी अनसंग हीरोज से मिलवाती हूँ जो आज भी मानवता के ढेर सारे काम कर रहे हैं, और उन सभी लोगों की मानवता की इन गाथाओं को और इन किस्सों को आप तक पहुँचाती हूँ। दरअसल इस प्रोग्राम का जो ध्येय है या कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना सा है कि हम सब इंसान हैं और हम अपनी इंसानियत या ह्यूमैनिटी को ना भूलें, और इसीलिए मानवता की राह पर हर रोज हम चल सकते हैं कोई एक नेक कार्य के साथ। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस नेक कार्य को डेली कर रहे हैं और उन्होंने इसे अपना पैशन बना लिया है। आज की इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं वो एक एडवोकेट हैं, एडवोकेट रितु कपूर शर्मा, एक फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीत फाउंडेशन की। रीत फाउंडेशन की शुरुआत कैसे हुई और रीत फाउंडेशन दरअसल क्या कर रही है, महिलाओं के सशक्तिकरण से लेके उनके अधिकारों तक की सारी कहानी आज हमें बताने वाली हैं एडवोकेट रितु कपूर, और उसके लिए करेंगे इनका स्वागत रेडियो मानव रश 107.8 FM के स्टूडियो में।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भावना जी, पहले तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए आज, और ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। जैसे कि आपने बताया कि हमें कुछ ना कुछ मानवता की तरफ कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, और ये बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है आपने, जिसकी वजह से लोगों में भी एक जागरूकता आएगी और उन्हें लगेगा कि हाँ, हमें भी कुछ ना कुछ सोसाइटी के लिए करते रहना चाहिए।
0: देखिए, मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, मानवता करने के लिए आपको कोई भी सोचे समझे प्लान की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन आपको लगे कि हाँ, आपके पास समय है, अपने आसपास देखिए, और अगर आपको लगता है कोई भी इंसान उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है और क्या आप उसकी पूर्ति कर सकते हैं, और अगर आप उसकी पूर्ति नहीं कर सकते हैं तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। सो इसीलिए यह खास कार्यक्रम, क्योंकि मैं आपको ऐसे लोगों से रूबरू करवाती हूँ जो लोगों के लिए सही मदद पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। रितु जी, रीत फाउंडेशन, आप पेशे से एक एडवोकेट हैं, और दरअसल देखा जाए तो एडवोकेट्स इतने बिजी होते हैं कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और अपने काम से उन्हें शायद किसी के भले करने का समय नहीं होता, बट आप एक बहुत ही खूबसूरत सी फाउंडेशन चलाती हैं। सो इसके पीछे की कहानी, इसे आपने स्टार्ट कैसे किया और आज रीत फाउंडेशन कहाँ है?
1: ज़रूर, मैं रीत फाउंडेशन के बारे में ये आपसे शेयर करना चाहूँगी कि किस तरह से हमने इसकी शुरुआत की। जैसे कि सब अपने अपने लिसनर्स को आपने बताया ही कि पेशे से मैं वकालत करती हूँ, एडवोकेट हूँ, और उसमें हम जब मैं शुरुआती अपने काम में लोगों से मिलने लगी, जो महिलाएं बहुत ही वेल एजुकेटेड, यहाँ तक कि जब मैं आपको अगर बताऊँ तो मैंने केसेस देखे हैं IFS ऑफिसर्स जो बहुत अच्छे इंटरनेशनली भी अपॉइंटेड रही हैं अपने उस ड्यूरिंग देयर टेन्योर, और IB स्कूल्स की सीनियर टीचर्स, इंटरनेशनल स्कूल की सीनियर टीचर्स, एंड MNCs में डायरेक्टर लेवल, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लेवल पे काम करने वाली जो महिलाएं हैं, जब मैं उन जैसी महिलाओं से मिली इस दौरान, इस पेशे के दौरान, और जब मुझे लगा, मुझे समझ में आया कि इतनी वेल एजुकेटेड लेडीज़ जो है और इतने अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं फाइनेंशियली, बट स्टिल उनके पास लीगल राइट्स की नॉलेज नहीं थी, इसलिए वो इतने सालों से ये घरेलू हिंसा सहती रही। और बहुत सारी ऐसी महिलाएं थी जिनके पास अगर घरेलू हिंसा नहीं तो बहुत अलग तरीके की इमोशनल और मेंटल हरासमेंट से वो गुजर रही थी, लेकिन क्योंकि उनके पास नॉलेज नहीं थी, उन्हें ये पता नहीं था उनके पास लीगल राइट्स कौन कौन से हैं, उनके कुछ एप्रीहेंशंस थी, उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस उठते थे। सबसे पहला तो जो हमारे समाज में एक ये चीज़ चली आ रही है कि लोग क्या कहेंगे, सबसे पहला। दूसरा एप्रीहेंशन उनका ये होता था कि मैं घर में रहकर अपने ही लोगों से कैसे झगड़ा कर सकती हूँ, कैसे केस डाल सकती हूँ। तीसरा, मैं फाइनेंशियली क्या करूँगी। जो लेडीज़ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, उनको ये लगता है कि अगर मैंने आवाज़ उठाई तो ये सारे जो फाइनेंशियली मुझे हेल्प मिल रही है, आर्थिक सहायता जो कही जाती है हिंदी में, कि मेरे जो पति या मेरे जो घर के लोग हैं, ससुराल के लोग हैं, ये मुझे घर से निकाल देंगे और मेरे पति ये सारी चीज़ें रोक देंगे, जो मेरे बच्चों की फ़ीस है, तो इन सब वजहों की वजह से वो अपने ना तो आवाज़ उठाती हैं और ना ही उन्हें लीगल राइट्स ये पता है। तो जब मुझे उन सब लेडीज से मेरा मिलना हुआ और मैंने उन्हें सब राइट्स उनके बताए, तो बहुत सारी महिलाओं की हमेशा ही यही एक उन्होंने हम मुझसे शेयर किया कि हमें पता ही नहीं था कि हम घर में रहते हुए भी राइट टू रेजिडेंस क्लेम कर सकते हैं, हम मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं विदाउट टेकिंग डिवोर्स। क्योंकि क्या हो रहा है भावना जी, हमारे समाज में जैसे पिक्चरों का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है लोगों के ऊपर, तो उसके वजह से लोगों को सिर्फ एक टर्मिनोलॉजी पता है, डिवोर्स, तलाक। अगर मेरे पास कोई भी महिला आती थी तो वो यही बोलते थे, मैम मुझे अपने हस्बैंड से डिवोर्स चाहिए, मैम बहुत झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रही है, और अदरवाइज नहीं तो ये हरासमेंट बहुत सालों से चल रहा है, तो मुझे आपसे मिलना है और मुझे डिवोर्स चाहिए। तो मैं हमेशा, आज की डेट में भी, मैं हमेशा हर महिला को ये बोलती हूँ कि ठीक है, क्योंकि आपको अभी तक एक ही टर्म पता है, आपको बाकी लीगल राइट्स अपने पता नहीं है, तो आप एक बार मेरे पास आए, कंसल्टेशन करें, और उसके दौरान मैं आपको आपके सारे लीगल राइट्स बताऊंगी। मैं बताऊंगी कि आप इस शादी में रहकर भी सेफ रह सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको डिवोर्स ही डालना है, तलाक ही डालना है। तो जब उन लेडीज़ का रिस्पॉन्स मुझे मिला और ये लगा कि हाँ ये बहुत एक मददगार एक चीज़ हो रही है लोगों के लिए, और उनको नहीं पता उनके लीगल राइट्स, इसलिए वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं, तो उस समय मैंने 2021 में ये श्रीत फाउंडेशन के बारे में सोचा और इससे हमने स्टार्ट किया। और रीत फाउंडेशन में हमने बहुत सारी महिलाओं को उनके कानूनी अधिकार बताए, जिससे वो जितने भी हम मदद कर पाए और जितने भी हम उनको सशक्त कर पाए हैं। आज की डेट में 15,000 से 20,000 हमने गुरुग्राम में महिलाओं के साथ काम किया है और उन्हें उनके कानूनी अधिकार बताए हैं। इसमें जब मैंने ये रीत फाउंडेशन स्टार्ट की तो एक हमने प्रोजेक्ट शुरू किया था, शक्ति प्रोजेक्ट
0: जी।
1: शक्ति प्रोजेक्ट का लॉन्च किया गया था, हमारे IPS ऑफिसर हैं मैम राजश्री मैम, ऑनरेबल राजश्री मैम जी ने हमारा जब गुरुग्राम में ही ये लॉन्च हुआ, और उस दौरान भी हमने ये सेशंस किए तो महिलाओं को उनके सारे कानूनी अधिकार बताए गए, और ऐसे ही हमने 5 से 10 सेशंस लगातार इसमें किए। और उसके बाद हमने लॉन्च किया दुर्गा प्रोजेक्ट। दुर्गा प्रोजेक्ट में भी हमने ऐसे सेशंस किए जहाँ जहाँ बहुत सारे, मैं DLSA के साथ भी जुड़ी हुई हूँ, DLSA होता है डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहाँ से भी हमें बोला जाता है, इधर कहीं गांव में कहीं कहीं हमें कहा जाता है कि मैम वहाँ पर भी एक सेशन ले लीजिए, एक महिलाओं को जाकर एक जागरूकता का एक वो चला सेशन आप ले आए तो अच्छा है, महिलाओं को थोड़ा पता चलेगा। तो हमें रीत फाउंडेशन के अंतर्गत हमने जितने हम कवर कर सकते थे हमने वो कवर किया है। और अभी रिसेंटली जो हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं गुरुग्राम के, श्री विकास अरोड़ा जी, उन्होंने गुरुग्राम पुलिस के साथ, हमने रीत फाउंडेशन के साथ मिलकर एक डिजिटल सहेली, ये गुरुग्राम पुलिस का ही इनिशिएटिव है, उन्होंने ही किया, रीत फाउंडेशन ने उनके साथ उनकी मदद की इसमें लॉन्च में। और ये डिजिटल सहेली बहुत ही अच्छा है, जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊंगी
0: जी,
1: और बताना चाहूंगी क्योंकि बहुत ही मददगार होगा ये सब महिलाओं के लिए, जितने भी लिसनर्स हैं आपके। और उसके बाद एक और हमारा प्रोग्राम हम इसी में ही शुरू कर रहे हैं रीत फाउंडेशन में, सामूहिक कन्यादान। तो उसमें जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स हैं जिनके साथ उनकी पेरेंट्स को मुश्किल आ रही है उनकी शादी करने के लिए, तो वहाँ पर भी हमने ये एक अपना एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो इस तरह से हमारी कोशिश पूरी है कि हम रीत फाउंडेशन के थ्रू और महिलाओं को, जितनी भी महिलाओं को हम मदद कर सकते हैं कानूनी तौर पे और वैसे भी, तो हम अपनी तरफ से एक कोशिश है।
0: देखिए हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमेशा कहता है टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, बट मैं रीत फाउंडेशन के लिए कह सकती हूँ महिलाओं के लिए, महिलाओं के द्वारा और शायद महिलाओं से। ये एक बहुत खूबसूरत सी फाउंडेशन है जो महिलाओं के लिए बहुत खूबसूरत काम कर रही है। अब ये किस तरीके के इनिशिएटिव्स हैं, आप इनका लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसके बारे में और कैसे जान सकते हैं, बस एक प्यारे से गाने का इंतजार, छोटा सा गाना सुना रही हूँ, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ। Feel good, feel light.

0: बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। और ये जो कदम है आज बढ़ा रहे हैं हम रीथ फाउंडेशन के साथ, और मानवता की जो कदम है ना ये महिलाओं के लिए उठाए जा रहे हैं, क्योंकि रीथ फाउंडेशन स्पेसिफिकली महिलाओं के लिए बहुत सारे काम कर रही है। रितु जी, आपने कहा कि हम महिलाओं के लिए ढेर सारे काम करते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट्स, चाहे दुर्गा प्रोजेक्ट है या फिर डिजिटल सहेली वाला प्रोजेक्ट है, या फिर कहना चाहिए कि उनके डोमेस्टिक वायलेंस के लिए वो किस तरीके से अपने अधिकारों के, अपने राइट्स को वो प्रैक्टिस कर सकती हैं, ये आप सिखाते हैं। सो किस तरीके से ये इनिशिएटिव्स लेते हैं आप?
1: इसकी शुरुआत, जो आपका ये क्वेश्चन है, इसके आंसर से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक केस के बारे में बताना चाहूंगी। एज अ एडवोकेट मैंने 1 महीने की शादी से लेकर मैंने 36 साल की शादी तक के केसेस हैंडल किए हैं
0: जी।
1: तो जहाँ 1 महीने की शादी थी, उस जो बिटियाँ थी जब मेरे से मिली और पेरेंट्स के साथ आई वो, तो उनके पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा, मैं आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड, मैं बहुत खुश हुई उनसे मिलकर कि 1 महीने के बाद कोई पेरेंट्स अपनी बिटिया को ये स्टैंड ले रहे हैं, उनके साथ खड़े हुए हैं कि हम, क्योंकि ये इस दौर से, इस डोमेस्टिक वायलेंस से, और बहुत सारी हरासमेंट्स थी उनकी उसमें मैरिटल स्टेटस में, तो जब उन्होंने उनका साथ दिया पेरेंट्स ने, तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात थी कि नहीं तो हमारे समाज में ये होता है कि नहीं अभी तो ये शुरुआत है, अरे ऐसे तो हर लड़की के साथ होता है। बहुत सारी मेरी ही क्लाइंट्स आकर हमें ये बोलती हैं कि मैम मेरी तो मम्मी ही मेरा साथ नहीं देते हैं, या मेरी बड़ी बहन मेरा साथ नहीं देती है, मेरी मम्मी मुझे बोलती हैं कि अरे ये तो हर महिला के साथ होता है, हर औरत को इससे गुजरना पड़ता है, मुझे भी तुम्हारे पापा ने एक दो बार हाथ उठाया है तो क्या हो गया, और बड़ी बहन के ऊपर भी हाथ उठाया है। सब लड़कियों का ऐसे ही घर बनता है, देखता कुछ सालों के बाद सारी की सारी बागडोर तुम्हारे हाथ में होगी, ऐसा बोलकर इन सारी महिलाओं को, उसके दौरान उनके बच्चे हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाती हैं, और वो ज़िंदगी इसी तरह से गुजरती जाती है। ऐसे ही जो मैं अपने केस के बारे में बता रही हूँ, जो 1 महीने की शादी के बाद जो लड़की आ गई वापस, और उसने ये कहा कि नहीं मैं नहीं जा सकती बिकॉज ऑफ फ्यू रीजंस, सर्टेन रीजंस, और पेरेंट्स ने जब साथ दिया, तो जो उनके परिवार के लोग थे, और जैसे कि मामा, चाचा, ताया, बहुत सारे और रिश्तेदार, वो खड़े हो जाते हैं ये कहकर कि आप ये बहुत गलत एग्जाम्पल सेट कर रहे हो, ये आज आपकी लड़की वापस आ गई है और आप ये कर रहे हो, हमारी भी बेटियां वापस आ जाएंगी, आप इसको वापस भेजो। तो बहुत ही मेरे लिए एक प्राउड की बात थी कि मदर ने आकर ये मुझे बताया कि मैम जब मेरे खुद के सगे भाइयों ने मुझे ऐसा कहा, जो कि मामा थे लड़की के, कि तुम इनको वापस भेजो, हमें नहीं पता, तो मैंने उन्हें बोला कि आपने रिश्ता मुझसे तोड़ना है तो तोड़ सकते हो, आप मुझसे बात करनी बंद करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं अपनी बेटी को जीते जी वहाँ मरने के लिए नहीं भेजूँगी।
0: एग्जैक्टली,
1: मैं नहीं भेजूँगी, मैं इसके साथ खड़ी हूँ, आप लोगों को जो करना होगा करना। तो मेरे लिए एक बहुत, मैं हमेशा उस फैमिली को बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया सोसाइटी में ये, और आज वो मेरी, वही मेरी क्लाइंट जो है वो सेकेंड टाइम शी इज मैरिड एंड मैरिड टू अ नॉन मैरिड गाय। हाँ, ही वॉज अनमैरिड एट दैट टाइम व्हेन ही गॉट मैरिड, तो इसकी सेकेंड मैरिज थी और उसकी फर्स्ट मैरिज थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। और yes. मुझे बहुत अच्छा लगा ये भी सुनकर कि चलो सोसाइटी थोड़ी चेंज हो रही है, एक्सेप्टेंस आ रही है सोसाइटी में। तो यही इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि हमने जब ये सारे एग्जाम्पल्स, कुछ अच्छे कुछ बुरे, कुछ हम देखते थे बहुत अलग अलग तरीके के, कि कुछ में बहुत हिम्मत है और कुछ बिल्कुल ही हिम्मत नहीं कर रहे हैं, कुछ माँ बाप साथ छोड़ देते थे और उनकी बेटियों को बोलते थे कि नहीं अगर तुमने ये स्टेप उठाया या तुम एडवोकेट के पास गई तो हम तुमसे बात करनी छोड़ देंगे, वापस जाओ। और कई लड़कियां जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं थी, तो उनको ये था कि अगर पेरेंट्स आएंगे वो केस के लिए फीस देंगे तभी मैं फीस दे पाऊंगी और मैं केस कर पाऊंगी। तो वहाँ पर भी हमारी रीथ फाउंडेशन ने उनको बहुत साथ दिया। एक महिला थी जिनकी छोटी सी बिटिया बहुत ही छोटी फीडिंग मदर थी वो, और बहुत ही छोटी 6-7 महीने की बेटी को फादर जबरदस्ती छीन के ले गया था। वो फाइनेंशियली भी बहुत इंडिपेंडेंट नहीं थी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से थे वो कपल, और उन्होंने मेरे पास आए भेजा किसी की रेफरेंस से आए कि मैम ऐसे ऐसे इनके साथ हो गया है, प्लीज़ इनकी बिटिया को वापस दिलवाया जाए। तो हमने बहुत जल्दी 2-3 दिन में ही डोमेस्टिक वायलेंस का केस डाला। मैं उसके बारे में आप बहुत डिटेल में बताऊंगी डोमेस्टिक वायलेंस के अभी इस एग्जांपल के बाद। और उनका जब हमने केस डाला तो हमने जैसे आपके सामने ये बात रखी कि छोटी सी बच्ची है और ये फीडिंग मदर हैं, और तो अगले ही दिन बिटिया को मतलब नोटिस, उनको जो दूसरी पार्टी थी नोटिस करवाया गया, बिटिया को बुलवाया गया और माँ को बिटिया हैंड ओवर की गई। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे जहाँ पर भी हम किसी की मदद कर पाए और जहाँ पर भी हमें लगा कि हाँ रीत फाउंडेशन के थ्रू हम ये वाली मदद किसी की कर सकते हैं, जहाँ वो फाइनेंशियली अपनी आर्थिक स्थिति में इस तरह से नहीं है कि वो किसी लॉयर को अफोर्ड कर सके, हालांकि गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत प्रावधान हैं, ऐसे पैनल एडवोकेट्स हैं हमारे DLSA में, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में, वो वहाँ भी जा सकते हैं, लेकिन हमने अपनी तरफ से कोशिश की हुई है रीत फाउंडेशन के थ्रू, जहां पर हम इस तरह की महिलाओं को हम मदद दे सके।
0: तो दोस्तों एक छोटा सा प्यारा सा म्यूजिकल ब्रेक, किस प्रकार के इनिशिएटिव्स और किस प्रकार की महिलाओं की मदद की जाती है रीत फाउंडेशन में, ये तो आपने जान लिया। अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं जो चलाए जाते हैं, और अगर कोई भी ऐसी महिला है जो आती है और रीत फाउंडेशन को वो अगर कोशिश करती है एड्रेस करने की कि भाई मुझे मेरी मदद कर दीजिए, तो ऐसे में ये फाउंडेशन सबसे पहले आगे आती है। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूँ आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हम चल रहे हैं एडवोकेट ऋतु कपूर शर्मा जी के साथ, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीत फाउंडेशन की। वैसे तो अगर मैं इनके नाम के आगे जितनी भी उपलब्धियां इनके पास है वो गिनाने लगूंगी तो ये जो एक घंटा है यूं ही खत्म हो जाएगा, बट मैं ये कहना चाहूंगी ये एक ऐसी महिला है जो सशक्तिकरण फैलाने की कोशिश कर रही है। ऋतु जी, अब बात करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण की, और उसमें एक बहुत अभिन्न हिस्सा निभाता है ये डोमेस्टिक वायलेंस। हर महिला कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इस डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है। जिन महिलाओं की शादी हो गई है उन्हें शायद ये पता भी नहीं है कि घर में जो डेली बेसिस पर उन्हें ताने दिए जा रहे हैं ये भी डोमेस्टिक वायलेंस का एक हिस्सा होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि शायद वी आर बॉर्न विद दिस। अच्छा, ताना वो इट्स ओके, ये तो हर महिला को शादी हुई है तो उसके साथ प्लस वन आपको दो चार ताने तो मिलेंगे ही। आज खाने में नमक अच्छा नहीं है, तुम अच्छी नहीं दिखती हो, इतने साल बाद तुम्हारी शक्ल ऐसी हो गई है, ये सब ताने हैं। और बिसाइड्स दैट, शायद महिलाओं के परिवार को लेकर जो बातें कही जाती हैं या फिर वहां से आने वाले लोगों के बारे में जो कहा जाता है, ये सब बड़ी कॉमन चीजें हैं घरों में, बट शायद पुरुषों को ये नहीं पता है कि अब महिलाएं भी सशक्त हो रही हैं और उन्हें भी अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। सो रीत फाउंडेशन इसमें कैसे मदद करती है?
1: सी, जो डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा, उसमें एक इतना अच्छा ये एक्ट आया था 2005 में, ये स्पेशल एक्ट आया था। और मैं हमेशा जितनी भी मेरी क्लाइंट्स मेरे सेशंस, मैं हमेशा इसमें ये उनको जागरूक करना चाहती हूँ। और मैं हर आपके सब लिसनर्स को भी ये बात कहूँगी कि ज़रूर इस एक्ट के बारे में पढ़ें, क्योंकि इतना कॉम्पैक्ट और इतना स्ट्रॉन्ग एक्ट है ये महिलाओं के लिए। क्योंकि और चीज़ें हैं, पहले से आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि पहले प्रावधान नहीं थे, प्रावधान पहले भी थे, मेंटेनेंस के हैं, इंटरिम रिलीफ के हैं, कस्टडी के हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस एक ऐसा कॉम्पैक्ट एक्ट है और ऐसा वो है जहां आपको सबसे पहला सेक्शन 17 जो है, सेक्शन 17 को मैं थोड़ी देर के बाद बताती हूँ क्योंकि वो रेजिडेंस से करता है, मैं 18 के बारे में बताती हूँ। सेक्शन 18 जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, वो बात करता है प्रोटेक्शन। अब प्रोटेक्शन बहुत अलग अलग तरीके की होती है। प्रोटेक्शन ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई गनमैन घूमना शुरू हो जाएगा, कि ज़्यादातर लोग सोचते हैं अच्छा एक प्रोटेक्शन कोर्ट से मिल रही है हमें, तो कोर्ट की प्रोटेक्शन तो यही होती है कि हाँ कोई पुलिसमैन हमारे साथ आ जाएगा और हमारे घर के बाहर बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। आजकल की डेट में बहुत अलग अलग तरीके की, जैसे वो मेरे वर्क प्लेस पे आ जाता है, मेरा हस्बैंड आकर वहाँ पे न्यूसेंस क्रिएट करता है, सो आई वांट योर ऑनर टू प्लीज रिस्ट्रेन हिम टू डू दैट, उसे रोका जाए इस चीज़ से। और मुझे ये प्रोटेक्शन चाहिए कि वो घर में बहुत ज़्यादा घरेलू हिंसा में मेरे साथ, यही जो आपने कहा तानेबाजी, गाली गलौज, इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं वो मेरे साथ ना की जाए। पहली ये प्रोटेक्शन, दूसरी मेरे वर्क प्लेस पे ना करें, तीसरा कि मेरे जो बहुत सारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स उनमें आकर बहुत ज़्यादा ये मैसेजेस कन्वे किया जा रहा है कि मैं इस तरह की महिला हूँ, ये देखो ये ऐसे करती है, या किसी वजह से हम आज की डेट में सेपरेट रह रहे हैं, मैं अपने मायके में आके रह रही हूँ क्योंकि घर में बहुत घरेलू हिंसा थी, तो इसको ये रिस्ट्रेन किया जाए, इसे रोका जाए कि ये मेरे सारे फ्रेंड सर्कल, मेरे वर्क प्लेस, मेरे रिलेटिव्स, इनमें ऐसी कोई भी मेरे बारे में बात ना करें जहाँ पर मेरी इंसल्ट हो, जहाँ पर मेरा कहीं पर भी कुछ भी गलत हो मेरे साथ। अब ये हो गई प्रोटेक्शन की बात। उसके बाद आते हैं कि जो महिलाओं को रेजिडेंस का बहुत डर होता है, जितनी भी महिलाएं हैं उनको सबसे ज़्यादा डर ये होता है कि मैम अगर हमने ये केस डाला तो मैं रहूँगी कहाँ, मुझे तो घर छोड़ना पड़ेगा। तो मैं उनको बोलती हूँ नहीं, आपको घर छोड़ना नहीं पड़ेगा। ऐसे कैसे मैम, मैं इसी घर में रह के, सास ससुर हैं मेरे और मेरे हस्बैंड हैं, यहाँ पर मेरे साथ ऐसे बदतमीजी हो रही है तो मैं कैसे इस घर में फिर रह सकती हूँ, और मैं उनके ही अंगेंस्ट केस भी डाल दूँ, ऐसे कैसे हो सकता है। तो तब मैं उन्हें बताती हूँ कि सेक्शन 17 पढ़ो। तो जितने भी आपके लिसनर्स भी हैं उनको मैं प्लीज ये बोलूंगी, सेक्शन 17 डील्स विद शेयर हाउसहोल्ड. शेयर हाउसहोल्ड होता है जिसमें आप शादी करके आए हैं, उसी घर में आप रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं, आपके बच्चे उसी घर में हुए हैं, आप अपने जिंदगी बिता चुके हैं, तो आपको कोई भी उस घर से बाहर नहीं निकाल सकता. तो हम ये एक सबसे पहला जाकर एक इंटरिम रिलीफ लेते हैं कोर्ट से कि नॉट टू डिस्पोजेस हर फ्रॉम दिस हाउस. शी हैज फुल राइट टू स्टे इन दिस हाउस. वहां पर उसको पूरा हक है इस घर में रहने का, बिकॉज ये इसी घर में शादी करके आई है, इसके पास और कोई घर नहीं है, पति यहीं रहते हैं, तो इनको क्यों निकाला जाएगा जस्ट बिकॉज क्योंकि इन्होंने आवाज उठा ली. तो शेयर हाउस होल्ड के साथ साथ एक और प्रावधान इसमें दिया है, कई बार कई महिलाओं के पास शेयर हाउस होल्ड नहीं है, वो रेंटेड अकोमोडेशन में रह रही हैं, हस्बैंड नौकरी कर रहे हैं, वाइफ नौकरी कर रही हैं, या वाइफ नहीं भी कर रही हैं, तो वो एक रेंट दे रहे हैं. और अब कोई झगड़ा हो गया है, अब झगड़ा हो गया है तो हस्बैंड जो है घर छोड़ के चले गए हैं, और अब वो टेंशन में है कि अब बच्चों की फीस का क्या होगा, रेंट का क्या होगा, मैं कैसे गुजारा करूंगी अपना
0: जी.
1: तो सेक्शन 19 जो है वो डील करता है राइट टू रेजिडेंस से. राइट टू रेजिडेंस है कि जहाँ पर ये कहा जाता है कि अगर आप ने कुछ छोड़ के चले भी गए हो तो भी रेंट आप ही दोगे. आप इस महिला को ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते कि आप इनको घर से बाहर निकालने की सलाह कर लो, कॉन्स्पिरेसी कर लो या कुछ ऐसा कर लो. तो सेक्शन 17 और 19 रेजिडेंस से डील करता है, 18 प्रोटेक्शन से डील करता है, 20 जो है वो मॉनिटरी रिलीफ से डील करता है, जैसे कि हर रोज दिन डे टू डे के जो एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो वाले बच्चे उनको बहुत टेंशन होती है कि मैम ये ग्रॉसरी का खर्चा नहीं देगा, मैम जैसे ही मैंने केस डाला तो ये बच्चों की फीस रोक देगा, पेट्रोल का खर्चा नहीं देगा, मैं कहाँ से ये इलेक्ट्रिसिटी का नहीं देगा, तो मैं कैसे ये चीज़ें चलाऊंगी. तो वो हम सारा का सारा कोर्ट से सेक्शन 20 में मॉनिटरी रिलीफ ये लिख सकते हैं कि ही इज़ अर्निंग दिस मच, और ये करता आ रहा है सारे ये खर्चे, पूरे परिवार का खर्चा ये चला रहे हैं. अगर महिला भी काम करती है तो डेफिनेटली कोर्ट वो भी कंसिडर करते हैं. ऐसा नहीं है कि महिला काम कर रही हैं और पुरुष जो है वो कमा कर उनको देना ही देना है, तो कोर्ट बहुत अच्छे से दोनों का इनकम एंड एसेट एफिडेविट मंगवा कर और जितना उन्हें समझ आता है कंसिडर करके, एंड देन दे डिसाइड द मॉनिटरी रिलीफ. सेक्शन 21 जो है वो कस्टडी से डील करता है
0: जी.
1: कोई भी माँ जो 5 साल से तो पहले उसे बच्चे से अलग किया ही नहीं जा सकता, और अगर वो अलग करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर भी ये प्रावधान दिया हुआ है कि वो कस्टडी अपनी वो क्लेम कर सकती हैं उसमें. 23 बहुत स्ट्रॉन्ग है
0: जी.
1: जो लास्ट में आप बताना चाहूँगी, सेक्शन 23 घरेलू हिंसा का, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का, हर महिला को ये बहुत ज़्यादा एक एप्रीहेंशन है केस डालने के टाइम पर कि मैम अगर मैंने ये केस डाला ये 2-3 साल चलेगा केस, ये लंबा चलता है, मैंने बहुत सुना हुआ है, मैं कोर्ट नहीं आना चाहती, लोग बोलते हैं कोर्ट में आप धक्के खाते रहोगे, ऐसा होता है कि इतनी देर देर तक ऑर्डर्स ही नहीं आते. तो मैं हमेशा उन्हें एक बात समझाती हूँ कि सेक्शन 23 जो है वो इंटरिम रिलीफ से डील करता है. तो इंटरिम रिलीफ होता है ड्यूरिंग द पेंडेंसी, जितनी भी देर केस चलेगा. तो हम जब जज साहब के पास जाते हैं या कोर्ट में हम केस डालते हैं तो हम यही बोलते हैं कि केस तो चलता रहेगा, तो उसके दौरान अभी इस टाइम पे जो मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है प्रोटेक्शन की, वो है नॉट टू डिस्पोजेस की, मुझे घर से निकाला ना जाए, वो है मेरी मॉनिटरी रिलीफ की
0: जी.
1: मेरे बच्चों की फीस ना रोकी जाए, ये बच्चों ये इलेक्ट्रिसिटी का बिल ना देना रोक दे, ये रेंट ना देना रोक दे, तो वो विद इन 6 months कोर्ट आपको रिलीफ दे देती है. विद इन 6 months होता है, नहीं तो मैक्सिमम ये 8-9 months तक स्ट्रेच होगा
0: जी.
1: डिपेंड करता है बहुत सारे और सर्कमस्टांसेस पे भी. तो ये एक बहुत बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग प्रावधान है जो मैं जब भी अपने रीथ फाउंडेशन के भी मैं सेशंस लेती हूँ तो मैं इसके बारे में ज़रूर बताती हूँ सब महिलाओं को कि प्लीज़ घरेलू हिंसा डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में ज़रूर पढ़ें. और जितनी भी महिलाएं जो डोमेस्टिक रिलेशनशिप में रही हैं,
0: इसकी
1: जो डेफिनेशन है घरेलू हिंसा की, डोमेस्टिक वायलेंस की, वो यही है कि जो भी महिला, चाहे वो बहन हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बीवी हो, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर क्यों ना हो, तो वो इस केस को डाल सकते हैं और अपने राइट क्लेम कर सकते हैं।
0: बड़ा जरूरी है दोस्तों, महिलाओं के साथ अगर मैं बात करूँ ना, तो वो सैक्रिफाइस तो उन्हें पता है, उन्हें ये पता है हमारी ड्यूटीज क्या है, बट उनके राइट्स क्या है ये उन्हें नहीं पता है। और ये नेक काम रीत फाउंडेशन कर रही है, ना सिर्फ उनके साथ हैंड होल्डिंग करके उनकी मदद कर रही है, लेकिन उन तक ये सारी की सारी जानकारी पहुंचाने की कोशिश कर रही है, जिससे कि महिलाएं किसी भी प्रकार से किसी भी कंडीशन में वो ना तो किसी का शिकार हो और ना ही ऐसी हिंसा को बर्दाश्त करें। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। आज मानवता की राह पर हम चल रहे हैं रीत फाउंडेशन के साथ। एडवोकेट रितु कपूर शर्मा हमारे साथ बैठी हैं, जो कि फाउंडर डायरेक्टर हैं। रितु जी, अब मैं ये जानना चाहूंगी, ढेर सारे लोग आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, बहुत सारी महिलाओं को अब लगने लगा है कि वो तो इतने सालों से डोमेस्टिक वायलेंस बर्दाश्त कर रही थी और उन्हें पता ही नहीं था उनके लिए इतनी सारी चीजें हैं, इतना प्रावधान भी है। अगर कोई रीत फाउंडेशन के साथ एसोसिएट होना चाहता है, वॉलंटियर करना चाहता है, या आपसे किसी भी प्रकार की कोई कानूनी सलाह चाहता है, या इस फाउंडेशन के जरिए किसी भी प्रकार की कोई रिलीफ चाहता है, सो वो आपके साथ कैसे एसोसिएट हो सकते हैं, किन नंबर्स पर वो जा सकते हैं, और अगर उन्हें अपनी ही राइट्स के बारे में जानना है तो वो आपसे कैसे कनेक्ट हो सकते हैं?
1: रीत फाउंडेशन इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है और फेसबुक पे भी अवेलेबल है, एंड नहीं तो डायरेक्ट वो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना फ़ोन नंबर बता सकती हूँ, 7042615753, सो दे कैन डायरेक्टली गेट इन टच विद मी। और अगर उन्हें लगता है कि वो किसी भी तरीके से अगर वॉलंटियरली जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, तो उसके लिए भी, और अगर किसी भी प्रकार की उन्हें मदद चाहिए तो कभी भी वो हमें फ्री, they are free to call us anytime।
0: So भाई, अगर महिलाओं को ये लग रहा है कि उनके साथ किसी भी प्रकार का अन्याय, अत्याचार हो रहा है, अब जरूरी नहीं है कि हर चीज आपकी डिवोर्स पर जाकर ही रुके, कई बार सिर्फ एक छोटी सी सलाह से भी आपका जीवन सुधर सकता है। सो इन सारी चीजों के लिए आपके पास है रीत फाउंडेशन, जो ना सिर्फ आपको ये सारी सलाह देंगी लेकिन साथ के साथ आपके लिए मदद का हाथ भी बढ़ाने वाली है। सो भाई, रीत फाउंडेशन अलग अलग किस्म के काम करती हैं। डिजिटल सहेली के बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगी। जिस प्रकार आपने कहा कि गुरुग्राम ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है और पुलिस के साथ मिलकर अब वो डिजिटल सहेली लॉन्च किया गया है, जिससे कि अगर किसी भी प्रकार के साइबर फ्रॉड्स महिलाओं के खिलाफ किए जा रहे हैं तो उनको रिपोर्ट किया जा सकता है, तो उसके लिए क्या नंबर है और क्या है ये डिजिटल सहेली?
1: जरूर, उसके बारे में मैं भी जरूर बताना चाहूंगी। रिसेंटली हमारे कमिश्नर साहब श्री विकास अरोड़ा जी ने इसका लॉन्च किया है, डिजिटल सहेली। सो वुमेन्स डे पे उन्होंने एक तरह से सब महिलाओं को, गुरुग्राम की महिलाओं को उन्होंने ये अपनी तरफ से गिफ्ट दिया है। लेकिन ये जानकर आपको खुशी होगी कि सिर्फ गुरुग्राम ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया से इसमें रिस्पांस आना शुरू हो गया है। ये डिजिटल सहेली एक ऐसी चैट बॉट है, ये चैट बॉट है व्हाट्सएप पे, एक नंबर है जिस नंबर को मैं बताना चाहूँगी, 5x9 81002। इस नंबर को कोई भी अगर महिला सेव करती हैं और उन्हें ऐसा लगता है किसी भी प्रकार के उनके साथ कोई भी साइबर हरासमेंट हो रही है, जैसे कि कोई मॉफ्ड पिक्चर्स हैं उनकी, कोई उन्हें गलत पिक्चर्स उनकी बनाकर उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है, कुछ बच्चे हैं जो आजकल के यंग जनरेशन के बच्चे, कई बार वो ऐसे रिलेशनशिप में आ जाते हैं कि मिसगाइड हो जाते हैं और अपनी ऐसी पर्सनल पिक्चर्स शेयर कर देते हैं अपने पार्टनर के साथ और बाद में जाकर वो ब्लैकमेल होते हैं, तो उनके लिए भी अगर उन्हें कहीं पर भी लगता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि हम अपने पेरेंट्स के पास जाएं, हम पुलिस के पास जाएं, हम किसको बताएं, तो वो डायरेक्टली इस नंबर को अपने व्हाट्सएप पे सेव करके और वो रीच आउट कर सकते हैं, मैसेज लिख सकते हैं, उन्हें बताना होगा कि ये ऐसे में मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है और ये मेरी गलत पिक्चर्स वहाँ पर डाल दी गई हैं। बहुत सारी महिलाएँ ऐसी भी आई हैं जिन्होंने ये बोला है कि हमारी पिक्चर्स डालकर गलत साइट्स पे और हमारे नंबर्स डाल दिए जाते हैं, आउट ऑफ रिवेंज भी ऐसा लोग करते हैं। तो अगर ऐसा भी उनके साथ हो रहा है तो गुरुग्राम पुलिस ने ये फैसिलिटी उनको दी है और मल्टीपल अकाउंट्स खोल लेते हैं, गलत अकाउंट्स खोल के उनकी तरफ से चैट करते हैं और जानबूझ के उनके उनको डिमीन करने का एक तरीका है उनका लिए। तो अगर ऐसा उनके साथ कुछ हो रहा है तो वो वहाँ पर इस चैटबॉट में जैसे ही इन्फॉर्म करेंगी तो विद इन 24 आवर्स वो मटीरियल डिलीट कर दिया जाएगा, विद इन 24 आवर्स, ये प्रॉमिस है गुरुग्राम पुलिस की तरफ से। और उसका रिस्पांस इतना अच्छा आ रहा है कि सब तरफ से, ऑल ओवर इंडिया से कॉल्स भी आ रही हैं और बाहर से भी एक दो इंटरनेशनल लोगों ने भी कांटेक्ट करने की कोशिश की कि उनके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसके वजह से उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी मुहिम चलाई है, तो आई रियली वॉन्ट कि सब लिसनर्स इसको ध्यान से सुने, ये नंबर सेव करें 5 times 9 8 1 0 0 2। और अगर कुछ किसी भी महिला के साथ, उनके सर्कल में किसी के साथ ऐसा हो रहा है, तो ज़रूर उन्हें बताएं और ये मदद करें।
0: सो भाई देखिए, बहुत ज़रूरी है महिलाओं को कि हम हमेशा ये कहते हैं, अगर आप अपनी सोशल मीडिया पर कोई भी पिक्चर डालते हैं, संभल कर डालिए, उसके प्राइवेसी सेटिंग्स पर जाइए, उसे लॉक करिए, क्योंकि कहीं कोई इसका मिसयूज़ ना करे। सो अगर उसके मिसयूज़ से बचना चाहते हैं तो आपके पास डिजिटल सहेली है, खुदा ना खास्ता कोई कॉन्शियसली आपकी पिक्चर्स को चुरा लेता है, उन्हें मॉर्फ करता है, उन्हें किसी साइट पर डाल देता है या अदरवाइज कहीं इस्तेमाल करता है, तो ये सारी चीज़ें रिपोर्ट की जा सकती हैं और डिजिटल सहेली की सहायता से आप इसे पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। जुड़े रहिएगा रेडियो 107.8 FM के साथ। फील गुड, फील लव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम मानवता की राह पर, अ स्टेप टुवर्ड्स ह्यूमैनिटी। मानवता की राह पर आज हमने एक लंबी सी डगर तक गए हैं रीत फाउंडेशन के साथ। रीत फाउंडेशन महिलाओं के लिए ढेर सारे काम कर रही है, ना सिर्फ उन्हें उनके राइट्स के बारे में बता रही है, लेकिन साथ के साथ देखा जाए तो रीत फाउंडेशन ढेर सारा काम कर रही है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। रितु जी आज हमारे साथ हैं, एडवोकेट रितु कपूर शर्मा, जो कि फाउंडर और डायरेक्टर हैं रीत फाउंडेशन की। चलिए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। ढेर सारी महिलाएं, बहुत सारे पुरुष, बहुत सारे बच्चे आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए। मुझे बताइए, जाते जाते आप उन सभी को क्या खास मैसेज देना चाहेंगी?
1: मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि लव इज नथिंग व्हेन गिवन टू अ रॉन्ग पर्सन, एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट ऑफ लव इज समटाइम इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट to walk away.
0: Yes.
1: So if you feel that you are being harassed and you are not being respected over there, तो देन इमीडिएटली लीव दैट प्लेस। और अगर हमें ऐसा लगता है कि हम किसी की असलियत सामने आने के बावजूद भी उसको नहीं छोड़ पा रहे हैं और हमें ऐसा लगता है कि हम उसे प्यार करते हैं, तो ऐसा नहीं है, वो प्यार नहीं है। और उस दौरान, इस पूरी जर्नी में हम उस इंसान को नहीं खो रहे हैं, हम अपने आप को खो रहे हैं। तो प्लीज़ ये इस गलत फहमी में ना रहें, जो बच्चे या जो भी महिलाएं हैं, कि ये शायद प्यार है, मैं प्यार करती हूँ, ऐसा नहीं है। और इस उसमें से निकलें और अपनी ज़िंदगी को एक पॉजिटिव उसमें रहें, एक पीसफुल लाइफ जिएं, आवाज़ उठाएँ और जिसकी भी मदद कर सकें मदद करें।
0: बिल्कुल, देखिए महिलाओं के लिए मैं हमेशा कहना चाहती हूँ, उन्होंने ना अपना सरनेम बना लिया है सैक्रिफाइस, और उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जीवन सिर्फ सैक्रिफाइस के लिए बना है, बट आइडली आपका जीवन जीने के लिए बना है। आपको भी जिंदगी के उतने ही साल मिले हैं जितने पुरुषों को मिले हैं, सो जरूरी नहीं है कि सारा सैक्रिफाइस आप ही करें। आप अपने जीवन को खुशी से जिए, हंसिए, मुस्कुराइए, और जो अधिकार आपके लिए न सिर्फ समाज ने, सरकार ने बनाए हैं, कानून ने बनाए हैं, उन्हें भी प्रैक्टिस करिए। अगर आपका जीवन खूबसूरती से गुजर रहा है, बहुत अच्छी बात, लेकिन कहीं कोई उतार चढ़ाव आ रहा है और लग रहा है कि कहीं कोई परेशानी है, तो आपके पास बहुत सारे हाथ ऐसे हैं जो आगे बढ़कर आपको थामने के लिए तैयार हैं। एक सॉलिड ऐसा हाथ है रीत फाउंडेशन, जिसके बारे में आज हमने ढेर सारी बातें सुनी, लेकिन समय की थोड़ी सी किल्लत है भाई, एक ही घंटे का समय होता है और उसमें आपको गाने सुनाते हुए ये पूरी रीत फाउंडेशन की कहानी सुनानी थी। सो अगर आप रीत फाउंडेशन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो जाइए सोशल मीडिया के, इतने सारे हैंडल्स हैं, कॉन्टैक्ट करिए, जाइए, जानिए वो किस प्रकार के काम करते हैं और जुड़ जाइए एडवोकेट रितु कपूर शर्मा के साथ। तहे दिल से धन्यवाद रितु जी, आज आप स्टूडियो में आए, कीमती समय निकाला, लेकिन इतनी बेहतरीन जानकारी आपने हमारे सभी लिसनर्स को दी है। आई एम श्योर जितनी भी महिलाएं, पुरुष, बच्चे आज भी को आपको सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना के जरिए, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि उनका जीवन कितना वैल्यूएबल है।
1: थैंक यू सो मच भावना जी, यहाँ हमें बुलाने के लिए, और आई होप कि इस प्रोग्राम के जरिए हम और बहुत सारी महिलाओं को सशक्त कर पाएंगे आज। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: सो दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, और आपसे इजाजत लेते हुए वादा कर देती हूँ अगले हफ्ते मैं होंगी आपके साथ, लेकिन फिलहाल के लिए मुझे यानी आरजे भावना को दीजिए इजाजत और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइव।

0: हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं बिंदास भावना, फिर से ले रही हूं। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और मैं लेकर आ गई हूं आपके लिए प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का ये खूबसूरत सा कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम में मैं आपको सशक्त महिलाओं से मिलवाती हूँ, ऐसी महिलाओं को आपके पास लेकर आती हूँ, ऐसी महिलाओं की कहानी आपको सुनाती हूँ जो अपने आप में सशक्तिकरण का दूसरा नाम है। और अगर मैं बात करूं सशक्तिकरण की, तो ये एक ऐसी चीज है जो हर महिला के पास है, बस इस पोटेंशियल को वो रियलाइज नहीं कर पाती हैं। सो इसीलिए इस कार्यक्रम की जरूरत है और इसीलिए महिलाओं को समय समय पर ये याद दिलाने की जरूरत होती है कि उन्हें सशक्त होना पड़ेगा, जिससे एक सशक्त समाज बन सके। आज की इस कड़ी में हम जिनसे बात करने वाले हैं, ये मेरा बिल्कुल ऑनर है कि वो हमारे स्टूडियो में आई और हमसे बात कर रही है। मैं बात कर रही हूँ वर्तिका द्विवेदी जी से। वर्तिका द्विवेदी जी फाउंडर है द वेड एशिया की, डायरेक्टर है मिटीशिया एग्जीबिशन की, एक बहुत ही जानी मानी पब्लिशर हैं, साथ के साथ टेडेक स्पीकर ये रही हैं, लेकिन सही मायने में एक सशक्त महिला हैं, एक डायनेमिक वुमेन हैं। और हम इनका स्वागत करना चाहेंगे रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के स्टूडियो में।
1: थैंक यू सो मच भावना जी मुझे इनवाइट करने के लिए। नो, इट इज़ अ ग्रेट प्लेजर फॉर मी एंड एन ऑनर फॉर मी कि मैं आपके साथ बैठी हूँ और ये मौका मुझे मिल रहा है कि मैं वुमेन महिलाओं के लिए अपने लाइफ से कुछ पॉइंट्स निकाल के कुछ बोल पाऊँ। थैंक यू
0: वर्तिका जी। इस कार्यक्रम का नाम है महिला सशक्तिकरण यानी विमेन एम्पावरमेंट, और वी नाम से हम जब विमेन एम्पावरमेंट कहते हैं तो इसका दूसरा तात्पर्य या इसका दूसरा मतलब ये भी होता है, वी यानी विमेन स्टैंडिंग टुगेदर एज वी। और अगर एक महिला दूसरी महिला के साथ आ जाए तो वो दुनिया बदल सकती है, लेकिन परेशानी ये है कि अभी तक महिलाओं ने इस चीज़ को कम रियलाइज़ किया है। इस कार्यक्रम का एक पहला सवाल है जो मैं अक्सर हर महिला से पूछती हूँ, आपसे भी पूछना चाहूँगी, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज वुमेन एम्पावरमेंट? आप कैसे परसीव करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट को?
1: देखिए, मैं ये बोलना चाहूँगी क्योंकि मैं एक वुमेन होने के नाते भी एंड साथ में वेड एशिया जो वुमेन इन आर्किटेक्चर एंड डिज़ाइन डिज़ाइनर्स जो है उनके लिए जो प्लेटफॉर्म चलाती हूँ द लास्ट 10 ईयर्स से, उसके नाते में ये बोलना चाहूँगी, आई ऑलवेज फील दैट वुमेन आर एक्चुअली एम्पावर्ड।
0: यस,
1: दे डू नॉट नीड एम्पावरमेंट एज सच, दे नीड टू रिकॉग्नाइज दैट दे आर एम्पावर्ड। उनका जो वो एम्पावर्ड है, उनका ये पहचान, उनको पता होना, मैं बोलूंगी ये है एम्पावरमेंट अकॉर्डिंग टू मी।
0: मतलब देखिए वर्तिका जी, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि कुछ महिलाओं के लिए सशक्तिकरण का मतलब या उसकी डेफिनेशन जो है पैसा होती है, उन्हें लगता है यार मेरे पास पैसा होगा तो आई एम दी ओनर ऑफ माई लाइफ। कुछ महिलाएं हैं जिनके पास अबंडेंस में पैसा है, लेकिन उस पैसे को यूज़ करने के लिए या उस पैसे को इस्तेमाल करने के लिए अपने लिए उनके पास परमिशन ही नहीं है। सो उन्हें ऐसा लगता है कि बस अगर हमें ये फ्रीडम मिल जाए ना कि मैं जो चाहती हूँ वो कर पाऊँ, तो वो मेरे लिए सशक्तिकरण होगा। शायद कुछ महिलाएँ जो कॉरपोरेट्स में हैं, दे आर लुकिंग फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी या एक बेटर डेजिग्नेशन, और उन्हें ऐसा लगता है कि वो पुरुषों के पास है, ज़्यादातर पुरुषों के पास मिलती है, सो उनके लिए शायद वो एम्पावरमेंट होगा। हर किसी के लिए, हर महिला के लिए जो एम्पावरमेंट की डेफिनेशन है ना, ये बड़ी पर्सनल और बड़ी अलग है। बट आई टोटली बिलीव कि हर महिला के लिए जो एम्पावरमेंट का डेस्टिनेशन है वो एक ही है, व्हेन शी हैज द राइट टू वॉट एवर शी वॉन्ट्स टू डू, और उस राइट के साथ वो उसे कर पाए। इस बात से आई एम श्योर यू विल रेजोनेट।
1: एब्सोल्युटली भावना जी, एब्सोल्युटली।
0: So, दोस्तों, वक्त एक प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा क्योंकि ये इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन जारी रहने वाली है आपके साथ। और इस कॉन्वर्जेशन में फिलहाल मेरे साथ हैं वर्तिका द्विवेदी। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर प्रोग्राम है वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण का खूबसूरत सा कार्यक्रम। और उतने ही प्यारे से एपिसोड में आज हमारे साथ बहुत ही गॉर्जियस, बहुत ही ब्यूटीफुल वर्तिका जी बैठी हैं। वर्तिका द्विवेदी जी फाउंडर हैं द वेड एशिया की, डायरेक्टर हैं मेट एशिया एग्जीबिशंस की, एक पब्लिशर हैं, एक बहुत ही एकम्प्लिश टेडेक्स स्पीकर भी हैं, लेकिन इनके जीवन की अपनी एक कहानी है। वर्तिका जी, आपने इस दुनिया में इतना नाम कमाया है, मतलब टुडे वेड एशिया इज अ नेम। और अगर देखा जाए तो आपके जो मेट एशिया एग्जीबिशंस हैं ये पूरे विश्व में फेमस हैं। बट ये जो जर्नी आपके लिए रही, दिस वाज नॉट एट ऑल एन इजी जर्नी। सो अगर मैं आपकी एम्पावरमेंट की जर्नी की बात करूं, सो आपने शुरुआत की ऐसी उम्र से जिस उम्र में शायद बच्चे अपने लिए सब्जेक्ट क्या चूज करना है उसका डिसीजन भी नहीं ले पाते हैं, वहां से आपने शुरू किया और आज आप यहाँ तक पहुंची। सो आपके इस सफर के बारे में क्या कहना चाहेंगी लोगों को?
1: देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि सफ़र हम चुनते नहीं हैं, हमें मिलता है बहुत कुछ
0: जी,
1: लेकिन जो आपको मिलता है उससे आप क्या बनाते हैं वो आप बनते हैं। तो मैं जब 9 साल की थी, मेरी माता जी, मेरी मदर की डेथ अचानक से हो गई, मतलब इट वाज अ प्रेगनेंसी केस एंड भाई 7 दिन का था, मॉम वाज नॉट फाइन एंड ऑल ऑफ अ सडन इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड
0: जी
1: बट इट हैपेंड। तो जब माँ का डेथ हुआ, पापा वॉज ऑल टोटली, मतलब उनका जो हालत था, जहाँ तक मुझे याद है कि पापा किसी से बात नहीं करते थे, वो बदल गए थे कम्प्लीटली, उनको कुछ भी किसी भी चीज़ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ऑब्वियस है, सबका टेंशन इस तरफ था कि 5 बच्चे, मैं सबसे बड़ी हूँ और सब लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें अपने पापा का ख्याल रखना है, तुम्हें अपने भाई बहनों का ख्याल रखना है। मैं खेलने कूदने वाली लड़की अचानक से जैसे कि एक ही पल में बड़ी हो गई
0: जी।
1: और जब बड़े हो जाते हैं और कुछ पता नहीं होता है तो उस बच्चे के साथ क्या हाल हुआ होगा आप समझ ही सकते
0: हैं।
1: कुछ नहीं पता मुझे कि मैं क्या, किस तरह से मैंने उस वक्त को समझने की कोशिश किया, अपने आप से जूझते हुए, समाज से जूझते हुए, गिरते पड़ते, मैं जैसे लाइफ का सिचुएशन था वैसे ही मैं ढलती गई। एक पल ऐसे आया जब पापा का भी डेथ हुआ, और उससे पहले बल्कि मैं ये समझ गई थी कि या तो मेरा रहने का कोई मकसद नहीं है लाइफ में, और या तो बहुत बड़ा मकसद है, क्यों ना मैं बड़े मकसद की तरफ चुनूं। कर पाऊं तो ठीक है, नहीं तो क्या है, कोशिश तो कर सकती हूं, क्योंकि मैं छोड़ नहीं सकती हूं अपने भाई बहनों को, और छोड़ के मिलेगा भी क्या अगर मैंने अपने लिए कुछ बना भी लिया। मैं बहुत पहले सोच चुकी थी, बहुत पहले समझ चुकी थी कि जिंदगी सिर्फ पैसा, सिर्फ पैसा नहीं है, पैसा बहुत कुछ है लेकिन सिर्फ पैसा नहीं है, पैसे से आप क्या करते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप जिंदगी से क्या बनाते हैं, जो चीज़ आपको मिला उससे आप क्या बनते हैं, राइट, वो मैटर करता है। तो मैं ये समझ गई थी कि मैं कुछ भी करूं अपने भाई बहनों से, अगर मैं अपने लिए सिर्फ देख लूं, आसान लगता है ना, किसी को शॉर्टकट लेना ईजी लगता है और संभव लगता है। मैंने कहा कि मैं संभव क्या है उस पे जाऊं तो मैं कुछ भी मुझे लाइफ में अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि ये जो मैं अगर कर पाऊं उनके लिए, भले ही असंभव है, लोग मुझे पागल बोलते थे जब मैं 17 साल की थी, मैंने सोचा कि मैं कहीं और चलती हूँ जहाँ ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मैंने और मेरी सिस्टर, मेरे से जो छोटी सिस्टर है, मैंने उंगलियों को, 4 उंगलियों को उसके सामने रखा और मैंने कहा, देख ऐसा है कि मुझे निकलना होगा, लेकिन कहाँ निकलना होगा अब चुनते हैं। शायद 2 मिनट में हमने डिसाइड किया था कि चेन्नई है, मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, कहाँ जाना है। तो जितना हमारे पास इन्फॉर्मेशन था उस टाइम के हिसाब से, कि मुंबई में हमने सुना था कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते हैं, एक्टर्स बनने के लिए जाते हैं, तो क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों का सामना करना पड़ सकता है जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एंड हो सकता है कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ ना मिले। हमारे बच्चों जैसे जो दिमाग है उसमें जो समझ में आया, फिर हमने चेन्नई कहा, लैंग्वेज का इशू है, कलकत्ता हमने सुना था कि बहुत सारा यू नो इंडस्ट्रीज वहाँ पे उतना नहीं है, एंड दिल्ली, हाँ ये तो राजधानी है, सुन के ही लग रहा है कि कुछ होगा वहाँ पे, बढ़िया होगा शायद कुछ। तो उस सोच के साथ बहुत ही इनोसेंट सोच के साथ, क्योंकि ये पता था कि जहाँ हम हैं वहाँ से बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल सकते। प्लस लड़कियाँ थे तो लोगों को भी ये लगता था कि भाई लड़कियाँ हैं, इनके शादी करवाना है, इनका ये है वो है, इतने पैसे चाहिए होंगे। हमें उस सोच से बहुत बहुत दूर जाना था, और एक जन जाएंगे तो दूसरों को भी खींच के लाएंगे, वो थॉट था। थॉट वॉज वेरी वेरी क्लियर, बट क्या आगे मिलेगा उसको सोचने से बहुत घबराहट सी होती थी, क्योंकि रास्ता आगे का नहीं दिख रहा है, उतना दूर का कैसे सोचे। लेकिन कदम तो बढ़ाना है, डर तो नहीं है बिल्कुल भी। ये बात हम सारे भाई बहन समझ चुके थे, भले बहुत छोटे थे, भाई तो समझ ही सकते कितना छोटा था, तो ये बात समझ चुके थे हम कि हम एम्पावर्ड खुद अपने मन में पहले होते हैं, फिर हम एम्पावर्ड वाला काम करते हैं। बिना काम किए, बिना फियरलेस हुए, बिना आगे बढ़ाए कदम, कोई कुछ नहीं कर सकता, और कोई आके आपके लिए करके देगा ये कभी सोचना नहीं चाहिए। भावना जी, आपने एक अपने कुछ बताया था पहले कि ये विमेन जिनको पैसा मिलता है फादर से, ब्रदर से, मान लीजिए किसी से भी मिलता है, क्या वो एम्पावर्ड होते हैं, फील करते हैं? आई डोंट नो, आई एम डाउटफुल। क्यों? एम्पावर्ड होना फाइनेंशियल डिसीशंस नहीं आपको दिलाता है। आप क्या अप्रूवल ले रहे हो फॉर द मनी? इफ यू आर टेकिंग, अगर आप अप्रूवल ले रहे हो पैसे के लिए, तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, भले आपके पास पैसे हैं। ये मैं सोचती हूँ और ये मेरा कहानी है।
0: सच ए ब्यूटिफुल स्टोरी, और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी है ना वर्तिका जी की। आप इमेजिन करिए, एक छोटी सी लड़की 17 साल की उम्र में दिल्ली आती है, ये सोचकर कि चार भाई बहन है, सबसे छोटा भाई है जो बिल्कुल छोटा है, और यहाँ आकर इन्हें अपना बिजनेस खोलना है। 17 साल की उम्र में ये सोचकर आई थी, नागालैंड जैसी जगह से जहाँ लैंग्वेज इश्यूज हो सकते हैं। छोटी उम्र में माता और पिता दोनों चले गए, घर नहीं था, और जो अलग अलग कहना चाहिए सिबलिंग्स हैं, क्योंकि चार छोटे भाई बहन थे, अब कोई कोई रिश्तेदार उन्हें पाल रहा था। बड़ी बहन को ये लगा कि अगर मैं कुछ करूंगी तो मैं इन सारे भाई बहनों को अपने पास रख पाऊंगी और उन्हें वो जिंदगी दे पाऊंगी जो शायद माता पिता ने कभी सोची थी या प्रॉबेबली इन्होंने सोची थी। और सोचिए वो जिंदगी आज ये दे पा रही है, और ना सिर्फ उन्हें दे पा रही हैं लेकिन बहुत सारे घरों को दे पा रही हैं। वेड एशिया अपने आप में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारे लोगों के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट कर रही है, और आज वर्तिका नंदा जी, फिर से लूँगी, आज वर्तिका द्विवेदी जी अपने आप में एक नाम है। लेकिन ये जर्नी आसान नहीं थी, ये तो आपने सुन लिया, लेकिन औरों के लिए ये किस तरीके से एम्पावरमेंट फैला रही हैं उसके बारे में जरूर करेंगे बात। जुड़े रहिएगा रेडियो वन रचना 107.8 FM के साथ। वक्त एक छोटे से प्यारे से कल म्यूजिकल ब्रेक का, वक्त एक छोटे से प्यारे से म्यूजिकल ब्रेक का। फील गुड, फील लाइव।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 FM। मैं हूं आरजे भावना, रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कड़ी। उतने ही इंस्पायरिंग एपिसोड में आज हम वर्तिका जी के साथ बैठे हैं। वर्तिका द्विवेदी जी फाउंडर है द वेड एशिया की, डायरेक्टर है मिड एशिया एग्जीबिशन की, एक पब्लिशर है, नोटेड पब्लिशर है और साथ के साथ टेडेक स्पीकर भी हैं। पर मजेदार बात यह है कि एक महिला तो है ही, लेकिन इन्होंने जिंदगी को हार्ड तरीके से बहुत ही खूबसूरती से जीने का तरीका सीख लिया है और वही तरीका आज हम इनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, रिचेस के साथ पैदा होना और उसके बाद कुछ करना बहुत आसान होता है, क्योंकि कहा जाता है ना, पैसे से पैसा कमाया जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास वो इनिशियल पैसा ही नहीं है तो आप कमाएंगे कैसे? और आपके साथ तो बहुत सारे चैलेंजेस थे। वर्तिका जी, अगर मैं बात करूं आपके आगे बढ़ने की और वेड एशिया की शुरुआत की, तो कैसे हुई ये शुरुआत और यहाँ तक का सफर कैसे आपने पहुँचाया?
1: बहुत ही प्यारा सवाल है भावना जी। देखिए, जैसे आपको पता है कि हम जो सिस्टर्स हैं, चार सिस्टर्स, हम लोगों ने ये सोचा था कि हम ये कर पाएंगे। तो मेरे आर्मी में कौन था? मेरी तीन बहनें और एक छोटा भाई
0: जी।
1: तो ये सिस्टर्स, अगर तीन सिस्टर्स जिनके पास कुछ नहीं है, ना घर है ना कुछ है, वो अगर ये कर सकते हैं तो सारे, अगर बहुत सारे सिस्टर्स एक साथ होंगे तो वो क्या कर सकते हैं?
0: इमेजिन।
1: वेड सिस्टर्स हम लोगों ने कॉन्सेप्चुलाइज किया था ये सोच के कि वेमेन इन डिज़ाइन एंड आर्किटेक्चर का कोई प्लेटफॉर्म पहले तो नहीं था, नंबर वन। नंबर टू, जो ये जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है ना, बैक सीट में रह के कर रहे थे
0: जी,
1: दे वर नॉट इन द फ्रंट सीट। एंड प्लस क्या, जो काम कर रहे हैं उसका कंट्रीब्यूशन का रिकॉग्निशन नहीं दिख रहा था, डॉक्यूमेंटेशन नहीं था। हमने सोचा कि क्यों ना, जिस तरह से हम सिस्टर्स एक साथ आके कुछ किए, हम वेड सिस्टर्स बनते हैं और सबको लेके आते हैं उनको, और एक जगह जब आएंगे ना तो कुछ ना कुछ अच्छा तो करेंगे।
0: वाकई
1: दैट वाज द थॉट, और वहाँ से शुरुआत की। और क्योंकि मैं ऑलवेज एंटरप्रेन्योरियल थी, क्योंकि मैं ये जानती थी कि आपके पास अगर स्किल्स हैं, आप अगर उसको यूज़ नहीं करके मनी अगर नहीं बना पा रहे हो तो आप कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, ना अपने लाइफ में, ना अपने अपनों के लाइफ में, ना समाज के लाइफ में,
0: वाकई
1: कहीं पे भी नहीं कर सकते। सो अगर मैं उनको चाहती हूँ कि वो आगे बढ़े, तो मुझे भी एग्जांपल बनना पड़ेगा, ताकि वो जब देखे, इफ़ आई एम वॉकिंग द टॉक देन दे विल ट्रस्ट। यू नो, क्रेडिबिलिटी बिल्ड खुद से करना पड़ेगा ताकि उनको हम एक क्रेडिबल प्लेटफॉर्म दें। So it was very important मेरे लिए from day one कि we have to be profitable, we have to be doing good, at the same time contribute करें। क्योंकि हम बहुत कुछ मन में सोच सकते हैं अच्छे, क्योंकि एक वेमेन का, मैं एक मिथ जो होता है ना, वो मैं तोड़ना भी चाहती हूँ। वो सोचते हैं कि अगर पैसे के लिए कर रहे तो गलत कर रहे हैं।
0: हाँ,
1: ये बात इतना गलत है, इतना गलत है। वो खुद अपने लाइफ में सफ़र जब करते हैं, जब परेशान होते हैं, तब समझते हैं कि नहीं, ये बात सच्चाई है कि हम अगर पैसे, स्किल बिल्ड कर रहे हैं, स्किल मैं समझती हूँ एक दरवाज़ा है पैसा बनाने के लिए। आप कुछ दे रहे किसी से, आप कोई फेवर नहीं कर रहे या फेवर ले नहीं रहे, ठीक है, आप किसी को कुछ दे रहे उसके बदले में आप कुछ ले रहे, राइट?
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि आप कुछ कंट्रीब्यूट कर रहे तब ले रहे, तो उसको वो जो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ मनी होता है, उससे आपके पास जो पैसे आता है उसको आप ग्रो करते हैं, बिल्ड करते हैं, ठीक है। आप अप्रूवल नहीं लेते फिर, क्योंकि आपका पैसा है।
0: बिल्कुल,
1: एंड आप अपनों के लिए, अपने लिए, अपने करियर के लिए कुछ कर सकते हैं।
0: एग्जैक्टली।
1: हैविंग सेड दैट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वेमेन जो है इस बात को समझे कि स्किल्स ही दरवाज़ा है पैसे के लिए। अगर आपको जरूरत नहीं है स्किल्स की, आपके पास पैसा ऑलरेडी आ रहा है, फिर भी आपको स्किल्स सीखना चाहिए। मैं ये बोलूंगी, क्यों सीखना चाहिए? इसलिए सीखना चाहिए क्योंकि उसके बिना आप हमेशा अप्रूवल लेते रहोगे, अप्रूवल हमेशा आपको मिलेगा नहीं, आपकी चॉइस की चीज़ें आपको करने को नहीं मिलेगा, आपके बच्चों को अपने हिसाब से पढ़ने को नहीं मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए, जो अप्रूवल देता है वही डिसीशन मेकर कहलाता है,
0: अथॉरिटी में।
1: यस, तो आप देखिए आप क्या बनना चाहते हैं।
0: एक्चुअली सो आई ऑलवेज बिलीव वीमेन आर इक्वल जेंडर, और हमें ना कहीं भी इन्फीरियर तो सोचना ही नहीं चाहिए अपने बारे में कि ओ हम तो सिर्फ दुनिया का भला करने के लिए पैदा हुए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे कोई भी ऐसा ग्रंथ या फिर आप किताब दिखा दीजिए जो कि रिलीजियस हो या फिर किसी भी तरीके की हो, जहाँ ये लिखा हो कि महिलाओं का काम सिर्फ और सिर्फ लोगों का ख्याल रखना है। यू आर एन इक्वल जेंडर, आप अपनी ज़िंदगी जिए, आपको भी एज ह्यूमन बींग उतना ही राइट है कि आप अपने जीवन को खुशी से जी सकें। सो इसके लिए प्रायोरिटाइज ज़रूर करिए अपने आप को एंड खुश रहने की कोशिश करिए। और खुश रहने का एक सबसे अच्छा तरीका है गाने सुनते रहिए और जुड़े रहिए अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन यानी रेडियो मानव रचना 107.8 FM के साथ। सुना रही हूँ आपको एक प्यारा सा गाना और आप कहीं मत जाइए।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट। महिला सशक्तिकरण की इस खूबसूरत सी कड़ी में हम वर्तिका द्विवेदी जी से बात कर रहे हैं। वर्तिका द्विवेदी जी फाउंडर हैं द वेद एशिया की, डायरेक्टर हैं मेट एशिया एग्जीबिशंस की, और एक पब्लिशर भी हैं, एक टेडेक स्पीकर भी हैं, और एक एम्पावर्ड महिला हैं, यानी एक सशक्त महिला है। वो महिला जिसने न सिर्फ अपने परिवार की बागडोर संभाली, लेकिन वो महिला जिन्होंने बहुत सारी महिलाओं के लिए वेद एशिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट कर दिया जहाँ पर हर महिला आ सकती है और ना सिर्फ अपने लिए एक अच्छा सा जीवन चुन सकती है, लेकिन अपने लिए एक अच्छा करियर और अपने लिए एक अच्छा बिजनेस भी चुन सकती है। अब बात करते हैं वर्तिका जी चैलेंजेस की। सुनने में ये कहानी बहुत आसान लग रही है। आप बता रहे हैं 17 साल की उम्र में कुछ सपने लेकर आ पाई, और ऐसी बॉलीवुड की बड़ी सारी फिल्में भी लोग सुनते हैं, लेकिन जब हम चैलेंजेस की बात करते हैं तब समझ में आता है जीवन कितना मुश्किल है। आई एम श्योर देयर मस्ट हैव बीन अ टाइम जहां आपने बहुत सारी चीज़ों के लिए पैसे को और आगे बढ़ाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ भी किया होगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इच्छाएं मारी होंगी जिससे कि आप ना सिर्फ अपने छोटे भाई बहनों को एक अच्छा भविष्य दे सकें, लेकिन शायद आने वाले टाइम में एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकें। और धीरे धीरे धीरे आज जीवन के आप उस स्तर पर हैं जहाँ यू हैव चोजन बेस्ट ऑफ थिंग्स फॉर योर चाइल्ड, योर चिल्ड्रन, यू हैव चोजन द बेस्ट ऑफ द थिंग्स फॉर योर सिबलिंग्स। और आज आप ये कह सकती हैं ना, पलटकर जब आप देखती हैं अपने ज़िंदगी के इतने सारे सालों को, सो आप ये कह सकती हैं कि हाँ, मैंने इन चैलेंजेस को बीट किया है। सो किस तरीके के चैलेंजेस फेस करने पड़े?
1: देखिए, शुरुआती दौर की बात करें तो चैलेंजेस ही थे।
0: हाँ, वाकई
1: सिर्फ चैलेंजेस थे। ये कोई ऐसा वक्त नहीं था कि मुझे बिल्कुल भी सांस लेने का वक्त हो, कि मैं सोचूं कि मैं कुछ भी हूँ, एग्जिस्ट भी कर रही हूँ। इतने चैलेंजेस थे भावना जी कि
0: कभी कभी रोबोट वाली फीलिंग आती होगी आपको।
1: रोबोट वाली फीलिंग क्या बताऊँ मैं आपको, रोबोट मुझे बनना पड़ा, क्योंकि अगर आप इमोशंस को नहीं दबाएंगे तो इमोशंस आपको मार देते हैं।
0: ओके,
1: तो मैंने अपना ऐसे वक्त बिताया जब मैंने अपने इमोशंस को बोलती थी कि आप 2 साल बाद आना नॉक करना, मेरे को आपका सोचने का वक्त नहीं है। ऐसे होता था, और ऐसे वक्त एक बार नहीं, हजारों बार हुआ। बहुत बार गिरी हूँ, बहुत बार ऐसे सोचा कि नहीं कर सकती हूँ, अब नहीं। लेकिन जब बच्चों को देखती थी, उनको देखती थी, और इतना विश्वास उनको मेरे ऊपर था, वो जब देखती थी तो पता नहीं मुझे कहाँ से मुझे इतना स्ट्रेंथ होता था, इतना ज़्यादा मैं पॉसिबल समझने लगी, क्योंकि इट वॉज़ वर्थ ट्राइंग।
0: वाकई
1: ऐसे था। अब भावना जी, मैं अपने चैलेंजेस को चुनती हूँ। देखिए, भगवान को जो देना होता है वो तो देते हैं,
0: वाकई
1: हमारे पास चॉइस नहीं होता, लेकिन मैं चैलेंजेस चुनती हूँ। अब मैं एक, मुझे बहुत मज़ा आता है चैलेंजेस से नहीं, पार करने में, आगे बढ़ने में मुझे मज़ा आता है। मुझे कंपनीज स्केल अप करने में मज़ा आता है, मुझे वेल्थ बिल्डिंग में मज़ा आता है, मुझे डिसीजन मेकिंग, एंड डिसीजंस सही हो गलत हो हमें किसी को कभी पता नहीं होता। ये डर जो वुमेन को होता है, वुमेन क्यों मैं बोलूँगी, ह्यूमन बींग्स को होता है,
0: सबको,
1: एक लिविंग बींग को जो होता है डर कि अगर मैं ये कदम उठाऊँ तो क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए, थोड़ा बहुत नमक की तरह तो फियर होना चाहिए
0: जी,
1: क्योंकि वो आपके जो आपका जो फूड है, आपका जो खाना है, उसको स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं
0: जी।
1: फियर को एक पॉइंट के बाद साइड में रखना चाहिए। इमोशंस अगर आपके रास्ते में आ रहा है और आपको कुछ करना है तो थोड़ा साइड में रखना चाहिए, क्योंकि कोई चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको बहा दे, स्लिपरी ग्राउंड बना दे
0: जी,
1: राइट। लॉजिकल होना, प्रैक्टिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड मुझे लगता है एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें।
0: वाकई
1: मैं अपना एजुकेशन कम्प्लीट नहीं कर पाई थी उस वक्त, एज अ साइंस स्टूडेंट हमेशा ही मुझे साइंस एंड रिसर्च एंड उसमें बहुत इंटरेस्ट था। आई वॉज वेरी वेरी गुड इन लैंग्वेजेस ऑल्सो एज ए स्कूल गोइंग किड, बट मुझे एजुकेशन आफ्टर सर्टेन पॉइंट बहुत मुश्किल से मैंने ग्रेजुएशन तक कम्प्लीट किया था, बट द फर्स्ट टाइम दैट आई गॉट ए चांस टू कम्प्लीट माई एजुकेशन आई वेंट टू आई आई एम कलकत्ता,
0: यस,
1: एंड आई डिड दैट, एंड इट वॉज सो really empowering. Not because I went there. It was because मैं already इतना कुछ करके गई थी कि जब मैंने जाके देखा और मुझे ये फील हुआ, अरे वर्तिका तुम तो ऑलरेडी ये सब जानती हो एंड तुम बहुत बहुत मतलब अपने प्रैक्टिकल गलतियाँ करके सीखी हो, तो मुझे एक अश्योरेंस मिला कि येस आई एम गोइंग द राइट वे, अब देयर इज नो स्टॉपिंग.
0: तो वर्तिका जी आपको ना जिंदगी ने इतना सिखा दिया था कि आई एम श्योर आई एम कोलकाता भी आपको सिखाने के लिए शायद छोटा पड़ गया था, बट जिस दिन आपने कैंपस में कदम रखा इतने लंबे यू नो ड्यूरेशन के बाद, और कितने सारे स्टूडेंट्स का सपना होता है कि उनके पास उनकी डिग्री पर आईआईएम कोलकाता का नाम हो, सो आपको जब ये मौका मिला तो हाउ वाज द फीलिंग?
1: देखिए जो कैंपस का टाइम है मैंने एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट की तरह बिताया.
0: हाउ स्वीट.
1: मैंने डांस किया वहाँ पे.
0: वाओ.
1: जुबी जुबी पे आप सोचिए.
0: इमेजिन.
1: मेरा जो पार्टनर था वाज अ फेलो स्टूडेंट फ्रॉम द साउथ इंडिया. हम लोग मिले थे अभी बस, और हमारे सारे प्लान मतलब मैंने सोचा कि अदर देन स्टडीज मुझे वो कॉलेज लाइफ जो मैंने मिस किया,
0: yes.
1: मुझे वो जी लेना है.
0: सो स्वीट.
1: अब मैं देखिए कई बार अपने बच्चों के साथ बच्चे बन के जीना पसंद करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो जो मिस किया उसको आप जितना अभी जी सकते हैं जी लीजिए, क्योंकि आई एम ए वेरी बिग बिलीवर ऑफ हैविंग अ हैप्पी माइंड.
0: यस.
1: फॉर डूइंग अ लॉट ऑफ सक्सेस. ओके. हैप्पीनेस इज वेरी वेरी क्रूशियल एंड हैप्पीनेस कैनॉट बी यू नो कमिंग फ्रॉम समथिंग दैट इज डन, और हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम दिस मोमेंट नाउ.
0: यस.
1: अगर आप इस वक्त में हैप्पी है, कंटेंटेड है, ओके, एंड यू आर इन योर सेंटर्ड, आप अपने मन के चित्त के सेंटर में स्थित है आपका यू नो फीलिंग, देन यू आर इन इट. सो दैट्स इट.
0: हाउ स्वीट. मतलब इससे बड़ा कोई मुझे लगता है मैसेज नहीं हो सकता. इनकी जिंदगी अपने आप में इतनी इंस्पायरिंग और इतनी ब्यूटीफुल है कि क्या कहने. इमेजिन करिए ना कि एक ऐसी लड़की जिसको मौका ही नहीं मिला कि वो अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर सके या स्कूल के बाद वो कैंपस में जा सके, क्योंकि उसे अपने छोटे भाई बहनों के लिए कमाना था और एक ऐसी लाइफ बिल्ड करनी थी जो रिस्पेक्टेबल लाइफ हो, जो आज बैठकर ये स्टूडियो में या फिर कहना चाहिए पॉडकास्ट में अपनी जिंदगी टेडएक्स में जाकर अपनी जिंदगी के बारे में बात करती हैं. और इमेजिन करिए जब इन्हें ये मौका मिला तो उन्होंने ये मौका नहीं चूज़ किया, मतलब लूज किया, इन्होंने उस मौके को पकड़ के रखा और वहाँ जाकर इन्होंने ना सिर्फ कैंपस लाइफ एंजॉय की, लेकिन कहते हैं ना जिस इंसान से आप जितना छीनते हैं ना तो मिलता जब उसे है सो उसे अबंडेंस में मिलता है. इन्हें मौका भी कहाँ मिला? आई एम कोलकाता. मतलब शी डिड नॉट चूज कि कोई भी नॉर्मल कैंपस वो चूज करें, शी चूज द बेस्ट. और यही जिंदगी का सफर है. अगर आप ठान लें कि भगवान आपको हार्डशिप्स दे रहे हैं तो उसे हार मत मानिए, उसको बीट करके आगे बढ़िए एंड देन यू सी शायद आप भी एक दिन मेरे साथ बैठकर अपने ज़िंदगी के खूबसूरत पलों को डिस्क्राइब कर रहे होंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे वर्तिका जी कर रही हैं. सो हर महिला के लिए मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा संदेश है. जुड़े रहिएगा रेडियो मानवरत्न 107.8 एफएम के साथ. फील गुड, फील लाइव.

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी वेमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की खूबसूरत सी कहानी। और आज उतनी ही प्यारी लेकिन बहुत ही इंस्पायरिंग वर्तिका द्विवेदी जी हमारे साथ बैठी हैं। इनफैक्ट इनसे बात कर रही हूं और इनकी जिंदगी की जब कहानी के बारे में मैंने सुना, आई वॉज सो वेरी इंस्पायर्ड। क्योंकि देखिए, जब हार्डशिप्स मिलती है ना, तो इंसान दो ही तरीके से रिएक्ट करता है, या तो टूट जाता है या बन जाता है। इन्होंने जैसे ही हार्डशिप्स देखी तो इन्होंने ठान लिया था, मतलब बचपन से जिन चीज़ों को आज साइकोलॉजिस्ट सिखाते हैं कि जर्नलिंग करिए, ये अपने सपनों को लिखती थी। एंड इमेजिन करिए, शी हैड ऑल हर ड्रीम्स एंड टुडे यू नो शी इज सिटिंग इन द स्टूडियो एंड डेफिनेटली शी कैन से कि इन्होंने अपने सारे सपने पूरे किए हैं। और ये बहुत खूबसूरत सी बात है कि आप एक ऐसा जीवन जी पाएं जहां आपने अपनी चॉइसेस को खुद रखा। वर्तिका जी, मैं महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम करती हूँ, खास तौर पर महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं। और मैंने एक चीज़ देखी है कि महिलाएं इज इक्वल टू लॉट्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ये जो वर्ड है ना, एडजस्टमेंट, कॉम्प्रोमाइज, मुझे ऐसा लगता है ये इनबिल्ट चिप के साथ हमारे साथ आ जाता है। और हर महिला को ये सिखाया जाता है, एडजस्ट करिए, कॉम्प्रोमाइज कर लीजिए, इट्स ओके, जो भी मिला है उसी में मान लीजिए। दे नेवर चेज फॉर द बेस्ट। क्या कहना चाहेंगी, बिकॉज आप तो एक अथक एग्जाम्पल है, यू आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ चेज द बेस्ट एंड लिव द बेस्ट।
1: देखिए, कई बार ये सोचते हैं लोग कि महिलाएं जो है उनको कॉम्प्रोमाइज करने से ही वो अपना नर्चरिंग वाले जो कैरेक्टर है जो वो बेस्ट कर सकती है
0: जी।
1: मैंने एक महिला होते हुए, एक माँ हूँ मैं और मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि आप विमेन हैं एंड आपका एक नर्चरिंग का क्वालिटी इंट्रिंसिक है, मतलब वो आपसे कोई छीन नहीं सकता
0: जी,
1: है ना। और अगर एक एम्पावर्ड वुमेन होंगे तो आप अपने परिवार में ज़्यादा दे सकते हैं।
0: वाकई।
1: तो ये परिवार वालों के लिए भी मेरा मैसेज है कि देखिए, एक एम्पावर्ड वुमेन ही एम्पावर ज़्यादा कर सकती है आपके पूरे परिवार को। आप मतलब अगर मैं मदर इन लॉ, फादर इन लॉ को ये मैसेज दूँ तो मैं ये बोल सकती हूँ कि एक बहू जो आती है, जो एम्पावर्ड बहू होती है, वो आपके बेटे को, आपके ग्रैंड चिल्ड्रेन को, सबके लिए ज़्यादा कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो अवेयर है, वो डिसीजंस ले सकती है ऑन देयर बिहाफ। एंड एक माँ, एक वाइफ कभी किसी के खराब के लिए तो डिसीजंस लेगी नहीं, लेकिन अगर वो जानती है तो आपके लिए भी वो स्ट्रेंथ बन सकती है।
0: बिल्कुल।
1: और ये यही सच्चाई है, यही मैंने अपने लाइफ में देखा है। एंड मैं बिलीव करती हूँ दैट इट इज़ टाइम कि वुमेन ये बात समझे, और जब उनको एडजस्ट करने के लिए बोला जा रहा है तो ये इसको एक लॉजिकली देखिए, कौन सी चीज़ में एडजस्ट करना है, क्या वो एडजस्टमेंट फैमिली के लिए अच्छा है, बुरा है, क्या है। अगर है एंड वो एडजस्टमेंट शायद मेन हो, वेमेन हो, सब लोग हम लोग करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो फैमिली के लिए अच्छा होता है, लेकिन एडजस्टमेंट इन द नेम ऑफ यू नो डिपेंडेंसी इज नॉट एम्पावरमेंट एट ऑल। और एम्पावरमेंट जब वेमेन का नहीं होता तो परिवार का भी नहीं होता। और परिवार को अगर आगे बढ़ना है, सबको स्ट्रेंथ एक साथ होके अच्छा करना है, देन वेमेन का एम्पावर्ड होना, अवेयर होना, फाइनेंशियली लिटरेट भी होना एंड स्किल बिल्ट हो, कि एवरी वेमेन शुड हैव वन और टू स्किल्स जिससे वो कभी भी परिवार को ज़रूरत होता है, कुछ भी है, हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, वो अपना पैसा खुद कमा रही है, खुद ग्रो कर रही है, खुद डिसीजंस ले पा रही है।
0: वाकई।
1: ठीक है, ये सबके भले के लिए है भावना जी।
0: भाई वाकई मैं ये मानती हूँ, क्योंकि ना कई बार आप जिंदगी में देखेंगे कि हम ना एक डिपेंडेंट जिंदगी जीते हैं, उसके पीछे कारण है। हमें सॉफ्टर जेंडर कहा जाता है, हमें वीकर जेंडर कहा जाता है, और ये कहकर हमें या तो चार दीवारियों में पैक कर दिया जाता है कि भाई बाहर निकल के क्या करोगे, जमाना बहुत खराब है, वाई शुड यू गो आउट, हम कमा कर दे रहे हैं ना, डोंट वरी, तुम घर पर बैठी रहो। सो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, इनफैक्ट जब शादी होती है ना, सो हर माता पिता चाहते हैं कि उनकी बेटी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढा जाए जो ढेर सारा पैसा कमाता हो, इररिस्पेक्टिव कि वो उसकी इज्जत कर रहा है या नहीं, लेकिन ढेर सारा पैसा होना चाहिए, क्योंकि हम फिनेंशियल सिक्योरिटी देखते हैं। लेकिन मैं तो ये कहती हूँ, व्हाई डोंट यू गिव योर चाइल्ड, योर डॉटर द फाइनेंशियल लिटरेसी। सिक्योरिटी देखने की जरूरत ही नहीं, वो अपने लिए खुद कमाएगी एंड शी विल हैव अ सिक्योर्ड लाइफ एंड रादर शी विल हैव अ डिग्निफाइड हैप्पी लाइफ। जुड़े रहिएगा रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम। मैं हूं आरजे भावना और रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम वी यानी फेमिन एम्पावरमेंट। मुझे लगता है आज का एपिसोड एंड नहीं होने वाला है, क्योंकि इतनी खूबसूरत सी कहानी है, इतनी इंस्पायरिंग कहानी है वर्तिका द्विवेदी जी की कि क्या कहने। बट हमने इनके जिंदगी के बहुत सारे पन्ने पलटे हैं, हर पन्ने पर एक स्ट्रगल और हर पन्ने पर एक सीख, और इस सीख से ही आप जीवन में बहुत सारी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि हार्डशिप्स हर किसी की लाइफ में आती हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम, लेकिन हार्डशिप्स आते ही इंसान बदल जाता है, या तो वो टूट जाता है या वो बन जाता है। सो आपको यही सीखना है कि आपने टूटना नहीं है, हारना नहीं है, लेकिन उसके लिए आपके पास कोई एक गोल होना चाहिए, जो शायद वर्तिका जी ने बहुत ही कम उम्र में सीख लिया था। तहे दिल से धन्यवाद वर्तिका जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी। जाते जाते क्या खास मैसेज देकर जाना चाहेंगी हमारे सारे लिसनर्स को?
1: भावना जी, मैं ये बोलूँगी कि पर्पस, मकसद। लाइफ में अगर कोई मकसद हो तो लाइफ बहुत ब्यूटीफुल लगता है, और आप जो भी काम कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें बहुत सारे रोल्स एज ए वुमेन मिलते हैं, नर्चरिंग रोल्स, पेरेंट्स ग्रो यू नो ओल्ड हो रहे, उनको देखना, बच्चों को देखना, हस्बैंड के लिए करना, परिवार वालों के लिए करना, ये सारी चीज़ें वुमेन में इनबिल्ट है। लेकिन क्या आपका कोई ऐसा एक मकसद है जो आपको, कितना भी आप मेहनत करें, कितना भी कुछ करें, लेकिन आपको लगता है कि येस दिस इज़ समथिंग जो मुझे हैप्पीनेस देता है एंड मुझे इस चीज़ में आगे बढ़ना है, वो मकसद आपके लाइफ में है क्या? वो होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मकसद आपको सारे कठिनाइयाँ जितने भी कुछ है उस सब कुछ से पार करा के ले जाएगा। वो मकसद आपको अपने से बड़ा होना चाहिए, समथिंग दैट रियली मैटर्स टू यू। लेकिन साथ साथ में डोंट फॉरगेट टू कीप बिल्डिंग स्किल, अप स्किल करना अपने आप को, सीखते रहना एंड आगे अच्छे से सबके साथ बढ़ते रहना।
0: बहुत ही खूबसूरत सा संदेश, एंड डेफिनेटली वर्तिका जी की लाइफ अपने आप में एक पूरी इंस्पिरेशन की एनसाइक्लोपीडिया है। सो जहाँ पर लोग ऐसी चीज़ों से टूट जाते हैं, वहाँ पर ना सिर्फ ये बन गई, लेकिन बहुत सारी महिलाओं को वो सशक्त करती हुई आज एक अच्छा भविष्य देने की कोशिश कर रही हैं। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच वर्तिका जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे सभी लिसनर्स को इतनी बेहतरीन जानकारी दी।
1: मुझे बहुत खुशी है भावना जी, थैंक यू सो मच।
0: दोस्तों, वक्त है आपसे इजाजत लेने का, और एक प्यारे से गाने के साथ मैं ले रही हूँ आपसे इजाजत। अगले हफ्ते आपकी और मेरी होगी मुलाकात। टिल देन कहीं नहीं जाइएगा, जुड़े रहिएगा अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन के साथ, यानी रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम के साथ। फील गुड, फील लाइफ।

0: पर हम।
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार? रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर शुरू हो चुका है प्रोग्राम ये मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रांका आपके साथ और इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और क्या हालचाल, क्या कर रहे हैं आप? और मुझे आप बताइए कि आप इस वक्त प्रोग्राम सुनते वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, है ना? और नंबर हमारा 8010781078, अगर कोई बात आपको शेयर करनी है या कोई बात आप किसी व्यक्ति तक पहुंचाना चाहते हैं, कोई गाना आपको सुनना है, किसी गाने को आपको डेडिकेट करना है, तो नंबर हमारा बहुत ही आसान है, एक बार फिर से बता देती हूँ, 8010781078। और मैं आ चुकी हूँ आपके पास में। मेरे बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं कैसी हूँ, तो मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत अच्छी मैं तब और ज़्यादा हो जाती हूँ जब मैं स्टूडियो में आप लोगों के पास में आती हूँ। तो ये प्रोग्राम और ख़ास तौर पे ये वक्त मेरे लिए, मेरी ज़िंदगी का बहुत ही कहीं के कीमती वक्त है जब मैं आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ और हम गाने इंजॉय करते हैं जो कि प्यारे प्यारे से हैं। तो चलिए इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक गाने के साथ में और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आने वाली हूँ। तो चलिए इंजॉय करते हैं एक गाना, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगी कि आज के प्रोग्राम में मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आई हूँ। तो चलिए बनी रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। मैं हूँ प्रांका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

ये मेरी लाइफ में, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर, और प्रोग्राम ये मेरी लाइफ में जहाँ मैं आपसे ढेर सारी बातें करती हूँ, और मैं अब आपको बताने वाली हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम क्या बात करने वाले हैं। आज उलझती सी जा रही जिंदगी को ठहर कर थोड़ा समझेंगे और उनमें खुशियां कैसे लेकर के आए, इसके बारे में हम बात करेंगे। और इन बातों में मुझे आपका सपोर्ट बहुत चाहिए होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब आप अपनी एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करते हैं ना, तो बहुत कुछ जानने, इनफैक्ट सीखने को मिलता है। तो आपका सवाल, आपका जवाब, आपकी बातें हमारे लिए सभी कुछ बहुत कीमती है, इसलिए आप ज़रूर बताना हमें अगर आप कुछ अपनी ज़िंदगी में फॉलो करते हैं अपनी ज़िंदगी को स्मूथ बनाने के लिए, खुशियों से भरने के लिए, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ ही मैं आपसे बात करूंगी उस वक्त की, जब वो वक्त हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल वाली चीज़ हो जाती है और एक टाइम पर ये एक प्रॉब्लम हो जाती है, और वो है जब हम दूसरों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। तुलना जो है ना, कभी भी किसी से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम सब अलग अलग हैं, हम सब के सोचने, समझने, काम करने का तरीका बहुत अलग है, और हर आदमी, हर व्यक्ति, हर इंसान बहुत खूबसूरत है और बहुत अनमोल है, लेकिन हम ये चीज़ समझ ही नहीं पाते हैं और हम दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं। लेकिन इसका हमारे दिमाग पर, हमारी पर्सनालिटी पर कितना बुरा फ़र्क पड़ सकता है, वो असर पड़ सकता है, आपको मैं बताऊंगी और इससे बचने के उपाय भी आपसे शेयर करूंगी। तो चलिए, सारी बातें आज के प्रोग्राम में होने वाली हैं और आपका सपोर्ट मैसेज के ज़रिए से ज़रूर हम तक पहुंचाइए। चलिए इन्जॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम ये मेरी लाइफ, और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ में। और देखिए लाइफ में आज के टाइम पर खुश रहना बेहद ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हम हमेशा प्रॉब्लम से ही घिरे रहते हैं, है ना। कई लोगों की ये प्रॉब्लम, कई लोगों की शिकायत इनफैक्ट होती है कि प्रियंका हम ना हमेशा प्रॉब्लम से घिरे रहते हैं, कभी हमारे घर में तो कभी ऑफिस में, कभी कोलीग में, कभी फ्रेंड्स में, कभी रिलेटिव्स में, ये सब चलता ही रहता है। सुकून कहाँ मिले ये हमें पता ही नहीं चल रहा है। कई लोगों की ये बातें मुझ तक पहुंचती है और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यार आज कितने ज़्यादा मतलब हम इस तरह की लाइफ जीने के आदि से हो गए हैं कि अपनी खुशियां हम भूलते ही जा रहे हैं। और एक्चुअल में खुश कैसे होना चाहिए दिल से, ये हम कहीं ना कहीं भूल चुके हैं। ज़्यादातर लोग इसी ट्रैप में ना फंसे हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिससे आप सुकून पा सकते हैं, जिससे आपको सुकून के साथ शांति मिलेगी इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में चलते चलते। आई नो आप थक गए हैं और इस थकावट को आप दूर करना चाहते हैं, खुशियों को इंजॉय करना चाहते हैं और इस पल को महसूस करना चाहते हैं, है ना। तो मैं आपको बताती हूँ कि आप ये कैसे कर सकते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा परेशानी हमें तब होती है जब हम अपने काम का रूटीन नहीं बनाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले के लोग मालूम है रूटीन बनाकर चलते थे। रूटीन पहले पेपर पे नहीं होता था, दिमाग में होता था कि उनको किस किस टाइम पे कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं। और यकीन मानिए पहले के लोग समय से पहले अपने टास्क कंप्लीट कर लिया करते थे। लेकिन आज की बात करें, हम इसके नोट बना लें या फ़ोन में मैसेज कर लें या जो भी हमें ईजी वे लगता है हम वो सारी चीज़ें कर लें, लेकिन उसके बाद भी हम एक दो दिन तो रूटीन याद रखते हैं और उसके बाद भूल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारी हैबिट में शुमार नहीं है। तो रूटीन बनाना जो है इसकी आदत आप बनाइए। देखिए लाइफ में कुछ भी पाने के लिए ज़रूरी यही है कि आप रूटीन बनाकर चलिए, इससे जीने की कोशिश कीजिए। आप बिना रूटीन के लाइफ जी रहे हैं तो आपको सब कुछ बिखरा हुआ सा लगेगा, आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि लाइफ में सिमटा हुआ है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि किस टाइम पर आपको क्या करना है। किसी भी काम को फिक्स आप अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइम रूटीन बहुत बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छे से जीना शुरू कर पाएंगे। क्योंकि आप जब धीरे धीरे इस चीज़ को शुरू करोगे, आई नो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लेकिन उसके बाद आप खुद महसूस करोगे कि आपकी ज़िंदगी का, आपकी आदत का हिस्सा बन चुका है। तो रूटीन में काम करना बेहद ज़रूरी है। वहीं आपको एक चीज़ और बताऊँगी जो मुझे बहुत बहुत ज़रूरी लगती है कि ज़िंदगी में इस तरह का ये चीज़ होनी चाहिए, वो क्या है उसके लिए बात करेंगे थोड़ी इसी देर में। एंजॉय करते हैं अगला गाना। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूं प्रियंका आपके साथ।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ। और एक चीज जो मुझे लगता है कि बेहद जरूरी है और वो पता है क्या है कि देखो हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते हैं, है ना। हम हर किसी की हाँ में हाँ करके अपने आप को पीड़ा देते हैं, लेकिन दूसरों की खुशियों के लिए जो लोग काम करते हैं ना, मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप काम करना छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल दूसरों की खुशियों के लिए काम कीजिए, लेकिन आपके इतने एफर्ट्स के बाद भी अगर कोई आपके रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, आपको वो तवज्जो नहीं मिल रही है, तो आप उन खुशियों के लिए काम करना छोड़ दीजिए। क्योंकि जिनको आप खुश कर रहे हैं ना, वो हमेशा ही ऐसे रहने वाले हैं, वो आपके एफर्ट्स को नहीं देखते हैं। बल्कि कई लोग होते हैं जो हमारे लाइफ में सिर्फ हमें हर्ट करने के लिए होते हैं, तो इस टाइम पर ना कहना सीखिए। सिंपल लाइन में जीने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आपको ना कहना आना चाहिए, राइट। और बहुत सारे लोग ना कह ही नहीं पाते हैं, और यही वजह है कि बार बार खुद ऐसी स्थिति में पड़ जाते हैं, ऐसी सिचुएशंस हैंडल करते हैं जो उनके लिए भी सही नहीं है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें कि आपको काम करना चाहिए, है ना। अब जैसे आप बाहर जा रहे हैं, ऑफिस में हैं, फैमिली में हैं, जिसके भी साथ में हैं, जो आपको ठीक लगता है आप वो कीजिए, लेकिन आप किसी का दिल मत दुखाइए, किसी को गलत मत बोलिए, किसी को बुरा मत बोलिए। लेकिन उसके साथ साथ आप अगर किसी की खुशियों पे इतना ज़्यादा आप सोच रहे हैं तो वो आप जाने दीजिए। हमेशा आप उन लोगों को खुश कीजिए जो आपके ज़रे से एफर्ट से वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनकी लाइफ में बड़ा बदलाव आता है। हमेशा ऐसे लोगों को आप अपनी ज़िंदगी में चुने भी और उनके लिए एफर्ट दिखाएं। और जो आदमी, जो ज़िंदगी में ऐसा व्यक्ति जो आपके एफर्ट से खुशी नहीं है, जो आपकी खुशियों में खुशी नहीं है, और आप जितना भी उनके लिए कुछ भी कर लें बट उसको खुशी ही नहीं मिल रही है, तो ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाइए और उनको ना कहना सीखिए, राइट। जो मुझे लगता है कि अगर आप ये करना सीख जाएंगे तो काफ़ी सारे लोगों की जिंदगी बहुत इजी हो जाने वाली है, राइट। ये आप जरूर ध्यान रखिएगा। वहीं मैं आपको एक चीज और, जो हमारे बुजुर्ग भी यही बात, जो बड़े बूढ़े हैं वो भी यही बात कहते हैं और बहुत सही कहते हैं, अब वो क्या है ये आपको पता चलेगा थोड़ी सी देर में। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ, और मैं हूं प्रियंका आपके साथ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूं प्रांका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ, और ये मेरी लाइफ में ढेर सारी बातें हम कर रहे हैं। वही हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं वो भी एक बात कहते हैं, आपने भी उनसे ज़रूर सुनी होगी। और पता है वो जो भी कहते हैं ना वो कभी गलत नहीं होता, वो हमेशा सही होता है। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि उस वक्त हमें वो बात समझ ना आए, लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और वो सिचुएशन को फील करते हैं, उनको उससे सामना करते हैं, तब समझ में आता है कि कितनी बड़ी बात हमारे बड़े बोल कर चले गए। तो एक यही लाइन जो है मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैं आपके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ कि जो भी स्थिति आए हर स्थिति में जीना सीख लीजिए। बहुत कमाल की बात है, आप भी सिंपल लाइफ जीना चाहते हैं और सुकून वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं ना, जहाँ सुकून ही सुकून है, खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो देखिए, हमारी जो लाइफ है उसमें अप्स एंड डाउन्स रहते हैं, यही स्थितियाँ कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग नहीं कर पाते हैं इस स्थिति को एक्सेप्ट, वो हमेशा परेशान रहते हैं अपनी सोच से, अपने चीज़ों से। लेकिन वो लोग जो हम हर स्थिति में हमेशा अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी स्थिति को एक्सेप्ट करते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। तो ज़िंदगी में जो भी बदलाव आ रहे हैं ना, वो कई बार आपकी परीक्षा होती है, और कई बार आपके दिन बदलने से पहले जो आपके पास इस तरह के दिन आते हैं ना, ये वो वाले होते हैं जो हमें एक बड़ा लेसन सिखा करके जाते हैं। तो जो लेसन सीख लेते हैं वो लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं खुशी खुशी, लेकिन जो नहीं सीख पाते हैं वो हमेशा परेशान रह जाते हैं। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आप परेशान हो, बल्कि हाँ, आप इस चीज़ से समझें कि जो हमसे कहा जाता है कि हर स्थिति में खुश रहा जाए, वो बस आप एक्सेप्ट कर लीजिए, फिर देखिए सब कुछ अच्छा लगेगा। आपको दुख में भी न्यूट्रल रहना आ जाएगा और खुशियों को भी इंजॉय करना आ जाएगा, वरना यूं ही परेशान ज़िंदगी बिता देंगे, पता ही नहीं चलेगा, है ना। तो ये चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रांका आपके साथ, और प्रोग्राम है कि मेरी लाइफ।

मैं हूं प्रियंका आपके साथ रेडियो मानवरचना 107.8 एफएम पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और साथ ही मैं तो चाहती हूं कि आप हमेशा खुश रहो और वो करो जो आपको पसंद है। इतनी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में ना अपने लिए वक्त निकालना काफ़ी मुश्किल है आज के टाइम पे, लेकिन अगर आप वक्त निकाल पा रहे हैं तो अपने लिए उस वक्त को स्पेंड कीजिए क्योंकि बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं है कि नामुमकिन है आप अपने लिए वक्त निकाल ही नहीं सकते। देखिए, हर कोई अपने लिए वक्त निकाल ही सकता है, किसी के पास ज़्यादा किसी के पास कम, लेकिन वक्त सबके पास थोड़ा या ज़्यादा होता ज़रूर है। तो आप भी इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए और आप वो करें जो आपको पसंद है। अब आप सोचिए आपको क्या पसंद है, या आप ये सोचिए कि आज से 10 साल या 15 साल पहले आपको क्या करना पसंद आता था, आपको कौन सी चीज़ सबसे बढ़िया लगती थी जो आपकी ज़िंदगी में सबसे इम्पॉर्टेंट एक अहम हिस्सा होती थी, रोल प्ले करती थी आपकी ज़िंदगी में, वो आप करना शुरू कीजिए। आपका मन क्या कहता है, क्या चाहता है वो कीजिए। यकीन मानिए आप इतने एक्साइटेड रहेंगे ना अपनी

लाइफ को जीने के लिए कि आपको रात को नींद तक नहीं आएगी एक्साइटमेंट में, इतनी खुशी आपको रहेगी कि हाय अब कल का दिन है, कितना खूबसूरत होने वाला है, मैं ये भी करूँगी, ऐसे भी करूँगी, वो भी होगा लाइफ में, ये भी। तो एक तो नींद हमें तब नहीं आती जब हम थोड़ा मेंटली प्रॉब्लम में रहते हैं, परेशान रहते हैं, लेकिन एक नींद हमें एक्साइटमेंट में भी नहीं आती, और वो एक्साइटमेंट आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा रहेगी अगर आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं। इसलिए हमेशा अपनी पसंद के काम करने शुरू कर दीजिए। और एक और चीज़ आपसे बोलूँगी, ये भी हमारे बड़े कहकर गए हैं और आप लोग भी इस चीज़ से वाकिफ होंगे कि कौन क्या कहता है, कहने दीजिए, जाने दीजिए। इसको अगर दिल दिमाग में बैठाएंगे तो ज़िंदगी परेशान हो जाएगी, आपको जीने में बहुत भारीपन लगेगा। इसलिए हमेशा एक चीज़ ध्यान रखना कि आप जैसे हैं वो सिर्फ आप जानते हैं, आपको किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपको इस जगह पर एक्सप्लेन करना चाहिए, आप कीजिए, लेकिन उसको वहीं पर स्टॉप कर दीजिए। कोई समझे ठीक, नहीं समझे तो जाने दीजिए, क्योंकि आप वहाँ सच्चे थे। बट उसकी सफाइयाँ बार बार अगर किसी को देते हैं तो वहाँ पर आप झूठे महसूस होते हैं। इसलिए ये चीज़ छोड़िए और आप ही परेशान होंगे, इसलिए इस चीज़ को जाने दीजिए और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। जीना आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है, और अगर नहीं जी पाए और घुट घुट कर ज़िंदगी आपने पूरा टाइम निकाल दिया, तो आखिर में जब आप बैठे होंगे चेयर पे और तब सोच रहे होंगे ना अपने आप को, तो सिवाय दुख के, तकलीफ़ के, आपको कुछ नहीं मिलेगा। और मैं हमेशा मैं आपको उस टाइम पीरियड पे लेके जाती हूँ जब वो वाली एज आएगी जब हम सोचेंगे बैठ के। मैं हमेशा आपसे, अगर आपने सुना हो तो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि आप सोचो कि आप चेयर पर बैठे हैं और आप अपनी ज़िंदगी का आकलन कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी क्या किया, मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या था। और जब आप पाएंगे कि मेरी ज़िंदगी का तो कोई मकसद जो मैं लेकर आया था वो तो पूरा ही नहीं हो पाया, या जो मैंने सोचा था वो तो मैं कर ही नहीं पाया, और सिवाय पछतावे के और दुख के आपको कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जो चीज़ आप पहले कर सकते हैं वो कीजिए, बाद में सोचने से कुछ नहीं होगा। इसलिए ज़िंदगी को खूबसूरती से जिए और मल्टीटास्किंग से बचें। जी हाँ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और खुश रहिए। चलिए अब आपको एक बेहद ही प्यारा सा गाना सुनाती हूँ। रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप, मैं हूँ प्रियंका आपके साथ, और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM सुन रहे हैं आप. मैं हूं प्रियंका और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि जब हम कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो हमारा मूड भी हैप्पी हैप्पी हो जाता है, यानी कि हम अच्छा सोचने लगते हैं, अच्छा महसूस करने लगते हैं, अच्छा वो सब पूरा समा लगने लगता है. होता है ना ऐसा? और पता है एक बात जो आपने अपने बड़ों से भी सुनी होगी और आपको ये पता भी होगी कि अच्छा अगर महसूस करना है, अच्छा काम करना है, तो जो अच्छे लोग होते हैं, पॉजिटिव लोग होते हैं, उनके साथ में उठना बैठना शुरू कर दीजिए. पता है क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इसका हमारी ज़िंदगी पर बहुत फ़र्क पड़ता है. आप कैसे लोगों के साथ रहते हैं, अपना वक्त बिताते हैं, इसका असर बहुत पड़ता है हमारे ऊपर. इसलिए आपको ऐसे लोगों के साथ वक्त बिताने की कोशिश करनी चाहिए जो जीवन को लेकर के हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, एक पॉजिटिव नज़रिया रखते हैं और कुछ करने के बारे में सोचते हैं, कुछ अच्छा जो लाइफ को आगे बढ़ा सकता है, आज के यूथ को एक मैसेज दे सकता है. जो इस तरह की सोच रखते हैं ना, हमेशा ऐसे लोगों के साथ में रहना चाहिए. और हमारे आसपास ऐसे लोग हैं और आपको सिर्फ ढूंढने की ज़रूरत है, आपको बात करने की ज़रूरत है. ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करेंगे तो बहुत अच्छा दिमाग रहेगा. पॉजिटिव लोगों के साथ में इसलिए कहते हैं कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, तो ये आप कर दीजिए. और एक चीज़ आपको मैं कहूँगी कि थोड़ा सा अगर आप सिर्फ दो तीन चीज़ें ही लाइफ में करें तो थोड़ा सा और एडवांस हो जाइए. ये सोचिए कि मुझे लाइफ में बहुत कुछ अभी करना है. ये सोच के जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको कई बार ऐसा भी होगा कि जाने अनजाने में ऐसे रास्ते भी आपके खुल जाएंगे जहां आपको आपको राह ही राह मिलेगी. तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये सब तभी हो सकता है जब आपका हेल्दी माइंड रहेगा, खुश रहेंगे, हल्का महसूस करेंगे और ज़िंदगी को जीने के लिए पूरी तरीके से एक्साइटेड रहेंगे. ये तभी चीज़ें पॉसिबल है. इसलिए मैं जो आपसे बातें कर रही हूँ ना, ये कहीं ना कहीं हम सब की ज़िंदगियों से ही जुड़ी चीज़ें हैं. इसको आप फॉलो कीजिए, इसको अपने दिमाग में बैठाइए, इसको अपना रूटीन बनाइए, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी तेज़ी से बदलती है और ये बदलाव डेफिनेटली अच्छे होंगे. अच्छा, बहुत से लोगों को ना तुलना करने की बहुत आदत होती है. वो तुलना करते हैं एक दूसरे से और ये वाली चीज़ आपके लिए कितनी नुकसानदायक हो सकती है आपको मैं बताऊंगी. वाकई में ये बहुत बुरी चीज़ है हमारे लिए, हमारे जीवन के लिए. इसके बारे में बात होगी रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम की मेरी लाइफ और मैं हूँ प्रियंका आपके साथ.

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ और काफ़ी सारी बातें हमने की खुशियों को लेके कैसे खुश रहना है ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाना है लेकिन एक चीज़ जिससे आज के टाइम पर काफ़ी लोग इफ़ेक्टेड हैं और देखिए हमें लाइफ में लोगों से जुड़ना होता है चीज़ें सीखने के लिए आगे बढ़ने के लिए बेहतर बनाने के लिए दूसरों से जुड़ना पड़ता है लेकिन पता क्या होता है हम धीरे धीरे खुद को कंपेयर करने लगते हैं जब देखते हैं कि हम मान लो किसी के साथ किसी ग्रुप में हैं जहां हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं बट हमारे सामने वाला जो है वो काफ़ी अच्छा कर रहा है लाइफ में तो हम कंपेयर करने लगते हैं और पता है यही कंपेयर करने की जो आदत है ये हमें कितना नुकसान पहुँचा सकती है और अक्सर ऐसा होता है जब एक मुकाबला शुरू हो जाता है और अपने आप को ये मुकाबला कब कैसे हम कंपेयर करने लगते हैं ये वाली चीज़ जो मुझे लगता है कि काफ़ी लोगों के अंदर ये होती है तो ये आप नहीं कीजिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है कंपेयर करना तो बिल्कुल मतलब अपने आप को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ है राइट इसलिए अगर आप भी कंपेयर करते हैं वो कंपैरिजन की आदत है आपके अंदर इसको आज ही से छोड़ दीजिए क्योंकि ये एक ऐसा पॉइजन है जो आपको धीरे धीरे धीरे धीरे गला रहा है तो वो आप मत कीजिए अपनी आदत को आप समझिए आप समझ सकते हैं कि ख़ुद को दूसरे से बेवजह तुलना करना एक ऐसी आदत हो सकती है जो आपने अपने जीवन में या तो बचपन में या किसी एक टाइम पर आपने सीखी और अब वो तुलना इतनी ज़्यादा होने लगी है कि आप खुद परेशान होने लगे हैं तो देखिए ऐसा होता है कई बार ऐसा हो जाता है तो आप वो बस अपने आप को समझने की ज़रूरत है कि आप जो हैं जैसे हैं आप अपने लिए बेहतर हैं और एकदम फिट हैं और आप जो हैं वो आप ही हैं भाई आप किसी से कंपेयर खुद को कर ही नहीं सकते हैं ये वाला ना मुझे लगता है कि एटीट्यूड ना अपने अंदर आपको रखना चाहिए ये एटीट्यूड जिस दिन आ जाएगा ना आपके अंदर में आपको ऐसा लगेगा बस मैं ही मैं हूँ और आपको आप खुद अच्छे लगने लगेंगे तो ये आपको एटीट्यूड रखना ज़रूरी है दूसरी चीज़ खुद से आप सवाल कीजिए कि आप खुद की तुलना दूसरों से क्यों करते हैं जब आप अपनी वजह को पहचान लेंगे तो उसे संभालना आपके लिए इजी हो जाएगा शुरुआती टाइम पर आपको थोड़ा वक्त लगेगा और ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि एक आदत है जो शुमार हो चुकी है और अब इसको थोड़ा ठीक करने में टाइम लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको चेंज नहीं कर सकते आप ये खुद से सवाल कीजिए कि मैंने अगर कंपेयर किया तो क्यों किया मे बी बचपन से आप करते आ रहे हैं लेकिन अब क्यों मैं क्यों नहीं अपने लिए अच्छा कर पा रहा या कर पा रही ये सवाल अपने लिए रखना ज़रूरी है जिस दिन आप ये रख लेंगे उस दिन मुझे लगता है कि चीज़ें इजी हो जाएंगी तो कंपेयर करना किसी भी सूरत में ठीक नहीं है राइट तो मैं तो यही कहूँगी कंपेयर मत कीजिए बल्कि ज़िंदगी को इन्जॉय कीजिए ऐसे ही एक चीज़ आपके साथ में और शेयर करना चाहूँगी और वो क्या है किस बारे में है ये आपको बताऊंगी थोड़ी सी देर में चलिए एंजॉय करते हैं गाना रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर मैं हूं प्रियंका आपके साथ और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ

मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर और प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ. और ये मेरी लाइफ में काफ़ी सारी बातें हम कर चुके हैं और अभी मैं एक ऐसे सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर रही हूं. एक ऐसा टॉपिक है जो कि कई लोग इससे घिरे हुए हैं, कई लोग इससे परेशान हैं और वो है अपने आप को कंपेयर करना. पता है कई बार ऐसा होता है कि हमें पता ही नहीं होता कि ये हमारे लिए कितना ख़तरनाक हो सकता है. और कई बार पता है क्या होता है, हमें दूसरे लोग कंपेयर कर रहे होते हैं कि देखो आप उतने अच्छे से नहीं कर पाए लेकिन देखो वो कितने अच्छे से कर रहा है. मे बी हमारे करीबी हो सकते हैं, मे बी आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन ये कंपेरिजन लोग करते हैं. लेकिन अब बात यहाँ पर है कि आप कितना अफेक्टेड हो रहे हो उससे. इस चीज़ के बारे में बस आपको सोचने के लिए कह रही हूँ क्योंकि ये वाली चीज़ जो है ना, अगर आप सोच लेते हैं तो मुझे लगता है कि आगे की ज़िंदगी आपकी काफ़ी ईजी होने वाली है. तो ख़ुद को कंपेयर किसी भी सूरत में नहीं करना है. हाँ, लेकिन ये ज़रूर बोलूँगी कि अपने आप को जानने की तलाश में आप बढ़ते रहिए, आगे उस चीज़ को जारी रखिए और एक पॉजिटिव एटीट्यूड अपने साथ में रखना, अपने अंदर रखना ये ज़रूरी है, राइट? तो ये जिस दिन आप कर लेते हैं उस दिन मुझे लगता है कि आपका जो जीवन है वो काफ़ी इजी हो जाएगा. और पता है आज के टाइम पर हम हर चीज़ पा सकते हैं अगर हमने ठान लिया कि हमें लाइफ में आगे बढ़ना है. हमें खूब सारी पढ़ाई करनी है, एक मुकाम पर आना है, अच्छी जॉब हमें लेनी है या किसी पोस्ट पर हमें आना है, अच्छी सैलरी, ऑफ कोर्स सबको चाहिए अच्छी सैलरी, और अच्छी जगह पर हमें रहना है. हर कोई सब अपनी ज़िंदगी में अच्छा ही चाहता है. और ये वाली चीज़ें अगर आप देखें, अगर हम अच्छे से डट के मेहनत करते हैं तो हम इस चीज़ को पा सकते हैं. लेकिन पता है आजकल अपनी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन पाना, अपनी ज़िंदगी को समझना, अपनी खुशियों को समझना, इस चीज़ को पाने के लिए ना तो हम सोच पाते हैं, और सोच पाते हैं तो इसको पाने के लिए हमें कई वक्त लग जाता है, कई बार पूरी ज़िंदगी लग जाती है. तो जो चीज़ें हमारे हाथ में है लेकिन हम उसको नहीं पा रहे हैं, काम उस पर कीजिए, राइट? और मुझे लगता है कि आप यकीनन अपने आप को पा पाएंगे. कोई सवाल आपका है, कोई बात आप शेयर करना चाहते हैं, कोई मैसेज आपको हम तक पहुंचाना है, नंबर हमारा है 8010781078. होप करती हूं कि आप इन चीज़ों को अमल करेंगे अपनी ज़िंदगी में, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए. मैं हूं प्रांका आपके साथ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर. प्रोग्राम है ये मेरी लाइफ.

रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर. देखा कितना प्यारा सा गाना मैंने आपको सुनाया है. ये गाना सुन के तो कोई अगर सैड भी होगा ना तो वो भी खुशी से झूम उठेगा. मैं गाने ही ऐसे लेकर के आती हूँ, 90s के खूबसूरत गाने. और अगर आप इन्हें सुनना चाहते हैं या अपनी फरमाइश हमसे करना चाहते हैं तो नंबर मैं पता है आपको इस प्रोग्राम में इतनी बार नंबर बताती हूँ कि कोई भी ऐसा ना हो जो मेरे से ये बोले कि आपका नंबर नहीं बताया. मैं नहीं चाहती हूँ कि आप नंबर से बिल्कुल एकदम आपको समझ ही ना है कि करना क्या है. तो बिल्कुल आपको आते ही नंबर देती हूँ और जाते वक्त भी. बहुत ही आसान ये नंबर है, नोट कर लीजिए, 8010781078. ये हमारा नंबर है. देखा कितना आसान है. तो बस इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप मैसेज कीजिए. तो चलिए, मेरे चलने का वक्त हो गया है. मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाकी आगे आने वाले प्रोग्राम्स को एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM. फिर मिलूंगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत. बाय.

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर हाजिर है आपका दोस्त फहीम लेकर यादों का सफर। दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कवि देव के बारे में। रीतिबद्ध काव्य परंपरा के आचार्य कवि देव रीति काल में एक विशिष्ट स्थान रखते हैं। माना जाता है कि उन्होंने अपना अधिकांश साहित्य अपने आश्रय दाताओं और राजाओं को समर्पित करने के उद्देश्य से रचा था। वो खास तौर से श्रृंगार रस के कवि हैं और उनके काव्य में प्रेम और सौंदर्य के भावपूर्ण और सूक्ष्म चित्र मिलते हैं। उनकी कविताएं जिनमें हंसी की चोट, सपना और दरबार को विद्यालयों के साथ साथ बीए और एमए के पाठ्यक्रमों में भी पढ़ाया जाता है। तो आज इनके बारे में, यानी कि रीतिबद्ध कवि देव के बारे में बहुत सारी बातें करूंगा, इनके जीवन की बात आपके साथ साझा करूंगा और इनकी रचनाओं का जिक्र भी होगा। फिलहाल आवाज की दुनिया के सभी दोस्तों को फहीम का नमस्ते, सलाम।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों बात हो रही है आज कवि देव के बारे में। देखिए दोस्तों, रीतिबद्ध काव्य के प्रतिनिधि कवि देव का कोई प्रमाणिक जीवन वृत्त अब तक सुलभ नहीं हो सका है, लेकिन साहित्यविदों और इतिहासकारों के अनुसार उनका जन्म लगभग सन 1673 में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। उनका मूल नाम देवदत्त द्विवेदी था, लेकिन वो अपनी काव्य रचनाओं में देव उपनाम का प्रयोग करते थे। कुछ स्रोतों में पिता का नाम बिहारीलाल बताया गया है। उनके प्रारंभिक जीवन और शिक्षा के विषय में अधिक प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जितनी भी जानकारी है आज आपके साथ साझा करूंगा कवि देव के बारे में। आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर यादों का सफर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर आप में फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, माना जाता है कि कवि देव ने अपना अधिकांश साहित्य अपने आश्रय दाताओं और राजाओं के सम्मान में रचा था। मुगल बादशाह यानी औरंगजेब के पुत्र आलम शाह के संपर्क में आने के बाद उन्हें अनेक आश्रयदाताओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा संतोष सहृदय आश्रयदाता यानी भोगी लाल के यहाँ प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उनके काव्य से प्रसन्न होकर भोगी लाल ने उन्हें लाखों की संपत्ति उपहार स्वरूप प्रदान की थी, जबकि देव का अधिकांश जीवन राज दरबारों, नवाबों और अमीरों के आश्रय में बीता था। लेकिन धीरे धीरे उन्हें राज दरबारों का आडंबर, दिखावा और चाटुकारिता भरा जीवन कचोटने लगा था, जिसके कारण वो बहुत दुखी रहते थे। कविदेव की रचनाओं के बारे में भी आपसे जिक्र होगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 एफएम पर।

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: आइए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कवि देव की रचनाओं के बारे में। बताया जाता है कि 16 वर्ष की किशोर अवस्था में ही देव ने भाव विलास जैसी प्रौढ़ रचना का सृजन किया था। वहीं इनकी काव्य रचनाओं में संस्कृत, प्राकृत और साहित्य शास्त्र की पैठ स्पष्ट दिखाई देती है। विद्वानों द्वारा उनके ग्रंथों की संख्या 52 से 72 तक मानी जाती है। अब मैं आपको उनकी कुछ काव्य रचनाओं के नाम बताता हूँ, जैसे रस विलास, भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, अष्टयाम, सिरजान, सुजान विनोद, राग रत्नाकर, शब्द रसायन, देव माया प्रपंच, सुख सागर, प्रेम दीपिका, सुमेल विनोद और काव्य रसायन। तो ये इनकी वो काव्य रचनाएं हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा इन्होंने कुछ सवैये भी लिखे थे। कविदेव के सवैयों के बारे में भी बात होगी और सवैये लिखने में ये किस भाषा का इस्तेमाल करते थे वो बात भी आपके साथ साझा करूंगा। सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर यादों का सफर।

प्यार गुलाब। रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर। दोस्तों, बात हो रही है कवि देव के बारे में। उनके कुछ सवैये हैं जो कि बड़े मशहूर हैं और उनकी भाषा भी अपने देश भारत की संस्कृति से जुड़ी हुई है। वो लिखते हैं, ता दिन ते अति व्याकुल है, तिये जा दिन ते पिए पंत सिधारे, भूख ना प्यास बिना ब्रजभूषण, भामिनी भूषण भेष बिसारे, पावत पीर नहीं कवि देव, करो रिक मोरी सवै करे हारे, नारी निहारी निहारी चले, तजी बैद बिचारी बिचारी बिचारे। कवि देव अपने दूसरे सवैये में लिखते हैं, बोली उठो पपीहा कहूं, पीब सु देखिए को सुनी कै धुनी धाई, मोर पुकारी उठे चहूं ओर, सुदेव घटा घिर की चहूं धाई, भूली गई ती को तन की सुधी, देखे उतै बन भूमि सुहाई, सांसन सो भरी आयो गरु, अरु आसुन सो अखियां भरी आई। तो दोस्तों, इस तरह के सवैये लिखने का अंदाज था कवि देव का। इनके बारे में कुछ और भी बातें हैं, वो मैं आपके साथ साझा करता रहूंगा, लेकिन सिर्फ रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर। नफर

0: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप मैं फहीम के साथ और सुन रहे हैं यादों का सफर।
1: दोस्तों, कवि देव के सवैयों के बारे में आपसे जिक्र कर रहा था। एक उनका सवैया जो कि राधिका की बात करता है, कान्हा की बात करता है। वो अपने सवैये में लिखते हैं, राधिका कान्हा को ध्यान धरे, तब कान्हा है राधिका के गुण गावे, त्यों असुवा बरसे बरसानी को, पाती लिखे लिखी राधिका धावे, राधे है जाई तेही छिन देव, सुप्रेम की पाती ले छाती लगावे, आपू ते आपू ही में उर्जे, सुरझे बिरझे समुझे समुझावे। तो इस तरह से दोस्तों अपने सवैये के माध्यम से उन्होंने राधिका और कान्हा की बात को भी लोगों तक पहुंचाया है। लेकिन कहते हैं संसार का सबसे बड़ा सत्य यही है कि जो इस संसार में आया है

कीजिए, आसपास पेड़ पौधे लगाएं और सुनते रहें रेडियो मानव रचना 107.8 FM। चलता हूँ, फिर मुलाकात करूँगा। अपना ख्याल रखना। नमस्ते, खुदा हाफिज।

0: जर्रे जर्रे में उसी का नूर है, झांक खुद में वो न तुझसे दूर है। इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर, इश्क है उससे तो सबसे इश्क कर। इस इबादत का यही दस्तूर है, इसमें उसमें और उसमें है वो ही, इसमें उसमें और उसमें है वो ही। यार मेरा हर तरफ भरपूर है।
1: रेडियो मानव रचना 107.8 पर शुरू हो चुकी है प्यार मोहब्बत अमन की महफिल, सूफी महफिल। और इस महफिल में शामिल सभी दोस्तों की खिदमत में फहीम का नमस्ते सलाम।

0: इस दुनिया में कोई भी अनाथ नहीं है, सबका नाथ परम पिता परमेश्वर है।
1: दोस्तों सूफी जो है ना, सूफी तो बस अपने प्रियतम के प्यार में दीवाना होता है, उससे मिलने के इंतजार में बेताब होता है। और सच तो ये है कि बेकारों या बेखबरों का भी कोई दर्शन होता है, कोई धर्म होता है, वो तो बस अपने के मिलन में व्याकुल होता है। तो ऐसे में सूफी को या सूफीवाद को किसी धर्म से जोड़ना गलत ही नहीं, निरर्थक है, क्योंकि अपने इष्ट के प्रति ये अवस्था किसी की भी हो सकती है। और जब भी कोई इस स्थिति से गुजरता है तो वो हर बंधन से परे हो जाता है, हर बंधन से आजाद हो जाता है।

इस दुनिया में एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जिसका जीवन अकलंक हो। दोस्तों, सूफी संत बुल्ले शाह कहते हैं, प्रभु कहीं और नहीं, मेरे अंदर है। उसे बाहर खोजना, उसे बाहर तलाश करना फिजूल की बात है, सब व्यर्थ है। इसलिए मैं काबे की ओर कैसे जाऊं, क्योंकि मेरे दिल में तो इनायत शाह के तख्त हजारी की चाह है। मैं क्यों कर जावा काबे नू, दिल लोचे तख्त हजारे नू। इन्हीं बातों का समर्थन करते हुए सूफी संत शेख फरीद जंगल जंगल प्रभु की तलाश में भटकते हुए वैरागियों से कहते हैं, अरे ओ वैरागी, जंगल में क्यों मारा मारा फिरता है, क्यों पांव तले कांटों को रौंदता है, भगवान तेरे हृदय में ही बसता है, इसे बाहर जंगल में क्यों ढूंढता है। इसी बात का समर्थन करते हैं सूफी संत सुल्तान बाहू। सुल्तान बाहू कहते हैं कि भक्ति का आडंबर करने से, यानी कि माला फेरने से, सिर मुड़ाने से, व्रत उपवास रखने से, रोजे रखने से, नमाज पढ़ने से कोई खुदा को नहीं पा सकता, कोई ईश्वर को नहीं हासिल कर सकता। सभी कर्म कांड दिखावे मात्र हैं।

अध्ययन हमें आनंद प्रदान करता है, अलंकृत करता है और योग्यता प्रदान करता है। दोस्तों, कई सूफियों ने जिक्र यानी कि सिमरन ध्यान को ही कलमा या जिक्र रूही कहा है। उन्हीं में से एक हैं रूमी। रूमी कहते हैं, तू जिक्र कर जिससे वो रब प्रकट हो जाए। ऐसा जिक्र नहीं जो जुबान से हो, क्योंकि जुबानी जिक्र आरजी होता है, पर जिक्र रूही दरवेशों के हुनर हैं। लेकिन लोग हैं दिखावे में लगे हुए हैं, कोई ढेरों किताबें पढ़कर खुद को ज्ञानी करार देता है। किताबी ज्ञान को पढ़कर किसी को इल्म या आत्मज्ञान हासिल नहीं हो जाता, ना ही कोई किताबें लिखकर बहुत बड़ा ज्ञाता हो जाता है। इसलिए फिर कलमा पढ़ा जाए या किताबें, ये सब कभी किसी को सच्चा सुख नहीं दे सकते, क्योंकि ये सब बाहरी बातें हैं और सच्चा सुख भीतर है, मन में है, जहां सच्ची सत्ता यानी खुदा का वास है।

अनर्गल प्रलाप भी ध्यान से सुनो, उसमें भी अर्थ होता है। कीचड़ में हाथ डालने पर ही कमल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, फना फना मतलब मिट जाना, खो जाना, मिल जाना। स्वयं को परमात्मा में, परम शक्ति में इस कदर लीन कर लेना कि स्वयं का कुछ भी अस्तित्व ना बचे। खुदा में खो जाने की अवस्था को कहते हैं फना। ऐसी स्थिति में साधक खुद नहीं बचता। सूफियों में फना की ये स्थिति हिंदू धर्म के मोक्ष और बुद्ध धर्म के निर्वाण की स्थिति से काफी मिलती जुलती होती है। और जब कोई भी सूफी फना होता है, वो अपने आप को खुशकिस्मत समझता है।

0: हर काम में अड़ंगा लगता है। ये प्रकृति का नियम है, पाते वही है जो इसकी परवाह किए बिना कदम बढ़ाते चले जाते हैं। दोस्तों, उसे संसार के दुख क्या दुख देंगे जिसने खुद दुखों को गले लगा रखा हो, जिसने हमेशा दुख का स्वागत किया हो और पीड़ाओं को चुना हो। उसे जन्म मरण का दुख क्या सताएगा। प्रेमी खुद अपना ख्याल रखना जानता है, प्रेमी प्रेम में खुद को पहचानना सीख जाता है। प्रभु प्रेम ही जिसके जीवन का आधार हो, उसको खुद उस आदि सत्ता से आदेश हासिल होने लगते हैं। जिसने खुद अपने खुदा के हाथों प्रेम का प्याला पिया हो, उसके जीवन में किसी भी तरह की दुविधा या मुसीबत की कोई जगह नहीं बचती।
1: प्रीत की लत मोहे ऐसी लागी,

जो अडिग है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अंगद की तरह अपना पांव रख दो, तुम्हारी जय होगी। दोस्तों, सूफी शेख कहते हैं, अपनी कमी या कमजोरी जान लेना ही काफी नहीं, उसको जड़ से मिटाना भी जरूरी होता है। सिर्फ सोचो ही नहीं, उसे करो भी। जिसके लिए तीन चीजें जरूरी हैं, या यूं कहें तीन नियम हैं। पहला, कि अच्छा और शुभ करने में कभी भी वक्त बर्बाद मत करो। कोई मुहूर्त या बहाना मत खोजो। हर प्रकार के आलस से बचो। दूसरा, कि अपने अच्छे कर्मों पर भी ध्यान दो। जिन्हें तुम अच्छा कहते हो या लोग अच्छा कहते हैं, उसमें भी खुद कमी ढूंढो। नहीं तो हमें ये गलत फहमी होगी, या अहंकार होगा, या घमंड होगा कि हम सबसे सही हैं या हम सबसे नेक हैं।

रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर आप सुन रहे थे प्यार मोहब्बत अमन की महफिल, सूफी महफिल। लेकिन अब आपकी रात का हम सफर फहीम चाहता है आपसे इजाजत। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।

वेल हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, जय माता दी, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मैं हूं आरजे सागर, आ चुका हूं लेकर के शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। और इस वक्त आप लोग सुन रहे हैं रेडियो 107.8 एफएम, फील गुड फील लाइफ। ये शो यूं तो बहुत खास है, अगर आप एक रेगुलर लिसनर हैं तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। और अगर भैया आपने पहली बार हमारा ये शो सुना है, सुन रहे हैं पहली बार, तो हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हम लोग स्टार्टअप स्टोरीज लेकर के आते हैं। सो द ऑब्जेक्टिव इज टू मेक यू मोर अवेयर ऑफ थिंग्स जो आपके आसपास हैं, मेक यू मोर अवेयर ऑफ स्टार्टअप इंडस्ट्री, मेक यू मोर अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर टर्म सेल्फ रिलायंट इंडिया, जिसको हम यहाँ पर बात करते हैं, यानी कि आत्मनिर्भर भारत कैसे हुआ, किन किन लोगों का योगदान रहा, कौन कौन सी कंपनीज हैं, फाउंडर्स कौन है, बैकग्राउंड क्या है, तमाम चीजें डिस्कस करते हैं। आज ऐसी एक और खास शो लेकर के आए। फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है, एट फर्स्ट वी गोना टॉक अबाउट द इंडस्ट्री पार्ट, देन वी गोना टॉक अबाउट द कंपनी पार्ट। तो कहीं जाइएगा मत फिलहाल, क्योंकि हम ले रहे हैं एक म्यूजिकल ब्रेक। मेरा सलाम कबूल करिए, स्टे ट्यून्ड, फील गुड फील लाइफ।

एंड विद दिस नोट कि आपको ये गाने अच्छे लगे अपने शो को हम आगे लेकर चल रहे हैं दोस्तों। मैं आरजे सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की। आज जिस कंपनी की हम बात करने वाले हैं उसके पहले थोड़ा समझते हैं कौन सी मार्केट है और इस मार्केट में क्या क्या चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम इस शो को एक एजुकेशनल शो के तौर पे आपको बताते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरी बातचीत में, मार्केट को जितना भी आप चीज समझेंगे उसमें से आपको ये भी समझ में आएगा एज अ न्यू प्लेयर अगर आप एंटर करना चाहते हैं तो एग्जैक्टली रोड मैप कैसा हो सकता है। उसके बाद कंपनी के बारे में बताएंगे और ये बताएंगे उस कंपनी ने कौन सा रोड मैप फॉलो किया। तो जो आज की कंपनी डील करती है जिस इंडस्ट्री में, उस इंडस्ट्री का नाम है ब्यूटी टेक। ब्यूटी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर ये वर्ड बना है। अब ये टेक लगभग हर एक इंडस्ट्री के साथ जुड़ चुका है। एडटेक आ चुका है, फिनटेक आ चुका है, देन उसके बाद फैशन टेक आ चुका है, मेडटेक आ चुका है। तो क्योंकि हर जगह पर टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल एक रोल प्ले करती है। तो जो ब्यूटी टेक मार्केट है उसको हम थोड़ा समझें। अगर यहाँ पर आप रेफर कर सकते हैं इस एक टर्म को, टेक्नोलॉजी एंड ब्यूटी का मिलाकर एक कोलैबोरेशन है, इस एक चीज को हम जानते हैं ब्यूटी टेक के नाम से। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजों में हमारी मदद करती है। सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप अपने घर पर चीजों को मंगवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर अदर इनोवेशंस, जैसे कि एआई पावर्ड स्किन केयर डिवाइसेस होते हैं, एआई पावर्ड जो वर्चुअल ट्राई ऑन्स होते हैं, या पर्सनलाइज्ड आपको ब्यूटी सॉल्यूशन चाहिए। फॉर एन एग्जांपल, आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है फिजिकली मार्केट जाने का। अब जब आप ऑनलाइन कुछ देख रहे हैं, मानकर चलिए मेकअप की आप कोई चीज देख रहे हैं, या आप मे बी मस्कारा देख रहे हैं, आपके ऊपर वो सूट करेगा नहीं करेगा, जो आप टोन देख रहे हैं, जो शेड आप देख रहे हैं, फीमेल्स के केस में अगर बात करें तो लिपस्टिक या स्किन केयर का कुछ और चीज है, तो वो तमाम चीजें आप घर पे अपना ट्राई कर सकते हैं। जब ये हमें सुविधा मिल जाती है, जब इतना एक्सेस हमें मिल जाता है, दैट मींस कि टेक्नोलॉजी ने अपना काम अच्छे से प्ले कर दिया है। तो कुल मिलाकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स या ब्यूटी सर्विसेज जो हमें मिलती हैं थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, उसको हम ब्यूटी टेक के नाम से रेफर कर सकते हैं। और ये मार्केट बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। यहाँ पर एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि इंडिया की 50% से ज्यादा पॉपुलेशन जो है यंगस्टर्स की है, और जो हमारे यंग पॉपुलेशन है, जो हमारे यूथ है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होता है इन सब चीजों में। सेकेंड, यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम्स जो है वो बढ़ती जा रही है रैपिडली, एंड इसी के साथ डिजिटल अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है, क्योंकि लगभग हर एक इंसान के हाथ में अब स्मार्टफोन है, और जहां पर स्मार्टफोन है वहां पर टेक्नोलॉजी का एक्सेस है, तो आप कर सकते हैं उसको एक्सेस। सो दैट्स हाउ वी आर रेफरिंग ब्यूटी टेक इंडस्ट्री। बात करेंगे कि ये मार्केट कैसे इवॉल्व हो रही है, बात करेंगे क्या क्या हाइलाइट्स हैं, बात करेंगे कौन कौन से वो ड्राइविंग फैक्टर्स हैं जो इस मार्केट को ड्राइव करते हैं। पहले मार्केट को अच्छे से समझेंगे, उसके बाद कंपनी की बात करेंगे, लेकिन ये सब बातें हम करेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के बाद। फिलहाल एक और म्यूजिकल ब्रेक, मजा लीजिए गानों का। स्टे ट्यून्ड, फील गुड, फील।

0: वेलकम बैक। उम्मीद कर रहा हूँ गाने अच्छे लगे। अब इसी नोट पे अपने शो को आगे लेकर चलेंगे दोस्तों, और क्योंकि आज की इंडस्ट्री हम यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, दैट इज ब्यूटी टेक इंडिया में जो ऑपरेट करती है। अभी तक आपको एक ओवरव्यू मिला, बात करेंगे मार्केट इवॉल्व कैसी हुई है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो मेजर फैक्टर है, दैट इज डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं बहुत सारे, लाइक नायका, पर्पल एंड स्माइटन। ये जो नए स्टार्टअप आए हैं, जो नए ब्रांड्स आए हैं, इन्होंने उस डेफिनेशन को चेंज किया है और इस इंडस्ट्री को रीशेप किया है, जिसके बाद से लोग अलग तरीके से इस इंडस्ट्री को देखने लगे हैं और एक्सेस ज्यादा आ गया है। बहुत सारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आए हैं, बहुत सारी इनोवेटिव चीजें आई हैं, बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो बहुत प्रीमियम क्वालिटी जो है वो हमें डिलीवर करते हैं। नाउ यू हैव दैट ऑप्शन। पहले क्या होता था कि फिजिकली आप किसी मार्केट में गए हैं तो आप अब यहाँ पर लिमिटेड लोगों के साथ डील कर सकते हैं, लाइक यू हैव नाउ लिमिटेड रिसोर्सेज। उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट आता है यहाँ पे, दैट इज पर्सनलाइजेशन। आप इस एक इंडस्ट्री में ब्यूटी प्रोडक्ट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं, लाइक हर एक इंसान की स्किन टाइप अलग है, हर एक इंसान का जो है हेयर स्टाइल अलग है, हेयर का पैटर्न अलग है। तो वो एक चीज अब लोगों को समझ में आती है कि सब कुछ यूनिवर्सल नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल किसी इंसान की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, किसी की स्किन पर एक्ने है, तो अपने हिसाब से वो चेक कर सकते हैं कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट मेरे को सूट करेगा, उसके हिसाब से आप मॉडिफाई कर सकते हो और प्रोडक्ट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं। और एग्जैक्टली इसी कैटेगरी में हमारी आज की कंपनी डील करती है। थर्ड पॉइंट आता है सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन ब्यूटी। अब लोग डिमांड करने लगे हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की, अब लोग डिमांड करने लगे हैं क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट्स की, जहां पर किसी भी तरीके से कोई क्रुएल्टी नहीं की जाती है किसी भी एनिमल के ऊपर। इसी वजह से शायद ये जो इंडस्ट्री है अब थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि रीडिफाइन होने लगी है। क्लीन ब्यूटी फॉर्मुलेशन हमें देखने को मिलते हैं, सस्टेनेबल पैकेजिंग हमें देखने को मिलती है। फोर्थ पॉइंट आता है इंटीग्रेशन ऑफ वेयरेबल डिवाइस। एआई पावर्ड अगर आप बात करते हैं, किसी एक सर्विस को आप ऑप्ट करना चाहते हैं, या एआई पावर्ड स्किन एनालाइजर्स होते हैं जो घर पर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल एलईडी थेरेपी मास्क होते हैं जिनको आप पहनेंगे अपने स्किन के ऊपर, और वो पूरी आपकी स्किन को रीड करके एनालाइज करके आपके हाथ में डेटा दे देगा, उसके आधार पर आप प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है ब्यूटी एजुकेशन एंड ट्यूटोरियल्स। अब इसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इसके पहले अगर हम बात करें कंटेंट क्रिएशन के एरा के पहले की, तो बहुत ही वैसे होता था कि ठीक है ले लेंगे, शॉपकीपर ने बोल दिया है, ब्रांड क्लेम कर रहा है। अभी लेकिन क्या सहूलियत होगी कि लोग आके प्रॉपर कॉन्टेंट बनाते हैं, फुल फ्लैश्ड वीडियोस बनाई जाती हैं, रील्स बनाई जाती हैं, शॉर्ट्स बनाए जाते हैं, उसके थ्रू हमें पता लगता रहता है ओके ये प्रोडक्ट है, चलिए ट्राई करते हैं, अच्छा ऐसे ऐसे चीजें होती हैं। तो चीजें काफी सिंप्लीफाई हो गई हैं, अगर दूसरे शब्दों में कहें तो लोग एजुकेट होते जा रहे हैं इस एक पर्टिकुलर टर्म को लेकर। सो दैट्स हाउ ब्यूटी टेक जो इंडस्ट्री है ये इंडिया में इवॉल्व कर रही है। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इसी के साथ लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे और चीजें जो इस इंडस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए जरूर आपको बताएंगे। लेकिन तब तक आप लोग जुड़े रहिए हमारे साथ, कहीं जाइएगा मत। फील गुड फील लाइव।
1: रोकिए महेंद्र साहब, उसको रोक लीजिए। डॉक्टर कहते हैं अगर ये इस तरह छू कूद करेगा तो मर जाएगा। क्या आप अपने तमाशे के लिए एक आदमी की जान लेंगे?
2: शेर सिंह, राजू आदमी नहीं जोकर है, ये जिएगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, मरेगा भी यहीं, जिएगा भी यहीं।

धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया, थैंक यू, सजीवा तवारिश। यहाँ हमारा इंटरवल होता है, ये तो अंतर्त यानी कि वक्फा मध्यांतर। यह इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है, या 15 घंटे का, या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ, जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ, जाइएगा नहीं,

0: फील गुड फील लाइव। दोस्तों मैं सागर, शो आत्मनिर्भर भारत, कहानियां कामयाबी की, और इस टाइम आप लोग सुन रहे हैं रेडियो मानव प्रश्न 107.8 FM। अब इसी नोट पर अपने शो को अगर आगे लेकर चले तो यहां पर हम आज बात कर रहे हैं ब्यूटी टेक इंडस्ट्री की। इसमें बात करेंगे ड्राइविंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से वो पिलर हैं, क्या क्या वो बेस है जिसके आधार पर ये इंडस्ट्री इंडिया में ऑपरेट करती है। फर्स्ट इज ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन। अब क्योंकि लोगों के पास स्मार्टफोन रहने लगे हैं, हर एक इंसान के पॉकेट में आपको स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, चाहे आप शहर में हैं उसमें भी टीयर 1 टीयर 2 टीयर 3 कहीं भी आप चले जाएं, या फिर आप रूरल एरिया में हैं या किसी सेमी अर्बन एरिया में हैं, आपको मोबाइल फोन मिल जाएगा। और मोबाइल फोन है तो इंटरनेट भी इजीली पहुंच पाया है हर जगह पर। अब ऐसे में जब आपके पास मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, तो आपके पास एप्लीकेशंस का एक्सेस है, जिसमें बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। आप कंसल्ट कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, वहां से कहीं पर चार्जेबल होता है, सो बहुत सब्जेक्टिव है, बट हाँ यू हैव दैट एक्सेस। तो इस एक पर्टिकुलर चीज की वजह से बहुत ग्रोथ देखी है इस एक इंडस्ट्री ने। सेकेंड ड्राइविंग फैक्टर आता है कि हम लोगों की इनकम्स थोड़ी सी बढ़ने लगी, आई मीन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को हमने एनहेंस किया है काफी। अब जब ये होने लगता है तो हम बाकी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से प्रीमियम ब्यूटी टेक प्रोडक्ट्स की अब डिमांड बढ़ने लगी है। जैसे मैंने देखा अभी 1000 रुपए का फेस वॉश, और बहुत बड़ा नहीं था, छोटा सा ही था, या 1500 रुपए के मॉइस्चराइजर हमने देखे हैं। सनस्क्रीन जैसी चीजों को लेकर लोग अवेयर हो गए हैं कि यूवी रेडिएशन जो होती है वो हमारी स्किन को डैमेज करती है। सो ये सब वो चीजें हैं जो अब लोग एक्नॉलेज करने लगे हैं, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ये मार्केट ग्रो कर रही है। थर्ड पॉइंट आता है अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग। अब देखिए कंज्यूमर्स के पास, आप माने या ना माने, लेकिन एक्सेस है इंटरनेट का, तो उनके पास अवेयरनेस है। क्योंकि इंटरनेट पे आप किसी प्लेटफॉर्म को ओपन कर लीजिए, बीट फेसबुक, बीट इंस्टाग्राम, बीट यूट्यूब, आपको कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा जो लोग आपको बता रहे होंगे। अब भले ही कुछ लोग अपने कॉन्टेंट के लिए करते हैं, लेकिन हमें जागरूक कर रहे हैं। इसके अलावा ब्रांड्स भी अब खुद से प्रमोट करते हैं, कॉन्टेंट क्रिएशन के ऊपर जो है पैसा खर्च करते हैं, ताकि लोग कॉन्टेंट बनाए उनके प्रोडक्ट्स के बारे में और उसको लोगों को बताएं सिंप्लीफाई करके। तो इस वजह से लोग अब अवेयर होने लगे हैं, स्किन केयर को लेकर अब सीरियस होने लगे हैं। पहले नहीं होता था ऐसे, पहले हमें अच्छे से याद है कि हद से हद मैक्सिमम एक फेस वॉश कर लिया, वो भी बहुत ज्यादा नहीं सोचा जाता था, या तो नीम वाला उठा लाए या कोई भी ऐसे उठा लाए रैंडम। अभी लेकिन प्रॉपर लोग चूज करते हैं कि मेरा स्किन टाइप कैसा है, उसके हिसाब से मैं चूज करूंगा, और जरूरी है एक प्रॉपर स्किन केयर, लाइक फेस वॉश करना, देन उसके बाद मॉइस्चराइजर अप्लाई करना, देन उसके बाद सनस्क्रीन अप्लाई करना। तो ये चीजें हम लोगों को समझ आने लगी हैं कि दिस इज इंपॉर्टेंट, इसको आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हैं। देन उसके बाद लास्ट जो ड्राइविंग फैक्टर है, COVID-19 के बाद से चीजें सारी ही डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर शिफ्ट हुई, जिसकी वजह से ये मार्केट भी ग्रो हुई। लेकिन उसके पहले टेक हम लोगों ने बना के तैयार कर लिया था, टेक के ऊपर बहुत काम होने लगा था, हमारे पास इंटरनेट आ चुका था, दैट्स व्हाई हम यहां पर शिफ्ट हो पाए। तो लोगों ने इजीली उसको अडॉप्ट कर लिया, जिससे इस एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, यानी कि ब्यूटी टेक को, एक पुश मिला वहां पर, जिससे ऑनलाइन एक्सपीरियंस लोगों का काफी अच्छा हुआ और ब्रांड्स भी ग्रो करते चले गए। सो या ऑल दीज आर द ड्राइविंग फैक्टर्स, फर्स्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन पेनिट्रेशन, सेकंड एनहेंसिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, थर्ड इज अवेयरनेस ऑफ स्किन केयर एंड ग्रूमिंग, फोर्थ इज COVID-19 इंपैक्ट। नाउ विद दिस नोट लेते हैं एक और म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आगे बात करेंगे। फील गुड फील लाइव।
1: सिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।

जितने दूसरों के पाप देखे वो अपने पुण्य गिनता है। चोरी तुम 1000 रुपए की करो तो तुम भुला देते हो, दान तुम 1 पैसे का दो तो तुम याद रखते हो। 1 पैसे का दान भी बहुत बड़ा मालूम पड़ता है, 1000 रुपए की चोरी भी छोटी मालूम पड़ती है। शायद 1000 रुपए की चोरी करके तुम 1 पैसे का दान देके उससे निपटारा कर लेना चाहते हो। थोड़ा सोचो, धार्मिक लोगों ने कैसी कैसी तरकीबें निकाली। पाप करते हैं, गंगा में स्नान कराते। अब गंगा में स्नान करने का और पाप के मिटने से क्या संबंध हो सकता है? दूर का भी कोई संबंध नहीं हो सकता। गंगा का कसूर क्या है? पाप तुमने किया। और ऐसे अगर गंगा धो धो के सबके पाप लेती रही हो तो गंगा के लिए तो नरक में भी जगह ना मिलेगी, इतने पाप इकट्ठे हो गए होंगे। और अगर इतना ही आसान हो, पाप तुम करो, गंगा में डुबकी लगाओ और पाप हल हो जाए, तब तो पाप करने में बुराई ही कहां रही। सिर्फ गंगा तक आने जाने का श्रम, तो जो गंगा के किनारे रह रहे हैं उनका तो कहना ही क्या। तुमने तीर्थ बना लिए, तुमने छोटे छोटे पुण्य की तरकीबें बना ली ताकि बड़े बड़े पापों को तुम झुठला दो, भुला दो। छोटा मोटा अच्छा काम कर लेते हो, अस्पताल को दान दे देते हो। दान उसी चोरी में से देते हो जिसका प्राश्चित कर रहे हो। 1,00,000 की चोरी करते हो, 10 रुपया दान देते हो, लेकिन 1,00,000 की चोरी को 10 रुपये के दान में ढांक लेना चाहते हो। तुम किसे धोखा दे रहे हो? या इतना भी नहीं करता कोई, रोज सुबह बैठ के 5-10 मिनट माला जप लेता है, माला के गुरिये सरका लेता है, सोचता है हल हो गया, या राम राम जप लेता है, या राम नाम छपी चदरिया ओढ़ लेता है, सोचता है मामला हल हो गया, जैसे राम पर कुछ एहसान हो गया। अब राम समझे, चदरिया ओढ़ी थी, कहने को अपने पास बात हो गई, मंदिर गए थे, हिसाब रख लिया है। जीवन अंधेरे से भरा रहे और प्रकाश की ज्योति भी नहीं जलती, सिर्फ अंधेरी दीवालों पर तुम प्रकाश शब्द लिख देते हो या दिए के चित्र टांग देते हो। प्यास लगी हो तो पानी शब्द से नहीं बुझती, अंधेरा हो तो दिए शब्द से नहीं बुझता। मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं। तुम अगर सिर्फ तस्वीर का अवलोकन करते रहो, मंजरे तस्वीर दर्द दिल मिटा सकता नहीं, तो तुम्हारे दिल की पीड़ा न मिटेगी तस्वीरों के देखने से। प्रेमी की तस्वीर लिए बैठे रहो, इससे कहीं कोई प्रेमी मिला है? आईना पानी तो रखता है पिला सकता नहीं, आईने में कैसी पानी की झलक है, पर उससे तुम्हारी प्यास न बुझेगी। शब्द दे सकते हैं सत्य नहीं, अंधेरे की दीवालों पर बनाई गई दिए की तस्वीरें धोखा दे सकती हैं, रोशनी है। और जो व्यक्ति दूसरों के दोष पर ध्यान देता है वो अपने दोष पर तो ध्यान देता नहीं। जो छोटे मोटे, जिनको तुम पुण्य कहते हो, जिनको पुण्य कहना फिजूल ही है, जिनको पुण्य केवल ना समझ कह सकते, जो तुम्हारे पाप के ही सजावटों से ज्यादा नहीं है, पाप का ही श्रृंगार है, जो पाप के ही माथे पे लगी बिंदी, पाप के ही हाथों में पड़ी चूड़ी, पाप के ही पैरों में बंधे घूंघर, उन्हें तुम पुण्य कहते हो, उनका हिसाब रखते हो। बुद्ध ने कहा, छोड़ो ये बात, दूसरों के दोष पर ध्यान ना दो, उससे तुम्हारा कोई प्रयोजन नहीं, तुम्हारा प्रयोजन केवल तुमसे है। दूसरों के कृत्याकृत्य मत देखो, केवल अपने कृत्य अकृत्य का अवलोकन करो, सिर्फ अपना ही ऑब्जर्वेशन, अवलोकन। ये शब्द समझ लेने जैसा है, अवलोकन। अवलोकन बुद्ध की प्रक्रिया है जीवन के अंधकार से मुक्त होने के लिए। बुद्ध ये नहीं कहते हैं कि तुम अपने पाप को देखो और दुखी हो, पश्चाताप करो कि मैं पापी हूं, और न बुद्ध कहते हैं तुम अपने पुण्य को देखो और बड़े फूले न समाओ और उछल के चलो कि मैं बड़ा पुण्यात्मा हूं।
बुद्ध कहते हैं तुम अवलोकन करो। अवलोकन का अर्थ होता है तत्वस्थ दर्शन, बिना किसी निर्णय के, न ये कहना कि ठीक, न ये कहना कि बुरा, न भला, न पाप, न पुण्य। तुम कोई निर्णय मत लेना, तुम कोई मूल्यांकन मत करना, तुम सिर्फ देखना। जैसे कोई आदमी रास्ते के किनारे खड़ा हो जाए, भीड़ चलती है, देखता है, अच्छे लोग निकलते हैं, बुरे लोग निकलते हैं, उससे कुछ प्रयोजन नहीं। साधु निकलते हैं, असाधु निकलते हैं, प्रयोजन नहीं। या जैसे कोई लेट गया है घास पर, क्षण भर आकाश में चलते बादलों को देखता है, उनके रूप रंग अलग अलग, काले बादल हैं, शुभ्र बादल हैं, कोई हिसाब नहीं रखता, चुपचाप देखता रहता है। अवलोकन का अर्थ है एक वैज्ञानिक दृष्टि, तटस्थ भाव। मात्र देखने पर ध्यान रखो, जोर देखने पर है, जो तुम देख रहे हो उसके निर्णय करने पर नहीं कि वो ठीक है या गलत। तुम न्यायाधीश मत बनो, तुम तराजू लेके तौलने मत लगो,

वो भ्रांति में, जो पुण्य के साथ अपने को एक समझता है वो भी भ्रांति में, उसने कृत्य के साथ अपने को एक समझ लिया, उसने अपने को कर्ता समझ लिया। अवलोकन करने वाला इस नतीजे पर आता है कि मैं केवल दृष्टा हूं, कर्ता नहीं। फिर पाप और पुण्य दोनों ही मिट जाते, जैसे स्वप्न में किए हो कभी, जैसे किसी उपन्यास में पढ़े हो कभी, जैसे कभी अफवाह सुनी हो, स्वयं से उनका कोई संबंध नहीं रह जाता। यही शुद्ध बुद्धत्व है। कभी कभी तुम्हें भी अचानक क्षण भर को इसकी झलक मिल जाएगी, और क्षण भर को भी बिजली कौंध जाए तो जिंदगी फिर वही नहीं होती जो पहले थी। अवलोकन करो, तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। दूसरों को संबंध में सोचते विचारते, बाजार में भटकते, संसार की लंबी परिक्रमा करते, अपने तक आए। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। अन्यथा जरा गर्दन झुकाने की बात थी। अवलोकन से तुम सीधे स्वयं में पहुंच जाओगे। हाँ, दूसरे के कृत्य अकृत्य का विचार करते रहे तो बड़ी परिक्रमा है, अनंत परिक्रमा है। अनंत जन्मों तक भी तुम ये विचार चुकता न कर पाओगे। कितने हैं दूसरे, किस किस का हिसाब करोगे, किस किस के लिए रोओगे हंसोगे, किसकी प्रशंसा किसकी निंदा करोगे। अगर ऐसे तुम चल पड़े, मैंने सुना है कि एक आदमी भागा जा रहा था, राह के पास बैठे आदमी से उसने पूछा कि भाई दिल्ली कितने दूर है। उस आदमी ने कहा जिस तरफ तुम जा रहे हो बहुत दूर, क्योंकि दिल्ली तुम 8 मील पीछे छोड़ा है। अगर इसी रास्ते से जाने की जिद हो तो सारी पृथ्वी की परिक्रमा करके जब आओगे, अगर बच गए तो दिल्ली पहुंच जाओगे, अगर लौटने की तैयारी हो तो ज्यादा दूर नहीं। तुम जमाने की राह से आए, वरना सीधा था रास्ता दिल का। दिल्ली बिल्कुल पीछे, 8 मील का फासला भी नहीं। अवलोकन की बात है, निरीक्षण की बात है, जागृति की बात है, अप्रमाद की बात है, जरा हो साधना। पहली बात, दूसरों का विचार मत करो, अपना ही विचार करने योग्य काफी है। आंख बंद करो, अपने ही कृत्यों को देखो, और अपने कृत्यों के भी निर्णायक मत बनो, अन्यथा अवलोकन समाप्त हो गया। तुम आसक्त हो गए, तुमने कहा ये ठीक तो प्रीति बनी, तुमने कहा ये ठीक नहीं तो अप्रीति बनी। किसी कृत्य से घृणा हुई, किसी कृत्य से प्रेम हुआ, आसक्ति अनासक्ति राग द्वेष पैदा हुआ। तो कृत्य तो दूर रहे, राग द्वेष के भाव जाल में तुम खो गए। बस कृत्य को देखते रहो। अगर घड़ी भर भी तुम रोज कृत्य का अवलोकन करते रहो तो तुम्हें ऐसा ही अनुभव होगा जैसे आत्मा ने स्नान कर लिया, दिन भर उसकी ताजगी रहेगी, और दिन भर रह रह के लहरें आती रहेंगी आनंद की, रह रह के झोंके आ जाएंगे, पुलक आ जाएगी, एक मस्ती छा जाएगी, तुम झूम झूम उठोगे किसी भीतरी रस से। और ये जो भीतरी रस है, ये बुद्धि का नहीं है, हृदय का है। जब तुम सोचते हो और निर्णय करते हो, बुद्धि सक्रिय हो जाती, जब तुम मात्र देखते हो तब हृदय का फूल खिलता है। जैसे ही तुमने निर्णय लेना शुरू किया, बुद्धि बीच में आई, क्योंकि निर्णय विचार का काम है। जैसे ही तुमने तौला, तराजू आया, तराजू बुद्धि का प्रतीक है। तुमने नहीं तौला, बस देखते रहे, तो बुद्धि को बीच में आने की कोई जरूरत ही ना रही। मात्र देखने की अवस्था में, साक्षी भाव में बुद्धि हट जाती, और जीवन के जो गहरे रहस्य उन्हें हृदय जानता है। अक्ल को क्यों बताएं इसका राज, गैर को राजता नहीं करते। और हृदय ने कोई राज प्रेम का, परमात्मा का, बुद्धि को कभी बताया नहीं। अक्ल को क्यों बताएं इसका राज, गैर को राजदा नहीं करते। पराये को कहीं कोई भेद की बातें बताता है।

बुद्धि पराई है उधार है, हृदय तुम्हारा है, इसे थोड़ा समझो। जब तुम पैदा हुए तो हृदय लेके पैदा होते हो, बुद्धि समाज देता है, संस्कार देते है, शिक्षा देती है, घर परिवार सभ्यता देती। तो हिंदू के पास एक तरह की बुद्धि होती, मुसलमान के पास दूसरी तरह की बुद्धि होती, जैन के पास तीसरी तरह की बुद्धि होती, क्योंकि तीनों के संस्कार अलग, शास्त्र अलग, सिद्धांत अलग, लेकिन तीनों के पास दिल एक ही होता है। दिल परमात्मा का है, बुद्धियां समाजों की। रूस में कोई पैदा होता है तो उसके पास कम्युनिस्ट बुद्धि होगी, ईसाई घर में कोई पैदा होता है तो उसके पास ईसाई बुद्धि होगी। बुद्धि तो धूल है बाहर से इकट्ठी की हुई, जैसे हृदय के दर्पण पर धूल जम जाए। दर्पण तो तुम लेके आते हो, धूल तुम्हें मिलती है, इस धूल को झाड़ देना जरूरी है। समस्त धर्म की गहनतम प्रक्रिया धूल को झाड़ने की प्रक्रिया है कि दर्पण फिर स्वच्छ हो जाए, तुम फिर से बालक हो जाओ, तुम फिर हृदय में जीने लगो, तुम फिर वहां से देखने लगो जहां से तुमने पहली बार देखा था, जब तुमने आंख खोली थी तब बीच में कोई बुद्धि ना खड़ी थी, तब तुमने सिर्फ देखा था, वह था अवलोकन। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। दूसरा सूत्र, जैसे कोई सुंदर फूल रंग बिरंगा है, बहुत वर्णयुक्त है, लेकिन फिर भी गंध शून्य, ऐसा ही पांडित्य है, रंग बहुत है उसमें, सुगंध बिल्कुल नहीं। जीवन में सुगंध तो आती है आचरण से, तुम जो जानते हो उससे जीवन में सुगंध नहीं आती, वो तो मौसमी फूल है, दूर से लुभावना लग सकता है, पास आने पे तुम उसे कागजी पाओगे। आदमी भला धोखे में आ जाए, मधुमक्खियां धोखे में नहीं आती, तितलियां धोखे में नहीं आती, भौरे धोखे में नहीं आते, भौरे धोखे में नहीं आते, तुम परमात्मा को कैसे धोखा दे सकोगे। तितलियां धोखे में नहीं आती, मधुमक्खियां धोखे में नहीं आती, तुम परमात्मा को कैसे धोखा दे सकोगे। सम्राट सोलोमन के जीवन में कथा है, एक रानी उसके प्रेम में थी और उसकी परीक्षा करना चाहती थी कि सच में वो इतना बुद्धिमान है जितना लोग कहते, अगर है तो ही उससे विवाह करना है। तो वो आई, उसने कई परीक्षाएं ली, वो परीक्षाएं बड़ी महत्वपूर्ण है, उसने एक परीक्षा ये भी थी। वो आई एक दिन राज दरबार में, दूर खड़ी हो गई, हाथ में उसने दो गुलदस्ते के फूलों के गुलदस्ते लाई थी और उसने सोलमन से कहा दूर से कि इनमें कौन से असली फूल हैं बता दो। बड़ा मुश्किल था, फासला काफी था, वो उस छोर पर खड़ी थी राज दरबार के, फूल बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। सोलमन ने अपने दरबारियों को कहा सारी खिड़कियां और द्वार खोल दो, खिड़कियां और द्वार खोल दिए गए। न तो दरबारी समझे न वो रानी समझी कि द्वार दरवाजे खोलने से क्या संबंध। रानी ने सोचा कि शायद रोशनी कम है इसलिए रोशनी की फिक्र कर रहा, कोई हर्जा नहीं, लेकिन सोलमन कुछ और फिक्र कर रहा था। जल्दी ही उसने बता दिया कि कौन से असली फूल हैं कौन से नकली, क्योंकि एक मधुमक्खी भीतर आ गई बगीचे से और वो जो असली फूल थे उन पर जाकर बैठ गई। न दरबारियों को पता चला न उस रानी को पता चला, वो कहने लगी कैसे आपने पहचाना। सोलमन ने कहा तुम मुझे धोखा दे सकती हो लेकिन एक मधुमक्खी को नहीं, मधुमक्खी को धोखा देना मुश्किल है, परमात्मा को कैसे दोगे। बुद्ध कहते हैं जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। तुम्हें जीवन के सत्यों का पता है सोचने से न लगेगा, उन सत्यों को जीने से लगेगा, जियोगे तो ही पता चलेगा। जो ठीक लगे उसे देर मत करना, उसे कल के लिए स्थगित मत करना, जो ठीक लगे उसमें आज ही डुबकी लगाना।
अगर तुम्हें अवलोकन की बात ठीक लग जाए तो सोचते मत रहना कि कल करेंगे, ऐसे तुम्हारे जीवन में कभी सुगंध ना आएगी। ऐसे ये हो सकता है कि अवलोकन के संबंध में तुम बातें करने में कुशल हो जाओ और ध्यान के संबंध में तुम शास्त्रकार बन जाओ, लेकिन तुम्हारे जीवन में सुगंध ना आएगी। प्रार्थना के संबंध में जान लेना प्रार्थना को जानना नहीं, प्रार्थना को तो वही जानता है जो करता है, प्रार्थना को तो वही जानता है जो डूबता है, प्रार्थना को तो वही जानता है जो प्रार्थना में मिट जाता है। जब प्रार्थना तुम्हारा अस्तित्व बनती, आचरण का अर्थ है तुम्हारा ज्ञान तुम्हारा अस्तित्व हो, तुम जो जानते हो वो सिर्फ ऊपर से चिपकी हुई बात न रह जाए, उसकी जड़ तुम्हारे जीवन में फैले, तुम्हारे भीतर से वो बात उठे, वो तुम्हारी अपनी हो। ऊपर से इकट्ठा ज्ञान ऐसा है जैसे तुमने भोजन तो बहुत कर लिया हो लेकिन पचा ना सके, उससे तुम बीमार पड़ोगे, उससे शरीर रुग्ण होगा। पचा हुआ भोजन जीवन देता है, ऊर्जा देता है, अनपचा भोजन जीवन को नष्ट करने लगता है। भूखे भी बच सकते हैं लोग ज्यादा देर तक, ज्यादा भोजन से जल्दी मर जाते हैं, बोझ हो जाता है पूरी व्यवस्था पर, और ज्ञान का तो भारी बोझ है। तुम्हारा चैतन्य अगर दब गया है तो तुम्हारे ज्ञान के बोझ, तुम जानते ज्यादा हो जिए कम हो, एक असंतुलन हो गया है। बुद्ध कहते हैं थोड़ा जानो लेकिन उसे जीने में बदलते जाओ, थोड़ा भोजन करो लेकिन ठीक से चबाओ, ठीक से पचाओ, रक्त मांस मज्जा बन जाए। होश के बंदे समझेंगे क्या गफलत है क्या होशियारी, अकल के बदले जिस दिन दिल की जोत जला कर देखेंगे, अकल के बदले जिस दिन दिल की जोत जला कर देखेंगे, होश के बंदे समझेंगे क्या गफलत है क्या होशियारी, केवल वे ही समझ पाएंगे जो बुद्धि से गहरे उतर कर हृदय का दिया जलाएंगे। हृदय के दिए से अर्थ है जो जानते उसे जीवन बना लेंगे, जो समझा है वो समझ ही ना हो कि समाधि बन जाएगी, जो सुना है वो सुना ही नहीं पी लिया है। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होकर भी निर्गंध होता है, वैसे ही आचरण न करने वाले के लिए सुभाषित वाणी निष्फल होती। थोड़ा जानो जियो ज्यादा और तुम पहुंच जाओगे, ज्यादा तुमने जाना और जिया कुछ भी नहीं तो तुम न पहुंच पाओगे। तब तुम दूसरों की गायों का ही हिसाब रखते रहोगे, तुम्हारी अपनी कोई गाय नहीं, तुम गायों के रखवाले ही रह जाओगे, मालिक न हो पाओगे। पंडित मत बनना, पापी भी पहुंच जाते हैं पंडित नहीं पहुंचते, क्योंकि पापी भी आज नहीं कल जग जाएगा, दुख जगाता है। पंडित एक सुख का सपना देख रहा है कि जानता है बिना जाने। शास्त्र से बचना, शास्त्र जंजीर हो सकता है, सुभाषित सुंदर वचन जहर हो सकते हैं। जिस चीज को भी तुम जीवन में रूपांतरित न कर लोगे वही जहर हो जाएगी। तुम्हारे जीवन की व्यवस्था में जो भी चीज पड़ी रह जाएगी बिना रूपांतरित हुए, बिना लहू मांस मज्जा बने, वही तुम्हारे जीवन में जहर का काम करने लगेगी। पंडित का अस्तित्व विषाक्त हो जाता है। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होने के साथ साथ सुगंधित होता है, वैसे ही आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती। तो ध्यान इस पर हो कि मेरा आचरण क्या है, मेरा होने का ढंग क्या है, मेरे जीवन की शैली क्या है। परमात्मा को मानो या न मानो, अगर तुम्हारा आचरण ऐसा है घर लौटने वाले का, संसार की तरफ जाने वाले का नहीं, प्रत्याहार करने वाले का, अपनी चेतना के केंद्र की तरफ आने वाले का, अगर तुम्हारा आचरण ऐसा है, व्यर्थ का कूड़ा करकट इकट्ठा करने वाले का नहीं,
सिर्फ हीरे ही चुनने वाले का। अगर तुम्हारा आचरण हंस जैसा है कि मोती चुन लेता है, कि दूध और पानी में दूध पी लेता है पानी छोड़ देता है। हमने ज्ञानियों को परमहंस कहा है, तुमने कभी समझा क्यों? दो कारणों से। एक तो हंस सार को असार से अलग कर लेता है, और दूसरा हंस सभी दिशाओं में गतिवान है। वो जल में तैर सकता है, जमीन पर चल सकता है, आकाश में उड़ सकता है। उसके स्वातंत्र पर कहीं कोई सीमा नहीं। जमीन हो तो चल लेता है, सागर हो तो तैर लेता है, आकाश हो तो उड़ लेता है। तीनों आयामों में, तीनों डायमेंशंस में उसके कहीं कोई रुकावट नहीं। जिस दिन तुम सार और असार को पहचानने लगोगे, उस दिन तुम्हारा स्वातंत्र भी इतना ही अपरसीम हो जाएगा जैसा हंस का। इसलिए हमने ज्ञानियों को परमहंस कहा है। न जानने से ही बंधे हो। जमीन पर ही ठीक से रहना नहीं आता, पानी पे चलने की तो बात अलग, आकाश में उड़ना तो बहुत दूर। शरीर में ही ठीक से रहना नहीं आता, मन की तो बात अलग, आत्मा की तो बात बहुत दूर। शरीर यानी जमीन, मन यानी जल, आत्मा यानी आकाश। इसलिए मन जल की तरह तरंगायत, शरीर फिर है पृथ्वी की तरह, 70 साल तक डटा रहता है, गिर जाता है उसी पृथ्वी में जिससे बनता है। मन बिल्कुल पानी की तरह, पारे की तरह कहो, छितर छितर जाता है। आत्मा आकाश की तरह निर्मल है, कितने ही बादल घिरे, कोई बादल धुएं की एक रेखा भी पीछे नहीं छोड़ गया। कितनी ही पृथ्वियां बनी और खो गई, कितने ही चांद तारे निर्मित हुए और विलीन हो गए। आकाश कूटस्थ है, अपनी जगह हिलता डुलता नहीं। शरीर में ही रहना तुमसे नहीं हो पाता, मन की तो बात अलग। मन में जाते ही चिंता पकड़ती है, विचारों का उहा बहुत पकड़ता है। आत्मा तो फिर बहुत दूर है, क्योंकि आत्मा यानी निर्विचार ध्यान, आत्मा यानी समाधि, आकाश मुक्त असीम। परमहंस कहा है ज्ञानियों को, लेकिन ज्ञान को आचरण में बदलने की कीमिया, बदलने का रहस्य समझ लेना चाहिए। तुम समझ भी लेते हो कभी कोई बात, इस स्फटिक मणि की भांति साफ दिखाई पड़ती है कि समझ में आ गई। अगर तुम उसी क्षण उसका उपयोग करने लगो तो और निखरती जाए। तुम कहते हो कल उपयोग कर लेंगे, परसों उपयोग कर लेंगे, अभी समझ में आ गई संभाल के रख ले। एक मित्र यहाँ सुनने आते थे, डॉक्टर से पढ़े लिखे, मैंने उनको देखा कि जब भी वो सुनते तो बैठ के बस नोट ले रहे, फिर मुझे मिलने आए तो मैंने पूछा कि आप क्या कर रहे हो? कहते आप इतनी अद्भुत बातें कह रहे हैं कि नोट कर लेना जरूरी है, पीछे काम पड़ेंगे। जब मैं समझा रहा हूं तब वो समझ नहीं रहे, वो कल पे टाल रहे हैं, समझ तक को कल पे टाल रहे हैं, करने की तो बात अलग, वो नोट ले रहे हैं अभी, फिर पीछे कभी जब जरूरत होगी काम पड़ जाएगी। तुम अभी मौजूद थे, मैं अभी मौजूद था, अभी ही उतर जाने देते हृदय में, लेकिन वो सोचते हैं कि वो बड़ा कीमती काम कर रहे हैं, वो धोखा दे रहे हैं, खुद को धोखा दे रहे हैं। ये बचाव है समझने से, समझना नहीं। सामने एक घटना घट सकती थी अभी और यही, मैं तुम्हारी आंख में झांकने को राजी था, तुम आंख बचा लिए, नोट करने लगे। मैंने हाथ फैलाया था तुम्हें उठा लूं बाहर तुम्हारे गड्ढे से, तुम्हारा हाथ तुमने व्यस्त कर लिया, तुम नोट लेने लगे। मैंने तुम्हें पुकारा, तुमने पुकार न सुनी, तुमने अपनी किताब में कुछ शब्द अंकित कर लिए, तुम बड़े प्रसन्न हुए। तुम अभी जीवित सत्य को न समझ पाए, कल के लिए टाल दिया, करोगे कब? टालना मनुष्य के मन की सबसे बड़ी बीमारी है। जो समझ में आ जाए उसे उसी क्षण करना, क्योंकि करने से स्वाद आएगा, स्वाद आते से करने की और भावना जगेगी, और करने से और स्वाद आएगा।
अचानक एक दिन तुम पाओगे जिसे तुमने ज्ञान की तरह सोचा था वो ज्ञान नहीं रहा, आचरण बन गया। जैसे कोई सुंदर फूल वर्णयुक्त होने के साथ सुगंधित होता है, वैसे ही आचरण करने वाले के लिए सुभाषित वाणी सफल होती है। और ध्यान रखना, जो भी जाना जा सकता है वो जीकर ही जाना जा सकता है। नाहक की बहस में मत पड़ना, क्योंकि बहस भी अक्सर बचने का ही उपाय है। और व्यर्थ के तर्क जाल में मत उलझना, क्योंकि तुम्हें बहुत मिल जाएंगे कहने वाले कि इसमें क्या रखा है। लेकिन गौर से देख लेना कि जो कह रहा है उसने कुछ अनुभव लिया है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाएं, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाएं, कोई हर्षा नहीं, तर्क करें, लेकिन पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। उनके पास भी कुछ स्वाद होता है, तुम उसी की बात सुनना जिसके पास कुछ स्वाद हो। अन्यथा इस जगत में आलोचक बहुत है, निंदक बहुत है। किसी भी चीज को गलत कह देना जितना आसान है, उतनी आसान और कोई बात नहीं। ईश्वर को कह देना नहीं है कितना आसान है कहना बहुत कठिन, क्योंकि जो है कहे उसे सिद्ध करना पड़े, जो नहीं कहे उसे तो सिद्ध करने का सवाल ही नहीं रहा। जब है ही नहीं तो सिद्ध क्या करना है। प्रेम को इनकार कर देना कितना आसान है, लेकिन प्रेम को हां करना कितना कठिन है, क्योंकि प्रेम का अर्थ होगा फिर एक आंख से गुजरना। नहीं बहुत आसान है, इसलिए कायर हमेशा नहीं कहते थे जिंदगी चला लेते, हालांकि वो दिखते बड़े बहादुर। कोई आदमी कहता ईश्वर नहीं, लगता है बड़ी हिम्मत का आदमी, अपनी इतनी हिम्मत नहीं। पर मैं तुमसे कहता हूँ कायर नहीं कह के काम चला लेते, क्योंकि जिस चीज को नहीं कह दिया उसे न सिद्ध करने की जरूरत, न जीवन में उतारने की जरूरत, न दांव लगाने की जरूरत, न मार्ग चलने की जरूरत। जिसने हाँ कहा वही बहादुर है, वही साहसी है। लेकिन हाँ भी नपुंसक हो सकती है अगर तुमने सिर्फ बहाने के लिए हाँ कहती हो। अगर किसी ने कहा ईश्वर है, तुमने कहा होगा भाई, जरूर होगा, सिर्फ झंझट छुटाने को, कि इतनी भी किसको फुर्सत है कि बकवास करे, इतना भी किसके पास समय है कि विवाद करे। अब कौन झंझट करे कि है या नहीं, कि बिल्कुल ठीक, जरूर होगा। अगर तुमने हाँ भी सिर्फ बचाव के लिए कही, तो तुम्हारी हाँ नहीं ही है, उस हाँ में हाँ नहीं, नहीं ही है। मेरी दीवानगी पर होश वाले बहस फरमाए, मगर पहले उन्हें दीवाना बनने की जरूरत है। उसी के पास पूछना जिसके जीवन में कोई सुगंध हो और सुवास, और जिसके जीवन में कोई स्वाद हो, जिसके ओठों से, जिसकी श्वासों से शराब की थोड़ी गंध आती हो, उसी से शराब की बात पूछना। जिसके आसपास थोड़े मस्ती की हवा हो, जिसकी आंखों में खुमार हो, उसी से पूछना। हर किसी से मत पूछने बैठ जाना, और हर किसी की बात मत सुन लेना, नहीं तो जिंदगी को ऐसे ही गंवा दोगे। ना समझ बहुत है, कायर बहुत है, आलोचक बहुत है, उनका कोई अंत नहीं है, क्योंकि ये सब बचाव की तरकीबें हैं। जिंदगी को जानने वाले बहुत कम हैं, और तुम भी कहीं इसी भीड़ में ना खो जाना। खो ही जाओगे अगर जीवन में कोई सूत्र तुम्हारे पास आए और तुमने उनका जल्दी उपयोग न कर लिया, वे जंग खा जाते। सत्य बड़ी नाजुक चीज है, वो बीज की तरह, तुम उसे हृदय में ले जाओ तत्क्षण तो वो अंकुरित हो जाता है। बीज को रखे रहो तिजोरियों में, संभाल के वो सड़ जाएगा। सारे सत्य तुम्हारे शास्त्रों की तिजोरियों में सड़ गए। ऐसा नहीं है कि सत्यों की कोई कमी है, सत्य बहुत है, शास्त्र भरे पड़े लेकिन किसी काम के नहीं रहे। तुम्हारे जीवन के शास्त्र में जब तक कोई सत्य उतर कर खून मांस मज्जाना बन जाए, पच न जाए, तुम्हारे रग रेशे में न दौड़ने लगे, तब तक किसी काम का नहीं। इसे स्मरण रखना। जैसे फूलों से मालाएं बनती हैं, वैसे ही जन्म लेकर प्राणी को बहुत पुण्य करने चाहिए। जीवन दो ढंग का हो सकता है, बुद्ध ने बड़ा ठीक प्रतीक चुना है। एक तो जीवन ऐसा होता है
जिसको तुम ज्यादा से ज्यादा फूलों का ढेर कह सकते हो। और एक जीवन ऐसा होता है

से तुम फूलों की माला पहनते हो। माला और ढेर में बड़ा फर्क है। माला में एक संयोजन है, एक तारतम्य है, एक संगीत है, एक लयबद्धता है। माला में एक जुटता है, एक श्रृंखला है, एक सिलसिला है। फूलों का एक ढेर है, उसमें कोई श्रृंखला नहीं, उसमें कोई संगीत नहीं, उसमें दो फूल जुड़े नहीं है किसी अन्य संयुक्त धागे से। सब फूल अलग अलग है, बिखरे पड़े। तो या तो जीवन ऐसा हो सकता है कि जीवन के सब क्षण बिखरे पड़े, एक क्षण से दूसरे क्षण के भीतर दौड़ती हुई कोई जीवन धारा नहीं, कोई धागा नहीं जो सबको जोड़ता हो। अधिक लोगों का जीवन क्षणों का ढेर है। जन्म से लेकर मृत्यु तक तुम्हें भी उतने ही क्षण मिलते हैं जितने बुद्ध को, लेकिन बुद्ध का जीवन एक माला है, हर क्षण परोया हुआ है, हर क्षण अपने पीछे क्षण से जुड़ा है, आगे क्षण से जुड़ा है। जन्म मृत्यु एक श्रृंखला में बंधे, एक अनसयुत संगीत है। इसे थोड़ा समझो, तुम ऐसे हो जैसे वर्णमाला के अक्षर, बुद्ध ऐसे हैं जैसे उन्हीं अक्षरों से बना एक गीत। गीत में और वर्णमाला के अक्षरों में कोई फर्क नहीं है, वही अक्षर है। वर्णमाला में जितना है उतना ही सभी गीतों में। मार्क ट्वेन के जीवन में घटना है, उसके एक मित्र ने उसे निमंत्रित किया। मित्र एक बहुत बड़ा उपदेशक था। मार्क ट्वेन कभी उसे सुनने नहीं गया था। कुछ ईर्ष्या रही होगी मन में मार्क ट्वेन के। मार्क ट्वेन खुद बड़ा साहित्यकार था, लेकिन उपदेष्टा की बड़ी ख्याति थी। मित्र ने कई दफा निमंत्रित किया तो एक बार गया, सामने की कुर्सी पर बैठा था। उस दिन मित्र ने जो सृष्टम उसके जीवन में भाव में था कहा, क्योंकि मार्क ट्वेन सुनने आया था, लेकिन मार्क ट्वेन के चेहरे पर कोई भाव दशा नहीं बदली। वैसे ही बैठा रहा आकड़ा, जैसे कुछ भी नहीं हो रहा, जैसे क्या कचरा बकवास कर रहे हो। मित्र भी चकित हुआ। जब दोनों लौटने लगे गाड़ी में वापस, रास्ते में उसने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम्हें मेरी बातें कैसी लगी? मार्क ट्वेन ने कहा, बातें सब उधार, मेरे पास एक किताब है जिसमें सब लिखा है, तुमने उसी को पढ़ के बोला है। उस आदमी ने कहा, चकित कर रहे हो, कोई एक आध वाक्य, कोई एक टुकड़ा कहीं लिखा हो सकता है, लेकिन जो मैंने बोला है वो मैंने किसी किताब से लिया नहीं। मार्क ट्वेन ने कहा, शर्त बदते हो, $100 की शर्त लग गई। उपदेष्टा सोचता था, निश्चित ही शर्त में जीत जाऊंगा, ये पागल किस बात की शर्त लगा रहा है, जो मैं बोला हूँ ये पूरा का पूरा एक किताब में हो ही नहीं सकता, संयोग नहीं हो सकता ऐसा। लेकिन उसे पता नहीं था। मार्क ट्वेन ने दूसरे दिन एक डिक्शनरी बेच दी और लिखा, इसमें सब है जो भी तुम बोले, एक एक शब्द जो तुम बोले हो सब इसमें है, शब्द सा। पर डिक्शनरी और शेक्सपियर में कुछ फर्क है, शब्दकोश में और कालिदास में कुछ फर्क है, शब्दकोश और उपनिषद में कुछ फर्क है। क्या फर्क है? वही फर्क तुम में और बुद्ध में। तुम केवल शब्दकोश, फूल की भीड़ एक ढेर, अनसयुत नहीं हो, जुड़े नहीं हो, तारतम्य नहीं है। सब फूल अलग अलग पड़े हैं, माला नहीं बनता है। माला उसी का जीवन बनता है जो अपने जीवन को एक साधना देता है, एक अनुशासन देता है, जो अपने जीवन को होश पूर्वक एक लयबद्धता देता है। तब जीवन न केवल गद्य बन जाता है, अगर धीरे धीरे तुम जीवन को निखारते ही जाओ तो गद्य पद्य हो जाता है। जीवन तुम्हारा गाने लगता है, गुनगुनाने लगता है, तुम्हारे भीतर से अहिर्निश संगीत की एक धारा छूटने लगती है, तुम बजने लगते हो। जब तक तुम बजो ना, तब तक तुम परमात्मा के चरणों के योग्य ना हो सकोगे। और ध्यान रखना, व्यर्थ की शिकायतें सिकवे मत करना, उनसे सिकवा फजूल है, सीमाब काबले इल्फात तू ही नहीं। परमात्मा से क्या शिकायत करनी कि आनंद नहीं है जीवन में? काबले इल्तिफात तू ही नहीं, परमात्मा की कृपा के योग्य तू ही नहीं, इसलिए किसी और से सिकवा मत कर। तुम जैसे अभी हो ऐसे ही तुम परमात्मा पर चढ़ने योग्य नहीं हो। तुम माला बनो, तुम जीवन को एक
तुम ऐसे ही सब दिशाओं में मत भागते फिरो पागलों की तरह। तुम एक भीड़ मत रहो, तुम्हारे भीतर एक स्वरता है। और बुद्ध इसी को पुण्य कहते हैं। तुम चकित होगे, बुद्ध कहते हैं जिसके जीवन में एक स्वरता है वही पुण्य धर्मा है। पापी एक भीड़, पुण्य धर्मा एक माला है। पापी असंगत है, कहता कुछ है, करता कुछ है, सोचता कुछ है, होता कुछ है। पापी के भीतर एक स्वरता नहीं, बोलता कुछ है, आंखें कुछ और कहती हैं, हाथ कुछ और करते हैं। पापी एक सांस बहुत है, पुण्यात्मा एक है, योगस्थ है, जुड़ा है, इंटीग्रेटेड है। वो जो भी करता है वो सब संयोजित है, वो सभी एक दिशा में गतिमान है। उसके पैर भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उसकी आंखें जा रही है, उसके हाथ भी उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ उसका हृदय जा रहा है, उसकी सांसें भी उसी तरफ जा रही जिस तरफ उसकी धड़कनें जा रही। वो इकट्ठा है, उसके जीवन में एक दिशा है, एक गति है, विक्षिप्तता नहीं है। जैसे फूलों से मालाएं बनती है, वैसे ही जन्म लेकर प्राणी को पुण्य अर्जन करना चाहिए ताकि तुम्हारा जीवन एक माला बन जाए। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, बड़ी मीठी बात बुद्ध कहते हैं। खूब हृदय भर के सुनना, फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, न चंदन की, न तगर की, न चमेली की, न बेला की। अगर हवा पूरब की तरफ बह रही हो तो चंदन कोई उपाय नहीं चंदन के पास कि अपनी सुगंध को पश्चिम की तरफ भेज दे। हवा के विपरीत नहीं जाती, न तगर की, न चमेली की, न चंदन की, न बेला की। लेकिन सज्जनों की सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती। सत्पुरुष सभी दिशाओं में सुगंध बहाता है। एक ही सुगंध है इस जगत में जो विपरीत दिशा में भी चली जाती है, वह है सत्पुरुष की, वह है संत पुरुष की, वह है जागृत पुरुष की सुगंध। मनुष्य भी एक फूल है, और जो कली ही रह गए खिल ना पाए उनके दुख का अंत नहीं। कलियों से पूछो जो खिलने में असमर्थ हो गई, जिनमें गंध भरी थी और लुटा ना पाई। ऐसे ही जैसे किसी स्त्री को गर्भ रह गया और फिर बच्चे का जन्म ना हो तो उसका संताप समझो। गर्भ बड़ा होता जाए और बेटे का जन्म ना हो तो उस स्त्री की पीड़ा समझो। ऐसा ही प्रत्येक मनुष्य पीड़ा में, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो बड़ा हो रहा है वो जन्म नहीं पा रहा। तुम एक गर्भ लेके चल रहे हो, गर्भ बड़ा होता जाता है लेकिन तुम्हारे जन्म की दिशा खो गई, तुम भूल ही गए हो। तुम एक कली हो, उसके भीतर गंध इकट्ठी होती जा रही है, बोझिल हो गई है कली, अपने ही बोझ से दबी जा रही। मेरे देखे तुम्हारी पीड़ा ये नहीं कि तुम्हारे जीवन में दुख है, तुम्हारी असली पीड़ा यही है कि जो सुख हो सकता था वो नहीं हो पा रहा। ये दुख की मौजूदगी नहीं है जो तुम्हें पीड़ित कर रही है, ये उस सुख की मौजूदगी का अभाव है जो हो सकता था और नहीं हो पा रहा। तुम्हारी गरीबी तुम्हें पीड़ा नहीं दे रही है, लेकिन तुम्हारे भीतर जो अमीरी का झरना फूट सकता था, फूटने को तत्पर खड़ा है, उस पर चट्टान पड़ी, झरना फूट नहीं पा रहा है। ये विकास की छटपटाहट है आदमी का संताप, ये आदमी की पीड़ा जन्म लेने की छटपटाहट है। सारा अस्तित्व खिलने में भरोसा रखता है, जब भी कोई चीज खिल जाती तो निर्भर हो जाती। आदमी भी एक फूल है, और बुद्ध कहते हैं बड़ा अनूठा फूल है। और बुद्ध जान के कहते हैं उनका फूल खिला, तब उन्होंने एक अनूठी बात जानी कि विपरीत दिशाओं में भी जहां हवा नहीं भी जा रही हो वहां भी संत की गंध चली जाती। संत की गंध कोई सीमाएं नहीं मानती। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशाओं में नहीं जाती, न चंदन की सुगंध, न तगर की, न चमेली की, न बेला की, लेकिन सज्जनों की सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती। सज्जन की सुगंध एकमात्र सुगंध है जो संसार के नियम नहीं मानती,
जो संसार के साधारण नियमों के पार है, जो अतिक्रमण कर जाती है। सीख ले फूलों से गाफिल मुद्द आए जिंदगी, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी। इतना ही काफी नहीं कि खुद महको, खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी। इसलिए बुद्ध ने कहा है समाधि फिर प्रज्ञा, समाधि फिर करुणा। बुद्ध ने कहा है वो ध्यान ध्यान ही नहीं जो करुणा तक न पहुंचाते। खुद महकना ही नहीं गुलशन को महकाना भी। उसी समाधि को बुद्ध ने परिपूर्ण समाधि कहा है, जो लुट जाए सभी दिशाओं में बह जाए। लेकिन ये समझ लेने की बात है, ये बड़ी विरोधाभासी बात है। तुम साधारण अवस्था में सभी दिशाओं में दौड़ते हो और कहीं नहीं पहुंच पाते। बुद्धत्व की तरफ चलने वाला व्यक्ति एक दिशा में चलता है और जिस दिन पहुंचता है उस दिन सभी दिशाओं में बहने में समर्थ हो जाता है। तुम सभी दिशाओं में बहने की कोशिश करते हो, थोड़ा धन भी कमा लें, थोड़ा धर्म भी कमा लें, थोड़ी प्रतिष्ठा भी बना लें, थोड़ी समाधि भी कमा लें, थोड़ा दुकान भी बचा लें, थोड़ा मंदिर भी। तुम सभी दिशाओं में हाथ फैलाते हो और आखिर में पाते हो भिखारी के भिखारी विदा हो गए, जिसे आए थे खाली हाथ वैसे खाली हाथ गए, बहुत पकड़ना चाहा कुछ पकड़ने ना आया। तुम्हारी हालत करीब करीब वैसी है जैसे तुमने बहुत प्रसिद्ध गधे की सुनी हो कि एक मजाकिया आदमी ने एक गधे के पास दोनों तरफ घास के दो ढेर लगा दिए बराबर दूरी पर, और गधा बीच में खड़ा था। उसे भूख तो लगी तो वो बाएं तरफ जाना चाहा, तब मन ने कहा कि दाएं, उस तरफ भी घास था। दाएं तरफ जाना चाहा तो मन ने कहा बाएं। कहते हैं गधा भूखा बीच में खड़ा खड़ा मर गया, क्योंकि न वो बाएं जा सका न दाएं। जब दाएं जाना चाहा तब मन ने कहा बाएं, जब बाएं जाना चाहा तो मन ने कहा दाएं। तुम्हारा मन यही कर रहा है, जब तुम मंदिर की तरफ जाना चाहते हो तब मन कहता दुकान, जब तुम दुकान पर बैठे हो मन को भजन याद आता मंदिर। ऐसे ही मर जाओगे, और दोनों तरफ तृप्ति के साधन मौजूद थे, कहीं भी गए होते। मैं तुमसे कहता हूं अगर तुम दुकान पर ही पूरी तरह से चले जाओ तो वहीं ध्यान हो जाएगा। आधे आधे मंदिर जाने की बजाय दुकान पर पूरे चले जाना बेहतर है, क्योंकि पूरे चला जाना ध्यान है। ग्राहक से बात करते वक्त भीतर राम राम गुनगुनाना गलत है, ग्राहक को ही पूरा राम मान लेना उचित है। आधे आधे कुछ सार ना होगा, आधा यहाँ आधा वहां। तुम दो नाव पर सवार हो, तुम बड़ी मुश्किल में पड़े हो, तुम सब दिशाओं में पहुंचना चाहते हो और कहीं नहीं पहुंच पाते। बुद्ध पुरुष एक दिशा में जाते और जिस दिन मंजिल पर पहुंचते सब दिशाओं में उनकी गंध फैल जाती। तुम सब पाने की कोशिश में सब गंवा देते हो, बुद्ध पुरुष एक को पा लेते हैं और सब पा लेते हैं। महावीर ने कहा जिसने एक को पा लिया उसने सब पा लिया, जिसने एक को जान लिया उसने सब जान लिया। जीसस ने कहा सीक ये फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल एल्स शैल बी एडेड अनटू यू। अकेली तुम परमात्मा की खोज कर लो, प्रभु का राज्य खोज लो, ये सब अपने से आ जाएगा, तुम उसकी फिक्र ही मत करो। एक को जिसने गमाया वो सब गमा देता है, और एक को जिसने पाया वो सब पा लेता है। लेकिन तुम्हारा सब अधूरा अधूरा है, अधूरे अधूरे के कारण तुम खंड खंड हो गए हो, तुम्हारे भीतर बड़े टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा कहीं जा रहा, दूसरा टुकड़ा कहीं जा रहा। तुम एक टूटी हुई नाव जिसके तख्ते अलग अलग बह रहे हैं, तुम कैसे पहुंच पाओगे, तुम कहां पहुंच पाओगे? तुम हो ही नहीं, तुम इतने खंड खंड हो गए हो कि तुम हो ये कहना भी उचित नहीं है। होने के लिए जरूरी है कि तुम्हारी दिशा बने, एक अनुशासन हो, एक श्रृंखला हो। तुम फूलों को पुरोना सीखो, फूलों की माला बनाना सीखो। जीवन में सत्य का आविष्कार करना है, प्रेम का आविष्कार करना है। जीवन में तुम कौन हो इसका आविष्कार करना है।
इसे ऐसे ही नहीं गंवा देना है, तो तुम्हारे जीवन में धीरे धीरे अनुशासन आना शुरू हो जाए। अगर तुम्हारे पास कुछ भी थोड़ी सी भी दृष्टि हो, दिशा हो, कहां पहुंचना है, तो एक तारतम्य आ जाए। उस तारतम्य के साथ ही साथ तुम्हारे भीतर एकता का जन्म होगा। इस एकता के माध्यम से ही किसी दिन तुम माला बन सकते हो, और जिस दिन तुम माला बन जाते हो उस दिन परमात्मा के गले में चढ़ाने नहीं जाना होता, परमात्मा का गला खुद तुम्हारी माला में आ जाता है। आ ही जाएगा, तुम काबिल हो गए। काबिले इल्तिफात तो ही नहीं, तभी तक अर्चन थी। उनसे सिकवा फजूल है सीमा, शिकायत बेकार है। इतना ही जानना कि अभी हम तैयार नहीं हुए। अब ये फूलों की गठरी को तुम किसी के गले में डालना चाहोगे तो माला कैसे बनेगी? गिर जाएंगे फूल नीचे, धूल में पड़ जाएंगे। ये माला किसी के गले में डालनी हो तो माला होनी चाहिए। फूलों के ढेर को माला मत समझ लेना। थोड़ा देखो माला और ढेर में क्या फर्क है। ढेर में संगठन नहीं है, अर्थात आत्मा नहीं है। माला में एक संगठन है, एक व्यक्तित्व है, एक आत्मा है। धागा दिखाई नहीं पड़ता, एक फूल से दूसरे फूल में चुपचाप अदृश्य में पिरोया हुआ है। जीवन के लक्ष्य भी दिखाई नहीं पड़ते, एक क्षण से दूसरे क्षण में अदृश्य पिरोए होते हैं। बुद्ध उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, तो हर घड़ी के भीतर ध्यान का धागा पिरोया हुआ है। जो भी करते हैं एक बार ध्यान रखते ही है कि उस करने में से ध्यान का धागा ना छूटे, वो धागा बना रहे। फूल से भी ज्यादा मूल्य धागे का है, लक्ष्य का है, दिशा का है। और जिस दिन ये घड़ी घट जाती कि तुम संगठित हो जाते हो, तुम एक हो जाते हो, उसी दिन परमात्मा की कृपा तुम पर बरस उठती। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, इसलिए बुद्ध उस संबंध में चुप रहे। जो कहा जा सकता था उन्होंने कहा, जो नहीं कहा जा सकता था उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने सारा जोर इस पर दिया है कि तुम्हारा व्यक्तित्व कैसे एक हो जाए, तुम्हारा ज्ञान कैसे आचरण बन जाए, तुम्हारे बिखरे फूल कैसे माला बन जाए। इससे ज्यादा उन्होंने बात नहीं की, क्योंकि इसके बाद बात करनी ठीक ही नहीं। इसके बाद जो होना है वो होता ही, वो हो ही जाता है, उसमें कभी कोई अड़चन नहीं पड़ती। इसलिए परमात्मा को तुम भूल जाओ तो अड़चन नहीं, अपने को मत भूल जाना। अपने को भूला तो सब गया, सब डूबा। खुद की याद रखी और याददाश्त को रोज रोज संभालते गए। रोज रोज हर तरह से वो याददाश्त सघन होती चली जाए। जैसे जल गिरता है पहाड़ से, चट्टान मजबूत है, जल बिल्कुल नाजुक है, लेकिन रोज गिरता ही चला जाता है। एक दिन चट्टान तो रेत होकर बह जाती, जल की धार अपनी जगह बनी रहती। कठोर से कठोर भी टूट जाता है सातत्य के सामने। इसलिए घबराना मत। अगर आज तुम्हें अपनी दशा चट्टान जैसी लगे, तुम कहो कि कैसे ये अहंकार बहेगा, ये चट्टान बड़ी मजबूत है, कैसे ये दिल झुकेगा, ये झुकना जानता नहीं, तुम इसकी फिक्र मत करना। तुम सिर्फ सातत्य रखना, ध्यान का, अवलोकन का, साक्षी का, से सब अपने से हो जाता है। बुद्ध ने मनुष्य के व्यक्तित्व का विज्ञान दिया, उन्होंने मनोविज्ञान दिया, मेटाफिजिक्स, परलोक के शास्त्र की बात नहीं की। बुद्ध बड़े यथार्थवादी है। वे कहते हैं जो करना जरूरी है वही, और ज्यादा व्यर्थ की विस्तार की बातों में तुम्हें भटकाने की जरूरत नहीं। ऐसे ही तुम काफी भटके हुए हो, थोड़े से तुम्हें सूत्र दिए, अगर तुम उन्हें कर लो तो उन सूत्रों में बड़ी आग है, वो अंधकार को जला डालेंगे, वो व्यर्थ को राख कर देंगे, और उन सूत्रों की आग से तुम्हारे भीतर का स्वर्ण निखर के बाहर आ जाएगा। बुद्ध ने बहुत थोड़ी सी बातें कही, उन्हीं को दोहरा के कहा है, क्योंकि बुद्ध को कोई रस दर्शन शास्त्र में नहीं है। बुद्ध को रस है मनुष्य की
आंतरिक क्रांति में, रूपांतरण में। बुद्ध को जिन लोगों ने गौर से अध्ययन किया है उन सबको हैरानी होती है कि बुद्ध एक ही बात को कितनी बार दोहराए चले जाते। वो हैरानी इसलिए होती है कि बुद्ध व्यर्थ की बात को कभी बीच में नहीं लाते, बस सार्थक को ही दोहराते ताकि सतत चोट पड़ती रहे। और तुम ऐसे हो, तुम्हारी नींद ऐसी है, तुम्हारी तंद्रा ऐसी है कि बहुत बार दोहराने पर भी तुम सुन लो, वो भी आश्चर्य है। बुद्ध से कोई पूछता था तो वो 3 बार दोहरा के जवाब देते थे, उसी वक्त 3 दफा दोहरा के जवाब देते थे। क्यों 3 बार? क्योंकि बुद्ध से कोई पूछने लगा कि क्यों 3 बार, क्या आप सोचते हम बहरे? बुद्ध ने कहा नहीं, अगर तुम बहरे होते तो इतनी अड़चन न थी। तुम बहरे नहीं हो और फिर भी सुनते नहीं हो, तुम सोए नहीं हो, यही तो अड़चन है। सोए होते तो जगाना आसान हो जाता, तुम बन के लेटे हो, तुम सोने का ढोंग कर रहे हो, उठना भी नहीं चाहते, जाग भी गए हो। तुम सुनते हुए मालूम पड़ते हो और सुनते भी नहीं, इसलिए 3 बार दोहरा दो। ये जो बुद्ध का दोहराना है धम्मपद में, इस पूरी चर्चा में बहुत बार आएगा, अलग अलग द्वारों से वो फिर वही लौट आते, कैसे तुम्हारा रूपांतरण हो। बुद्ध की सारी आकांक्षा अभीप्सा मनुष्य केंद्रित है, महावीर मोक्ष केंद्रित है, वो मोक्ष की चर्चा करते। जीसस ईश्वर केंद्रित है, वो ईश्वर की चर्चा करते। बुद्ध मनुष्य केंद्रित है, जैसे मनुष्य से ऊपर कोई सत्य नहीं है बुद्ध के लिए। साधार ऊपर मानुष सत्य, ताहार ऊपर नहीं, सबके ऊपर मनुष्य का सत्य है और उसके ऊपर कोई सत्य नहीं। क्योंकि जिसने मनुष्य के सत्य को समझ लिया उसे कुंजी मिल गई, सारे सत्यों के द्वार उसके लिए फिर खुले। बुद्ध को भोजन बनाओ, पियो, पचाओ, तो धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर बुद्ध का अवतरण होने लगा। धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारे भीतर बुद्ध की प्रतिमा उभरने लगी। हर चट्टान छिपाए है बुद्ध की प्रतिमा अपने में, जरा छेनी की जरूरत है, हथौड़ी की जरूरत है, व्यर्थ को छांट के अलग कर देना है। किसी ने माइकलेंजेलो से पूछा, क्योंकि चर्च के बाहर एक पत्थर बहुत दिन से पड़ा था, उसे अस्वीकार कर दिया गया था, चर्च के बनाने वालों ने उपयोग में नहीं लिया था, वो बड़ा अनगढ़ था। माइकलेंजेलो ने उस पर मेहनत की और उससे एक अपूर्व क्राइस्ट की प्रतिमा निर्मित की। किसी ने पूछा कि ये पत्थर तो बिल्कुल व्यर्थ था, इसे तो फेंक दिया गया था, इस तो राह का रोड़ा समझा जाता था, तुमने इसे रूपांतरित कर दिया, तुम अनूठे कलाकार हो। माइकलेंजेलो ने कहा नहीं, तुम गलती कर रहे हो, जो मैंने पत्थर से प्रकट किया है वो पत्थर में छिपा ही था, सिर्फ मैंने पहचाना और जो व्यर्थ टुकड़े पत्थर के आसपास थे उनको छांट के अलग कर दिया। ये प्रतिमा तो मौजूद ही थी, मैंने बनाई नहीं, मैंने सिर्फ सुनी आवाज। मैं गुजरता था यहां से, पत्थर चिल्लाया और उसने कहा कि कब तक मैं ऐसे ही पड़ा रहूं, कोई पहचान ही नहीं रहा है, तुम मुझे उठा लो, जगा दो। बस मैंने छेनी उठा के इस पर मेहनत की, जो सोया था उसे जगाया। बुद्धत्व को कहीं पाने नहीं जाना है, हर एक के भीतर आज जो चट्टान की तरह मालूम हो रहा है अनगढ़, बस जरा से छेनी हथौड़े की जरूरत है। सबके भीतर से पुकार रहा है कि कब तक पड़ा रहूंगा, उघाड़ो मुझे। इसलिए बुद्ध कहते हैं जो तुम सुनो, जो सुभाषित तुम्हारे कानों में पड़ जाए, उन्हें तुम स्मृति में संग्रहित मत करते जाना, उन्हें उतारना आचरण में, उन्हें जीवन की शैली बनाना। धीरे धीरे तुम्हारे चारों तरफ उनकी हवा तुम्हें घेरे रहे, उनके मौसम में तुम जीना। जल्दी ही तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर का बुद्धत्व उभरना शुरू हो गया, फूल माला बन गए। और तब एक ऐसी घटना घटती है जो संसार के नियमों के पार है। फूलों की सुगंध वायु की विपरीत दिशा में नहीं जाती, न चंदन की, न तगर की, न चमेली की, न बेला की,
लेकिन जिनके भीतर का बुद्ध पुरुष जाग गया, बुद्ध चैतन्य जाग गया, उनकी सुगंध विपरीत दिशा में भी जाती है, सभी दिशाओं में उनकी सुगंध फैल जाती है। और जब तक तुम ऐसे अपने को लुटा ना सकोगे तब तक तुम पीड़ित रहोगे। एक ही नर्क है अपने को प्रकट न कर पाना, और एक ही स्वर्ग है अपनी अभिव्यक्ति खोज लेना। जो गीत तुम्हारे भीतर अनगाया पड़ा है उसे गाओ, जो वीणा तुम्हारे भीतर सोई पड़ी है उसे छेड़ो, उसके तारों को, जो नाच तुम्हारे भीतर तैयार हो रहा है उसे तुम बोझ की तरह मत लो, उसे प्रकट हो जाने दो। प्रत्येक व्यक्ति अपने भीतर बुद्धत्व को लेकर चल रहा है, जब तक वो फूल न खिले तब तक बेचैनी रहेगी, अशांति रहेगी, पीला रहेगी, संताप रहेगा। वो फूल खिल जाए, निर्वाण है।

0: पर हम
1: अरे कहाँ पर अटक गए यार।
2: रेडियो मानव रचना 107.8 FM पर फरीदाबाद का अपना रेडियो स्टेशन।
3: युग तुम हो हट गए।
4: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत।
5: पिछले एपिसोड में हमने देखा कि हम ज्योति बिंदु रूप चैतन्य शक्ति आत्मा हैं और हमारे पिता परमात्मा का रूप भी ज्योति बिंदु है। परमात्मा के साथ हमारा सीधा संबंध है और इस दिव्य अविनाशी संबंध की निरंतर स्मृति से हम आत्माओं में अनेक सकारात्मक परिवर्तन हो सकते हैं। आइए अब आगे सुनते हैं।
4: तो यहाँ जब मैंने भाषा के परे जाने का भाव अभी सीखा नहीं या अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ, तो मैं उस पूरे जो रिएक्शन है या जो मुझे मिल रहा है उसे अनुभव कैसे करूँ?
6: उसका सबसे पहला जो फर्स्ट क्या कहें चेकिंग, मतलब अपना पैरामीटर चेक करना कि जैसे ही मैं परमात्मा को याद करूँ राइट तरह से एंड राइट एंटिटी को,
4: मतलब ओके पूरी पहचान के साथ
6: कनेक्टिंग टू द राइट एंटिटी इन द राइट वे, I will start experiencing those qualities जो हम सिर्फ कह रहे हैं अभी तक, I will start experiencing them in myself and the result of that will be कि हमारे जो संस्कार जो आज दिन तक हम कहते थे ये तो मेरी नेचर है, ये तो चेंज नहीं हो सकती, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, वो मेरे अंदर ऑटोमेटिकली इतनी पावर भरती जाएगी कि मेरे लिए अपने आप को परिवर्तन करना जो आज दिन तक हम समझ रहे थे बहुत डिफ़िकल्ट है। क्योंकि आप देखो कोई भी रिश्ता अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, हम उस रिश्ते में अगर हमें एनर्जी मिलती है तो हमें कोई भी रिश्ता एम्पावर कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि जो ह्यूमन बींग्स के साथ हमारे रिश्ते हैं वो हमें एम्पावर नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि आज मेजॉरिटी सोल्स थोड़ी सी
4: डिप्लीटेड
6: वीक हो गई हैं तो इसलिए हमें सोल टू सोल कुछ बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा है। नहीं तो आज किसी से मुझे इतना प्यार मिले अनकंडीशनल लव मिले तो मुझे अपनी कमजोरियों को ओवरकम करना डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आज एक पेरेंट एज अ चाइल्ड मुझे बोलता ही रहे तुम तो हो ही ऐसे, तुम तो हो ही तुम, और अगर अच्छा अच्छा बोल भी रहा लेकिन खुद इतने दर्द में है तो उनकी दर्द की वाइब्रेशन मुझे मिलती है तो आई कंटिन्यू टू गेट डिप्लीटेड। इवन एज अ पेरेंट एंड चाइल्ड टूडे द बॉडी फॉर्म पेरेंट एंड अ चाइल्ड, पेरेंट्स गिव अ लॉट ऑफ लव टू चिल्ड्रन, बट पेरेंट्स आर इन अ लॉट ऑफ पेन।
4: खुद किस सिचुएशन में है तो परमात्मा कभी खुद थोड़ा पेन में जाएंगे।
6: दैट्स द पॉइंट। तो जैसे ही आपका रिलेशनशिप उसके साथ जुड़ता है जो इतना पावरफुल है तो उससे आपको वाइब्रेशन कौन सी आएगी? आज एक पेरेंट भी एक बच्चे के साथ ये रिलेशनशिप जोड़ सकता है, नॉट लाइक गॉड, बट इफ अ पेरेंट हैज़ द पावर कि वो अनकंडीशनल लव दे स्टेबिलिटी के साथ, बच्चा कितना भी दर्द में है पेरेंट दर्द में ना जाए, तो पेरेंट की जो एनर्जी ट्रांसमिट होगी बच्चे को वो बच्चे को मदद कर देगी अपने दर्द से बाहर आने की। That because we are not being able to get here, so what happens? Relationship is there, लेकिन हम फिर भी हमारी स्थिति कैसे होती जा रही है? We all love each other, we say, but so many conditions we apply, and that's why we are getting disempowered. लेकिन जैसे ही हमारा connection एक ऐसी आत्मा से जुड़ता है, you know, just look at him just as another soul. We are looking at him just as another soul. इतनी सारी आत्माओं से रिश्ता जुड़ा है, अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है जो कभी दर्द में नहीं जाता,
4: जिसका अपना कोई दर्द नहीं, वंडरफुल,
6: नो पेन, राइट, नो एंगर, नो स्ट्रेस, नन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, एवर पावरफुल, एवर प्योर, एवर पीसफुल। अब एक ऐसी आत्मा से रिश्ता जुड़ रहा है तो उसका इफेक्ट क्या होगा मेरे ऊपर?
4: इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग,
6: दैट्स ऑल, दैट आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग। कि मुझे जो अपने अंदर परिवर्तन लाना है ना वो एक्चुअली हम खुद ही लाते हैं, भगवान हमें चेंज नहीं करता, ही डजंट डू लाइक दिस मैजिक, लेकिन भगवान से जो वो अनकंडीशनल पावर लव प्योरिटी मिलती है दैट हेल्प्स मी टू ओवरकम माई पेन एंड ओवरकम माई ओल्ड संस्कार, एंड दैट्स वाई रिलेशनशिप विद गॉड का जो सबसे फंडामेंटल रिजल्ट निकलता है दैट इज सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन। गॉड डज नॉट ट्रांसफॉर्म मी, वी हैव टू बी वेरी क्लियर। हम भगवान को अगर ये भी कहते रहे ना मेरा ये संस्कार ठीक कर दो, मेरा ये संस्कार, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। नहीं तो भगवान ऐसे करे और सबके संस्कार ठीक हो जाए, इट डजंट हैपन। हम खुद ठीक करते हैं, हमें अपने ऊपर मेहनत खुद करनी पड़ेगी। लेकिन यस, बीइंग इन द कंपनी ऑफ दैट एवर प्योर, मुझे वो इतनी वाइब्रेशन, इतनी पावर मिलती है जिससे मैं अपने आप को ठीक करती हूँ।
4: इतनी शक्ति मिलती जा सकती है। वंडरफुल, दिस इज अ ब्यूटीफुल वे टू लुक एट द रिलेशनशिप। अगर पूरे दिन में मैं अपने जीवन में देखती हूँ तो जो भी मेरा कोई रिश्ता है उसका कोई ना कोई रोल होता है। मेरे जैसे आप हैं, आपके साथ मेरा क्या रिश्ता है या उसका एक रोल है मेरी लाइफ में। कोई भी है, मेरी बेटी है अगर आप देखें तो उसका क्या रोल है। तो सिमिलरली अगर हम गॉड को देखते हैं, उसका मेरे जीवन में, मेरे दिन भर दिन में जितना भी मैं होती हूँ, क्या होगा रोल।
6: लेट्स टेक एनी रिलेशनशिप, क्योंकि परमात्मा के साथ हम कहते हैं, एक तो हम उसको बाबा कहते हैं प्यार से, एज अ फादर, लेकिन वो आत्मा है। And we've already seen कि relationships labels नहीं है, relationship है आत्मा का, आत्मा से connection। हाँ, आज हमने उसको बहुत सारे labels दे दिए हैं, लेकिन एक husband और एक wife है तो relationship किसके बीच है? दो आत्माओं के बीच। एक parent और एक child है, relationship दो आत्माओं के बीच। अब एक आत्मा और परमात्मा का relationship है, तो again relationship दो आत्माओं के बीच है। Let's say I'm in pain, मेरे मन में कोई बात है, समथिंग इज बॉदरिंग मी। और कई बार होता कि अनलेस आई शेयर इट, जस्ट गोज ऑन इनसाइड, एंड मुझे चाहिए कि मैं किसी के साथ वो शेयर करूँ। मैं वो बात किसी के साथ नहीं शेयर कर सकती, बिकॉज प्रोबेबली इट्स जस्ट टू पर्सनल। एंड शेयर करने का भाव भी क्या होता है कि इफ आई शेयर इट विद यू, आई वॉन्ट टू गेट फ्री फ्रॉम दैट पेन। यू नो, हम शेयर भी इसी भाव से करते हैं कि मैं किसी से शेयर करूँ ताकि तो मेरा दर्द ही मुक्त हो जाए। लेकिन आज अगर मेजोरिटी आत्माएं अपने अपने कॉम्प्लेक्सेस में, अपने इश्यूज में हैं, या खुद उतने एम्पावर्ड नहीं हैं, अगर उनसे हम अपनी कोई बात शेयर भी करते हैं तो डू आई बिकम फ्री ऑफ माई पेन। अगर मुझे कोई राय देता भी है कि ऐसे नहीं, आप ऐसे कर लो, ऐसे आपको क्या पता मेरे साथ कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। सो आई कैन शेयर बट आई डोंट गेट द पावर, जिससे मैं अपने दर्द से मुक्त हो जाऊँ। अब एक्सपीरियंस करें कि हम बात कर रहे हैं उस ऑलमाइटी अथॉरिटी, एवर पावरफुल आत्मा से, जो अनकंडीशनल लव करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ मेरे से कितनी बड़ी गलती हो गई है, मैंने कितना बड़ा पता नहीं क्या कर दिया है। नाउ आई शेयर, शेयर कुड बी विद माई थॉट पावर, कि मैं जो भी है मैं बोलती जाती हूँ। रिटर्न में वाइब्रेशंस कैसी आ रही हैं? सपोज मैं आपके साथ शेयर करूँ ना कि मैंने, आपको पता है, कितनी बड़ी गलती कर दी, या मेरे साथ ऐसा हुआ या ऐसा हुआ। आप ये एक ह्यूमन नेचर जैसे कहें, क्योंकि हम बहुत डिप्लीटेड हैं अभी, आप भले ऊपर से कहेंगे हाँ कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा, अंदर कहीं ना कहीं जो वाइब्रेशन,
4: ये होना ही था,
6: या आपने ऐसा कर दिया,
4: ये आप इस हद तक,
6: यू नो, सो हम बोलेंगे नहीं, ठीक है। इवन आज एक बच्चे से भी अगर कोई गलती हो जाए तो पेरेंट बहुत प्यार करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बच्चे से अगर कोई बहुत बड़ी गलती हो जाए तो एक पेरेंट के अंदर वो उस चीज़ का एक जो नेगेटिविटी का इम्प्रेशन है वो आ ही जाता है, और तब पेरेंट्स कहते हैं बच्चे ने ये कर दिया, या यू नो धोखा दे दिया, या वट एवर। तो वाइब्रेशन कौन सी पहुँचेगी? तो इसलिए हम शेयर नहीं कर सकते, और

0: होता है. वी नीड लॉट ऑफ लव. आई नीड अ सोल हु विल गिव मी सो मच लव दैट आई विल बी एबल टू कम आउट ऑफ दैट पेन. लेकिन आज हम किसी से भी अपना पेन शेयर करें तो हमें रिटर्न में कोई यू नो वी स्टिल गेटिंग पेन. सो व्हेन आई शेयर माय प्रॉब्लम माय कॉन्फ्लिक्ट माय पेन विद हिम इट इज़ नॉट दैट यू नो जस्ट द शेयरिंग डज द वर्क. एक तो शेयरिंग करते हुए मैं अपने आप को हल्का करते जाती हूँ लेकिन वो जो इन रिटर्न मुझे फिर भी अनकंडीशनल एक्सेप्टेंस मिलती कि आप जो हो जैसे हो I still love you. This helps me to build my self-confidence all over again. तो परमात्मा के साथ relationship मतलब एक तो अपनी छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी कोई भी बात हो हम share कर सकते हैं. तो फिर हमें बहुत ज़्यादा dependency कि मुझे किस से बात share करनी है वो नहीं पढ़नी पड़ती. पालना मैं अपने जीवन की हर step पर जो भी कर रही हूँ कर्म कर रही हूँ. हाँ मुझे अब ये ज्ञान है कि मेरा जो भी कर्म हो रहा है वो यहाँ से स्टार्ट होता है. माई एवरी कर्म स्टार्ट्स विद माई थॉट. बट वॉट अबाउट वॉट थॉट टू क्रिएट. ये तो मुझे क्रिएट करना है. आई क्रिएट द थॉट. लेकिन अगर मैं एक ऐसी पावर से कनेक्ट हो जाऊँ जिससे मुझे वो शक्ति मिलती रहती है जिससे मेरा माइंड बिल्कुल साइलेंट और स्टेबल रहता है तो नेगेटिव और वेस्ट थॉट्स खत्म होते जा रहे हैं.
1: मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं विजन भी क्लियर होने शुरू हो जाती है.
0: वो तो क्लियर है लेकिन यू नो लाइक अभी क्या हो रहा है हमें ये पता है कि राइट क्या है रॉन्ग क्या है. लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं तो हमारे पास वो राइट करने नॉलेज होने के बावजूद वो राइट करने की कहीं ना कहीं ताकत नहीं है क्योंकि माइंड इतना वीक हो गया है कि वो फिर भी एक नेगेटिव या एक वेस्ट थॉट क्रिएट कर देता है. लेकिन अगर ये माइंड उस सोल से कनेक्टेड है जो कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटिंग पावर है तो इसके अंदर क्या शक्ति आती है. परमात्मा मुझे थॉट्स नहीं भेजता है लेकिन परमात्मा मेरे माइंड को मुझे आत्मा को वो साइलेंस पावर देता है वो शक्ति देता है जिससे मैं आत्मा फिर राइट थॉट क्रिएट कर सकती हूँ. परमात्मा मुझे वो ज्ञान देता है जो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो हमें ज्ञान हम रोज़ सेंटर पर जाते और परमात्मा के महावाक्य सुनते तो वो ज्ञान मुझे मिलता है जिससे मुझे इन्फॉर्मेशन राइट मिलती है जिससे राइट थॉट क्रिएट करने की एक फाउंडेशन मिलती. तो एक नॉलेज मिल गई और साथ साथ एक पावर मिल गई. और सबसे ईजी जो पावर मिलती है गॉड से वो है सोल कॉन्शियस होने के. जब हम जिस कॉन्शियसनेस के संग में बैठेंगे ना तो उनकी कॉन्शियसनेस का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता ही पड़ता है. तो जब हम एक ऐसे के सामने बैठेंगे जो 100% सोल कॉन्शियस है तो हमारी कॉन्शियसनेस किस तरफ जाएगी. क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब दो आत्माएं कॉन्टैक्ट में आती तो एक का दूसरे के ऊपर प्रभाव पड़ता है. तो आज जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं जो नेगेटिव ऑरा की है तो उसका नेगेटिव ऑरा हम पे ओवरपावर करता है. अब जब हम एक ऐसी आत्मा के कॉन्टैक्ट में आते हैं जो एवर प्योर है तो उसकी पावर मुझ पर ओवरपावर करती है एंड फिर सोल कॉन्शियस बनना ये इजी हो जाता है. कितनी बार ऐसा होता कि हम किसी को याद करते हैं
1: उनका फोन आ जाता
0: तो वो कब होता है जब राइट टाइम पर हमने जो थॉट क्रिएट की और वहाँ से थॉट आई और हमारी थॉट्स की फ्रीक्वेंसी मैच हो गई. अब हम एक ऐसी आत्मा से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके यहाँ क्लटर का तो कोई ट्रेस ही नहीं है. सो बेसिकली ही इज एवर रेडी.
1: अच्छा ही इज रेडी. आई जस्ट हैव टू गेट कनेक्टेड. यू नो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू नो कि इफ इन द होल डे इफ आई वांट टू गेट कनेक्टेड टू you are there personally but if I want to get connected to my daughter or
0: See,
1: like anyone
0: I may
1: else,
0: not be there personally. Sometimes I could be sitting here but I'm not here if my mind is there. Mera man ho sakta na main aapse baat kar rahi hu hu lekin man kahin aur hai to aapko wo exchange ka anubhav nahi hoga kyunki har atma apne apne bahut sare disturbance se guzar rahi hai. Lekin ab hum kisse connect kar rahe hain
1: to main hi janna chahti hu log bhi ye janna chahenge ki when I get connected to him matlab jab main unko yaad karu to kya wo connected mujhse hai hamesha.
0: Absolutely.
1: This is what I think
0: Actually,
1: some reassurance
0: hamesha hi connected hai. You know it's like a transmitter जो कंटिन्यूसली ट्रांसमिट कर रहा है. अब सिर्फ रोल किसका बचा है
1: मेरा
0: रिसीवर कि रिसीवर उस ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी पे ट्यून कर जाए. अब जो ट्रांसमिट कर रहा है वो एक आत्मा है लेकिन

0: मैं जो रिसीवर बैठी हूँ, मैं बॉडी कॉन्शियसनेस में बैठी थी आज तक, तो इसलिए रिसीवर और ट्रांसमिटर की फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही थी। तो मैंने सोचा कि मैं एक माँ हूँ तो कौन याद आया, बच्चे, क्योंकि कॉन्शियसनेस माँ की थी। मैंने सोचा मैं एक ऑफिसर हूँ तो कौन याद आया, ऑफिस याद आया। अब जैसे ही ये कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई कि मैं एक आत्मा हूँ, तो तुरंत किससे कनेक्शन जुड़ा?
1: परमात्मा,
0: क्योंकि वो तो रेडी है, लेकिन मैं उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं जा रही थी। आप जिस फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे उधर का सिग्नल कैच करेंगे। तो अभी तक हम भगवान को याद करने की कोशिश कर रहे थे, इवन इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी या कॉन्शियसनेस, लेकिन खुद अपने को पहले सोल कॉन्शियस नहीं किया था।
1: अपनी पहचान बेसिकली वो तो था ही,
0: वो तो है ही है, ही इज नॉट गॉन एनीवेयर, वो तो है ही है। लेकिन आई वॉज नॉट फर्स्ट इन दैट सेम कॉन्शियसनेस, एंड सेकेंड आई डिडंट नो हु आई वॉज कनेक्टिंग टू। अब नॉलेज के आधार पर ये दोनों चीज़ें मिल गई, कि पहले अपनी कॉन्शियसनेस कि ये सब बातों की विस्मृति करके आई एम अ प्योर सोल। तो सोल को याद कौन आएगा? सुप्रीम सोल। फिर वो अनुभव करना, ही इज ऑलरेडी देयर, लेकिन द मिनट आई ट्यून इन आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द फ्लो। तो सारा दिन में जैसे सुबह हम मेडिटेशन करने बैठते, तो क्योंकि ये शुरू शुरू का हमारा नया नया रिश्ता है, तो सुबह जब हम मेडिटेशन करने बैठते हैं, वी आर सिटिंग विद द एम एंड ऑब्जेक्टिव कि हमारे सब कॉन्शियस माइंड में जो डीप रूटेड संस्कार्स हैं, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम परमात्मा को क्यों याद करते हैं। पहले हम याद करते थे कि प्रॉब्लम ठीक कर दो, बट नाउ वी अंडरस्टैंड दैट दैट इज माई कर्मा। अब हमें ये समझ में आता कि परमात्मा को हम इसलिए याद करते हैं ताकि हम अब उसकी शक्ति से अपने को ठीक करते हैं, स्व परिवर्तन करते हैं। तो जो मॉर्निंग का टाइम है, जो हम खास बैठते हैं मेडिटेशन करने के लिए, ताकि हम अपने माइंड को साइलेंट करें, सब कॉन्शियस लेयर पे जाएं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड के सारी थॉट्स को पुट असाइड करें, सब कॉन्शियस माइंड में जाएं, जहां बहुत सारे पुराने बिलीफ्स, पुराने संस्कार डीप एम्बेडेड हैं, और परमात्मा की पावर हमें वो मदद करती है उस सब कॉन्शियस माइंड पे जाने के लिए। फिर परमात्मा की वो शक्ति, वो एक एक जो पावर है, हम उसको थॉट से अपने सब कॉन्शियस माइंड में इम्प्रिंट करते हैं। वी आर चेंजिंग आर बिलीफ सिस्टम। फर्स्ट माई बिलीफ वॉज आई एम अ बॉडी, गुस्सा ये वो तो मेरे संस्कार है। नाउ आई एम चेंजिंग इट, आई एम अ प्योर सोल, चाइल्ड ऑफ द ओशन ऑफ प्योरिटी। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर का बच्चा हूँ। आई वॉन्ट के ये मेरे व्यवहार में दिखाई देना चाहिए, लेकिन इसको एम्बेड कहाँ करना पड़ेगा?
1: सबकॉन्शियस,
0: यहाँ सबकॉन्शियस में। तो मॉर्निंग में साइलेंट में बैठकर कॉन्शियस थॉट साइड पे कर सबकॉन्शियस लेयर को, जैसे यू नो ऊपर की सारी चीज़ें को हटाकर नीचे की चीज़ों को लेकर आते, उसमें से पुराने बिलीव्स के बदले ये नया जो सत्यता है, अभी वो बिलीफ ही है, उसको एम्बेड करते हैं और फिर उसको कार्य व्यवहार में लेके जाते हैं। तो सुबह का जो हमारा समय है वो है साइलेंस में बैठकर वो परमात्मा की शक्ति से अपने संस्कारों को ट्रांसफॉर्म करना, और सारा दिन में हम उसके साथ एक रिलेशनशिप कैसा एक्सपीरियंस कर सकते कि वन आई कैन गो ऑन कम्युनिकेटिंग विद हिम। अपने हर कर्म करने से पहले एक मिनट याद करें, फिर माइंड को साइलेंट करें, उसके साथ कनेक्ट करें, अपना काम करें। कोई मीटिंग के लिए आप जा रहे हैं, कोई डिसीशन आपको लेना है, कुछ भी करना है, कनेक्ट टू हिम। कोई बात बोझ है, शेयर विद हिम। तो जितना उस सुप्रीम पावर के साथ रिलेशनशिप जुड़ता जाएगा, आपका रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म होती जाएगी
1: बाकी सब,
0: और फिर जो आपका रिलेशनशिप होगा बाकियों के साथ, वो लेने के भाव से नहीं होगा कि मुझे आपसे ये चाहिए, वो होगा कि मेरे पास अब ऑलरेडी स्टॉक भर चुका है, नाउ आई कैन एक्सप्रेस इन माई रिलेशनशिप। फिर जो मेरा पर्पज़ ऑफ लाइफ था कि खुश रहना और खुश रहकर सब कुछ करना, तो वो करना
1: आसान
0: हो जाएगा। एंड देन आई विल स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग सैटिस्फैक्शन, लव, एंड बिकॉज आई स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग आई विल स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, एंड व्हेन आई स्टार्ट एक्सप्रेसिंग आई गिव, एंड व्हेन आई गिव माई रिलेशनशिप्स बिकम वेरी क्लोज। जो हम मेडिटेशन में बैठते हैं, तो तीन आत्मा की जो तीन फैकल्टीज हैं, माइंड, इंटेलेक्ट एंड एक्सपीरियंस, संस्कार, ये तीनों फैकल्टीज अपना अपना रोल प्ले करते। माइंड क्रिएट्स अ थॉट, इंटेलेक्ट उसको तुरंत विजुअलाइज करता है. जैसे आपने थॉट क्रिएट किया बेटी, तुरंत पिक्चर आ जाएगी. तो इसी तरह आत्मा ने थॉट क्रिएट किया गॉड, परमात्मा, सुप्रीम सोल, तो तुरंत एक फॉर्म आ जाता है कि जैसे मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट, वैसे वो भी एक पॉइंट ऑफ लाइट. आप अगर अपनी बेटी को भी याद करो तो तुरंत आपका थॉट आएगा वो भी कहाँ पर है, क्या कर रही है. तो इसी तरह जब हम परमात्मा को याद करते हैं तो वो कहाँ पर है, तो हमें घर भी ऑटोमेटिकली याद आता. तो घर याद आता कि घर हमारा द सोल वर्ल्ड इज गोल्डन रेड लाइट कंप्लीट प्योरिटी एंड देयर दिस ओशन ऑफ प्योरिटी. तो हम फिर मन और बुद्धि से वहाँ चलते हैं. जैसे हम यहाँ बैठे अपने घर जा सकते हैं, वहाँ के बैठे हुए लोगों को याद कर सकते हैं, वैसे ही अब हम उस घर चलते हैं. तो माइंड और इंटेलेक्ट दोनों साथ साथ चलेगा. मन थॉट क्रिएट करेगा, इंटेलेक्ट उसको हल्के से, डू नॉट अगेन प्रेशराइज योर सेल्फ, डू नॉट ट्राई टू सी समथिंग, इट इज़ नॉट सीइंग लाइक दिस विद दीज आइज, इट इज़ जस्ट ट्राइंग टू विजुअलाइज इट. किस लिए? क्योंकि अगर वो विजुअलाइज करते तो इंटेलेक्ट कहीं और नहीं चले जाते. क्योंकि अगर इंटेलेक्ट कहीं और चले जाती है तो मन उधर चला जाता है. यू नो, अगर मन ने कहा परमात्मा, अगर इंटेलेक्ट ने वो पिक्चर नहीं लाई तो इंटेलेक्ट किसी और की पिक्चर ले आएगा,
2: बस
0: फिर वो मन वहाँ चला जाएगा. तो बेसिकली माइंड और इंटेलेक्ट को इकट्ठे चलना पड़ेगा. दिस इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन. बट सम पीपल ट्राई टू बी वेरी यू नो हार्श विद देम, सेड पिक्चर नहीं दिखाई दे रहा. तो इट्स नॉट अ पिक्चर. एज लॉन्ग एज आपकी इंटेलेक्ट पर कोई और पिक्चर नहीं आ रहा, आपका मन कहीं और नहीं स्वे कर गया, यू आर ऑन द राइट ट्रैक. जस्ट विजुअलाइज इट वेरी लाइटली. मन और बुद्धि के द्वारा हम अपने पिता के पास जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने आप को देखना है. ये सारे लेबल्स, नाम, प्रोफेशन, रोल जो मैंने आज दिन तक समझा मैं हूँ, ये मेरे हैं. यहाँ तक कि ये शरीर भी मेरा है. दिस इज ऑल मैटर. आई एम एनर्जी, कॉन्शियसनेस, शक्ति. ट्राई एंड सी योरसेल्फ शाइनिंग इन द सेंटर ऑफ द फोरहेड, प्रकृति के बीच में एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा, टाइनी स्टार, कॉन्शियसनेस. यहाँ से बैठकर मैं शरीर को चलाती हूँ. मैं ही हूँ जो हर आत्मा से संबंध अनुभव करती हूँ. ये शरीर तो सिर्फ एक माध्यम है संबंध अनुभव करने वाली. मैं शक्ति हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. आई एम अ प्योर सोल, प्योरिटी, डिविनिटी, ये तो मेरी अपनी नेचर है. आई सी माई सेल्फ अपने घर की तरफ चलते हुए. अपने आप को देखें, वो पॉइंट ऑफ लाइट, इस शरीर से पार, इस सृष्टि से भी पार अपने घर की तरफ जा रहा है. धीरे धीरे अपने आप को देखने की कोशिश करें कि वो पॉइंट चांद सितारों की दुनिया को क्रॉस कर रहा है, और इस दुनिया को क्रॉस करते करते मैं आत्मा अपने घर में आकर पहुंची हूँ. गोल्डन रेड लाइट, कंप्लीट स्पेस ऑफ प्योरिटी एंड पीस. आज दिन तक मैं इस घर को याद करती थी, अपने पिता को याद करती थी. आज मैं उनके पास आकर पहुंची हूँ. अपने आप को देखें, मैं एक सुंदर सा चमकता हुआ सितारा इस आत्माओं की दुनिया में. मेरे सामने एक और बहुत सुंदर पावरफुल पॉइंट ऑफ लाइट, मेरे ही जैसा, मेरे ही जितना छोटा सा सूक्ष्म बट पावर वाइब्रेटिंग ऑल ओवर। मैं अपने पिता के पास आकर बैठा हूँ। आज दिन तक तो मैं ढूंढ ही रहा था गॉड, ईश्वर, अलग अलग नाम से पुकार रहा था। मैं उनके सामने आकर बैठा हूँ। मन पे कोई बात, कोई बोझ, कोई क्वेश्चन उनसे कर सकते हैं। मैं पवित्रता के सागर के सामने बैठा हूँ। देखने का प्रयास करें पवित्रता की किरणें, शांति की किरणें, एनर्जी है जो मुझ पर फ्लो कर रही है। और मैं आत्मा उन शक्तियों को अपने अंदर भरती जा रही हूँ। ओम शांति,
1: ओम शांति। सर शिवानी, जिस तरह से परमात्मा का परिचय हमें मिला और जिस तरह से एक रिलेशनशिप, हमारा एक डायनामिक रिलेशनशिप जो मेरा और आपका या हमारा किसी भी और व्यक्ति के साथ है, वो कायम हो सकता है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। थोड़ा सा खुद को एलिवेट करके अपनी पहचान को करने की ज़रूरत है, बाकी रिश्ता इतना सुंदर, इतना डायनामिक हो सकता है। वहाँ से कनेक्ट हो सकते हैं हम, जिसको हम अभी तक तलाश रहे। थैंक यू सो मच। हर बार की तरह आपसे यही कहना चाहेंगे कि ये कार्यक्रम आपका अपना है। सेल्फ मैनेजमेंट यानी खुद को समझते हुए, खुद को मैनेज करने का ये जो पूरा प्रोसेस हम समझ रहे हैं, इससे जुड़ी कोई आपकी बात है, कोई सवाल है, आपका हम स्वागत करेंगे। आप हमें फ़ोन पर या फिर ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। आज की इस पूरी बातचीत के लिए सर शिवानी, थैंक यू सो मच।